0: होगा उत्तर प्रदेश।
1: रंग बदलने से दामन पर लगे दाग छुप नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े इसकी अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
0: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नाराज फूफा तंज कसा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
3: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेन जी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेन जी ने नहीं देखा।
4: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
3: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
4: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
5: हाय फ्रेंड्स,
3: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
6: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
3: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में उसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने लगे।
2: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में जबरदस्त सियासत जारी है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, जहां वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
7: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
8: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
7: उधर पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
9: ये चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
7: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
10: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
11: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
10: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
11: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
10: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
7: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਨਵਾਇਆ।
12: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
7: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
2: अब बात करेंगे दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां एक मामूली से विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
13: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चौंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
14: बहुत दुख है सबको, शौक है, क्योंकि वो किसी को देखो कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है बहुत, हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
15: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक बुजुर्ग तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
13: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
16: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
13: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
15: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी नो वन स्टेप इन दिल्ली. एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे और देन इवन हिज मदर वाज अ रेनाउंड सिंगर ऑफ मणिपुर. और इस तरीके का जो म्यूजिक लव म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा जो सांस स्वभाव के बंदे जो है उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस.
13: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे. वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे.
17: बहुत अच्छा फैमिली है. बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए. और उसके बाद क्या हुए थे क्योंकि वो किसी से वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है. वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति.
18: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई.
19: तो क्या पीछा किया क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
18: देखिए ये अपने घर में थे तब बालकनी में. ये लोग ये जो हमारे विक्टिम है ये अपने घर से बाहर आए और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनके इनका आमना सामना हुआ और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई.
13: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं.
20: जब कोई भी मर्डर होता है मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है. हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है. उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है. इसमें कार्रवाई होना चाहिए. ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ तो जो भी हुआ मौत हो गए ना. तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही ये लोग तो भाग गए थे और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है.
13: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं. लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है. हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक.
2: उधर जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है जहां सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला.
21: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा. जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें.
22: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए.
23: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस.
21: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था. इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई. जिसके बाद स्थानीय निवासियों व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
24: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है. जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है. हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभियुक्त है उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए.
21: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी. बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया.
24: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है. पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया.
25: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है. यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे. जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की.
21: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. बहरहाल हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
2: और अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर के बारे में, क्योंकि बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना में गांधी घाट और साथ ही हाथीदेह पर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, भोजपुर, बक्सर का इलाका भी पानी पानी हो चुका है।

0: बाढ़ से बेहाल हुआ बिहार, नदियों में उफान, डूबे घर और मकान। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो तो बिहार के लिए सैलाब का सितम लेकर आया है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन और बागमती नदियां अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसके चलते बिहार के 13 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये बिहार के नौगछिया जिले की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोसी नदी के कहर से पूरा का पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। क्या घर क्या मकान, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं।
1: कोसी का पानी भी इस पूरे इलाके में हर साल की तरह जो है वो एक बार फिर से फैल चुका है, और जिनका भी घर है आप देखिए पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ये पूरा डूबा हुआ है। हर कमरे में जो है वो पानी प्रवेश कर चुका है और इस घर के लोगों के पास कोई और रास्ता या कोई विकल्प नहीं है, तो इस तरीके से मचान बनाकर जो है यही इनके रहने के लिए जो है कहें तो एक विकल्प है, या फिर सुरक्षित स्थान पर जो है आगे नेशनल हाईवे पर जा सकते हैं या वहाँ पहुँच गए हैं, परिवार को उन लोगों ने पहुँचाया भी है। तो ये हालात दरअसल इस वक्त मदरौनी में जो है वो देखने को मिल रहा है।
0: कोसी नदी में उफान के चलते पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। क्योंकि गंगा के उफान के चलते कोसी नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। नौगछिया ही नहीं, बेगूसराय में भी नदियों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते 4 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। नगर निगम के 5 वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
2: 36 घंटे से 48 घंटे के अंदर इस इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी प्रवेश कर गया। कहाँ जा रहे हैं बाबा, घर खाली करके?
3: हाँ तो सर, घर में पानी चल गया सर, निकलते हैं इतना पानी घर से निकलता।
2: नाव का व्यवस्था नहीं हुआ?
3: कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, क्या स्थिति है, घर से निकलते इतना पानी, बच्चा बुतरू मस्त है सर,
2: कोई व्यवस्था नहीं,
3: कोई व्यवस्था सर नहीं।
2: देखिए महिलाएं लोग घर खाली करके जाए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
4: अब जहाँ जाए घूमे कहाँ जाए, मैं घर डूबे के लिए तब की कर जाऊँ, घर डूबे के लिए तब जहाँ जाए खोते तहाँ जाए, मैं ऊपर दाब के रह।
2: क्या सब दिक्कत हुआ?
4: सब भी चीज डूब गए हैं एकदम, घर द्वार सब।
0: वही बेगूसराय का कैलाशपुर गांव पूरी तरह पानी पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग बड़े पैमाने पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सुपौल में कोसी नदी के कहर से बचने के लिए लोग नाव से सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, बीच नदी में नाव पलट गई और 6 लोग करीब 2 किलोमीटर तक बहते रहे, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने लोगों को बचाया। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। सारण के सोनपुर में सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिसमें बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खुद राहत शिविर और सामुदायिक रसोई जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को खाना भी परोसा।
5: इस कठिन घड़ी में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर सारी टीम लगाई गई है, लगातार लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा और यहाँ पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जहाँ की यहाँ जांच की भी प्रक्रिया चल रही है, जितने लोग आ रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था की जा रही है।
0: पटना के दियारा इलाके में बाढ़ का कहर दिख रहा है, जहां पप्पू यादव ने नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, साथ ही बच्चों और लोगों को पैसे देकर भी मदद की।
6: सरकार गायब है तो 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया इन लोगों के पास सबके पास नहीं है। हाजीपुर के सांसद के पास पैसा नहीं है, पटना के सांसद के पास पैसा नहीं है, दानापुर के सांसद के पास पैसा नहीं है। तुम अपनी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो गरीब आदमी की? करो, क्यों नहीं करते हो? जिंदगी इतनी तबाह कर क्यों कर रही हो? हम तो पुल के लिए लड़ रहे हैं, बांध के लिए लड़ रहे हैं, लगातार दीरा में पुल है इसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्थिति है।
0: साफ है कि बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। अब चुनौती न सिर्फ पानी से बचाने की है बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह और पटना से सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
7: उफनाती हुई नदियां बिहार की लोगों को परेशान कर रही हैं, जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से इस पानी ने चपेट में लिया है। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तलों तक शाखाओं में पानी भर चुका है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित की रिपोर्ट।
1: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
7: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी से संवाद, कहा झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर देश के युवा सच की हुंकार के साथ। मुंबई में बोले, विकसित भारत के लिए मेरा भरोसा और मजबूत। अयोध्या में आंगनवाड़ी सम्मेलन से पहले की सरकारों पर योगी का हमला, कहा माफियाओं के पास जाता था केंद्र का पैसा, अब यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, आप 70 साल तक दे सकेंगे सेवा, पहले 65 साल में थी रिटायरमेंट, यूपी के डेप्यूटी सीएम का ऐलान। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अवैध पीजी के खिलाफ शुरू किया सर्वे, पिछले दो दिनों में 24 इमारतें ढहाई गई। और बिहार में जारी है बाढ़ का कहर, 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल, लालू प्रसाद यादव बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। इंग्लैंड से आ रही है बड़ी खबर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या के कारण हवाई यात्रियों के लिए भारी मुसीबत की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक कल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या की वजह से पूरे ब्रिटेन में हवाई यात्रा प्रभावित हो गई है। 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की जा चुकी है और साथ ही यात्री घंटों तक एयरपोर्ट रनवे और टर्मिनल पर फंसे रहे हैं। ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने बताया है कि शाम तक उन्होंने अपने फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की समस्या को ठीक कर लिया था, लेकिन देरी का असर यूके के 15 एयरपोर्ट्स और उससे आगे तक महसूस किए गए हैं। एयरलाइंस और एयरपोर्ट देरी वाली फ्लाइट के भारी बैकलॉग को निपटाने में लगे हुए थे और लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को रवाना होना भी था तो शुरू हो गया है, लेकिन अव्यवस्था की वजह से इस व्यस्त एयरपोर्ट पर रात भर के लिए आने वाली फ्लाइट्स को रोकना पड़ा और आगे भी देरी की चेतावनी दी गई है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से बाल्टीमोर जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट के यात्रियों को हिथ्रो एयरपोर्ट पर विमान में ही करीब 4 घंटे तक उड़ान का इंतजार भी करना पड़ा और आखिरकार उन्हें बाद में विमान में उतार दिया गया क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई। अशरफ वानी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अशरफ, ये देरी का असर तो देखने को मिल रहा है, पूरा मामला क्या है, अपडेट दीजिएगा।
2: दरअसल तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो खाड़ी में एक बार फिर उभर गई है जब कल रात में अमेरिका की तरफ से ईरान के कुछ जहाजों को जो है निशाना बनाया गया था, उन पर बमबारी हुई थी, उनको तबाह किया गया था, लेकिन जैसे ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई तुरंत करने जा रहा है हर अमरीकी हमले की, तो उसके बाद उसने एक नए हथियार जो है वो क्लस्टर एमुनिशन इस्तेमाल करके जॉर्डन कुवैत और बहरीन पर हमले किए हैं, यहाँ तक कि यूएस डिस्ट्रॉयर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पिछले।
1: चलिए अशरफ, आपके पास लौटेंगे। तो कल देर शाम सिस्टम ठीक करते वक्त ये सब हुआ, ब्रिटेन में रद्द हो गई है 1000 से ज्यादा उड़ानें। ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक कल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या की वजह से पूरे ब्रिटेन में हवाई यात्रा पर असर पड़ा है और ऐसे में ट्रैफिक सर्विसेज ने यह भी बताया है कि शाम तक उन्होंने अपने फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की समस्या को ठीक कर लिया था, लेकिन देरी का असर यूके के 15 एयरपोर्ट्स और उससे आगे तक महसूस किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना असर इससे पड़ा होगा क्योंकि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स देरी वाली फ्लाइट्स के भारी बैकलॉग को निपटाने में लगे हुए थे। तो लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का रवाना होना तो शुरू हो गया, लेकिन अव्यवस्था की वजह से इस व्यस्त एयरपोर्ट पर रात भर के लिए आने वाली फ्लाइट्स को रोकना पड़ा है, जिसकी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। तो वहीं दिल्ली के नरेला इलाके में 5 सितंबर की हुई घटना में प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया। रोहिणी सेक्टर 24 में हुई मुठभेड़ के बीच पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी जबकि एक नाबालिग को मौके से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों हिमांशु भाव गैंग के शूटर हैं। घायल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें एक नाबालिग है। हिमांशु भाव गैंग से जुड़े ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो घायल दोनों आरोपी हैं उनको अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी कराया गया है।

0: ले आपको ये दिखाते हैं कि 5 सितंबर को हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसमें कि वारदात के बाद दो संदिग्ध आरोपी बाइक से भागते दिख रहे हैं। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल नजर आ रही है। ये तीन आरोपी साफ तौर पर ये सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक के हाथ में बंदूक नजर आ रही है। जो शख्स सबसे आखिर में बैठ रहा है, उसके हाथ में बंदूक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नरेला में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड से ये तीनों आरोपी जुड़े, और जिसमें से जब ये घायल हुए हैं तो इनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को अयोध्या पहुंचे, और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा था। यहां पर सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौगात दी है।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादरी के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल की अपना ही पूरा जोर लगाता नजर आ रहा है हर कोई दल। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने आज अपने यूथ विंग की वर्दी का रंग लाल से बदलकर नीला कर दिया है। अब रंग पर भी जंग छिड़ी हुई है।
1: ये 27 की सियासत की नई तस्वीर है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
3: नई पीढ़ी की नई सोच होती है, इसीलिए नई यूनिफॉर्म भी हो, उसी दिशा में ये नई यूनिफॉर्म इनको देकर के छात्रों के बीच में छात्र सभा पहुंचाने का काम कर रही है।
1: इसके पहले 31 अगस्त को जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे, तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है।
4: विश्वविद्यालय में इसी ड्रेस के साथ जाएंगे और युवाओं को समाजवादी की तरफ जोड़ने का काम करेंगे।
5: जीन्स हमारी इसलिए हुई है, जीन्स मतलब गंदी नहीं होती और इंग्लिश है, सबको पता है, वो इंग्लिश लोगों से डील कर रहे हैं, हम इंग्लिश चीज पहनेंगे। अब
6: हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन पे रिलाई कर रहा है कि उनके संविधान पे और उनके कलर पे, एक कलर उनका ब्लू दिया गया था उनको।
1: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए।
7: समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा और मूर्ति को स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी सभी रंगों को अपनाने का काम करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के यूथ का एक संगठन उसकी ड्रेस को भी नीला करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
1: समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लाल टोपी नीली ड्रेस जारी है बहुरूपिये का खेल, चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश।

0: की अभी भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलितों पर अत्याचार तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी।
1: अब सभी दलों की निगाह दलित वोटों पर है और खासकर उन पर जो जेन जी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तो वहीं जेन जी पर सियासत की लड़ाई और तीखी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से नाराज फूफा वाला तंज कसा है। दरअसल ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि विपक्ष देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहा।
3: प्रधानमंत्री मोदी के लिए वायाकार कर रहे हैं। भाषण से पहले पीएम मोदी का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना, मंच पर पहुंचते ही क्वीन का मशहूर गाना वी विल रॉक यू का बजना, इसके बाद धुरंधर के गाने आरी आरी पर मोदी की धुआंधार एंट्री, या फिर वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत नाम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुफ्त बुकिंग करना हो। ये सारी कोशिश उस जेंजी के करीब पहुंचने को लेकर हुई जो साल 2029 के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। इसीलिए नौजवानों के बीच कोई भी मंच हो, प्रधानमंत्री की कोशिश 2014 से पहले के उस दौर को याद दिलाने पर रहती है जिसे आज की जेंजी ने नहीं देखा।
4: झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है। हमारे युवा साथी ये देख रहे हैं कि आज देश में सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सारे सेक्टर पर सरकार कितना फोकस से काम कर रही है।
3: जीडीपी के नए आंकड़े आने के बाद ये दूसरा मौका है जब झूठ की गूंज कहकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। दिल्ली में एसआरसीसी के बाद नाराज फूफा वाले तंज का प्रहार वडोदरा में भी पीएम मोदी ने किया।
4: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी।
5: हाय फ्रेंड्स,
3: जंतर मंतर के बाद पीएम मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पूरी तरह से बदलती दिखती है। 23 जुलाई को पहला सेल्फी वीडियो बनाने वाले पीएम मोदी रील के अंदाज में वीडियो बनाकर जेंजी के करीब भी जाने में लगे हैं। वहीं 2014 के पहले के भारत से खबरदार करने की भी कोशिश करते हैं ताकि देश में जो हर चौथा वोटर जेंजी है वो बीजेपी से जुड़ सके, लेकिन कांग्रेस इसे राहुल की नकल बता रही है।
6: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी।
3: जेंजी की राजनीतिक ताकत को देखते हुए अगले हर चुनाव में इसकी गूंज सुनने को मिलेगी, इसीलिए चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सब इस जेंजी को क्लॉकिट करने के लगे।
2: अब बात पंजाब की कर लेते हैं जहां पर गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा तो जहां पर वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग भी की जा रही है।
7: हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब की हैं, जहां संगरूर में गुलजार सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की।
8: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर।
9: उधर पंजाब बीजेपी के

0: प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
1: जिस चारों के नाम लिए हम चाहते हैं कि इन्होंने कहते हैं जी एफआईआर होगी, हमें इनकी एफआईआर पे कोई विश्वास नहीं है, हम कहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, उससे हम और अरेस्ट होनी चाहिए।
0: 50 साल के गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से पंजाब में ड्रग्स को लेकर सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार की मौत से पहले का एक वीडियो भी जारी किया है।
2: चीमा भी जिम्मेवार है, मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
3: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
2: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
3: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
0: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ।
4: ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਸਲਫਾਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਬ ਉਸਕੀ ਜਾਨ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੇ ਦਬਾਵ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈ कि जब तक तुम मंत्री का नाम लोगे नहीं तब तक तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे नहीं।
0: मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन विपक्ष अब मान सरकार के मंत्री को घेर रहा है। कमलजीत संधु के साथ असीम बसी, चंडीगढ़ आज तक।
5: बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए चौंकाने वाले हत्याकांड की, जहां पर एक मामूली विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा पर सियासत तेज हो गई है।
6: तस्वीरों में दिख रहे ये मणिपुर के संगीतकार चंगथम विक्रम सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने गिटार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ, दूसरों को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन शांत स्वभाव के जब इस संगीतकार को देश की राजधानी में पीट कर मार डाला गया तो उनके जानने वाले गुस्से से भर गए।
7: सबको शौक है क्योंकि वो किसी को देखो, कोई गुस्सा वाला इंसान के साथ अच्छा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सीधा साधा इंसान के साथ घर पे घुस के मारना तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो हम लोग गुस्सा भी है, बहुत हम लोग शौक भी है, दुखी भी है, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
8: हम लोगों को कुछ दिन तक तो लगता था कि एटलीस्ट हम लोगों का लाइक बुजुर्ग तो सेफ है, नाउ ही वाज 55।
6: चौंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में इसी घर में तीसरे फ्लोर पर रह रहे थे। रविवार रात 11:30 बजे वो अपने घर से कूड़ा डालने के लिए नीचे आए। उन्होंने घर के बाहर शोर मचा रहे कुछ लोगों को मना किया, बात पढ़कर मारपीट पर जा पहुंची। विक्रम सिंह वापस अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें पीट पीट कर मारने वाले उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गए, उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा आया तो आरोपी सीसीटीवी में फरार होते दिखे। इसके बाद मणिपुर के रहने वाले संगीतकार को बेटा अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
9: रात तकरीबन 11:30 रविवार की रात यहीं पर पहुंचे थे विक्रम। कुछ कूड़ा उनके पास रात का था, वो अक्सर ये उनकी दिनचर्या में था, वो उन्होंने फेंका और उसके बाद वो वॉक करते थे। लेकिन जब वो ऊपर थे तो कुछ शोर जा रहा था, यहीं पर कम से कम 8-10 लोग खड़े थे जो शोर मचा रहे थे, और जब वो नीचे आए तो उन्होंने मना किया, और जब मना किया तो झगड़ा इसी बात पे शुरू हो गया, और इसके बाद यहाँ पर झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, मारपीट हुई। और फिर ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर सीढ़ी पर जब वो जाते हैं ऊपर तक, तो पीछे पीछे जाते हैं मारते हुए, वो मदद के लिए लगातार चिल्ला रहे थे विक्रम जी। जिसके बाद फैमिली ने सुना तो उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजे खुले क्योंकि शोर हुआ तो सभी भागे, उनके चेहरे कैद हो गए क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ, उन सारों के चेहरे कैप्चर हो गए।
6: इस वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस तरह दिल्ली में एक पिता को उसी के घर के बाहर पीट पीट कर मार दिया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों को गुस्से से भर दिया है।
8: बच्चे से लेके बुरे तक मैं कहूंगी, नो वन इज स्टेप इन दिल्ली। एक म्यूजिशियन वाज आल्सो अ टीचर जो बच्चों को सिखा रहे थे, और देन इवन हिज मदर वाज अ डाउन सिंड्रोम ऑफ मणिपुर। और इस तरीके का जो म्यूजिक म्यूजिक से प्यार करने वाला बंदा, जो सांस स्वभाव के बंदे जो है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से जो हादसा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस।
6: इम्फाल के रहने वाले विक्रम सिंह गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वो रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चों को संगीत सिखाते थे।
10: बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत 8-9 साल हो गया ये लोग को भी यहाँ रहते हुए। और उसके बाद क्या हुए थे, क्योंकि वो किसी से, वो मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है उसके पति।
11: शोर शराबे को लेके झगड़े की शुरुआत हुई, जो आगे जाके मारपीट के में कन्वर्ट हो गई, और उसी दौरान इनको कुछ चोटें आई जिनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई।
12: तो क्या पीछा किया, क्योंकि जब झगड़ा नीचे हुआ तो इनके पीछे वो गए, और वजह क्या थी कि इनका उन्होंने पीछा किया?
11: देखिए, ये अपने घर में थे, तब बालकनी में ये लोग, ये जो हमारे विक्टिम है, ये अपने घर से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारे अक्यूज है वो भी इनका आमना सामना हुआ, और सामने सामने में जो मारपीट आई हुई उसी में इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई।
6: दिल्ली में इस वारदात के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं।
13: जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं, या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय है। उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है, जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए, और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने के बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है।
6: दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों से अक्सर भेदभाव और अभद्रता की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। लेकिन घर के बाहर शोर करने पर पीट कर हत्या की इस वारदात ने इस समस्या को लेकर नए सिरे से देश और समाज को खबरदार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: उधर जयपुर के एक टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है, जहां पर सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
14: आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा, जयपुर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की हत्या के बाद फैले आक्रोश की ये तस्वीरें।
15: महिलाओं के साथ पुरुष यहां पर डटे हुए हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।
16: मेरे हस्बैंड की जैसे हुई है जैसे उसकी चाहिए मुझे बस।
14: बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी आमेर किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोक रहा था, इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आजम और उसके साथी नाजिश ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और गाइड समुदाय ने घटना के विरोध में बाजार बंद करवा दिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
17: हिंदू युवक को जिहादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर शहर की सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया है। हम लोग इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो अभियुक्त है उनके घर पे अतिशीघ्र बुलडोजर चलाया जाए।
14: उधर आरोपी आजम के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां पुलिस कस्टडी में भी रीलबाजी के जरिए सोशल मीडिया पर वो धौंस दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आजम पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष सोनी की हत्या से पहले उसकी आरोपी आजम के बीच करीब 1 सप्ताह पहले झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मनीष की ओर से इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके बाद सोमवार को मनीष को चाकुओं से गोद दिया गया।
17: 2 तारीख को मनीष भाई ने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक अपराधी के द्वारा, जो कि ऑलरेडी बेल पर रिहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आजम के हौसले इतने बढ़ गए कि उसने मनीष को उसके काम की जगह पर सुबह चाकू से घोंप कर उसका पेट फाड़ दिया।
18: ये ऐसी सूचना अभी पता चली है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो उसके संबंध में हम जांच कराएंगे। जिसने भी लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की।
14: आजम समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल, हत्या को लेकर जयपुर में तनाव है। रिदम जैन के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
5: बात कर लेते हैं बिहार की। उफनती नदियों ने लोगों को भारी मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से चपेट में ले लिया गया। प्रशासनिक भवन और परीक्षा भवन के निचले तल की शाखाओं में भी पानी भर गया है। कर्मचारी और छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नाव और अन्य सहारों के जरिए विश्वविद्यालय पहुंचने को मजबूर हो गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट।
19: बिहार में इस बार गंगा नदी ने किस तरीके से तांडव मचाया है और जो गंगा में सैलाब आया है उससे अभी तक जो है तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा की आबादी जो है प्रभावित हुई है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैरान हो जाएंगे ये देखकर, क्योंकि मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और ये विश्वविद्यालय कैंपस में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय जो है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा विश्वविद्यालय आप देखिए परिसर में किस तरीके से गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और अब विश्वविद्यालय में नाव का परिचालन हो रहा है। एक ऐसे ही नाव पर हम बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे चलिएगा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं। चारों तरफ इस विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल हो या प्रशासनिक भवन हो, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और प्रशासनिक भवन में भी आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जल भराव जो है और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं वो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं जो यहाँ स्टाफ काम करने आते हैं उनको भी जो है किसी तरीके से नाव का सहारा लेकर ही जो है उन्हें आना पड़ रहा है। और हम ज़रा अंदर भी जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए आप, अब मैं जहाँ उतरा हूँ यहाँ घुटने भर से ऊपर जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा। हम अंदर आ गए हैं तो यहाँ घुटने भर से ज़्यादा पानी है, बाहर कमर भर और उससे यानी कि 4 फीट 5 फीट जो है वो पानी है। तो ये हालात इस वक्त गंगा में बाढ़ आने से जो है वो इस वक्त भागलपुर में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
5: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: कौन सी राशि कम्युनिकेशन से संबंध रखती है? बुध की किस राशि के लोग धनवान होते हैं? कौन सी है बुध की राशियां? क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
2: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
1: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किल का मंगलवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ाने। एनएटीएस बोला अब हालात सामान्य। सत्यनिकेतन हादसे के बाद दिल्ली में एमसीटी का बड़ा एक्शन। पिछले दो दिन में गिराई जा चुकी 24 इमारतें। सोमवार को गिरी बिल्डिंग से सटी इमारत को भी गिराने का काम शुरू। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के दो शूटर्स का हाफ एनकाउंटर। 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश। इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। बिहार में जारी बाढ़ का कहर। 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में बुरा हाल। लालू बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे के बाद आज एमसीटी का बड़ा एक्शन शुरू होगा। सोमवार को गिरी बिल्डिंग से सटी इमारत पर आज बुलडोजर चलेगा। पिछले दो दिनों में एमसीडी 24 इमारतों को गिरा चुकी है और अब असुरक्षित और जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। एमसीडी के अफसर पहुंचेंगे और इमारतों को गिराया जा चुका है। 24 इमारतें पहले से ही गिराई जा चुकी हैं, तो एमसीडी की कार्रवाई अब सत्यनिकेतन में शुरू हो चुकी है।

0: वहीं दिल्ली देश भर में उसकी खतरनाक इमारतों की वजह से सुर्खियों में है। सत्यनिकेतन इलाके में एमसीडी पुरानी इमारतों को नोटिस जारी कर रही है और इस वजह से छात्रों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। ज्यादातर छात्र पुरानी इमारतों में रहते हैं, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं उनका अंजाम भी रविवार के हादसे जैसा ना हो जाए। इसलिए कई छात्र पुरानी इमारतों को खाली करना चाहते हैं, लेकिन हॉस्टल माफिया उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धमका रहा है।
1: रविवार को दिल्ली के सत्यनिकेतन में हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद वहां पर बाकी के छात्र इस वक्त किस हाल में हैं, इसे लेकर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह सत्यनिकेतन पहुंचे। तो हम इस इमारत में गए जो इस इलाके की सबसे पुरानी और ऊंची इमारतों में से एक है। इसलिए जब छात्रों ने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उस हॉस्टल माफिया का सच सामने आया जिसके बारे में अक्सर छात्र शिकायत करते हैं।
2: ये पेंट हुआ है, ये देखने से नया लग रहा है, ये पेंट हुआ है क्योंकि ये बिल्डिंग तो 25-30 साल पुराना है पर ये हर साल पेंट होता है। पेंट होके ऐसे मतलब जो नए बच्चे आते हैं, मैं तो सेकंड ईयर से हूँ तो मेरे को तो पता है, दो साल हो गया मेरे को रहते रहते, जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है
3: कि बड़ा नया है, पीओपी किया हुआ है और ये सब है,
2: पर अंदर से ये बिल्डिंग बहुत मतलब खोखला है, पूरा ये बिल्डिंग जर्जर हो गया है।
1: हॉस्टल डेज नाम की इमारत भी बाहर से चकाचक दिखती थी लेकिन रविवार को अचानक ढह गई। इसलिए इन छात्रों ने भी जब अपना कमरा खाली करने की बात मकान मालिक से कही तो पहले उसके सुर नरम दिखे लेकिन अचानक उसने धमकाना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि उनका 1.5 लाख रुपया मकान मालिक पर बकाया है लेकिन रितु दलाल नाम की हॉस्टल मालकिन अपने वादे से पलट गई।
4: हम रूम खाली कर रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं सामान, आप हमें रेंट दे दोगे ना वापस? ठीक है, हाँ सिक्योरिटी, अभी अमन भैया वो भी नहीं बोल रहे थे देने। रेंट नहीं मांग रहे
1: सत्यनिकेतन में इमारत गिरने के बाद से यहाँ रहने वाले कई छात्र छात्राएं अपने घर चले गए हैं लेकिन जिन छात्रों का लाखों रुपया रितु दलाल जैसे मकान मालिकों के पास है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो लगातार अपने ओनर से गुजारिश कर रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें धमकी के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा है।
3: ओनर का फोन आ रहा है, बात करते
5: हैं।
3: करो।
6: हेलो,
5: आंटी।
6: हाँ मैडम, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं मेरे घर में?
5: आंटी वो
3: आंटी इनका पैसा दे दीजिए वापस। रितु जी इन लोग का पैसा दे दीजिए वापस, बच्चे परेशान हैं, इनका पैसा दे दीजिए ना वापस, इनकी मदद के लिए हम आए हैं, हम हैं मीडिया वाले, आज तक से हैं हम। आप क्यों नहीं
6: सुनिए, आप नीचे उतरिए, मैं इनका पैसा दे रही हूँ, आप नीचे उतरिए, पर मेरे घर में और भी बच्चे रहते हैं, चोरी हो जाएगी तो फिर।
3: हाँ हम चोरी करने नहीं आए आंटी, हम रितु जी हमें आप इनका पैसा वापस दे दीजिए, ये बच्चे परेशान है।
6: सुनो आप मेरी बिल्डिंग से निकल जाइए, मैं पैसा वापस कर रही हूँ।
3: नहीं हम तभी निकलेंगे जब आप पैसा वापस करेंगे, आप इनका सिक्योरिटी और रेंट वापस कीजिए, आज तक यहीं पे बैठेगा, आप इनका पैसा वापस कीजिए।
6: इनकी सिक्योरिटी दे रही हूँ मैं।
1: आज तक के दखल के बाद एक बार फिर लगा कि छात्रों के पैसे वापस मिल जाएंगे लेकिन अचानक हॉस्टल की मालकिन ने अपना लालची मन दिखा दिया।
5: बिजली बिल हम दे चुके हैं, मेरे पास हिस्ट्री है, मेरे पास हिस्ट्री है।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी की वजह से बाहर से आने वाले छात्रों को इस तरह के हॉस्टल पर निर्भर रहना पड़ता है जिन्हें अक्सर हॉस्टल मालिक ठगते हैं।
2: वो बोले कि आप अपना सारा सामान पैक करके रूम लॉक करके हमें चाबी दे देना, उसके बाद आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा।
1: दिल्ली में एक तरफ छात्र कमजोर हॉस्टल इमारतों को लेकर डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हॉस्टल मालिकों की तरफ से धमकाया जा रहा है। सवाल ये है कि छात्रों को सुरक्षा और न्याय कौन देगा? मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: अदालतों की ओर से गैर कानूनी और संविधान विरोधी हरकतों को लेकर एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में हुए मजदूर प्रदर्शन के मामले में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम मेधा रूपम ने मजदूरों के प्रदर्शन के लिए दिल्ली की 24 साल की छात्रा पर एनएसए लगा दिया था और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बुरी तरह से भड़क गया।
1: प्रशासन की वफादारी सरकार नहीं संविधान के प्रति होनी चाहिए, वरना यूपी को दमनकारी निरंकुश राज्य बनने में वक्त नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये बेहद सख्त टिप्पणी नोएडा की डीएम मेधा रूपम को लेकर है, जिनको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा कि डीएम का आचरण उपहास लायक है, इसलिए अदालत की टिप्पणियों को डीएम और पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि छात्रा को 5 महीने तक जेल में रखने के लिए 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की रकम डीएम मेधा रूपम और पुलिस अफसरों के वेतन से वसूली जाए। अदालत की यह सख्ती इसी साल अप्रैल महीने में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन के मामले से जुड़ी है। नोएडा के औद्योगिक इलाके फेस 2 सेक्टर 59, 60 और 84 में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और काम के घंटों को कम करने को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा और आगजनी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसी मामले में जिला प्रशासन ने तमाम संदिग्धों और आरोपियों की धरपकड़ की थी। इसमें आकृति नाम की 24 साल की छात्रा को 11 अप्रैल को हिरासत में लेकर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। वहीं 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा हुई, लेकिन 10 दिन बाद 24 अप्रैल को गुप्त बैठकों और साजिशों का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने आकृति पर एनएसए लगा दिया और 5 महीने तक जेल में रखा। इसी मामले पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई तो अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को फटकारा और कहा कि 12 अप्रैल को गिरफ्तार छात्रा 24 अप्रैल को साजिश कैसे कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से अफसरों के निजी जवाबदेही की दिशा में कदम उठाया, उसने विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का नया मौका दे दिया है, जो अक्सर अफसरों पर राजनीति से प्रेरित होने का काम करने का आरोप लगाता है।
7: जैसे गैंग ऑफ वासेपुर हमने देखा था, अभी कह सकते हैं कि गैंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। नोएडा का मामला अकेला नहीं, जो डीएम साहिबा है, क्योंकि उनकी जो हनक है, दिमाग में हनक है, वो हनक कहीं और से आती है। तो कार्यपालिका उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो चुका है, ये पहली बार उच्च न्यायालय ने नहीं कहा।
8: कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अफसरशाही की मनमानी नहीं चलेगी। अफसरशाही जो राजनीतिक नेतृत्व की चाटुकारिता करके आंदोलनों को खत्म करना चाहता है, वो नहीं चलेगा। और ये फैसला उन सारे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में है जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ही सब कुछ मानते हैं, संविधान को कुछ नहीं मानते हैं। संविधान सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है।
9: किसी भी मामले में न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय का सम्मान करती है और न्यायालय के सम्मान न्यायालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी उनके निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करती।
1: अदालत की आपत्ति इस बात को लेकर भी थी कि पुलिस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को पर्याप्त सबूत के बिना एनएसए लगा दिया गया, जबकि डीएम को इस तरह का आदेश जारी करने से पहले साक्ष्यों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए थी।
0: कानपुर के मशहूर दवा कारोबारी की हत्या की बात कर लेते हैं, जिसमें कि मास्टरमाइंड दवा कारोबारी विनीत मिनोचार की बहू की निकली। दरअसल बहू ने ससुर के कत्ल की सुपारी 6 लाख रुपए में दी थी, वो भी अपने ही घर के पुराने नौकर को। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों एक बहू अपने ही ससुर की जान की दुश्मन आखिर क्यों बनी, एक बहू को अपने ही ससुर से इतनी नफरत क्यों हुई। रिपोर्ट देखिए।
10: बहुत ध्यान से इस महिला को देखते जाइए, अभी बस ये जान लीजिए कि इस घर के मालिक की बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। मरने वाले इस महिला के ससुर थे। जाहिर तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि यह महिला अपने ससुर की हत्या पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो गुमसुम बैठी है, हताश है, निराश है, आंखों से लग रहा है कि जैसे रो रो कर सूख चुकी है। आस पड़ोस के लोग उसे दिलासा दिला रहे हैं, घर पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं जो अपनी जांच कर रहे हैं। पहले वो सोफे पर अधलेटी सी मुद्रा में है जो बहुत दुखी दिख रही है, फिर वो सोफे पर लेट गई, सिर पर हाथ रखा है, पूरी तरह से गमगीन। लेकिन अगर हम आपको कहें कि ये महिला रोने का नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह हकीकत है। कानपुर के दवा व्यापारी की हत्या की मास्टरमाइंड बहू ही निकली। बहू ने नौकरों को 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर का कत्ल करवाया। सुबह बहू पुलिस वालों के सामने ये सारी एक्टिंग करती रही और शाम होते होते उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। रिश्तों के खून की यह कहानी है कानपुर के दवा व्यापारी विनीत मनोचा और उनकी बहू शालू। शालू ने अपने ही करोड़पति ससुर की हत्या की साजिश क्यों रची? शालू की इस खूनी साजिश का पर्दाफाश कैसे हो? सोमवार की सुबह यह खबर आई कि कानपुर में एक बुजुर्ग दवा कारोबारी की लाश उनके ही घर में मिली है, वो भी खून से लथपथ। बेटा, बहू और पोता रात में पार्टी के लिए बाहर गए थे। सुबह 4 बजे लौटे तो अंदर विनीत मिनोचा का शव पड़ा था। विनीत मिनोचा कानपुर के बड़े दवा कारोबारी थे, करोड़पति थे, घर में अकेले थे, मारे गए। लेकिन घर से कोई सामान चोरी नहीं था, तो पुलिस को एक बात कंफर्म हो गई कि लूट के इरादे से तो हत्या नहीं हुई, यानी हत्या में कोई जानकार ही शामिल। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि रात को करीब 9:46 पर घर के अंदर दो लोग दाखिल होते हुए दिख रहे हैं और बहुत आराम से दोनों ने ताला खोला और घर के अंदर चले गए। और ये सब तब हो रहा था जब सिर्फ 10 मिनट पहले ही विनीत मिनोचा का बेटा, बहू और पोता पार्टी करने के लिए घर से निकले थे। पुलिस को शक हुआ तो तुरंत इन दोनों की पहचान करवाई गई। पता चला कि इनमें से ये टी शर्ट वाला लड़का तो इनका पुराना नौकर है। मिनोचा की दुकान पर विशाल गौतम नाम का यह लड़का काम करता था। हालांकि बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो घर पर आता जाता रहता था। पुलिस ने पूरा सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि 1 घंटे पहले ही ये लड़का सोसाइटी में आया था। इसने मृतक की बहू शालू को रात को 8:40 पर कुछ सामान लाकर दिया था। पुलिस का शक और बढ़ा तो तुरंत सोसाइटी के मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। यहां भी दोनों ही लड़कों की एंट्री मिल गई। दोनों लड़के हाथ में कुछ सामान लेकर सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं। पुलिस ने गार्ड का रजिस्टर चेक किया तो रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं था, उसकी एंट्री नहीं थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि घर के अंदर से ही फोन आया था कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ घर आएगा, उसे एंट्री दे देना और रजिस्टर में दर्ज मत करना। अब इस बयान से पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस के सामने 3 बातें स्पष्ट हो चुकी थी। पहली कि हत्यारा कोई जानकार ही है। दूसरी, हत्यारे के पास चाबी पहले से मौजूद है, यानी कोई मिला हुआ है। और तीसरी कि हत्यारे को सोसाइटी में एंट्री भी अंदर से ही दिलाई गई। सोसाइटी में हत्यारों के प्रवेश की व्यवस्था पहले से की गई थी। अब पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज, गार्ड के बयान और दूसरे सुरागों को जोड़ा और जांच की दिशा सीधे घर के अंदर मोड़ दी। और फिर जब पूछताछ हुई तो एक ऐसी साजिश का पता चला कि पुलिस भी हैरान रह गई।
11: देखिए, जब कल ये सूचना मिलती है तत्काल हम लोग पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां से कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो कलेक्ट किए गए उसमें सीसीटीवी था जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे। जब पता किया गया तो उसमें से एक व्यक्ति विशाल गौतम इनके अपूर्व कर्मचारी रहा। इनके लगभग 12 साल उसने काम किया है। उसकी तलाश में लगातार टीम लग जाती है और इसके चलते शाम को मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके साथ इसका एक अन्य साथी था, ये भी गिरफ्तार किया जाता है। जब इन लोगों से डिटेल में पूछताछ होती है तो इनके द्वारा बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को करने के लिए जो मृतक की बहू हैं शालू, इनके द्वारा कहा गया था और इसके बदले में इनको 2 लाख पहले और 4 लाख बाद में करने की बात, देने की बात कही गई थी। इस पूरे जब एनालिसिस की गई तो इसमें पता ये चलता है कि इनके द्वारा ही इनको, इन दोनों अभियुक्तों को इनको एंट्री दी गई और फिर एक सुनियोजित तरीके से वहां से ये लोग बाहर जाते हैं और फिर ये लोग एंट्री लेकर घटना को अंजाम देते हैं।
10: अब पुलिस के सामने पूरी कहानी साफ हो चुकी थी और इतनी देर में दोनों आरोपी भी गिरफ्तार हो गए और पकड़े जाने के बाद तोते की तरह पुलिस के सामने उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। साफ साफ बता दिया कि घर की बहू ने उनको 6 लाख रुपए में ससुर की हत्या की सुपारी दी थी जिसमें से 2 लाख रुपए की पेमेंट हो चुकी थी।
12: किस लिए किया हत्या बुजुर्ग की?
13: वो हमने उनकी बहू ने कहा था, इसलिए हमने कह रहा था पैसे देने के लिए कहीं का।
12: अच्छा।
10: पूरा केस खुल चुका था। कानपुर में करोड़पति कारोबारी की हत्या की पूरी साजिश 24 घंटे से भी कम वक्त में साफ हो चुकी थी। सबसे पहले घटनाक्रम समझिए, फिर आपको मोटिव भी बताएंगे। पुलिस की जांच के मुताबिक शनिवार रात करीब 9:36 पर विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत, बहू शालू और उनका 6 साल का बेटा घर से पार्टी के लिए निकले। परिवार के निकलने के करीब 10 मिनट के बाद दो लोग फ्लैट के अंदर दाखिल हुए और कारोबारी के लौटने का इंतजार करने लगे। दोनों आरोपी करीब 1.25 घंटे तक फ्लैट के अंदर छिपे रहे क्योंकि विनीत मिनोचा घर पर नहीं थे। रात को करीब 10:58 पर विनीत मिनोचा घर लौटे। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। दोनों हमलावरों ने करीब 1.5 घंटे के भीतर कारोबारी पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पूरी वारदात की टाइमलाइन करीब 112 मिनट की बताई जा रही है। अब ये भी पता चला है कि शुरुआत में ये प्लानिंग तकिए से मुंह दबाकर मारने की थी, लेकिन पूरा प्लान बिगड़ गया।
14: क्या इसी तरीके से हत्या करने का प्लान था? इतनी बेरहम तरीके से हमने देखा कि कैसे चाकू से गोद कर पूरी तरीके से हत्या की गई, क्या यही इनका प्लान था?
11: इनिशियल जो प्लान था वो ये नहीं था। इनिशियल प्लानिंग इनकी ये थी कि ये दो अभियुक्त आए, ये दो लड़के आएंगे, घर के अंदर एंट्री करेंगे, वेट करेंगे और जब ये मृतक सो जाएंगे तब फिर तकिए से इनका मुंह दबा करके इनकी हत्या कारित कर देंगे, स्मॉदरिंग। लेकिन प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जो है वो अलग तरीके से होता है। और जब ये इंटर करते हैं तो एंट्री के बाद जब ये थोड़ी देर के बाद जब ये उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में लड़के रहते हैं, उस कमरे की लाइट जला देते हैं ये, और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जिससे इनके पास जो चाकू रहता है उस चाकू से ये वार करना शुरू कर देते हैं। और उस पूरे घटनाक्रम में कई बार चाकू से वार करते हैं और वहीं पर मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये प्लानिंग ये थी कि अगर ये स्मॉदर करते हैं और फिर जब ये लोग किटी पार्टी से वापस आएंगे तो इसको एक हार्ट अटैक का रूप दे करके इसको मामले को रफा दफा हो जाएगा और फिर ये चीजें बाहर पब्लिक में नहीं आएंगी।
10: जांच में एक और अहम कड़ी सामने आई, फ्लैट की चाबी। पुलिस पूछताछ में विशाल ने कथित तौर पर बताया कि उसके पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी और इसी के जरिए वो अपने साथी के साथ अंदर दाखिल हुआ। इससे पुलिस को शक हुआ कि वारदात अचानक नहीं हुई बल्कि पहले से पूरी तैयारी की गई। पता चला कि हत्यारों को ये चाबी घर की बहू शालू ने ही उपलब्ध करवाई थी।
14: इस वक्त मैं मौजूद हूं दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के घर के बाहर, जहां पर दो आरोपियों ने उनकी चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले की साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड उनकी बहू शालू थी, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्हीं के घर के बाहर, आप देखेंगे C104 ये घर है, एक पॉश एरिया में, पॉश सोसाइटी में, जहां पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से दुरुस्त होती है, उसके अंदर ये फ्लैट है। किस तरीके से जो दो आरोपी हैं वो यहां पर एंटर होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो गेट है जिसको खोलेंगे आप तो उसके अंदर जो गेट आता है इसकी चाबी आरोपी शालू ने पहले से ही उन दोनों व्यक्तियों को बनवा के दी थी और ये कहा था कि जब वह और उनके पति पार्टी करने बाहर जाएंगे तो पीछे से वो उसी चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर चले जाएं और इस पूरी घटना को अंजाम दें। आपको दिखाऊंगा पीछे ये CCTV जो है कैमरा है वो लगा हुआ है, जहां पर कोशिश करेंगे कोई लोग आए भी हैं बात करने की, आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे?
15: अभी कोई इस स्थिति में नहीं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं।
14: पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है आपके जो यहाँ पे शालू जान को, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
15: नहीं, अभी हम कुछ,
14: आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया या वो कैसे कर सकती है ऐसी चीज?
15: पिताजी के दुख से ही नहीं उबर पा रहे हैं,
14: हमें डबल शॉक है कहीं ना कहीं,
15: अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कुछ कि क्या हो रहा है। अभी हमें ऐसा कोई न्यूज नहीं पता चली है।
14: आप लोगों को लेकिन पता लगा है कि इनको जेल भेज दिया गया है?
15: हमें नहीं पता।
14: क्या हमको पता?
10: सिमर शाबला, कानपुर, आज तक।
0: इस कहानी में असली सवाल यही है कि इस बहू ने अपने ही ससुर को क्यों मरवाया? ससुर करोड़पति थे, करोड़ों की संपत्ति थी, अच्छा खासा कारोबार था, तो फिर वो अपने ही ससुर की जान की दुश्मन आखिर क्यों बन गई? इतनी नफरत, इतनी बेरहमी से ससुर को अपने ही घर में मरवा दिया। रिपोर्ट देखिए।
10: अब सवाल था कि इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या थी? आखिर शालू ने अपने ही ससुर की जान क्यों ली? शालू ने अपने ही ससुर की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी क्यों दी? वो शख्स जो उसके पति का पिता था, जो उसके बेटे का दादा था, उसी से इतनी नफरत, की हत्या करवा दी। पुलिस की जांच के मुताबिक विनीत मिनोचा आर्थिक रूप से बेहद मजबूत थे, लेकिन बेटे और बहू के खर्च को लेकर उनका नियंत्रण था। आरोप है कि वो बेटे को सीमित पैसे देते थे और बहू की व्यक्तिगत गतिविधियां और खर्चों पर भी रोक टोक रखते थे। परिवार के भीतर इसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनने की बात सामने आई है। बहू को लगता था कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसे और उसके पति को अपनी इच्छा के मुताबिक पैसा खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कथित नाराजगी ने धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश का रूप लिया। जांच के मुताबिक हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी तय किए जाने की बात सामने आई है। कथित तौर पर 2 लाख हत्या के बाद देने और बाकी 4 लाख करीब 15 दिन के भीतर देने की बात तय हुई थी।
16: तरीके से इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है, और आप लोग के सामने किस तरीके का उन्होंने अपना साक्ष्य या रखा सामने, क्या बिहेवियर था उनका, क्या स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लिया, आपसे क्या बातचीत उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में?
11: देखिए, इस पूरी घटनाक्रम से पहले भी कई बार इनका मिलना हुआ है इससे, विशाल गौतम से, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर, और उनके द्वारा ये प्लानिंग लगभग 20 से 25 दिन पहले ये पूरी प्लानिंग रची गई। ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में हुआ है। अभी रक्षाबंधन जन्माष्टमी के अवसर पर भी ये व्यक्ति आता है, ये फ्लैट में आता है और कुछ समय बाद ये वहाँ से जाता है। तो ये लगातार मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो लगातार ये चलता रहा है, और इस दौरान ये प्लानिंग भी हुई है। बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर में अभी जैसा कि होता है कि तत्काल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट जो एविडेंसेज हैं वो कंपेलिंग एविडेंसेज हैं, और उसके आधार पर जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर भी आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: बुध की कौन सी राशि कम्युनिकेशन से संबंध रखती है? बुध की किस राशि के लोग धनवान होते हैं? कौन सी है बुध की राशियां? क्या है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किल का मंगलवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ानें। एनएटीएस बोला अब हालात सामान्य। सत्यनिकेतन हादसे के बाद दिल्ली में एमसीटी का बड़ा एक्शन। पिछले दो दिन में गिराई जा चुकी 24 इमारतें। सोमवार को गिरी बिल्डिंग से सटी इमारत को भी गिराने का काम शुरू। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के दो शूटर्स का हाफ एनकाउंटर। 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश। इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। बिहार में जारी बाढ़ का कहर। 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में बुरा हाल। लालू बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध की राशियों के बारे में। बुध की राशियां कौन सी हैं, इन राशि के लोगों की विशेषता क्या है, और बुध की अगर आपकी राशि है तो इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज हम आपको बता रहे हैं बुध की राशियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि बुध की राशियों की खास बात क्या है। देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का ग्रह माना जाता है। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। हालांकि दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव और दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है, और मिथुन और कन्या राशि दोनों के जीवन के रास्ते भी अलग अलग होते हैं। कन्या राशि के अंदर बुध के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। कन्या राशि बुध के ज्यादा निकट होती है, और मिथुन राशि के अंदर शनि के गुण पाए जाते हैं। मिथुन राशि शनि के ज्यादा निकट होती है। तो कुल मिला के बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। आगे इन राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो आपको बताया कि बुध की दो राशियां हैं मिथुन और कन्या। बुध की पहली राशि मिथुन के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं जैसा कि आप जानते हैं, और शनि यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शनि मिथुन वालों के लिए भाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। मिथुन राशि आकर्षण की और बुद्धिमता की राशि मानी जाती है। नॉर्मली मिथुन वाले अट्रैक्टिव भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। मिथुन राशि के लोग हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देने वाले, चपल यानी चंचल और आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। मिथुन वालों का आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा होता है। आपके शरीर का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कान नाक और गला, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम मिथुन राशि से संबंध रखता है। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दुविधा बहुत होती है और लापरवाही भी इनके अंदर ज्यादा होती है। मिथुन वाले अक्सर कंफ्यूजन में आ करके अपने जीवन में गड़बड़ियां करते हैं। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ये जितना हनुमान जी की उपासना करें जीवन की बाधा उतनी कम होगी। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे इनको सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। बुध की दूसरी राशि कन्या पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

रखें, यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। कन्या राशि।

ध्यान रहिएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल कुमार ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1980, रात में 9 बजे, जन्म स्थान है मेरठ। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। ये कह रहे हैं कि मेरे पिता माता के साथ, भाई के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो क्या पिता माता मुझे भविष्य में प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? क्या मुझे मेरा अधिकार प्रॉपर्टी में मिलेगा? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने माता पिता की तरफ से प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा। ज़्यादा मिलने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा हिस्सा आपको जरूर मिल जाएगा और ये संभावना साल 2027 में दिखाई दे रही है। तो जो मिलता है उसको लेके संतोष करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बेवजह के विवाद हों। आपको आपकी पैतृक संपत्ति में धन संपत्ति मिले इसके लिए सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और एक ओपल, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। तो बुध की पहली राशि मिथुन के बारे में आपने जाना, अब बुध की दूसरी राशि के बारे में जानिए जिसको कहते हैं कन्या। देखिए, कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं और कन्या राशि पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। उसमें कन्या राशि जो बुध की राशि है, ये पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि है। बुध इस राशि के लिए बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। तो कन्या राशि वालों में चालाकी, वाक पटुता, बोलने का गुण और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की क्वालिटी पाई जाती है। कन्या वाले सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। कन्या वालों के पास पैसा रहता जरूर है। आपके शरीर में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पेट है, लोअर एब्डोमिन का जो पार्ट है, पेट का जो निचला हिस्सा है, वो कन्या राशि से संबंध रखता है। किडनी से भी थोड़ा बहुत संबंध कन्या राशि का बनता है। कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थी होना, अपने फायदे के लिए जुड़ना और अपने फायदे के लिए हटना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये स्वार्थी ना हो, थोड़ा एडजस्ट करके जीवन में चलें, तो कन्या एक भाग्यवान राशि है। कन्या राशि के लोगों को सलाह लेकर एक ओपल या एक हीरा पहनना चाहिए और इस राशि के लोगों को सद्बुद्धि पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए।

मिथुन और कन्या राशि पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब अगर आपकी राशि मिथुन है और जीवन में आपके समस्याएं आ रही हैं, जीवन में अगर दिक्कतें आ रही हैं मिथुन वालों के, तो क्या उपाय करें? नियमित रूप से श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना करें। कम से कम रोज सुबह या सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नियमित रूप से हल्की सुगंध का प्रयोग आपको करते रहना चाहिए। जब मौका मिले गाय को हरा चारा खिलाइए, हरा फल या हरी सब्जी खिलाइएगा और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का, उनके नाम के मंत्र का निरंतर जप जरूर करते रहिएगा। और मिथुन वालों को एक विशेष सलाह ये है कि मंगलवार को अपने महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। अगर आपकी राशि कन्या राशि है और आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कत आएगी पैसे की, दिक्कत आएगी रिश्तों की, और कन्या वाले कभी कभी बड़ी बीमारियों के, विचित्र बीमारियों के 50-55 के आसपास उम्र के शिकार भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है और जीवन में समस्या आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनकी एक साथ पूजा करें। श्री लक्ष्मी नारायण की एक साथ उपासना करिएगा। स्नान करने पर और साफ सफाई करने पर विशेष ध्यान दीजिए। नियमित रूप से नहाइए और नियमित रूप से साफ सफाई रखिए, क्योंकि आपको स्किन की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी काफी होती है। घर में, जमीन में, और अगर जमीन नहीं है तो गमले में थोड़ी सी दूरवा, थोड़ी सी दूब घास जरूर लगा लीजिएगा। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिएगा। अगर आपकी राशि मिथुन है या कन्या है, बुध की राशि है, तो दो बातें समझ लें। पहली बात, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी है। दूसरा, केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है। तीसरा, त्वचा की समस्याओं से और शरीर में गांठ की समस्याओं से आपको बचाव करना है।
देखिए, अगर आपकी राशि बुध की राशि है, मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तो मिथुन वालों के लिए कम्युनिकेशन का फील्ड, समझाने सलाह देने का, टेक्नोलॉजी का, अपनी बात को रखने का, प्रेजेंटेशन का फील्ड बहुत अच्छा होता है। कन्या वालों के लिए फाइनेंस का फील्ड, मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग का फील्ड अच्छा होता है, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और कुछ समय के लिए कन्या वाले भी कभी कभी टीचिंग जॉब में जाते हैं। तो बेसिकली जो आपकी राशि का गुण होता है, मुख्यतः उस तरह का करियर आप अपने जीवन में बना पाते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

राशि मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीले रंग के गणेश जी का अगर चित्र हो या नीले रंग के गणेश जी की अगर मूर्ति हो तो सामान्यतः उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, नीले रंग के गणपति की जो मूर्ति या चित्र है वो गणपति का विशेष स्वरूप है जिसको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। उच्छिष्ट गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है और बिना किसी निर्देशन के, बिना किसी सलाह के अपने मन से भगवान गणेश की तंत्र पूजा नहीं करनी चाहिए। सामान्य रूप से अपने घरों में पीले रंग के या लाल रंग के गणपति की पूजा करना बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में समस्या हो सकती है। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, करियर में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

मीन राशि वालों के लिए हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

सत्य निकेतन में गिरी इमारत की बगल वाली बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, दो दिन में कई अवैध बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई। सत्य निकेतन हादसे के बाद भगत सिंह कॉलेज के पास मौजूद पीजी के कई छात्रों ने किया खाली। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने भी शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। बीकेसी के जियो वर्ल्ड प्लाजा में फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर पहुंचा युवक, कोर्ट में वकील बोले ठगी का शिकार हो सकता है आरोपी। पीएमओ की फर्जी आईडी, बॉडीगार्ड और 32 बोर हथियार के साथ 24 साल का युवक गिरफ्तार, कोर्ट में बचाव पक्ष ने साजिश का दावा किया। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के लिए तोहफा, अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवाएं। सीएम योगी ने आगे कहा कि अब यूपी में विकास पर एसपी, कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंग बली का लिया आशीर्वाद, रामलला के दरबार में टेका माथा, हनुमानगढ़ी में विधि विधान से की पूजा। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया जोर। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत, आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीती शाम राहुल गांधी को लेकर लखनऊ एयर इंडिया फ्लाइट का गो अराउंड दूसरे प्रयास में सुरक्षित रहती। तेज हवाओं के दबाव के चलते AI-1717 ने किया गो अराउंड, राहुल गांधी समेत सभी यात्री सुरक्षित। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज, अज्ञात के खिलाफ FIR। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर राजनीति। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट में एंट्री पर सवाल, बीजेपी सांसद बोले ईसीआई की प्रक्रिया का किया पालन। लंदन में शिंदे को 3 बड़े सम्मान, महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मजबूत होगी दावेदारी। जालना में धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मराठा आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से रास्ता रोको आंदोलन किया। जालना में शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने मनोज जरांगे से मुलाकात की, सेहत का ध्यान रखने की अपील की। पालघर में रिलीफ हॉस्पिटल मारपीट मामले में शिवसेना की बड़ी कार्रवाई, 7 पदाधिकारी ने। बंगाल में डीजे बैन पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले ममता करती तो हिंदू विरोधी कहलाती। संजय राउत के एकनाथ शिंदे को सलाह, बीजेपी में कर लें अपनी पार्टी का विलय। पुणे में पिता की मौत से पहले तेज डीजे का शोर बना मुसीबत, महिला ने सुनाई दर्दनाक आपकी। मुंबई बीएमसी के 79 नगर सेवकों के चुनाव पर गैर कानूनी संकट, जाति प्रमाण पत्र से संपत्ति घोषणा तक पर उठे सवाल। बीएमसी के 5 नगर सेवकों का निर्वाचन रद्द, यूबीटी के 24 समेत सभी प्रमुख दलों के पार्षदों पर चुनावी याचिकाएं। पालघर में आशा सेविकाओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन, सरकारी दर्जा और लंबित कोविड भत्ते समेत कई मांगों को लेकर दिया धरना। कोल्हापुर में एमआईडीसी के विरोध में बवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय का गेट तोड़ा और कांच फोड़े। उज्जैन के सड़क चौड़ीकरण के लिए हनुमान प्रतिमा हटाने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने महाआरती। हिंदू संगठनों ने प्रतिमा हटाने का जताया विरोध, महाआरती में जुटे सैकड़ों लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, कहा प्रतिमा हटाई तो होगा आंदोलन। पटना में भीम आर्मी का SC ST OBC को 65% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। उत्तराखंड के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन, करीब 600 MBBS इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू। जम्मू कश्मीर में सरकारी आश्वासन के बाद MBBS इंटर्न्स ने हड़ताल वापस ली। बिहार आज थोड़ा कम हुआ महंगा, दरअसल सोन और पुनपुन नदी का पानी, लेकिन 13 जिलों में अब भी इतराहिमा। पटना में पानी में डूब गए सैकड़ों चमचमाते ट्रैक्टर, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ का कहर, भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर 2 फीट पानी, आवागमन प्रभावित हुआ। दानापुर में भीषण बाढ़ की चपेट में कई इलाके, चारों तरफ पानी ही पानी, संकट में आई कई जिंदगी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, शव यात्रा सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार में। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में खूनी खेल, रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सिर में मारी गोली, हालत नाजुक हुई। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगाई का आरोप, पड़ोसी के घर पहुंचने का सीसीटीवी वायरल, फिरोज उर्फ भूरा पुलिस हिरासत में।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक, छात्रों के दौड़ने पर भागते दिखा स्टाफ। जूनागढ़ में बेकाबू डंपर ने कार को मारी भीषण टक्कर, रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे दो लोग, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दरभंगा में झमाझम बारिश से शहर बेहाल हुए, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर्स का हाफ एनकाउंटर, 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई लोग प्रभावित हुए, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। एमपी के श्योपुर में 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर में घर के सामने अचानक से दिखा मगरमच्छ, नाले से रिहायशी इलाके में पहुंचने पर मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। कानपुर में सीएनजी भरवाने को लेकर दरोगा और पेट्रोल पंप में कर्मचारियों में भिड़ंत हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। प्रयागराज में यमुना में छलांग लगा रहे बच्चे, हेलीपैड बना खतरनाक स्टंट काड्डा, वीडियो हो रहा है वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर मारी गोली, फिर चाकू से गोदा, गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर उठती दिखी आग की लपटें। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी वीडियो आया। मथुरा में 12 साल की लड़की का पहले रेप किया गया, फिर हत्या कर बागपत में फेंक दिया गया शव, 5 महीने पहले किडनैप हुई थी बच्ची। बरेली में बाढ़ के पानी से करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरी, टंकी का गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। कोटा में 40 फीट ऊंचे जामुन के पेड़ पर चढ़ा लेकर 5वीं कोशिश में लगा ट्रैंक्विलाइज डार्ट, 20 मिनट बाद नेट में गिरा, 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो गाड़ी, हादसे में 2 युवकों की मौत। नागपुर के पब में एंट्री को लेकर हुआ विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब को आग लगा दी, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 2 गिरफ्तार। आमेर में टूरिस्ट गाइड की चाकू घोप कर हत्या, जयपुर में फूटा लोगों का गुस्सा, 6 मांगों पर अड़ा परिवार। मनीष हत्याकांड का सामने आया लाइव सीसीटीवी वीडियो, भागते भागते गाइड के पेट में घोपा चाकू। बुलंदशहर के शादी समारोह में दूल्हे ने पिस्टल से की ताबड़तोड़ फायरिंग, वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। कुंज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार का भयानक एक्सीडेंट, हादसे में 4 शिक्षक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई में मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार में कार चलाने वाले 6 से 7 चालकों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस पहचान में जुटी। दावणगेरे में कार की चपेट में आया तेंदुआ, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारी पर तेंदुए ने किया हमला। समस्तीपुर में ट्रेन में महिलाओं का चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, कई गिरफ्तार। हरिद्वार में दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सिवनी में घर के बाथरूम में बैठे 10 फीट लंबे अजगर को देखकर घर वाले हैरान हुए, मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था एंड्रॉइड डिवाइस से, पैकेट खोलते ही निकला गोबर। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक, बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। घर पर ही 8 साल से गणपति बप्पा की मूर्ति बना रही है दिल्ली की लड़की रुचि, इको फ्रेंडली विसर्जन से पर्यावरण का संदेश। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंची, भारत के लिए पद किया सुनिश्चित। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सिडान से होगा मुकाबला, गोल पर होंगी निकाहें। भारत को एक और पद की उम्मीद, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगी पैरा खिलाड़ी सरिता। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में 2 नंबर पर इंदौर और 3 नंबर पर जबलपुर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से सूची जारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की बड़ी छलांग, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर के 8वीं रैंक हासिल, पिछले साल 9वें पायदान पर था नोएडा।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का कड़ा कदम, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया प्रस्ताव, जनता की सुविधा का ख्याल रखा। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना रिलीज हुआ, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी आएंगी नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक वाला तीसरा गाना आया सामने, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, आपाशक्ति खुराना और आफिया सईद आएंगे नजर। फिल्म तेरा साई की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। भक्तिभाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा, अगले साल रिलीज की जाएगी श्री खाटू श्याम जी पर आधारित ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रच दिया है इतिहास, 32 दिन में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूस का भीषण हमला, सुमी में पैसेंजर ट्रेन को बनाया गया निशाना, दोनों हमले में 2 लोगों की। 20 सितंबर के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, शांति वार्ता के साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी पर होगी बातचीत। हंगरी ने रूस के 10 राजनयिकों को किया निष्कासित, देश छोड़ने का जारी किया गया फरमान, कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन पर हंगरी ने की सख्त कार्रवाई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की मुलाकात, सर्गेई लावरोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान की अमेरिका को सख्त चेतावनी, कहा जब तक हमलावरों को पछतावा नहीं होता तब तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा संघर्ष। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ का बड़ा बयान, कहा ईरान के तेल और गैस संपत्तियों पर अमेरिका के किसी भी हमले का दिया जाएगा जवाब। यमन के हूती विद्रोहियों का सऊदी पर भीषण हमला, एयरपोर्ट और अरामको ऑयल साइट्स को बनाया गया निशाना, हमले के बाद भीषण आग, 73 लोग हुए। इजरायली राष्ट्रपति ने की ब्रिटेन के संभावित प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा है कि बस्तियों पर प्रतिबंध से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। राजधानी बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ने कतर के पीएम शेख मोहम्मद से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बनी सहमत। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम, दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ला रही है माई फीड माई वे कानून, नए कानून से इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट दिखाने का बदल सकता है तरीका।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Mera rutba hai mera signature. Mera jazba hai mera signature. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbar Group.
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर यार
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: पापा
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ
7: तो भरोसा है।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Mera rutba hai mera signature. Mera jazba hai mera signature. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbar Group.
2: Papa.
3: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
5: है हाँ ला भाई मेरा बैट
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू
5: चार्ज हुआ यार
7: बैट किसका है
8: टाटा AIG है तो भरोसा है
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने
10: जीके मैक्स
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान, पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे। इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किल का मंगलवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ानें। एनएटीएस बोला अब हालात सामान्य। सत्यनिकेतन हादसे के बाद दिल्ली में एमसीडी का बड़ा एक्शन। पिछले दो दिन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। हादसे वाली पीजी से सटी इमारत को भी गिराने का काम शुरू। शुद्धिकरण विवाद के बीच उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज से दो दिन के दौरे पर नितिन नवीन रुद्रपुर में लेंगे पार्टी की मीटिंग। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश। इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर से सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। वहीं बिहार में जारी बाढ़ का कहर। 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भागलपुर भोजपुर बक्सर में बुरा हाल। लालू बोले भीषण बाढ़ में सरकार का खजाना खाली।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: नमस्कार, सुबह के 8 बजे है। मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन कैसे चला। साथ ही बात करेंगे गैंगस्टर के गुर्गों के हाफ एनकाउंटर की, तो खबर उज्जैन की भी होगी जहां पर हनुमान मंदिर तोड़े जाने पर गुस्सा फूटा है। साथ ही जिक्र करेंगे शुद्धिकरण मामले में दर्ज हुई FIR का। बात संगरूर सुसाइड मामले में तेज सियासत की भी होगी। वहीं बिहार के बाढ़ की हालत भी आपको दिखाएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे लंदन में क्यों रद्द करनी पड़ी है उड़ानें, और बात अमेरिका ईरान में जारी तनाव की भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद एक्शन की। दरअसल एमसीडी ने हादसे वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग पर एक्शन जारी किया है। वहीं एमसीडी ने इस इमारत को खतरनाक घोषित किया था, जिसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इस इमारत में लड़कियों के लिए पीजी की सुविधा थी, जिसे एमसीडी ने खाली करने के आदेश दिए थे। तो वहीं दिल्ली में एमसीडी ने पिछले दो दिनों में 24 अवैध इमारतों पर कार्रवाई की। सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल भी हुए थे। खतरनाक बिल्डिंग को गिराने का अभी फिलहाल काम जारी है। सत्यनिकेतन में एक और बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया। खतरनाक बिल्डिंग में छात्राओं का पीजी चल रहा था, गर्ल्स पीजी था। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, अभी वहां पर क्या स्थिति है जिस बिल्डिंग को गिराने की बात कही जा रही है? एमसीडी अब एक्शन में आ चुकी है।
2: जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ इस बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरे इलाके का सर्वे किया जा रहा है। और ये सामने वाली देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे जगह जगह पहले पिलर दिए गए हैं, लोहे के पिलर सपोर्टर्स लगाए गए हैं। फ्रंट पे आप देखेंगी तो कम से कम 6 से 8 सपोर्टर्स लगाए गए हैं। इसके बीच में लेंटर को सपोर्ट करने के लिए, ताकि कहीं ये अचानक से पूरी बिल्डिंग भरभरा के न गिर पड़े, इसके लिए ये सारी तैयारी, ये कवायद की गई है। क्योंकि वैसे अगर आप पूरी बिल्डिंग पे नजर डालेंगे तो आपको कोई बीम नजर नहीं आएगा होगा, लेकिन इस तरीके से जो चाहिए होता है, जितनी जरूरी, आप साइड की पूरी वॉल अगर आप देखिए तो एक ईंट की ये दीवार है। तो इस वजह से इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तो ये फ्लोर बने पूजा, और ऊपर टीन शेड था, टीन शेड हटा दिया गया है। ऊपर का जो टीन शेड था, जो आपको दिख रहा है सामने पाइप वगैरह दिख रही है, वहां पर एक टीन शेड था। यानी 5 फ्लोर तो बच्चों को उन्होंने दिया ही था रहने के लिए, इसके ऊपर एक टीन शेड भी बनाया था, और टीन शेड से भी बच्चों को रख करके उससे भी, वहां से भी पैसा कमाई की जा रही थी। तो अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है और सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि एक्सपर्ट की देखरेख में इस बिल्डिंग को धीरे धीरे करके तोड़ा जाएगा, ताकि किसी आसपास के दूसरे मकान को नुकसान ना हो या अचानक ये भरभरा के न गिरे, जिसकी वजह से और नुकसान हो, इसका पूरा ध्यान रखा।
0: आप नजर बनाए रखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं सत्यनिकेतन हादसे के बाद दिल्ली एमसीडी एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल पिछले दो दिनों में एमसीडी की टीम ने 24 अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर उन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। करीब 7 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 27 अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, जो कि खासकर लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, मुखर्जी नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग, तिलक नगर, करमपुरा, करोल बाग, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, चांदनी चौक, इसी के साथ नेहरू विहार और अन्य इलाके ऐसे हैं जिसके अलावा दो दिनों में करीब 1100 पीजी का सर्वे भी किया गया है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, उज्जैन में सिंहस्थ 2026 से पहले सड़क चौड़ीकरण को लेकर हनुमान प्रतिमा का मुद्दा अब गर्मा गया है। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए मंदिर तोड़ दिया गया है, लेकिन प्रतिमा को हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां पर महाआरती हुई, सैकड़ों लोगों ने प्रतिमा को अपनी जगह से न हटाने की मांग की है।
3: ये उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से क्षति चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिश हो चुकी है, नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें। इस पूरे विवाद में इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरे जगह ले जाना संभव है। अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सिंहस्थ से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों के आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
0: बात कर लेते हैं हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण मामले की। इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीएस ने कहा है कि मैडम अंजू की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों की भी यही मांग थी और पुलिस ने मामले में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति घृणा और साथ ही हीनता का भाव रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया है कि मामले में बीएनएस की धारा 196 और 299 के साथ एससी एसटी एक्ट की धारा 3A 31R के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद कथित तौर पर शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है।
4: मैं खुद प्रत्यक्ष दर्शी हूँ उस बात की। ऐसा कोई मामला वहाँ पर नहीं हुआ था। जब मुझे पता चला कि जब ऐसा मामला हुआ नहीं है, अगर अन्याय होता है तो आगे हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए गलत तरीके का भ्रामक वीडियोस अगर डालते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने उसी के एवज में एफआईआर दे रखी है और ये जांच का विषय
5: हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर से संगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया है और संवेदनशीलता और मामले को जो दृष्टिगत और नियमानुसार जो है हमने सीनियर ऑफिसर पीपीएस ऑफिसर है और अब आईपीएस हो गए हैं, आईपीएस ऑफिसर श्री जगदीश चंद्रा जी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, उनको हमने विवेचना अधिकारी नामित किया है। अभी जो है ये जो भी मामला है विवेचनाधीन है, जिसको भी कोई भी प्रकार का एविडेंस देना है तो विवेचना अधिकारी से संपर्क करें और अपना एविडेंस दें।
0: अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर जाकर रामलला के दरबार में माथा टेका, हनुमानगढ़ी में विधि विधान से पूजा भी की। वहीं अयोध्या में जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास विरोधी है। इन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी और सनातन के खिलाफ ये विरासत का भी विरोध करते हैं और विकास का भी।
6: ये विकास विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं। जैसे इनके विरोध के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन नहीं रुका, नहीं झुका, नहीं डिगा और अंततः अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का प्रकटीकरण होता है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है।
0: वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा एक सर्वसमावेशी उत्सव है और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति गरबा देखने जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अमृता फडणवीस ने यह बयान मंत्री नितेश राणे के बयान के बाद दिया है, जिसमें कि मंत्री ने कहा था कि गरबा उत्सव में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
7: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्वसमावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत। मला वाटतं पहा साऊंड डिसेबल्स जे असतात, जे अप्रूव्ह त्याची इंटेन्सिटी असते ती लक्षात

0: को लेकर अब विवाद बढ़ रहा है। दो तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। नितेश राणे का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं और ऐसे में उनको एंट्री ना दी जाए। नितेश राणे को अमृता फडणवीस ने उसके बाद जवाब दिया कि गरबा एक उत्सव है और उसमें किसी भी एंट्री की बैन नहीं होना चाहिए, कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान की जानी चाहिए। ये नितेश राणे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ उन सभी से कराना चाहिए जो भी गरबा में प्रवेश कर रहा है। पंजाब के गुलजार सिंह आत्महत्या मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब एसआईटी गठित कर दी है। पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी नैनिहाल सिंह की अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। उधर संगरूर में तनावपूर्ण माहौल में पुलिस की निगरानी में मंगलवार को गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल चंडीगढ़ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा, काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई। इस मामले को लेकर बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए हैं तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस तरह से पंजाब सरकार ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई कर रही है उससे बीजेपी, कांग्रेस और अकाली हताश हो चुके हैं।
1: ड्रग्स का जो व्यापार, जो समस्या पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाक के नीचे चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चीख चीख कर मंत्री से कहता है मेरा बेटा चिट्टा ले रहा है ड्रग्स, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करते हैं, वो गुलजार सिंह के घर जाते हैं, उसको धमकी दी जाती है, उसको डराया जाता है।
2: अगर कोई व्यक्ति मंत्री के सामने आके अपनी समस्या रख रहा है तो उसका विश्वास है उस सरकार में, इसीलिए उसके सामने समस्या रख रहा है। और जैसे ही समस्या रखी, जिन जिन का नाम परिवार ने लिया वो सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में है, वो सारे लोग गिरफ्तार हैं। मैं गौरव भाटिया से ये पूछना चाहता हूं और बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी गंदी हो गई आप लोगों की सियासत कि आप किसी व्यक्ति की जान से खेल जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको राजनीति करनी है। उस व्यक्ति का जो पहला वीडियो आया घटना के बाद, उसमें कहीं भी हमारे किसी मंत्री का नाम नहीं है।
0: अब दिल्ली के रोहिणी की बात कर लेते हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। रोहिणी सेक्टर 24 में हिमांशु भाई गैंग के दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए जबकि एक नाबालिग को मौके से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक तीनों हिमांशु भाई गैंग के शूटर है। घायल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई नरेला इलाके में 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की हत्या के मामले में की है। प्रमोद कुमार की हत्या गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने करवाई थी। उसके बाद तीन बदमाशों की गिरफ्तारी अभी इस पूरे मामले में हो चुकी है जिसमें से एक नाबालिग।
3: हमें इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि वो इनामी बदमाश था दोनों के दोनों, जिसमें 50,000 का इनाम भी था। सो इन्फॉर्मेशन थी कि वो यहाँ से पास करें किसी वारदात को अंजाम देने को जा रहे हैं, तो हमने ट्रैप लगाया, हमने चैलेंज किया, दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस और हमने भी जवाबी कार्रवाई करी। करीब 11 से 12 राउंड उन्होंने फायर किए, अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और 6 राउंड हमने फायर किए, उनके गोली लगी है। हमारी भी बुलेट प्रूफ जैकेट ने गोलियाँ रोकी हैं, तो हमारे इंस्पेक्टर संदीप गोदारा और मंजीत और बाकी टीम ने जो है इस तीन लोगों को अप्रिहेंड किया है, उसमें एक जुवेनाइल है और दो लोग हैं दीपक और नितिन।

चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 5 सितंबर को हुई घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वारदात के बाद दो संदिग्ध आरोपी बाइक से भागते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है दिल्ली के रोहिणी का, जहां पर ये तीनों आरोपी भागते हुए बाइक पर दिख रहे हैं। एक के हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रही है। तो वहीं सूरत के सरोली स्थित टेक्सटाइल मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। फायर कंट्रोल रूम को देर रात सूचना मिली, जिसके बाद 3 स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। चौथी और पांचवी मंजिल पर आग और धुआं है। करीब 25 दमकल वाहन आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहाल किसी के अंदर फंसे होने की सूचना नहीं है। चौथी और पांचवी मंजिल पर यह भीषण आग की लपटे, आग लगने से मार्केट में सारा सामान भी जलकर राख हो गया है।

0: चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, गांव डूबे, घर डूबे, खेत डूबे, रास्ते डूबे। बिहार में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बनी हुई है। राज्य के 14 जिलों में करीब 35,89,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भागलपुर, पटना, मुंगेर, समस्तीपुर में बुरा हाल है। सड़कों पर करीब 2 फीट पानी बहता दिख रहा है। जन सैलाब के तेज बहाव में आवाजाही को लोग मजबूर हैं। पटना के दीदारगंज में बाढ़ का पानी ट्रैक्टर यार्ड में घुस गया है। यार्ड में खड़े कई ट्रैक्टर पानी में डूब गए हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ट्रैक्टर्स आधे से ज्यादा पानी में समा गए हैं। मुंगेर में गंगा का जल स्तर घट रहा है, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर है। जिले के 6 प्रखंडों के करीब 100 गांव और लगभग 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खेत, सड़क और घर सब जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग थर्माकोल से बनी जुगाड़ की नाव के सहारे जरूरी सामान ला ले जा रहे हैं। कई लोग 4 फीट गहरे पानी में उतरकर आने जाने को मजबूर हैं, तो कहीं बाढ़ के चलते बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है। मुंगेर के कई शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। लोगों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिल रही। इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया, लेकिन बाढ़ के बीच बेगूसराय से दर्दनाक खबर भी सामने आई है। 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज बहाव की चपेट में आने से एक बुजुर्ग के बहने की खबर मिली है। कहीं लोग घर छोड़ रहे हैं, तो कहीं पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। प्रशासन राहत का दावा कर रहा है, लेकिन जमीन पर चुनौती बड़ी है। मुंगेर से गोविंद कुमार, समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
1: भागलपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 80 पर करीब 2 से 3 फुट पानी भर गया, जिसके चलते प्रशासन ने यहां पर आवाजाही रोक दी है।
2: इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये नेशनल हाईवे नंबर 80 है। यानी कि ये नेशनल हाईवे है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा का पानी जो है वो पूरे हाईवे पर जो है वो चढ़ गया है, जिसके वजह से इस हाईवे पर अब गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इसे खतरनाक मानते हुए इस NH पर गाड़ियों का आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया है। और आप तस्वीरें देखिए क्या हालत हो गई है नेशनल हाईवे की, और आसपास जो है हाईवे के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से गंगा का पानी जो है वो लबालब है, और लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि राइजिंग ट्रेंड पर है इस वक्त गंगा, जिसकी वजह से अब नेशनल हाईवे पर आप देखिए जहां मैं खड़ा हूं, 1.5 से 2 फुट का जो है वो पानी यहां भर चुका है, और आगे भी यही हालात हैं। और ये हाईवे जो है NH काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरे पीछे आगे फरक्का झारखंड पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, तो वहाँ पर अब देख लीजिए किस तरीके से गंगा का पानी इस नेशनल हाईवे पर चढ़ चुका है। ये तस्वीर दिखा रहा है कि अभी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर, आज तक।
1: बात ब्रिटेन की कर लेते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। दरअसल ब्रिटिश एयरवेज और इसी के साथ 5 से ज्यादा एयरलाइंस पर इसका असर पड़ा। ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने बताया है कि यह समस्या उड़ानों के टेक ऑफ पर असर डाल रही थी। फ्लाइट सिस्टम धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, और साथ ही फ्लाइट रडार 24 ने एक्स पर यह भी बताया कि ब्रिटिश एयरवेज के जेट केएलएम और लुफ्थांसा समेत कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। लंदन के हीथ्रो, गेटविक और साथ ही स्टेनस्टेड एयरपोर्ट के साथ साथ इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स इलाके के एयरपोर्ट्स पर भी उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग स्केड्यूल में दिक्कतें आई हैं। अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग की। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल हमले की कोशिशों के बाद ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले की कोशिशों के बाद उसकी सेना ने 8 सितंबर को ईरान के 5 कच्चे तेल के टैंकर नष्ट कर दिए। तो वहीं ईरान के IRGC का कहना है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो ईरानी हमले को नाकाम कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर 8 में अब वक्त हो गया फटाफट खबरों का। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में खूनी खेल, रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सिर में मारी गोली, हालत नाजुक। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों और एडिशनल प्रॉक्टर में नोकझोंक, छात्रों के दौड़ने पर भागते दिखे प्रॉक्टर। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगाई का आरोप, पड़ोसी के घर पहुंचने का CCTV वायरल, फिरोज उर्फ भूरा पुलिस हिरासत में। जूनागढ़ में बेकाबू डंपर ने कार को मारी टक्कर, देर रात रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे 2 लोग, CCTV में कैद हुआ हादसा। दरभंगा में झमाझम बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल में घुटनों तक भरा बारिश का पानी। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, आधा दर्जन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। MP के श्योपुर में 7 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर में घर के सामने अचानक से दिखा मगरमच्छ, नाले से रिहायशी इलाके में पहुंचने पर मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx. JK Maxx Paints.

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
4: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है।
3: जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
4: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अब तो गए नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है ये वीडियो, जिसमें पुलिस अधिकारी धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस फोर्स की धमकी दे रहे हैं। 25 अगस्त से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। कल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में अनशन कर रहे छात्रों ने दोनों गेट पर ताला जड़ दिया और इसे लेकर एडिशनल प्रॉक्टर और छात्रों के बीच नोकझोंक शुरू हुई। विवाद बढ़ गया, मामला बढ़ा तो गार्ड की मदद से वो किसी तरह से बाहर निकले। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रों को धमकाया गया। वायरल हो रहे इस वीडियो में दरोगा जी छात्रों से गाली गलौज तक करते नजर आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, ये जो वीडियो सामने आया है, दरोगा किस तरीके से छात्रों को धमकी दे रहे हैं, अब इसके बाद क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, साफ तौर पर नजर आ रहा है?
3: आप बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी मामला है कि जो यूनिवर्सिटी है उस पर बच्चों ने ताला जब लगा दिया था, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये धरने पर बैठे हुए थे काफी दिनों से, और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में चुकी ये धरना चल रहा था और गेट पर जब ताला जड़ा तो उस दौरान वहां पर जो प्रोफेसर पहुंचे और ये घटना सामने आई। हालांकि जो वहां के एसआई हैं, दरोगा हैं, उन्होंने इस लहजे में बात करते हुए छात्रों से ये भी कहा कि आप प्रदर्शन को छोड़िए, और जिस तरीके से डॉक्टर वेद प्रकाश राय अनशनकारी छात्रों के बीच पहुंचे थे तो उनको घेर लिया गया था और उनको छोड़ने की बात कही जा रही थी। इस दौरान झड़प हो चुकी, काफी देर झड़प होने के बाद में पुलिस अधिकारी का जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि छात्रों को फोर्स बुलाकर ठंडा करने की बात करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में ये भी कहा गोरखपुर है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच का ये झड़प का वीडियो है, और ऐसे में जरूर माना जा रहा है कि उस दौरान चूंकि परिस्थिति ऐसी बन गई थी जिससे कि पुलिस को कहीं ना कहीं इस तरीके से करना पड़ा, आगे आना पड़ा, और इसी मामले पर डॉक्टर ने भी कैंट थाने पर तहरीर दी है, जहां पर इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई, क्योंकि छात्र लगातार उग्र रुख अपनाए हुए थे।
2: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। आप एक बार ये फिर से ये वीडियो देखिए, किस तरीके से दरोगा धमकी दे रहे हैं छात्रों
4: को।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।

दिल्ली में सत्यनिकेतन में गिरी इमारत की बगल वाली बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। दिल्ली में 24 अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीटी की बड़ा एक्शन, दो दिन में कई अवैध बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई। सत्यनिकेतन हादसे के बाद भगत सिंह कॉलेज के पास मौजूद पीजी के कई छात्रों से खलबली। सत्यनिकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। बीकेसी के जीओ वर्ल्ड प्लाजा में फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर पहुंचा युवक कोर्ट में, वकील बोले ठगी का शिकार हो सकता है आरोपी। पीएमओ की फर्जी आईडी, बॉडीगार्ड और 32 बोर हथियार के साथ 24 साल का युवक गिरफ्तार। कोर्ट में बचाव पक्ष ने साजिश का दावा किया। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के लिए तोहफा, अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर दे सकेंगे सेवाएं। सीएम योगी ने आगे कहा कि अभी यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंगबली का लिया आशीर्वाद, रामलला के दरबार में टेका मत था। हनुमानगढ़ी में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया जोर। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत, आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीती शाम राहुल गांधी को लेकर लखनऊ एयर इंडिया फ्लाइट का गो अराउंड दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग। तेज हवाओं के दबाव के चलते AI-1717 ने किया गो अराउंड, राहुल गांधी समेत सभी यात्री सुरक्षित। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी और नैनीताल में केस दर्ज, अज्ञात के खिलाफ FIR। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर राजनीति हुई। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट में एंट्री पर सवाल, बीजेपी सांसद बोले ईसीआई की प्रक्रिया का किया पालन। लंदन में शिंदे को 3 बड़े सम्मान, महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मजबूत होगी दावेदारी। जालना में धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मराठा आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से रास्ता रोको आंदोलन किया। जालना में शिवसेना शिंदे गुट के इंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने मनोज जारांगे से मुलाकात की, सेहत का ध्यान रखने की अपील की। पालघर में रिलीफ हॉस्पिटल मारपीट मामले में शिवसेना की बड़ी कार्रवाई, 7 पदाधिकारी निलंबित। बंगाल में डीजे बैन पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले ममता करती तो हिंदू विरोधी कहलाती। संजय राउत की एकनाथ शिंदे को सलाह, बीजेपी में कर ले अपनी पार्टी का विलय। तमिलनाडु में टीवी के कांग्रेस में बढ़ी तकरार के बीच आज गठबंधन सहयोगियों से मिलेंगे सीएम विजय। तमिलनाडु की सरकारी कंपनियों पर 2 लाख करोड़ का घाटा, 22 कंपनियों की पूरी नेटवर्थ खत्म। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की 73 सरकारी कंपनियों में से 36 पर कुल 2.26 लाख करोड़ का संचित घाटा है, जबकि 2022-23 में 37 कंपनियां घाटे में रही थी। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को झटका, तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का मिला निर्देश। बिहार आज थोड़ा सा कम हुआ गंगा, वहीं सोन और पुनपुन नदी का पानी वहां कम हुआ, लेकिन 13 जिलों में अभी भी त्राहिमाम। पटना में पानी में डूब गए हैं सैकड़ों चमचमाते ट्रैक्टर, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। बिहार में बाढ़ का कहर, भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर 2 फीट पानी, आवागमन प्रभावित। दानापुर में भीषण बाढ़ की चपेट में कई इलाके, चारों तरफ पानी ही पानी, संकट में आई कई जिंदगी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, शव यात्रा सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के लिए इंतजार में। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में खूनी खेल, रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सिर में मारी गोली, हालत नाजुक। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगाई का आरोप, पड़ोसी के घर पहुंचने का सीसीटीवी वायरल, फिरोज उर्फ बूरा पुलिस हिरासत में। गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक, छात्रों के दौड़ने पर भागते दिखा स्टाफ। गोरखपुर में धरना दे रहे छात्रों को धमकी देते हुए दरोगा का वीडियो एक वायरल हुआ, दरोगा ने कहा कि आपको बता रहे हैं ठंडा कर दूंगा। जूनागढ़ में बेकाबू डंपर ने कार को मारी भीषण टक्कर, रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे 2 लोग, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटर्स का हाफ एनकाउंटर, 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली में हिमांशु भाव गैंग ने 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई लोग प्रभावित, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। एमपी के श्योपुर में 7 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर में घर के सामने अचानक से दिखा मगरमच्छ, नाले से रिहायशी इलाके में पहुंचने पर मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। कौशाम्बी में कार से बाइक टच होने पर युवक को मारी जोरदार टक्कर, वहीं उसको पीटा गया, घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बाढ़ के पानी में बहती दिखी कार, पांडू नदी में डूबने की वजह से 2 युवकों की मौत। बरेली में बाढ़ के पानी में करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरी, टंकी का गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। सूरत में श्याम संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, 6 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। नागपुर के पब में एंट्री को लेकर हुआ विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब को आग दी, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, 2 गिरफ्तार।
गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप से महिला दो सोने की अंगूठी लेकर फरार हुई, घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में झमाझम बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। सूरत में रेल बनाने के चक्कर में रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिरने से बची जान। जयपुर में चोर ने पुलिस को दिया ऐसा चकमा कि पुलिस से ही करवा दी चोरी, सीसीटीवी ने खोला पूरा राज। नागपुर में रेलवे ग्रुप डी के परीक्षक में फर्जी पाड़ा, डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे युवक, एक गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी। कानपुर में सीएनजी भरवाने को लेकर दरोगा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों में झड़प हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। प्रयागराज में यमुना में छलांग लगा रहे बच्चे, हेलीपैड बना खतरनाक स्टंट का अड्डा, वीडियो हो रहा है वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर मारी गोली, फिर चाकू से गोदा, गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। दावणगेरे में कार की चपेट में आया तेंदुआ, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारी पर तेंदुए ने किया हमला। समस्तीपुर में ट्रेन में महिलाओं का चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, कई गिरफ्तार। हरिद्वार में दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सिवनी में घर के बाथरूम में बैठे 10 फीट लंबे अजगर को देखकर घर वालों ही हुए हैरान, मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था एंड्रॉइड डिवाइस, पैकेट खोलते ही निकला उसमें गोबर। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बढ़ी रौनक, बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, घर पर ही 8 साल से गणपति बप्पा की मूर्ति बना रही दिल्ली की लड़की रुचि, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई जा रही है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंची, भारत के लिए के पद सुनिश्चित। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सिडान से होगा मुकाबला, गोल्ड पर होंगी निगाहें। भारत को एक पद की उम्मीद, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगी पैरा खिलाड़ी सरिता। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर लखनऊ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर जबलपुर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची जारी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की भी बड़ी छलांग, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश भर में 8वीं रैंक हासिल, पिछले साल 9वें पायदान पर था नोएडा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया प्रस्ताव। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना रिलीज हुआ, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी आएंगी नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु की रोमांटिक ट्रैक वाला तीसरा गाना आया सामने, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया, पाशुक्ति खुराना, आफिया सैयद आएंगी नजर। फिल्म तेरा साई की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। भक्तिभाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा बाबा खाटूश्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा, अगले साल रिलीज की जाएगी, खाटूश्याम जी पर आधारित ये फिल्म। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 32 दिन में फिल्म का क्रॉस कलेक्शन 155 करोड़ के पार। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार देर रात 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने दी जानकारी। लंदन के हिथ्रो, गेटविक और स्टेंस्टेड एयरपोर्ट के साथ साथ इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स इलाके में एयरपोर्ट पर भी उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग स्केड्यूल में दिक्कतें आईं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा, अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकर्स को किया तबाह, आईआरजीसी ने हमले के जवाब में की कार्रवाई। अमेरिकी सेना का दावा, आईआरजीसी ने अमेरिकी नौसैनिक पोत को 2 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, उसके जवाब में हमने 5 कच्चे तेल के टैंकर को नष्ट किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई से पहले जहाजों के क्रू को बाहर निकलने का आदेश दिया गया, इसके बाद टैंकर्स पर हमला किया गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के

जिंदगी धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। कन्या राशि, नौकरी में समस्या दूर होगी, संतान की चिंता दूर होगी, लेकिन आज चोट चपेट से सावधान रहिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

है शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उत्तर प्रदेश के चुनाव में जात बिरादर के वोट की सियासत कुछ इस राह पर शुरू हुई है कि दलित वोटों तक पहुंच और कब्जे के लिए हर दल की अपनी बिसात, अपने मोहरे, अपनी चाल है। कहीं वर्दी के रंग बदल रहे हैं, कहीं नेता, कहीं प्रभारी बदल रहे हैं, कहीं भतीजे। और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने क्रांतिकारी तब्दीली कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जेनजी के दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला कर दिया है।
1: और जब हम यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो सब गैर बराबरी खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्म की दिखाई देती है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाती है। इसीलिए आज छात्र सभा के नौजवान नई सोच, नई विचारधारा के साथ नई यूनिफॉर्म में जाकर के छात्र नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका रहा है, जो हमारी अफर्मेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, हमारे जो डेमोक्रेटिक एक्शंस हैं, उनको छात्र नौजवानों तक कैसे पहुंचाएं, और जो लगातार पीडीए मूवमेंट चल रहा है, उस पीडीए मूवमेंट से कैसे छात्र नौजवानों को जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ें।
0: 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी संक्रांति काल से गुजर रही है। इसके संकेत 31 अगस्त को तो मिल ही गए, जब 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंगवस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था। लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव यूपी के जेनजी दलित वोटर तक अपनी पहुँच की रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश है। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए। दलित वोटों तक पहुंच की समाजवादी कोशिश की वानगी कुछ ऐसी है कि अखिलेश किसी भी चुनावी मुद्दे का जिक्र करते हुए बाबा साहब को याद करना नहीं भूल रहे। पिछले दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बयान देते हुए भी बाबा साहब को याद कर लिया।
2: प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई तो सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और कानून उसी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि चोर पकड़े गए ना, तो चोरों के कार्रवाई कैसे हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो कानून बनाया उसी के तहत तो पकड़े जा रहे हैं।
0: अखिलेश के अंबेडकर मंत्र के पीछे दरअसल चुनावी आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10 से 12 फीसदी दलित वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर लगभग 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन की ओर दलितों के बढ़ते इस रुझान ने अखिलेश को उम्मीदों से भर दिया है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ड्रेस से ही सही अपना लाल रंग छोड़ नीला होने को तैयार हो रही है। और नीले रंग की मुहिम कुछ ऐसी है कि 1942 में अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तब उन्होंने इसके लिए गहरे नीले रंग का झंडा चुना। उस झंडे के केंद्र में अशोक चक्र स्थापित था। अम्बेडकर खुद भी अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे। बाद में दलित सियासत करने वालों ने भी इसी नीले रंग को अपनाए रखा। और अब लोहिया के जमाने से लाल रंग के साथ सियासत करती आ रही समाजवादी पार्टी धीरे धीरे नीले रंग को अख्तियार करती दिख रही है। उधर यूपी में दलित वोट की सियासत के दो दावेदार और हैं, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी की भी अपनी रणनीतियां हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली में दलित आदिवासी 32 सांसदों की विशेष बैठक करके रणनीति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के SC ST मोर्चा अध्यक्ष और खुद यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने रणनीति तैयार की है। दलित वोटों की सियासत करने वाली बाकी बची बीएसपी, जिसने जेनजी वोटों के लिए अपनी रणनीति में नया प्रयोग मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद के तौर पर किया है। ईशान को 15 राज्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

कीर्तन आज के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन, पिछले दो दिन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी सोसाइटी बिल्डिंग को भी गिराने का काम शुरू। शुद्धिकरण विवाद के बीच उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष, आज से दो दिन के दौरे पर रुद्रपुर में, नितिन नवीन लेंगे पार्टी की मीटिंग। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश, इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च, मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी।

ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किलों का मंगलवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स। NATS बोला अब हालात सामान्य। बिहार के 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में हालात बिगड़े। लालू बोले सरकार का खजाना खाली।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद एनसीडी का महाअभियान, सत्य निकेतन में एक और बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू, दिखाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आज तक की खबर का हुआ है असर, मुखर्जी नगर में खतरनाक इमारत पर चला एमसीडी का हथौड़ा, दो दिन पहले आज तक ने दिखाई थी यहां से खबर। उज्जैन में हुआ है चमत्कार, सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर तो टूट गए लेकिन बजरंग बली की मूर्ति को टस से मस भी नहीं कर पाया प्रशासन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें दिल्ली में खतरनाक इमारतों पर एमसीडी के एक्शन की। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद एमसीडी ने हादसे वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। एमसीडी ने इस इमारत को खतरनाक घोषित किया जिसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इस इमारत में लड़कियों के लिए पीजी की सुविधा थी जिसे एमसीडी ने खाली करने के आदेश दिए। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद एमसीडी का यह एक्शन शुरू हुआ है। खतरनाक बिल्डिंग को गिराने का काम अब भी जारी है। ये वही बिल्डिंग्स हैं जिन्हें ऑर्डर के तहत खतरनाक बताया गया है, तो त्वरित कार्रवाई की गई है इस हादसे के बाद। सत्य निकेतन में ये पूरा का पूरा इलाका दरअसल पीजी से भरा हुआ है। ऐसे में दो दिन में एमसीडी ने 24 इमारतें गिराई हैं सिर्फ सत्य निकेतन के अलावा। मुखर्जी नगर में भी कई इमारतें गिराई गई हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है? सत्य निकेतन में जो इमारत गिराई जा रही है उसके अलावा और वहां कितनी इमारतें हैं? इसी तरह से अगर मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, जो डीयू के तमाम निकटतम एरियाज हैं जहां पर पीजीज हैं, वहां पर कितनी इमारतें गिराई जा सकती हैं?
1: देखिए, 6 इमारतों को यहां पर नोटिस दिया गया है जिसमें से एक ये सामने देख रही है जो ठीक हादसे वाले की बिल्डिंग के बगल में है। और इस पूरे इलाके को अब इवैक्यूएट करा लिया गया। अंदर आपको सिर्फ एमसीडी के कर्मचारी या फिर सिक्योरिटी कर्मी नजर आएंगे जो इस पूरे इलाके को सिक्योर किया उन्होंने, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन में है, इसलिए इसको सबसे पहले सपोर्ट दिया गया। देखिए, ये खाली भी नहीं कराया जा सका और ये ऐसे ही लोग बाहर निकल गए, अपना सामान भी नहीं ले जा सके। तो अब यहां पर एक्सपर्ट पहुंचे हैं और उसको ये देखा जा रहा है कि कैसे इस बिल्डिंग को फेज वाइज धीरे धीरे तोड़ा जाए ताकि आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान ना हो। इसके अलावा 5 और बिल्डिंगों को उसको मार्क किया गया, उनको नोटिस दिया गया है और अभी सर्वे लगातार जारी है। नेहा, सर्वे सिर्फ यहां नहीं हुआ बल्कि लक्ष्मीनगर इलाके में सर्वे किया जा रहा है, वहां पर मार्क किया जा रहा है जो बिल्डिंगें खतरनाक हैं या फिर जो परमिशन है उससे ज्यादा बड़ी बनी हुई है। 3 फ्लोर की परमिशन है, 5 फ्लोर तक बनी हुई है। और जो नॉर्थ कैंपस का पूरा इलाका है जहां पर स्टूडेंट रहते हैं, उस पूरे इलाके में जो पीजीज चल रहे हैं वहां पर भी सर्वे की टीम लगातार जो सिविक एजेंसीज की है उसमें एक्सपर्ट भी हैं जो बिल्डिंग की मजबूती देख रहे हैं, साथ साथ जो उसके बिल्डिंग की जो परमिशन जो ली गई है सिविक एजेंसी से उससे कितना मेल खाती है, कितने ज्यादा कमरे हैं या कितनी ऊंचाई पर है। तो ये सब कुछ, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है नेहा, जिसकी शुरुआत हुई है। तो हर एक जगह पर एमसीडी की टीम है। अब यहां पर आप देखिए जो सामने का इलाका है इस बिल्डिंग को आसपास की चीजों को यहां से हटाया जा रहा है ताकि इसे मैन्युअली धीरे धीरे तोड़ा जाए आसपास, जिसकी वजह से नुकसान ना हो। तो ये कंडीशन, चूंकि ये पूरा इलाका बेहद कंजस्टेड है, आप सीधे अगर सामने गली में भी देखेंगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सट के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तारों का पूरा यहां पर आपको जाल नजर आएगा। तो ऐसे में कोई भी कार्रवाई करना, बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। तो तमाम तरीके के एहतियात के कदम यहां पर उठाए गए हैं और उसके बाद इसको यहां से डिमोलिश करने का काम शुरू होगा। अब कंडीशन ये है कि लोगों के कपड़े तक बाहर सूख रहे हैं, उन्हें इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने कपड़े हटा सके। और उसके बाद इसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि सामने चारों तरफ यहां पर लोहे के गाटर से सपोर्ट दिया गया है। आप देखिए फ्रंट पे ही अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम सपोर्ट नजर आएगा। इसके अलावा जो दीवार टूट गई है, अगर हम देखें यहां फर्स्ट फ्लोर की जहां पर केमिस्ट की दुकान थी, वहां पर आपको अंदर सारे केमिस्ट के सामान दिखेंगे और फ्रंट पे भी यही कंडीशन है। तो इस तरीके से बिल्डिंग को सबसे पहले
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। अब देख सकते हैं कि इमारत को उठाने का काम जारी है। सत्य निकेतन की जिस इमारत को गिराने का काम चल रहा है वहां एक्शन कल देर शाम ही शुरू हो गया था। दरअसल रविवार के हादसे के बाद से एमसीडी ने खतरनाक इमारतों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कल मुखर्जी नगर में उस बिल्डिंग पर हथौड़ा चला जिसकी खबर आज तक ने दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट ग्राउंड से।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में 7 लोगों की जान लेने वाली बिल्डिंग के ठीक बगल वाली बिल्डिंग पर एक्शन की ये तस्वीर है। सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद ये इमारत भी एक तरफ झुक गई थी। कल शाम इस झुकी हुई इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया।
3: हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी इमारत दिख रही है, 6-7 मंजिला, और ये पूरी कच्ची, देखिए सीमेंट भी इसकी नहीं नजर आ रही। ये वही कोलैप्स साइट के बगल वाली इमारत है। और ऊपर अगर आप देखें, पहले छत पे अजय आपको दिखाएंगे कि छत आपको एक तरफ टूटी हुई नजर आ रही है। टीन, जो नीली टीन है, वहां से पहले तोड़ने का सिलसिला अभी MCD ने शुरू किया है। और वहां से पानी की टंकी यहाँ ऊपर से गिरी है, और ये हरी टीन और नीली टीन अब नीचे आके अगर आप देखें तो नीचे पानी की टंकी और नीली टीन पड़ी है। वॉशिंग मशीन वहां पे पड़ी आपको नजर आ जाएगी। और यहाँ पे जो मलबा पड़ा है, ये अभी ऊपर से जो टूट हुई है उससे पड़ा है। और यहाँ देखिए कितनी प्रिकेरियसली, ये खतरनाक तरीके से बिल्डिंग खड़ी हुई है। पूरे नीचे का माला गायब है, एक तरीके से एक तरफ की दीवार। तो यहाँ पे MCD के जो कर्मचारी है वो मौजूद है। पूरी लाइटिंग की गई है, फ्लड लाइट से पूरी जगह को लाइट अप किया गया है। और इस तरीके की कार्रवाई जो है यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सावधानी से करना पड़ेगा।
2: हादसे में असुरक्षित इमारतों के खिलाफ MCD के एक्शन की एक और तस्वीर देखिए। MCD का हथौड़ा यहाँ भी चल रहा है। तस्वीर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की है। इस बिल्डिंग के बारे में आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने आपको सोमवार को खबर दिखाई थी। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा की वो रिपोर्ट एक बार फिर आप देखिए।
4: सत्य निकेतन के बाद अब डर का साया मुखर्जी नगर पर मंडरा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुखर्जी नगर में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कैसे ये जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिख रही है, जो 5 माले की है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। पिछले 4 साल में MCD ने कई बार यहाँ पर नोटिस चस्पा किए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन अब स्थिति काफी भयावह हो गई है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये जो बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 7 सटी हुई जो बिल्डिंग है, इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, और किसी भी वक्त किसी भी दिन ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 माले की बिल्डिंग जब नीचे गिरेगी, तब उस वक्त इस इलाके की क्या स्थिति होगी।
2: सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद से MCD का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में 24 इमारतें गिराई जा चुकी है, जबकि 27 प्रॉपर्टीज को तोड़ने का आदेश दिया गया है। खतरनाक और जर्जर इमारतों और PG के सर्वे का काम तेज है। 2 दिनों में अब तक करीब 1,100 PG का सर्वे हो चुका है। अब तक कुल 7 इमारतों को सील किया गया है और 35 बिल्डिंग मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 12 MCD के सभी 12 जोन में ये कार्रवाई चल रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जब ये ऑडिट अब हादसे के बाद किया जा रहा है, ये ईयरली प्रोसेस नहीं होता है? पिछले साल नहीं किया गया था, तब कोई इमारत क्यों नहीं चिन्हित हुई, तब कोई बिल्डिंग क्यों नहीं ढाई गई, तब MCD ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तब हादसे का इंतजार किया जा रहा था क्या?
1: बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि भ्रष्टाचार की वजह से ही इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जो तस्वीर हमें सत्य निकेतन की देखने को मिली, जहां पर इतने छात्रों की जान चली गई, आप सोचिए कि जो इमारत बनी थी, जो इमारत गिरी है, उसके बारे में लोग पहले ही आगाह कर रहे थे कि कमजोर हो चुकी है। वहां पर नीचे जब हथौड़े चल रहे थे तो लोगों को समझ में आ रहा था, उसके बावजूद वहां पर काम चल रहा था, और कोई भी अथॉरिटी, चाहे सिविक एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर थोड़ा सा भी कहीं कंस्ट्रक्शन अगर शुरुआत होती है तो आपको वहां पे पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। तो ऐसे में इतनी बड़ी इमारत बिना परमिशन के कैसे बन सकती है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि बिना लोगों के मिली भगत के इतनी बड़ी इमारत बन जाती है, उसमें छात्रों से मोटा किराया वसूला जाता है, और आग पर पट्टी बांध के तमाम एजेंसियां बैठी रहती हैं। लेकिन जब इस तरीके के हादसे होते हैं और जब इस तरीके के छात्रों की जब जान जाती जाती है। हमने देखा कि इसके पहले जब देखिए एक होटल में आग लगी थी तो उसके बाद तमाम होटल्स को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उसके पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से एक एंट्री एग्जिट से इतने कमरे जहां पर ब्रेड एंड बटर के नाम पे 3 से 4 कमरों की 5 कमरों की परमिशन थी, वहां 18 से 20 कमरे लोग बनाकर

0: इतनी जगह नहीं है कि सीधी अगर एक गाड़ी आ जाए और सामने से एक स्कूटर भी आ जाए तो निकलने की जगह हो, तो तमाम एजेंसियां आग पर पट्टी लगाकर बैठी थीं। अब जब हादसा हुआ है तो सर्वे और कार्रवाई शुरू हुई है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली में एमसीडी ने पीजी के स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम तेज कर दिया है। कैसे हो रहा है बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट, इस रिपोर्ट के जरिए आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा समझा रहे हैं।

0: पूर्वी दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक शकरपुर, जहां बड़ी तादाद में रहते हैं बाहर से आने वाले छात्र। सत्य निकेतन हादसे के बाद जब एमसीडी ने असुरक्षित इमारतों की पहचान शुरू की तो एमसीडी की टीम वाशु कुटीर नाम के इस पीजी में पहुंच गई। आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा जब वाशु कुटीर पहुंचे, गेट पर ही रास्ता रोके मिल गए बिल्डिंग ओनर के पिता।
1: आपने कहा था कि ये बंद है,
2: रेजिडेंशियल, वो कार्ड से खुलता है, कार्ड मेरे पास नहीं था, वो कार्ड से खुलता है और वो जो मालिक है वो घर गया हुआ है, तो बच्चे नहीं तो खोला है अंदर से जाके।
1: तो ऊपर पीजी चलता है?
2: नहीं, रेजिडेंशियल वैसे बच्चे छोटे छोटे थोड़े कमरे हैं वो बनाए हुए। पीजी
1: लगा हुआ तो है ना कि फॉर बॉयज के लिए बेड अवेलेबल है, इसका मतलब पीजी तो चल।
2: हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, हमने तो लिखवा दिया है, उस लड़के ने लिखवा दिया है, हमें इतने पढ़े लिखे नहीं है कितने ज्यादा
1: लिखवाया।
2: अपने जो मालिक है, जो बच्चा है तो आप अंदर जाके देख लो,
1: बच्चा मालिक है या आप मालिक?
2: छोटे बच्चे ही मालिक है, तुम अंदर जाके देख लो। मैं मन
1: जी चलता है ना, चलिए गेट खुलवाइए, से गेट खुलवाइए,
2: बच्चा खोलिए जरा
1: गेट खुलवाइए।
2: तो
1: ये शकरपुर का इलाका है जहाँ पर ये पीजी जो है वो चलता है, और अंदर से ये गेट लॉक है, इसका सेंट्रल लॉक है, कार्ड के जरिए इस लॉक को जो है वो खोला जाता है।
2: हाँ हाँ,
1: अभी बच्चे हैं?
2: बच्चे हाँ, लड़के हैं, तो शायद दस बारह लड़के, खुला है अपना, कोई ज्यादा हुआ उस नहीं।
0: काफी देर तक वो बातों को घोल घोल घुमाते रहे, आखिरकार दरवाजा खुला तो आज तक की टीम पीजी के अंदर दाखिल हुई।
1: ये देखिए अब हमारे साथ ये एमसीडी के अधिकारी हैं। सर आपने ऑडिट किया? सर
3: हाँ जी हाँ जी।
1: क्या हुआ, क्या है?
3: इसमें एक फ्लोर पे चार रूम है, एक रूम में दो बेड है, कोई फायर सेफ्टी के लिए कोई भी यहाँ पे अपरेटस वगैरह नहीं लगे हुए हैं, और बाकी के हम इनका सेंक्शन प्लान वगैरह, इनका हम कन्वर्जन चार्जेज,
1: कमरे
3: हाँ, ये अभी कुछ कमरे बुक हुए हैं जो लोग है।
1: अच्छा, ये भी आप कमरा देखेंगे कि लाइन से आपको यहाँ पर कई सारे कमरे जो है वो नजर आएंगे। हमारे साथ जो इलाके के जेई हैं उनसे भी कहेंगे कि वो आगे की तरफ दिखाएं कि कितना क्या आपने स्ट्रक्चर ऑडिट जो है वो किया, आपने यहाँ पर क्या क्या लिखा है?
3: ये मैंने ये लिखा है टोटल एक फ्लोर पे कितने रूम हैं और उसमें कितने बेड हैं, उसमें कितना, इनमें एंट्री एग्जिट कितना।
1: अच्छा, तो इसमें आप ऊपर तक गए?
3: हाँ ऊपर तक गए हुए हैं।
1: चाहिए कि जो एरिया के जेई हैं उनके साथ पूरा ये ऑडिट जो है वो देखें और समझें कि किस तरीके से ऑडिट जो है किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे जो कि पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। क्या ये जो आपने ऑडिट किया है, क्या लगता है कि ये रहने लायक, सेफ्टी के लिए ठीक है, सेफ्टी के लिहाज से
3: ठीक है? ये प्रॉपर्टी मतलब अभी रिसेंटली बनी हुई है, लेकिन फायर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई भी ऑपरेटर्स वगैरह लगे हुए नहीं।
0: स्ट्रक्चरल सर्वे में ये इमारत मजबूती के मामले में तो सुरक्षित निकली, लेकिन फायर सेफ्टी के टेस्ट में नाकाम रही। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
4: और अब बात दिल्ली की हो रही है तो ये खबर आपको दिखाए थे, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 इलाके में पुलिस ने हिमांशु भाव गैंग के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया है। हाफ एनकाउंटर में जख्मी दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, एक नाबालिग को भी मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने कार्रवाई नरेरा इलाके में 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की हत्या मामले में की है। आरोपी है कि प्रमोद कुमार की हत्या गैंगस्टर हिमांशु भाव ने करवाई थी।
5: हमें इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि वो इनामी बदमाश था दोनों के दोनों, जिसमें 50,000 का इनाम भी था। सो इन्फॉर्मेशन थी कि वो यहाँ से पास करें, किसी वारदात को अंजाम देने को जा रहे हैं, तो हमने ट्रैप लगाया, हमने चैलेंज किया, दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस, और हमने भी जवाबी कार्रवाई करी। करीब 11 से 12 राउंड उन्होंने फायर किए, अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, और 6 राउंड हमने फायर किए, उनके गोली लगी है, हमारी भी बुलेट प्रूफ जैकेट ने गोलियाँ रोकी हैं, तो हमारे इंस्पेक्टर संदीप गोदारा और मंजीत और बाकी टीम ने जो है इस 3 लोगों को अप्रिहेंड किया है, उसमें एक जुवेनाइल है और 2 लोग है, दीपक और नितिक। ये मामला है।
4: और अब आइए आपको दिखाते हैं 5 सितंबर को हुई घटना का एक

0: सीसीटीवी फुटेज जिसमें वारदात के बाद दो संदिग्ध आरोपी बाइक से भागते दिख रहे हैं। इनमें से एक के हाथ में पिस्टल है, दूसरा भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही बाइक पर तीन बदमाश आपको दिखाई दे जाएंगे जो पिस्टल लहराते हुए सरेआम इस तरीके से वहां से भाग रहे हैं। और दिल्ली की तरह गाजियाबाद में भी कल एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और इसके बाद पुलिस ने वाहन चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यही वो आरोपी है जिसका हाफ एनकाउंटर हुआ है, पैर में से गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, तो एक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है।
1: चेकिंग के दौरान विजयनगर की तरफ से एक ग्रे कलर की ब्रिजा आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने का इशारा किया गया तो रुकती नहीं, तेजी से पीछे करते हुए भागने का प्रयास करती है, फिर आगे बढ़ती जिससे वह बाएं साइड में गाड़ी लड़के उसमें बैठे जो सवार होते भागते तेजी से पीछे की तरफ। पुलिस टीम द्वारा शक के आधार पर इन अभियुक्तों का पीछा किया जाता है, जिस पर एक अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है, जिससे एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। उसके द्वारा नाम पता पूछने अपना नाम गुड्डू बताया, तथा दूसरा अभियुक्त भागता है जिसे पुलिस टीम द्वारा कॉमिंग करते हुए उसे पकड़ा जाता है, जिसे अपना नाम छोटू बताया।
0: और अब बात दिल्ली में हुए सत्याकांड की से लेकर मणिपुर तक आक्रोश है। दिल्ली के किलोखरी गांव में मणिपुर के म्यूजिक टीचर सी विक्रम सिंह की हत्या मामले में इम्फाल में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। मणिपुर के सीएम ने दिल्ली के सीएम को चिट्ठी भेजकर त्वरित इंसाफ की मांग की है।
2: हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां और इंसाफ की बुलंद आवाज, तस्वीर मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कांगला की है। दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के मशहूर गिटारिस्ट चोंगतम विक्रम सिंह की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोग कल इम्फाल में कैंडल लाइट मार्च के लिए इकट्ठा हुए। विक्रम को श्रद्धांजलि देने के साथ विक्रम की हत्या के गुनहगारों को सख्त सजा देने की मांग की गई। चोंगतम विक्रम की हत्या पर दिल्ली से इम्फाल तक माहौल गर्म है। हत्या को लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कल केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा सनलाइट थाने पहुंचे और वहां इकट्ठा नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया
3: और FIR भी 302 IPC की पुरानी वाली IPC के 302 और उसके साथ जो एलाइड सेक्शंस हैं उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट धारा लगाते हुए पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले हमारे मणिपुर के सभी भाइयों बहनों के लिए, न केवल मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के सभी भाइयों बहनों के लिए एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मोदी जी की सरकार का मंत्री होने के नाते भी, दिल्ली का सांसद होने के नाते भी, दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी, कि हमारे सभी नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन बिल्कुल सेफ हैं दिल्ली में। उनको किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, फियर की आवश्यकता नहीं है। जितनी दिल्ली हम सब की है जो दिल्ली में पैदा हुए हैं, उन हमारे नॉर्थ ईस्ट के आए हुए भाई बहनों की भी, अन्य प्रवासी साथियों की भी दिल्ली उतनी ही है।
2: दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिले तो इम्फाल में बीजेपी की राज्यसभा सदस्य शारदा देवी ने विक्रम के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस पर लोगों से राजनीति ना करने की अपील की।
4: इतना दुख खबर सुनने के बाद जो हम इसको पॉलिटिकलाइज करके जो राजनीति में उतर के इसको लेके काम करना हमको अच्छा नहीं लगता है। ये हम सब राजनीति शोर के, ये जो हमारी लड़का का जान जो गया है उसका जो बाद में दोबारा ना हो, ऐसा हम स्ट्रेटेजी के साथ, यूनिटी के साथ हम कदम मिलके हम काम करना चाहिए।
2: इस बीच मणिपुर के सीएम वाई खेमचंद सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भेजी है। मणिपुर के सीएम ने इस मामले की समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच के साथ त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली में उन जगहों पर सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है जहां नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं। दिल्ली में मणिपुरी म्यूजिक टीचर की हत्या अपराध की एक आम वारदात नहीं बल्कि ये सियासी रूप से भी बेहद संवेदनशील मामला है, लिहाजा पुलिस से सरकार तक एक्शन में है। वारदात की तुरंत बाद ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात उज्जैन की, जहां पर सिंघास 2026 से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस अभियान के रास्ते में हनुमान मंदिर आ गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर तो टूट गया, लेकिन प्रशासन बजरंग बली की मूर्ति को टस से मस नहीं कर पाया।

0: ये उज्जैन है, महाकाल की नगरी, जहां एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
1: और मास्टर प्लान रोड है और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है, तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। और धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
0: प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें।
2: हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर के लिए बाबा यही रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं।
3: मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए
4: और यहाँ से हटना नहीं चाहिए। बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर।
0: इस पूरे विवाद के बीच इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसे खंडित होने का डर है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना संभव है।
5: ये जो आस्था है हनुमान जी के पर जो रामायण से आती है, वो जनता में बदमूल है और वो आस्था जो है वही उस स्थान और देवता को महत्वपूर्ण बनाता है।
0: अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सिंहस्थ से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पॉल सिंह, उज्जैन आज तक।
6: और अब बात बिहार की बाढ़ की करेंगे, जहां पर नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी बेहद गंभीर हैं। राज्य के 14 जिलों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
7: चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, गांव डूबे, घर डूबे, खेत डूबे, रास्ते डूबे। बिहार में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बनी हुई है। राज्य के 14 जिलों में करीब 35,89,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भागलपुर, पटना, मुंगेर, समस्तीपुर में बुरा हाल है। सड़कों पर करीब 2 फीट पानी बहता दिख रहा है। जन सैलाब के तेज बहाव में आवाजाही को लोग मजबूर हैं। पटना के दीदारगंज में बाढ़ का पानी ट्रैक्टर यार्ड में घुस गया है। यार्ड में खड़े कई ट्रैक्टर पानी में डूब गए हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ट्रैक्टर्स आधे से ज्यादा पानी में समा गए हैं। मुंगेर में गंगा का जल स्तर घट रहा है लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर है। जिले के 6 प्रखंडों के करीब 100 गांव और लगभग 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खेत, सड़क और घर सब जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग थर्माकोल से बनी जुगाड़ की नाव के सहारे जरूरी सामान ला ले जा रहे हैं। कई लोग 4 फीट गहरे पानी में उतर कर आने जाने को मजबूर हैं, तो कहीं बाढ़ के चलते बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है। मुंगेर के कई शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। लोगों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिल रही। इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। लेकिन बाढ़ के बीच बेगूसराय से दर्दनाक खबर भी सामने आई है। दो अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज बहाव की चपेट में आने से एक बुजुर्ग के बहने की खबर मिली है। कहीं लोग घर छोड़ रहे हैं तो कहीं पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। प्रशासन राहत का दावा कर रहा है लेकिन जमीन पर चुनौती बड़ी है। मुंगेर से गोविंद कुमार, समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात गंभीर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर करीब 2 फीट पानी भर चुका है, जिसके चलते प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है। भवनाथपुर चौक के पास कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूब गई। यहां 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। बहाव तेज है, इसके बावजूद लोग जरूरी काम के लिए इसी पानी के बीच आने जाने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। बाढ़ के चलते लोगों की परेशानी बढ़ रही है। देखिए भागलपुर से ग्राउंड रिपोर्ट।
8: इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये नेशनल हाईवे नंबर 80 है। यानी कि ये नेशनल हाईवे है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा का पानी जो है वो पूरे हाईवे पर जो है वो चढ़ गया है, जिसके वजह से इस हाईवे पर अब गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इसे खतरनाक मानते हुए इस NH पर गाड़ियों का आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया है। और आप तस्वीरें देखिए क्या हालत हो गई है नेशनल हाईवे की, और आसपास जो है हाईवे के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से गंगा का पानी जो है वो लबालब है, और लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि राइजिंग ट्रेंड पर है इस वक्त गंगा, जिसकी वजह से अब नेशनल हाईवे पर आप देखिए जहां मैं खड़ा हूं 1.5 से 2 फुट का जो है वो पानी यहां भर चुका है, और आगे भी यही हालात हैं। और ये हाईवे जो है NH काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरे पीछे आगे फरक्का झारखंड पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, तो वहाँ पर अब देख लीजिए किस तरीके से गंगा का पानी इस नेशनल हाईवे पर चढ़ चुका है। ये तस्वीर दिखा रहा है कि अभी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर, आज तक।
6: और इस बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या के कारण हवाई यात्रियों के लिए भारी मुसीबत की स्थिति है। 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट रडार 24 के मुताबिक कल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या की वजह से पूरे ब्रिटेन में हवाई यात्रा अस्त व्यस्त हो गई। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद यात्री घंटों तक एयरपोर्ट और टर्मिनल्स पर फंसे रहे। ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने बताया कि शाम तक उन्होंने अपने फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की समस्या को ठीक कर लिया था, लेकिन देरी का असर यूके के 15 एयरपोर्ट्स और उससे आगे तक महसूस किया गया। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।

निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन, पिछले दो दिन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग को गिराने का काम जारी। शुद्धिकरण विभाग प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज से दो दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर में नितिन नवीन लेंगे पार्टी की मीटिंग। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या मामले, मणिपुर में आक्रोश, इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली की सरकार को लिखी है चिट्ठी। ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किलों का मंगलवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ाने। एनएटीएस बोला अब हालात सामान्य। बिहार के 14 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। भागलपुर, भोजपुर, बक्सर में हालात बिगड़े। लालू बोले सरकार का खजाना खाली।

0: दिल्ली में स्थित निकेतन में गिरी इमारत के बगल वाली बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। दिल्ली में 24 अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बड़ा एक्शन। दो दिन में कई अवैध बिल्डिंग्स पर हुई कार्रवाई। स्थित निकेतन हादसे के बाद भगत सिंह कॉलेज के पास मौजूद पीजी को कई छात्रों ने किया खाली। स्थित निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में खूनी खेल। रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सर में मारी गोली, हालत नाजुक। मेरठ में पूर्व मंत्री आरजी याकूब ने बेटे पर तमंचा लेकर दबंगई का आरोप। पड़ोसी के घर पहुंचने का सीसीटीवी वायरल। फिरोज उर्फ भूरा पुलिस हिरासत में। गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक। छात्रों के दौड़ाने पर भागता दिखा स्टाफ। गोरखपुर में धरना दे रहे छात्रों को घुड़की देते दरोगा का वीडियो वायरल। दरोगा ने कहा, बता दे रहा हूं डंडा कर दूंगा। जूनागढ़ में बेकाबू डंपर ने कार को मारी टक्कर। रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे दो लोग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के दो शूटर्स का हाफ एनकाउंटर। 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली में हिमांशु भाव गैंग के 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव से मचा हड़कंप। कई लोग प्रभावित। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। एमपी के श्योपुर में 7 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ा सांड। 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर के घर के सामने अचानक दिखा मगरमच्छ। नाले के रिहायशी इलाके में पहुंचने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। बिहार में बाढ़ का कहर जारी। गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद पटना में गंगा नदी अब भी खतरे के निशान के पार। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर घटा, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर। बढ़ रही है नदी, बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित। कई गांव टापू में तब्दील। नेशनल हाईवे किनारे लोग रहने को मजबूर। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में घुसा गंगा का पानी। हॉस्टल तक पहुंची नदी। छात्रावास खाली कर घर लौटे स्टूडेंट्स। गंगा के बढ़ते जलस्तर से भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर। एनएचएटी पर पानी चढ़ने और ग्रामीण सड़कों के डूबने से कई इलाकों में आवागमन प्रभावित। पटना में पानी में डूब गए सैकड़ों चमचमाते ट्रैक्टर। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर 2 फीट पानी, आवागमन प्रभावित। दानापुर में भीषण बाढ़ की चपेट में कई इलाके, चारों तरफ पानी पानी। संकट में आई कई जिंदगियां। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। शव यात्रा सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार में। बीकेसी के जियो वर्ल्ड प्लाजा में फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर पहुंचा युवक। कोर्ट में वकील बोला, ठगी का शिकार हो सकता है आरोपी। पीएमओ की फर्जी आईडी, बॉडीगार्ड और 32 बोर हथियार के साथ 24 साल का युवक गिरफ्तार। कोर्ट में बचाव पक्ष ने साजिश का दावा किया। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के तोहफा, अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवाएं। सीएम योगी ने कहा, यूपी में विकास पर एसपी कांग्रेस वाले उठाते हैं सवाल। अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। रामलला के दरबार में टेका माथा। हनुमानगढ़ में विधि विधान से पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया जोर। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीती शाम राहुल गांधी को लेकर लखनऊ इंडिया फ्लाइट का गो अराउंड। दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग। तेज हवाओं के दबाव के चलते AI-1717 ने किया गो अराउंड। राहुल गांधी समेत सभी यात्री सुरक्षित। शुद्धिकरण मामले में हल्द्वानी नैनीताल में केस दर्ज। अज्ञात के खिलाफ FIR। दिल्ली में भी संसद मार्ग थाने पहुंचे कांग्रेस के कई नेता। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाने वाले गुलजार की आत्महत्या पर गर्म हुई राजनीति। बीजेपी का सीएम मान पर सीधा अटैक, कहा कुर्सी छोड़े विफल मुख्यमंत्री और चीमा। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट में एंट्री पर सवाल। बीजेपी सांसद बोले, ईसीआई की प्रक्रिया का किया पालन। लंदन में शिंदे को 3 बड़े सम्मान। महाराष्ट्र बदले सियासी समीकरणों के बीच मजबूत होगी दावेदारी। जालना में धुले सोलापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मराठा आंदोलनकारियों ने एक बार फिर रास्ता रोको आंदोलन किया। जालना में शिवसेना शिंदे गुट के इंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने मनोज अरांगे से की मुलाकात। सेहत का ध्यान रखने की अपील की। पालघर में रिलीफ हॉस्पिटल मारपीट मामले में शिवसेना की बड़ी कार्रवाई, 7 पदाधिकारी निलंबित। बंगाल में डीजे बैन पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, ममता करती तो हिंदू विरोधी कहलाती। संजय राउत की एकनाथ शिंदे को सलाह, बीजेपी में कर लें अपनी पार्टी का विलय। तमिलनाडु में टीवी के कांग्रेस में बड़ी तकरार के बीच आज गठबंधन। सहयोगियों से मिलेंगे सीएम विजय। तमिलनाडु की सरकारी कंपनियों पर 2.25 लाख करोड़ का घाटा, 22 कंपनियों की पूरी नेटवर्क खत्म। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की 73 सरकारी कंपनियों में से 36 पर 2.25 लाख करोड़ का संचित घाटा है। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को झटका, तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया निर्देश। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर 9,200 क्यूसेक, कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। कर्नाटक महाराष्ट्र में ईडी का एक्शन, सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विकास, विरासत और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर दिया है फोकस। मथुरा, काशी, अयोध्या के लगातार दौरों के साथ विकास योजनाओं और धार्मिक पर्यटन पर सीएम योगी का जोर। समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी फिलहाल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित। अखिलेश यादव की पीसी पर लगातार हमला। कौशाम्बी में कार सवारों की दबंगई, बाइक टच होने पर युवक को पेट्रोल पंप पर पीटा। कानपुर में बाढ़ के पानी बहती दिखी कार, पांडू नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बरेली में बाढ़ के पानी से करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरी, टंकी गिरने का वीडियो वायरल। सूरत के श्याम संगनी टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, हाइड्रोलिक मशीनों से आग पर काबू पाने की मुश्किल। नागपुर के पब में एंट्री को लेकर विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब पर आग लगा दी, सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 2 गिरफ्तार। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप से महिला 200 सोने की अंगूठी लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में झमाझम बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। सूरत में रेल बनाने के चक्कर में रेलवे ओवर ब्रिज से नीचे गिरा युवक, नीचे खड़ा ऑटो रिक्शा पर गिरने से बची जान। जयपुर में चोर ने पुलिस को दिया ऐसा चकमा कि पुलिस से चकरा गई, सीसीटीवी ने खोला पूरा राज। नागपुर में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे युवक, 1 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। कानपुर में सीएनजी भरवाने को लेकर दरोगा, पेट्रोल पंप कर्मचारियों में भिड़ंत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में यमुना से छलांग लगा रहे बच्चे, हेलीपैड बना खतरनाक स्टंट का डा, वीडियो वायरल। जालौन में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर मारी गोली, फिर चाकू से गोदा, गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दर-दर उठती, दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट, 8 से 10 युवकों ने 12वीं के 4 छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी वायरल। दावणगेरे में कार की चपेट में आया तेंदुआ, रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अधिकारी ने तेंदुए पर किया हमला। समस्तीपुर में ट्रेन में महिलाओं का चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कई गिरफ्तार। हरिद्वार में दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सिवनी घर बैठे बाथरूम में बैठे 10 फीट लंबे अजगर को देखकर घर वाले हैरान, मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड्रॉयड डिवाइस से, पैकेट खोलते ही निकला गोबर। गणेश चतुर्थी को लेकर झांसी के बाजारों में बड़ी रौनक, बाप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। घर पर 8 साल की गणपति बम्पा की मूर्ति बना रही है दिल्ली की लड़की रुचि, इको फ्रेंडली विसर्जन से पर्यावरण को संदेश। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी के फाइनल पहुंची, भारत के लिए पद किया सुनिश्चित। शीतल का फाइनल में कजाकिस्तान की एजादा सिडान से होगा मुकाबला, गोल पर होंगी निगाहें। भारत को एक और पद की उम्मीद, ब्रॉन्ज के लिए दावा पेश करेंगी पैरा खिलाड़ी सरिता। लखनऊ की हवा देश में सबसे साफ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्वे में देश भर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सर्वे में टॉप पर है लखनऊ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वे में 2 नंबर पर इंदौर, 3 नंबर पर है जबलपुर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में नोएडा की बड़ी छलांग, 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में देशभर में 8वें रैंक हासिल। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच 30 मिनट की कनेक्टिविटी की योजना पर मंथन। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का दिया है प्रस्ताव। एक्टर डायरेक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब का गाना लॉन्च, फिल्म में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर आएंगी नजर। फिल्म प्रेम कीटाणु का रोमांटिक ट्रैक तीसरा गाना है सामने, इस फिल्म में एक्टर वीर पहाड़िया और अपार शक्ति खुराना दिखाई देंगे। फिल्म 13 साई की रिलीज डेट आई सामने, अगले साल 5 फरवरी को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। भक्ति भाव से भरपूर फिल्म हारे का सहारा बाबा, खाटू श्याम हमारा नाम की फिल्म की घोषणा। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, 32 दिन में फिल्म में ग्रॉस कलेक्शन किया 155 करोड़ के पार। ब्रिटेन में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार देर रात 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने दी जानकारी। लंदन के हीथ्रो, गैटविक और स्टेड एयरपोर्ट के साथ साथ इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स इलाके के एयरपोर्ट पर उड़ानों ने टेक ऑफ और लैंडिंग शेड्यूल में दिक्कतें आई। अमेरिका ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा, अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकर्स को किया तबाह, IRGC के हमलों में जवाब में की गई कार्रवाई। अमेरिकी सेना का दावा, आरजीसी ने अमेरिकी नौ सैनिक पोत को दो बार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। उनके जवाब में हमने पांच कच्चे तेल के टैंकर्स को नष्ट किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई से पहले जहाजों के क्रू को बाहर निकलने का आदेश दिया गया, इसके बाद टैंकर्स पर हमला किया गया। आरजीसी ने अमेरिकी युद्धपोतों की ओर से दागी जा रही मिसाइल का फुटेज जारी किया। यूक्रेन की राजधानी की समेत कई शहरों में रूस का भीषण हमला, सूबी में पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया, दो की मौत। 20 सितंबर को आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, शांति वार्ता के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी पर होगी बातचीत। हंगरी ने रूस के 10 राजनयिकों को किया निष्कासित, 10 देश छोड़ने का किया जारी फरमान, कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन पर हंगरी ने की सख्त कार्रवाई। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की मुलाकात, सर्जेई लावरोव ने कहा मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता करने के लिए हम हैं तैयार। और इस बीच बरेली में बाढ़ के पानी ने करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी को अपनी चपेट में ले लिया है। शेरगढ़ के बैरम नगर में जल जीवन मिशन के तहत करीब 3,97,00,000 रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक बनाया जा रहा है। किच्छा नदी में तेज कटान के चलते टंकी की नींव के आसपास जमीन खिसक गई और देखते ही देखते पूरी टंकी नदी में समा गई। खास बात यह है कि गांव करीब 70% घरों में पाइपलाइन और नल लगाए जा चुके हैं, लेकिन पानी पहुंचने से पहले टंकी नदी में बह गई।
1: बहुत स्पीड था बहुत स्पीड था बहुत स्पीड था
0: नौ बज गए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Papa.
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ,
5: ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
14: जेके वॉल मैक्स।
13: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
16: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान। पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे, इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।

संभल की जामा मस्जिद की तस्वीर तो आप पहचानते होंगे। यही है वो मस्जिद जिसे लेकर 2 साल पहले मंदिर होने का दावा किया गया और फिर हिंसा हुई थी। और उसी जामा मस्जिद से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह है बहाउद्दीन मस्जिद, जिसे लेकर अब प्रशासन और पुरातत्व विभाग दोनों की साझा जांच शुरू हो गई है। संभल में चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास कब्रिस्तान के पीछे की जमीन को लेकर विवाद ये है कि एसआई की संरक्षित धरोहर जामा मस्जिद के नाम दर्ज जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मुसाफिर खाने बनाए गए हैं। दूसरा आरोप है कि मनोकामना मंदिर की 1.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जमीन को वक्फ का बताकर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है, जिसमें गाटा संख्या 116 की 1980 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया है। गाटा संख्या 171 की 1600 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मुसाफिर खाने बने हैं। गाटा संख्या 171-2 की 45,400 वर्ग मीटर जमीन में से 3800 वर्ग मीटर पर भी मुसाफिर खाना बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2019 में NTCA प्रदर्शन के दौरान इसी अवैध मस्जिद और मुसाफिर खाने से निकले हथियारबंद लोगों ने पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बस में आग लगाई थी और पुलिस वालों पर प्राण घातक हमले किए थे। डीएम को दी गई शिकायत के आधार पर SDM को जांच सौंपी गई थी। उससे पहले तहसीलदार ने पैमाइश के दौरान दावा किया था कि इस इलाके में आर्य समाज मंदिर की जमीन पर भी 1 मजार और 10 मकान अवैध रूप से बना लिए गए हैं, जिन्हें हटाने को कहा जा चुका है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सत्य निकेतन हादसे में चौथी गिरफ्तारी, लीज पर हॉस्टल लेने वाले सुधांशु अरेस्ट। एमसीडी का बड़ा एक्शन, दो दिन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग को भी गिराने का काम शुरू। शुद्धिकरण विवाद के बीच उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज से दो दिन के दौरे पर रुद्रपुर में नितिन नवीन लेंगे पार्टी की मीटिंग। नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो। देश के विकास पर विपक्ष को दिखाया आग बबूला, फूफा वाले बयान पर राजनीति गर्म। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विक्रम सिंह की हत्या के खिलाफ, मणिपुर में आक्रोश, इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किलों का मंगलवार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ानें। एनएटीएस बोला अब हालात हैं सामान्य।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है इस खास पेशकश में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते कि आज क्या है स्पेशल। आगे बात होगी दिल्ली में भरभराकर गिरी मौत की इमारत के साइड इफेक्ट्स की। बताएंगे कि जर्जर पीजी पर कहां कहां चल रहा है एमसीडी का मिशन डेमोलिशन। रुक करेंगे उज्जैन का, जहां विकास बनाम हनुमान की जंग शुरू हो गई है। और बताएंगे कि गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर कैसे भगवा ब्रिगेड में ही धर्म युद्ध छिड़ गया है। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन पहले बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने इमारत गिरने वाले हादसे को लेकर चौथी गिरफ्तारी अब कर ली है। पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उससे हादसे को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग के मालिक महेश ने अगस्त 2025 में ये इमारत दो बिजनेस पार्टनर्स शुभम त्यागी और सुधांशु को लीज पर दी थी। दोनों पार्टनर्स इस बिल्डिंग में हॉस्टल डेज के नाम से पीजी चला रहे थे। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की अभी भी तलाश लगातार जारी है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी अरविंद ओझा। अरविंद, क्या पता चल रहा है इस शख्स के बारे में?
1: देखिए, ये सुधांशु है और इसके साथ एक इसका बिजनेस पार्टनर है शुभम त्यागी। ये दोनों लीज पर पीजी चला रहे थे, वो पीजी जिसकी बिल्डिंग भरभराकर गिर गई थी। दरअसल शुरुआत में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें हरिराम, उनकी पत्नी और उनका बेटा महेश, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। महेश ने पूछताछ में बताया कि दरअसल उसने ये जो बिल्डिंग है वो पीजी चलाने के लिए दो लोगों को, सुधांशु और शुभम त्यागी को, लीज पर दी थी और बदले में 1,05,000 रुपए हर महीने ये दोनों उसको देते थे, महेश को देते थे। तो ये एक खुलासा हुआ है बड़ा, और उसके बाद सुधांशु को गिरफ्तार किया गया है। शुभम फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन इससे ये संकेत मिलते हैं, जिस तरह से लीज पर दिया गया था बिल्डिंग पीजी चलाने के लिए, संकेत मिलते हैं कि सत्य निकेतन में कहीं ना कहीं जो पीजी माफिया है या पीजी का एक गोरख धंधा वो चलता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो महेश की है, उसकी माँ के नाम पर है, लेकिन उसको लीज पर पीजी चलाने के लिए दो और लोगों को दिया
0: गया। अरविंद, ये भी बताइए कि जो दूसरा पार्टनर है उसका क्या हो रहा है, उसके लिए कैसे पुलिस दबिश कर रही है?
1: बिल्कुल, देखिए, उसकी तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, और साथ ही साथ कल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी हिरासत में लिया था, जो बेसमेंट में जो काम चल रहा था उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, क्योंकि तमाम कड़ियां जोड़नी है दिल्ली पुलिस को। आखिर ये बिल्डिंग कैसे गिरी ये भी एस्टेब्लिश करना है। तो जो पूछताछ में पता चला था कि बेसमेंट में काम चल रहा था, तो अब उसके एविडेंस के लिए जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको उत्तर प्रदेश के कासगंज से हिरासत में लेकर से पूछताछ कर रही है। और कल ही ये खुलासा हुआ कि दरअसल ये जो पीजी है ये लीज पर दिया गया था सुधांशु और महेश को, जो हर महीने 1,05,000 रुपया महेश को देते थे। अब सुधांशु को गिरफ्तार किया गया है, दूसरा व्यक्ति फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है।
0: जी, शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि सत्य निकेतन इलाके में बुलडोजर एक्शन भी अब शुरू हो गया है। जहां 5 मंजिल इमारत भरभराकर गिर गई थी, उसके ठीक पास के जर्जर इमारतों पर एमसीडी का एक्शन अब शुरू हो गया है। इस इमारत की कंट्रोल डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। इस बिल्डिंग में लड़कियों का एक पीजी चलता था, ये बिल्डिंग सट के लगी हुई थी उसी बिल्डिंग से जो गिरी है, लेकिन पड़ोस की 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद इसे खाली करा लिया गया था। वहीं यहां रहने वाली छात्राएं पहले ही अपना सामान निकाल चुकी हैं। 6 सितंबर को सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी, 5 लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे के बाद एमसीडी ने प्रॉपर्टी नंबर 13 को लेकर आदेश जारी किया था और इसे आसपास रहने वाले लोगों और पड़ोसी इमारतों के लिए खतरा बताया था। दिल्ली में एमसीडी ने पिछले 2 दिन में 24 अवैध इमारतों पर कार्रवाई की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, एमसीडी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये जो इमारत गिराई जाएगी इसकी हालत कैसी है, जानकारी दें।
2: जी जी बिल्कुल अंजलि, सत्य निकेतन में तो कार्यवाही चल ही रही है इस वक्त, जब हमारी मौजूदगी मुखर्जी नगर में, लेकिन सत्य निकेतन में जहां पर जो 5 मंजिला इमारत पहले ढह गई थी उसके साथ वाली जो इमारतें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं और अब वो इमारतें गिराने की कवायद भी शुरू हो गई है। MCD के अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और इन इमारतों को गिराने से पहले जो छात्र उसमें रह रहे थे वो वहां से खाली कर जा चुके हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सत्य निकेतन की नहीं है, ये कहानी दिल्ली के कई अलग अलग कोनों की, अलग अलग इलाकों की है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुखर्जी नगर में है और मुखर्जी नगर वो इलाका है जहां पर काफी भारी मात्रा में यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो रहते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या स्थिति है, ये एक बिल्डिंग है और आज तक ने 2 दिन पहले इसी जगह से रिपोर्ट किया था और हमने आपको दिखाया था कि कैसे बिल्डिंग में दरारें आ चुकी हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे 2 बिल्डिंग्स के बीच में गैप आ चुका है और किसी भी दिन किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती थी और 4 साल से लगातार ये स्थिति यहां पर बनी हुई थी। लेकिन MCD का कोई अधिकारी यहां पर नहीं आया, लेकिन जब आज तक यहां पहुंचा और सत्य निकेतन की घटना के बाद हम रियलिटी चेक दिल्ली के अलग अलग कोनों से कर रहे थे तब हमने देखा कि यहां पर ये स्थिति पिछले काफी लंबे समय से है और अब जब हमने रिपोर्ट दिखाई उसके बाद यहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है, यहां पर इस बिल्डिंग का डिमोलिशन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं नीचे मलबा पड़ा हुआ है और साथ साथ आसपास जो जितने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इस घर के अंदर का था वो इस वक्त काट दिया गया। ये देखिए मोटी तार इस वक्त आपको जो बाहर पड़ी हुई नजर आ रही है ये इसी घर के अंदर कनेक्शन लगा हुआ था, इस घर के अंदर बिजली का मीटर भी था, उन सबको निकाला गया है और अभी इस तार को यहां पर बाहर रखा गया है। तो कार्रवाई फिलहाल MCD के अधिकारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं खंभे पर जो है अधिकारी चढ़कर बिजली का कनेक्शन भी यहां पर काट रहे हैं। लेकिन लोग जो है खासा परेशान है, लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या स्थिति है। कब से आंटी, कब से ये इमारत ऐसी, कब से
3: पता नहीं भाई मुझे कब से है, तो बहुत दिन से हो रहा है।
2: टेढ़ी है ऐसी?
3: नहीं टेढ़ी तो नहीं है, पानी के चक्कर में हुआ है बरसात में।
2: डर रहे, लगते हैं कभी गिर जाएगी?
3: हाँ तो डर तो लगता ही है डर तो लगता ही है भैया गिरने का। ये सीवर जो खराब हो रहे हैं, सीवर के कारण हो रहा है खराब ज्यादातर, ये इसलिए।
2: यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फिर होता है, यहाँ पे कुछ काम हो पाता है? क्योंकि मैंने सुना पहले भी यहाँ पर एक घर में दरार आई थी।
3: वो तो उधर आई थी कोने में
2: जी। आप भैया कुछ बताएंगे यहाँ पर क्या स्थिति?
4: स्थिति तो बहुत खराब ही है इसकी, तो पिछले 2023 से ये बिल्डिंग टेढ़ी हुई हुई है, 2023 से खाली पड़ी है, तब से कोई काम ही नहीं हुआ इसका। नाम सिटी वाले आए ना कोई गया, बस अब आए हैं हरकत में।
2: आप कंप्लेन करते हैं कोई कार्रवाई?
4: कंप्लेन तो कई बार करी गई है कि मेन तो पानी का सीजन है, पानी का पाइप लीक है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। वो आगे मलबा डाल के 10 ट्रक मलबा डाला हुआ है, पर यहाँ दिख नहीं रहा है कि 10 ट्रक मलबा डाला हुआ है इसमें
0: जी।
4: अभी भी बैठी हुई जमीन
0: जी। पीयूष, हालत कितनी बुरी है ये साफ नजर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ मुखर्जी नगर इलाके का हाल नहीं है। चलिए वापस चलते हैं सत्य निकेतन जहां वो हादसा हुआ था। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद है। अमित, कार्रवाई दिल्ली की जो है वो कई इलाकों में हो रही है जहां जहां PG का काम चलता है, लेकिन सत्य निकेतन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर साफ है कि एक्शन जो है वो उस बिल्डिंग पर भी होगा जो एकदम सटी हुई बिल्डिंग थी जिसको नोटिस दिया गया था।
5: जो कर्मी है इस काम में लगे हुए हैं, आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को तोड़
6: के दिखा रहा हूं ताकि हम अपने दर्शकों को वो चीज दिखा पाए जो इस वक्त ग्राउंड पे हो रहा है। ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है कनकलता PG जिसमें इस लगभग आप मान के चलिए 5 मंजिला इमारत के अंदर कनकलता PG चल रहा था, जिस तरह से 7 वाली बिल्डिंग में बॉयज PG चलता था। और जो 2 खिड़कियां आपको दिखाई देंगी, मैं कैमरा पर्सन सचिन को कहूंगा थोड़ा करके नीचे की तरफ लेके आ पाएंगे तो उस बिल्डिंग में आपको 2 होल्स दिखाई देंगे नीचे की तरफ। वो खिड़की नुमा इलाका था जहां से दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर से देखिए मलबा गिरना शुरू हो गया है। ऊपर एक मेकशिफ्ट बॉक्स बनाया गया था जिसको MCD के कर्मचारियों ने तोड़ के नीचे गिराया है और ऊपर हैमरिंग का काम चल रहा है हथौड़ों से। टॉप फ्लोर पे इस वक्त जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो चल रही है। MCD के जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो हथौड़ों के साथ टॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं। तो पहले छत गिराई जा रही है, वहां एक मेकशिफ्ट कमरा बनाया गया था जिसको तोड़कर नीचे गिराया गया है। जो स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर, उनको भी हटाया जा रहा है। छत तोड़ने के बाद फिर नीचे वाली फ्लोर पे आएंगे, तो ये फेज वाइज मैनर में अंजलि डिमोलिशन एक्टिविटी यहां पर चलेगी। और जिस चीज को मैं बता रहा था कि देखिए कितना खौफनाक था उन बच्चियों के लिए वो मंजर रविवार का, उसको आप इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर से भी समझेंगे। सचिन को एक बार मैं फिर कहूंगा, वो कैमरा धीरे धीरे पैन करेंगे तो आपको दिखेगा, एक तो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी आप देखिए किस तरह से दो बिल्डिंग जब आपस में एक दूसरे से चिपका के बनाई जाती हैं तो संभवतः एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और जब वो पहली वाली बिल्डिंग गिर गई है तो इसकी भी जो मजबूती है इस इमारत की वो एक तरह से आप कह सकते हैं खोखली सी हो गई है, अनसेफ हो गया है। दो खिड़कियां आपको दूसरे माले पर दिखाई देंगी खुली हुई। यहीं से प्रिया दत्त असम की वो छात्रा जो एआरएसडी कॉलेज में पढ़ती है वो मुझे बता रही थी कि कितना खौफनाक मंजर था। वो दौड़कर यहां से बाहर निकल रही थी, उन्हें साथ वाली बिल्डिंग से चीखें सुनाई दे रही थी, पैनिक में जो एक तरह से रोती हुई आवाजें होती हैं वो सुनाई दे रही थी, और वो फिर बाहर निकली, उन्हें लगा कि वो अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगी। और साथ वाली बिल्डिंग में हुआ भी वही, सात बच्चों की जान गई जो अपने बेहतर भविष्य के लिए फाउंडेशनल वर्क रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे, उन सात बच्चों की जान गई। और अब एमसीडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुंभकर्ण वाली नींद से जागी है, साथ वाली जो बिल्डिंग है जो क्षतिग्रस्त
0: जी बिल्कुल है, और ये अक्सर देखा जाता है कि एमसीडी का हथौड़ा तभी चलता है जब हादसा हो

जाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी अकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल का प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें दिल्ली के हर पीजी को रेगुलेशन के दायरे में लाने की तैयारी है। प्रस्ताव के मुताबिक पीजी संचालकों को 90 दिन के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से जरूरी NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रावधान होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हर पीजी को एक यूनिक पीजी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि PGRN दिया जाएगा। और छात्रों के लिए सबसे अहम बात, किराए की मनमानी पर भी नियंत्रण का प्रस्ताव है। तो किराया भी अहम है, सुरक्षा भी बेहद अहम है। क्षेत्र के हिसाब से किराए की सीमा तय करने के लिए रेगुलेशन कमिटी बनाने की भी बात कही गई है। पीजी संचालक अधिकतम 3 महीने की सिक्योरिटी और 3 महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी लगातार। छात्र हमारे चैनल के जरिए भी बोल रहे थे कि उनसे एक एक महीने का एडवांस और कहीं कहीं एक एक साल का भी एडवांस लेकर के रखा गया था, तो वो खाली नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी दी गई है, पीजी छोड़ने या खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस भी प्रस्तावित किया गया है। सुरक्षा पर भी सख्ती रहेगी, हर एंट्री गेट और कॉमन एरिया में CCTV अनिवार्य होगा और फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी। 15 या उससे ज्यादा छात्रों वाले पीजी में रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी जरूरी होगा। छात्रों की शिकायत के लिए GOV PG गवर्नमेंट PG पोर्टल बनाने का भी प्रस्ताव है, जहां सत्यापित PG की जानकारी, किराया, सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकेगी और छात्र गुमनाम शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। महाकाल की नगरी उज्जैन में हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ दिया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की कोशिश अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। मंगलवार शाम श्रद्धालुओं ने मौके पर एक महाआरती की, ढोल ताशे बजाए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सैकड़ों लोगों ने साफ कह दिया कि सड़क चौड़ी करनी हो या विकास हो, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता है। मामला कंठाल चौराहे से क्षत्रिय चौक तक का जो सड़क बननी है उससे जुड़ा हुआ है। सिंहस्थ 2028 से पहले इलाके को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर बन गया है।

0: ये पूरा इलाका जो है वो हनुमान भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। मंगलवार का दिन है तो मंगलवार को वैसे भी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन जब से इस मंदिर को हटाने का विरोध शुरू हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस महाआरती के जरिए आज बड़ी मांग की है हिंदू संगठनों ने और श्रद्धालुओं ने कि मंदिर की प्रतिमा जो है हनुमान जी की उसे कहीं और ना ले जाया जाए।
1: तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिर प्रशासन इसे हटाने पर क्यों अड़ा हुआ है और भक्त क्यों अड़े हैं कि ये यहीं रहेगी, क्योंकि सड़क किनारे बना यह हनुमान मंदिर अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

ये उज्जैन है, महाकाल की नगरी, जहां एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक

0: एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
1: और मास्टर प्लान रोड है और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है, तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
0: प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें।
2: हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर के लिए बाबा यही रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं।
3: मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए
4: और यहाँ से हटना नहीं चाहिए। बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर।
0: इस पूरे विवाद के बीच इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसे खंडित होने का डर है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना संभव है।
5: ये जो आस्था है हनुमान जी के पर जो रामायण से आती है, वो जनता में बदमूल है और वो आस्था जो है वही उस स्थान और देवता को महत्वपूर्ण बनाता है।
0: अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सिंहस्थ से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पॉल सिंह, उज्जैन, आज तक।
6: और आइए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां गरबा पर मुसलमानों की एंट्री पर जंग तेज हो गई है। सरकार के मंत्री और वीएचपी मुसलमानों की एंट्री के खिलाफ फरमान जारी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा एक सर्वसमावेशी उत्सव है और यदि कोई मुसलमान व्यक्ति गरबा देखने जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अमृता फडणवीस ने यह बयान मंत्री नीतीश राणे के बयान के बाद दिया है, जिसमें मंत्री ने कहा था कि गरबा उत्सव में मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
7: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत। मला वाटतं पहा साऊंड डिस्टर्बन्स जे असतात, जे अप्रूव्ह त्याची इंटेन्सिटी असते ती लक्षात घेऊन आणि जे आपल्या सरकारने, राज्य सरकार किंवा आता सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पण आहेत ते लक्षात घेऊन आपण सणवार साजरा करावे। सणवार नक्कीच आपल्याला साजरा करायचे, पण असं नको व्हायला की ज्या सोसायटीमध्ये आपण राहतो त्या लोकांनाच त्रास होत राहो। तर मला वाटतं श्रद्धा किंवा आपला धर्म हे घरात आपण जेवढं त्याला फॉलो करतो तेवढं चांगलं, बाहेर सणवारांच्या वेळेस जे फॉलो करू ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
6: लेते हैं कि इससे पहले नीतीश राणे ने क्या कहा था। तो आपको बता दें कि क्या क्या बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें हिंदू कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान की जानी चाहिए। उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। वो कह रहे हैं कि प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए ताकि किसी न किसी तरीके से सत्यापित किया जाए कि वो किस धर्म के हैं। तो अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का, जहां का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी धरने पर बैठे छात्रों को खुलेआम धमकी दे रहा है। ये बताते हुए धमकाया जा रहा है कि ये गोरखपुर पुलिस है। 25 अगस्त से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र धरने पर बैठे हैं। कल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में अनशन कर रहे छात्रों ने दोनों गेट पर ताला जड़ दिया। इसे लेकर एडिशनल प्रॉक्टर और छात्रों के बीच नोक झोंक और विवाद हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को धमकाया। वायरल हो रहे वीडियो में दरोगा जी छात्रों से गाली गलौज करते हुए और धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, ठंडा कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ। बोले पूरा फोर्स मार भी को उतारू जाने, उसको काले कलर खींच रहे हैं। शांतपुर तरीके का शांतपुर धंधा है, यही धरना भी है भाई। बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, ठंडा कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया है।
11: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
12: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
13: बिलो डिस्चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सत्य निकेतन हादसे में 5वीं गिरफ्तारी, लीज पर हॉस्टल लेने वाला सुधांशु अरेस्ट। MCD का बड़ा एक्शन, 2 दिन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले PG से सटी बिल्डिंग को भी गिराने का काम शुरू। शुद्धिकरण विवाद के बाद उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज से 2 दिन के दौरे पर रुद्रपुर में नितिन नवीन लेंगे पार्टी की मीटिंग। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों को धमकाने वाले दरोगा के वीडियो पर सियासत गर्म, अखिलेश यादव का सीधे योगी पर अटैक, धरने पर बैठे छात्रों को गाली देने का वीडियो हुआ वायरल। नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो, देश के विकास पर विपक्ष को दिखाया आग बबूला, फूफा वाले बयान पर राजनीति गर्म। ब्रिटेन से आने और जाने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए मुश्किलों का मंगलवार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी से रद्द हुई 1000 से ज्यादा उड़ानें, NATS बोला अब हालात हैं सामान्य।

0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको एक खास ऑपरेशन अपना दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में पांचवी गिरफ्तारी हो गई है। एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है, यूपी के कासगंज से इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यही काम करवा रहा था उस बिल्डिंग की बेसमेंट में जो भरभराकर गिर गई। तो लगातार इससे पूछताछ हो रही है, दिल्ली लाकर इसको पूछताछ इससे के साथ की गई थी और फिर गिरफ्तारी की गई। इस मामले में ये पांचवी गिरफ्तारी है। तीन एक ही परिवार के लोग जिनकी ये बिल्डिंग थी, उसके बाद चौथी गिरफ्तारी सुधांशु की हुई थी जिसको लीज पर ये मकान दिया गया था, ये बिल्डिंग दी गई थी, और अब उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है जो यहाँ काम करवा रहा था, बेसमेंट में काम करवा रहा था। इसको कासगंज से दिल्ली लाया गया, इससे पूछताछ की गई और इसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार उन सभी लोगों के ऊपर कस रहा है जिनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है, फिर वो चाहे बिल्डिंग के मालिक हो, जिनके नाम ये बिल्डिंग रही हो, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया हो, या फिर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कौन था, क्या काम कर रहा था और इसका क्या रोल था इस बिल्डिंग के गिरने में?
1: सनोज, ये कहिए ये आखिरी कड़ी थी इसकी, क्योंकि सनोज वो कॉन्ट्रैक्टर था जो काम करवा रहा था जहां पर अब कुछ भी नहीं है। इस जगह पर जो बिल्डिंग थी उसमें बेसमेंट में जो काम करवा रहा था वो सनोज था, और वो उसको लोगों ने आगाह भी किया था। ये बताया जा रहा है कि आस पड़ोस के लोगों ने उसे आगाह भी किया था कि जब यहाँ पर हथौड़े चल रहे हैं तो पूरी बिल्डिंग शेक कर रही है। ऐसे में उसने ऐसी किसी भी कॉल को सीरियसली नहीं लिया और लगातार वो काम करता रहा। अब इस बिल्डिंग को अगर हम देखें तो ये जो सीरीज में गिरफ्तारी हुई है, ये दिल्ली में पीजी किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, ये पूरे नेक्सस को आप देखिए क्लियर कर रहा है। बिल्डिंग किसी और की, लीज पर किसी और ने लिया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम भी कराया जा रहा है। यानी जब अरेस्टिंग हो रही, जब पूरा मामला खुल रहा है, तब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पीजी का संचालन किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो छात्र हैं उन्हें ज्यादा रकम देनी पड़ती थी, क्योंकि 1,05,000 पर तो सुधांशु और त्यागी ने इस बिल्डिंग को लीज पर ही लिया था और उसके बाद ये वो मालिक को पैसा देते थे, महेश को और उसके पिता को। अब यहाँ पर जब वो इतने पैसे आगे दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें वसूलना होगा और वसूलने के लिए छात्र। अब इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि ये बिल्डिंग तो आप देखिए खड़ी ही है, इसके ऊपर वो शेड लगा करके टीम में भी छात्रों को रहने के लिए मजबूर करते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर थी, ये पूरा नेक्सस
0: जी, और तस्वीरें भी सीधी वहां की हम आपको दिखा रहे। तो अब पांचवी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है। तो इस बिल्डिंग हादसे ने न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे के बाद अब एमसीडी के अधिकारी जागते हुए नजर आ रहे हैं और हादसे वाली इमारत से सटी जर्जर इमारत को गिराने का काम शुरू हो चुका है। इसी इमारत में लड़कियों के लिए एक पीजी चलाया जा रहा था, ये तस्वीरें हम आपके लिए वहां से सीधी लेकर आ रहे हैं। वहीं पूरी दिल्ली में एमसीडी ड्राइव चलाकर अवैध और जर्जर इमारतों की पहचान भी कर ली गई है। पिछले दो दिन में 24 इमारतों पर कार्रवाई की गई है और वहीं 30 से ज्यादा बिल्डिंग को सीलिंग और कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आज तक के ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0 से सत्य निकेतन इलाके का ऐसा सच सामने आया है जो खुलासा करता है कि कैसे पूरे इलाके में मौत के पीजी चल रहे हैं और छात्रों की मजबूरी की पूरी कीमत वसूली जा रही है। तो दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में अब एक्शन दिख रहा है। एमसीडी ने हादसे वाली इमारत के साथ वाली बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू की है। एमसीडी इस इमारत को खतरनाक घोषित कर चुकी है जिसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पिछले दो दिन में एमसीडी की टीम ने 24 अवैध इमारतों पर कार्रवाई की और उन्हें तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। करीब 7 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा दो दिन में करीब 1100 पीजी का सर्वे भी किया गया है। अब आपको दिखाते हैं एक चौंकाने वाला सत्य, ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0, जो खुलासा करता है कि सत्य निकेतन में इतना बड़ा हादसा आखिर क्यों हुआ, कैसे पूरे इलाके में मौत के पीजी चल रहे थे और छात्रों की मजबूरी की कीमत वसूली जा रही थी। आइए देखते हैं एक और बड़ा खुलासा।
2: दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्र भारी संख्या में रहते हैं, उनमें से सत्यनिकेतन भी एक ऐसा इलाका है जहां पर एक बिल्डिंग कोलैप्स के बाद लगभग 7 लोगों की जान चली गई।
3: फिजिबिलिटी यहां पे ज्यादा है, थोड़ा नजदीक पड़ता है कॉलेज के, तो इसलिए फिर सत्य में कंटिन्यू करा मैंने।
2: जिस बिल्डिंग के पास वो हादसा हुआ था, उसके साथ वाली जो बिल्डिंग है, वहां से अब लोग अपना सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं।
4: मतलब ऐसे चलने वाली कंडीशन में नहीं थे, बस हम आ गए।
2: स्थिति अभी आप घर के अंदर?
4: अभी तो ठीक है, मतलब ये कि हाँ अभी सामान ला सकते हो, बट वो कब तक हमें नहीं पता।
5: दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल डेज हॉस्टल डेथ कैसे बना, क्यों बना, अब उसका पूरा सत्य सामने आ रहा है।
6: सिक्योरिटी देने से मना कर रहे हैं। 16,000 रेंट था मेरा, 16,000 सिक्योरिटी, 3,000 से 4,000 मेंटेनेंस लेते हैं, लाइट का बिल अलग है अपार्ट। चलो लाइट का बिल ले रहे 14 रुपए यूनिट, डेली का कॉमन एरिया का 5 रुपए चार्जेस अलग लेते हैं। बच्चा अगर एक बार आ रहा है तो उसे 40,000 से 45,000 रुपए चाहिए एक बार में शिफ्ट होने के लिए, 50-60 जिससे जितना बनता है वो उतना लूटते हैं।
7: तो जो इंसिडेंट हुआ है वो हमारी जस्ट एडजेसेंट बिल्डिंग थी और अभी वहां पे भी काफी डैमेज हो गया है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, ना एमसीडी वालों की है।
5: दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में क्यों छात्र जर्जर इमारतों के घुटनदार कमरों में रहने के लिए मजबूर हैं और कैसे सत्य निकेतन में मौत के पीजी चल रहे हैं, और आज छात्र मौत बांटने वाले पीजी यानी हॉस्टल डेज की कहानी भी सुना रहे हैं।
8: चीज लाइक मतलब एक बहुत छोटा सा डब्बा सा रूम है, उसका इतना ज्यादा मतलब कोई प्राइजेस का कोई ऐसा नहीं है, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी है, तो कुछ भी मतलब मांगे जा रहे हैं जो उनका मन करता है। एंड और तो क्या ही है, मतलब ना पीजी का अच्छे से मेंटेनेंस है, वॉल वगैरह रूट्स वगैरह उसकी सारी वीक पड़ी हैं।
9: सिक्योरिटी लॉक इन पीरियड के बाद भी नहीं मिली, पीजी ओनर्स ने नहीं दी, या फिर कई बार पीजी ओनर्स फालतू के टाइम पे लाइक आपने दीवार गंदी कर दी आपकी 2,000 रुपए कट जाएंगे, आपने ये कर दिया वो कर दिया।
5: तो इस बीच सत्य निकेतन का हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी डूसू चुनाव का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस की छात्र विंग NSUI और बीजेपी की छात्र विंग ABVP दोनों ही पीजी हादसे पर गरज रहे हैं।
10: इन 18 डेज और इन 21 डेज एक टाइम लिमिट हो कि इतने में सत्यनिकेतन और हर जो स्टूडेंट सब है उनके पीजीज का ऑडिट हो जाएगा।
7: देखो जो बहुत वीक बिल्डिंग है आप उसके देखो, अगर वो नहीं चल पाएगा आगे तो प्लीज उसे हटाओ।
11: दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, क्या हम बेसिक चीजें नहीं मांग सकते हैं? हमारे कॉलेज में 91 DU कॉलेजेस में सिर्फ 20 कॉलेजेस में हॉस्टल है, क्या हम हॉस्टल नहीं मांग सकते हैं?
5: आज तक ने आपको सत्य निकेतन में चल रहे मौत के पीजी की पड़ताल यानी ऑपरेशन हॉस्टल डेथ में इलाके की सच्चाई से पर्दा उठाया था, और आज हम ऑपरेशन हॉस्टल डेथ 2.0 में पीजी को लेकर नया और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज तक ने सत्य निकेतन इलाके में एक ब्रोकर यानी पीजी में छात्रों को कमरा दिलाने वाले का स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ब्रोकर ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आज तक के खुफिया कैमरे पर ये ब्रोकर बताता है कि सत्य निकेतन में किसी भी बिल्डिंग के पास सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है।
12: ऐसा तो कोई बिल्डिंग नई ही बनी है जिसमें 2-3 लुक्स ना हो, उनको अब रिपोर्ट बनाइए। कुछ भी चीजें क्या है कि पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं सोचते है ना, चीजें पब्लिक नहीं है तो कोई मकान मालिक कुछ भी करता है। बातें न्यूज पर खूब होती है कि मकानों को ना सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलेंगे, ये मिलता कब है इसकी वजह से नहीं मिलता।
13: तो यहाँ पर हर फ्लोर का हर दूसरा मालिक है।
12: हाँ, ज्यादातर प्रॉपर्टी जैसे कोई मतलब मेरा कहने का तत्पर्य जो आपको कह रहे हैं माफिया तो है, जो एक व्यक्ति पर इको सिस्टम को कंट्रोल कर, माफिया कौन है?
13: आप बीच में ब्रोकर के तौर पर होते हैं,
12: ब्रोकर ही हो गया ना,
13: कैसे वेंडर है, कैसे फिर आप लोगों तो कुछ बनता होगा ना, कैसे आप लोगों का जीवन चलता होगा?
12: आपको बताया नहीं कि 4,000-4,500 में एवरेज मार्जिन मिलता है।
5: ये ब्रोकर खुलासा करता है कि पीजी में रह रहे छात्रों से सबसे बड़ी कमाई बिजली के कनेक्शन से होती है।
12: मेजर पैसा गर्मियों में बिजली बिल का भी होता है, महीने का 2-2.5 लाख रुपए बिजली बिल फालतू भरना पड़ता है, तो इन चीजों में होता है। अब वो क्या होता है, वो पैसा क्या होता है, वो फालतू ही जा रहा है ना, BSS को जा रहा है, उसे हमें क्या मिल रहा है, बच्चे को क्या मिल रही है?
13: कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बच जाता है। एवरेज एक वेंडर का मान लीजिए
12: 700-800 से लेकर 1500 के बीच
14: एवरेज मार्जिन होती है 1500 चला जाता है सर्दियों में, 700-800 हजार तक गर्मियों में रहता है, क्योंकि 500 रुपये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग बोले 500 रुपये यूनिट एक्स्ट्रा जो हमें पे करने पड़ते हैं 17-18 रुपये यूनिट आता है, बच्चों से 10-12 रुपये यूनिट आदमी ले पाता है, वो पैसा हमें ही अपने जेब से भरना होता है अपने मार्जिन से।
13: लेकिन ये कैसे नुकसान में कमर्शियल का 18 रुपये के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर?
14: अब बात नहीं, बाहर जो यहाँ का कोई नहीं रहने आ रहा है हमारे पास, बाहर का जो आता है जो दिल्ली गांव से आ रहा है जो कहीं से आ रहा है उसको चीज़ें नहीं पता है ना यहाँ की, वो तो ये तो बहुत सारे ऐसे भेज जाते हैं, अरे दिल्ली में तो बिजली फ्री है, ये दिक्कत है।
13: लेकिन यहाँ 200 यूनिट नहीं है दिल्ली है
14: कहीं, ये कमर्शियल ना कहाँ है,
13: यहाँ पर 200 यूनिट फ्री होता ही नहीं है
14: कहीं, नहीं कहीं नहीं, ये आपका 1 किलोवाट से 2 किलोवाट से कम कनेक्शन होना चाहिए तो ही जाएगा।
13: और अगर मीटर की बात करें तो 14 रुपए 18 रुपए तक।
5: बड़ी बात तो ये है कि सत्य निकेतन में पीजी के मालिक छात्रों से मोटी कमाई करते हैं, बल्कि पीजी के मालिक और ब्रोकर के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है।
13: बर्फ पड़ी है, आप लोग बताइए
14: 3 लाख रुपए। कैसे हो जाएगा इकाई का आप देख रहे हैं पैनिक मेंस का नतीजा, बच्चे सफर करेंगे सफर में, अब इनका लैंडलॉर्ड इकाई कहाँ से चुका है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ पैसे को,
13: क्या क्या समझ
14: इकाई को कहाँ से रिफंड कर देगा, पैसे कहाँ उसके पास, वो भी तो आगे इन्वेस्ट कर दिया आगे शुरू कर दिया, सब यहाँ ऐसे ही है, कोई ऐसा पीजी ऑपरेटर नहीं मिलेगा ना जो बहुत बड़ा अमीर परिवार से आता हो जिसके दादा परदादा विधायक हो, सब अपनी सर्वाइवल के लिए
15: अल्टीमेटली
14: वही बता रहे थे
15: 30 लाख कौन तुम्हारा
14: मकान का,
15: अच्छा
14: अब ये खाली कर दी तो आपने वो 4 लाख दिए,
15: मतलब अगर आप बिल्डिंग मैनेज कर रहे हैं तो आपको 2 लाख देना ही देना है महीने का ओनर को, और कहाँ से लाते शुरू
14: भाई, वही तो है काम कर रहे हैं अपना कुछ
15: जनरली महीने में आपको कितना कितना बन जाता है, अगर मान लीजिए लगातार चल रहा है रेंट पे खाली नहीं,
14: अगर हम अपना जुड़े तो हमारा रेंट
15: अगर हम कह रहे हैं अभी स्थिति नहीं नॉर्मल स्थिति सब अच्छा चल रहा है सब ठीक है,
14: हम तो कर भी नहीं है मैं
15: आपको, तो वैसे जनरली कितना बन जाता है महीने का
14: 25,000-30,000-40,000।
5: सोचिए कैसे छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको बता दें कि सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इलाके में करीब 200 पीजी हैं और आसपास वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और मैत्री कॉलेज जैसे संस्थान हैं। डीयू कैंपस में इतने हॉस्टल नहीं हैं कि छात्र वहाँ रह सकें। ऐसे में दूसरे शहरों से राजधानी में अपना भविष्य संवारने के लिए आने वाले छात्र मॉक के इन पीजी में रहने को मजबूर होते हैं, और पीजी की जर्जर इमारतें और भ्रष्टाचार से लबालब सिस्टम छात्रों को मौत के मुंह में झोंकने का इंतजाम कर रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है सरकार तगड़े एक्शन के नाम पर चंद अधिकारियों को सस्पेंड कर देती है, बात आई गई हो जाती है और फिर अगले हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली इस वक्त देश भर में उसकी खतरनाक इमारतों की वजह से सुर्खियों में है। सत्य निकेतन इलाके में एमसीडी पुरानी इमारतों को नोटिस जारी कर रहा है, वहीं इसकी वजह यह रही है कि छात्रों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, ज्यादातर छात्र पुरानी इमारतों में रहते हैं इसलिए उन्हें डर है कि कहीं उनका अंजाम भी रविवार के हादसे जैसा न हो जाए, इसलिए कई छात्र पुरानी इमारतों को खाली करना चाहते हैं लेकिन हॉस्टल माफिया उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धमका रहा है।
5: रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद वहां पर बाकी के छात्र इस वक्त किस हाल में हैं? इसे लेकर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह सत्य निकेतन पहुंचे। तो हम इस इमारत में गए जो इस इलाके की सबसे पुरानी और ऊंची इमारतों में से एक है, इसलिए जब छात्रों ने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उस हॉस्टल माफिया का सच सामने आया जिसके बारे में अक्सर छात्र शिकायत करते हैं।
16: ये पेंट हुआ है, ये देखने से नया लग रहा है, ये पेंट हुआ है क्योंकि ये बिल्डिंग तो 25-30 साल पुराना है पर ये हर साल पेंट होता है। पेंट होके ऐसे मतलब जो नए बच्चे आते हैं, मैं तो सेकंड ईयर से हूँ तो मेरे को तो पता है, दो साल हो गया मेरे को रहते रहते, जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है
17: कि बड़ा नया है, पीओपी किया हुआ है और ये सब है,
16: पर अंदर से ये बिल्डिंग बहुत मतलब खोखला है, पूरा ये बिल्डिंग जर्जर हो गया है।
18: हॉस्टल डेज नाम की इमारत भी बाहर से चकाचक दिखती थी लेकिन रविवार को अचानक ढह गई, इसलिए इन छात्रों ने भी जब अपना कमरा खाली करने की बात मकान मालिक से कही तो पहले उसके सुर नरम दिखे लेकिन अचानक उसने धमकाना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि उनका 1.5 लाख रुपया मकान मालिक पर बकाया है लेकिन रितु दलाल नाम की हॉस्टल मालकिन अपने वादे से पलट गई।
19: हम रूम खाली कर रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं सामान, आप हमें रेंट दे दोगे ना वापस? ठीक है, सिक्योरिटी। अभी अमन भैया वो भी नहीं बोल रहे थे देने। रेंट नहीं मांग रहे
18: सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से यहाँ रहने वाले कई छात्र छात्राएं अपने घर चले गए हैं लेकिन जिन छात्रों का लाखों रुपया रितु दलाल जैसे मकान मालिकों के पास है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो लगातार अपने ओनर से गुजारिश कर रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें धमकी के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा है।
17: ओनर का फोन आ रहा है, बात करते
16: हैं। हेलो
20: हेलो
16: आंटी।
20: हाँ बेटा, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं मेरे घर में?
16: आंटी वो
17: आंटी इनका पैसा दे दीजिए वापस। रितु जी इन लोग का पैसा दे दीजिए वापस, बच्चे परेशान हैं, इनका पैसा दे दीजिए ना वापस, इनकी मदद के लिए हम आए हैं, हम हैं मीडिया वाले, आज तक से हैं हम। आप क्यों नहीं
20: सुनिए, आप नीचे उतरिए, मैं इनका पैसा दे रही हूँ, आप नीचे उतरिए, पर मेरे घर में और भी बच्चे रहते हैं, चोरी हो जाएगी तो फिर।
17: हाँ हम चोरी करने नहीं आए हैं आंटी, हम रितु जी हमें आप इनका पैसा वापस दे दीजिए, ये बच्चे परेशान हैं।
20: सुनो आप मेरी बिल्डिंग से निकल जाइए, मैं पैसा वापस कर रही हूँ।
17: नहीं हम तभी निकलेंगे जब आप पैसा वापस करेंगे, आप इनका सिक्योरिटी और रेंट वापस कीजिए, आज तक यहीं पे बैठेगा, आप इनका पैसा वापस कीजिए।
20: इनकी सिक्योरिटी दे रही हूँ मैं।
18: आज तक के दखल के बाद एक बार फिर लगा कि छात्रों के पैसे वापस मिल जाएंगे लेकिन अचानक हॉस्टल की मालकिन ने अपना लालची मन दिखा दिया।
16: आंटी एडजस्ट कैसे हुआ, अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, आप आधा महीने का रेंट काट लो, हमें आधा महीने का रेंट तो दो।
17: 10 दिन का आप काटिए, इनका पैसा क्यों काटेंगे आप?
16: बिजली बिल हम दे चुके हैं, मेरे पास हिस्ट्री है, मेरे पास हिस्ट्री है अकाउंट।
18: दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी की वजह से बाहर से आने वाले छात्रों को इस तरह के हॉस्टल पर निर्भर रहना पड़ता है जिन्हें अक्सर हॉस्टल मालिक ठगते हैं।
16: वो बोले कि आप अपना सारा सामान पैक करके रूम लॉक करके हमें चाबी दे देना, उसके बाद आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा।
0: और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
24: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
25: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: In association with
7: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: आगे दलदल का इलाका है, भरपूशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं और बटार में देखे ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
10: पता तो चले कि किन के अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
9: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
10: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
11: है।
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अब ये जो नाराज फूफाजी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफाजी को काम मिल गया, फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ अब भारत में रेल वहां भी पहुंच रही है जहां इतने दशकों तक नहीं पहुंची थी। पहले की सरकार में बजट में एक दो ट्रेनों की घोषणा होती थी और उसके भी साल भर ढोल पीटे जाते थे, जबकि आज देश में साल भर एक के बाद एक नई ट्रेनें चलाई जा रही है। 2006 में एक विशेष कंपनी बनाई गई इस काम करने के लिए और फिर 2014 तक फाइलें ही यहां से वहां होती रही, फाइलें टेबल पे यात्रा कर रही थी। और दुर्भाग्य देखिए, इन फाइलों को भी कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर नसीब नहीं हुआ, फाइल को भी नहीं नसीब हुआ, फाइलें अटकती थी, लटकती थी, भटकती थी। जरा मेरे नौजवान सुन लीजिए, याद रखिए, 7-8 वर्ष में 1 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का पर भी काम पूरा नहीं हो पाया था। अगर उनके हिसाब से देश चलाते तो पता नहीं आपके बाद 3-4 पीढ़ियां आती तो भी नहीं होता। भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट की ये हालत करके रखी थी। आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: गेदर हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एनसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चलने लगा है तोड़ा।
1: शुद्धिकरण विवाद के बीच उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज से 2 दिनों के दौरे पर रुद्रपुर में नितिन नवीन पार्टी की मीटिंग लेंगे, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

0: अगर सुसाइड करने वाले गुलजार पर सियासत गर्म, बीजेपी और अकाली दल आक्रामक, चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री भगवंत मान।
1: नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो, देश के विकास पर विपक्ष को दिखाया आग बबूला। फूफा वाले बयान पर राजनीति गर्म।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ। सत्य निकेतन हादसे में दिल्ली पुलिस ने पीजी ऑपरेटर सुधांशु को किया गिरफ्तार। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तार। शुभम त्यागी फिलहाल फरार। पुलिस के मुताबिक महेश ने अगस्त 2025 में बिल्डिंग को सुधांशु और शुभम त्यागी को लीज पर दिया था। पूछताछ में महेश ने बताया कि दोनों हर महीने उसे 1,00,000 रुपए से ज्यादा का किराया देते थे। दिल्ली में पीजी वालों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन, किराए की भी होगी सीमा। प्रस्तावित विधेयक के तहत दिल्ली में संचालित हर पीजी का अनिवार्य पंजीकरण होगा। संचालकों को 90 दिनों के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी। बगल की कमजोर बिल्डिंग को गिराने का काम भी शुरू। दिल्ली में 24 अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन। 2 दिनों में कई अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई। सत्य निकेतन हादसे के बाद भगत सिंह कॉलेज के पास मौजूद पीजी में कई छात्रों ने पीजी किया खाली। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त एनएचआरसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने का निर्देश भी। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई।
0: नाराज ऊपर पर लगातार पीएम के अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो। देश विकास पर विपक्ष को दिखाया आग बबूला। पीएम मोदी ने कल फिर कहा था अभी जो नाराज फूफा जी हैं वो चिल्लाएंगे पर हमें तो विकास करना है। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश। इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने उच्चस्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी। मामले पर भड़के लोग। अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। रामलला के दरबार में टेका माथा। हनुमानगढ़ी में विधि विधान से पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर दिया जोर। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। बीती शाम राहुल गांधी को लेकर लखनऊ इंडिया फ्लाइट का गो अराउंड। दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग। तेज हवाओं के दबाव के चलते AI-1717 ने किया गो अराउंड। राहुल गांधी समेत सभी यात्री सुरक्षित।
1: राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर हमला। संगरूर सुसाइड केस में वित्त मंत्री के सीधा इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकारी नाकामी पर सवाल उठाने पर गुलजार सिंह को प्रताड़ित किया गया। मामले की स्वतंत्र जांच। रायबरेली में राहुल गांधी ने जनता की समस्याएं सुनी। पार्टी कार्यालय में उमड़ी भीड़। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, विरासत और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर फोकस बढ़ा दिया। मथुरा, काशी और अयोध्या के लगातार दौरों के साथ ही विकास योजना और धार्मिक पर्यटन पर भी मुख्यमंत्री योगी का जोर। समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियां फिलहाल सोशल मीडिया पर।
0: और सीधे आपको लिए चलेंगे नितिन नवीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
2: अमरीश जी जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिस अभियान की चर्चा आज आपके बीच में करने हम बैठे हैं, हमारे साथ पार्टी के मीडिया के प्रभारी माननीय सांसद अनिल बलूनी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के अपने सम्मानित बंधुगण, आज हम लोग सेवा संकल्प अभियान के विषय में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन सेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने एक हेड ऑफ द स्टेट के रूप में अपने कार्यकाल का प्रारंभ किया और पिछले 25 वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र को पकड़ते हुए पूरी तरह से अपने इस सेवा यात्रा को सतत जारी रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे कार्यकाल को हम इस रूप में देख सकते हैं कि पहले दिन से जो ध्येय वाक्य और ध्येय शब्द उनके मन में रहे, उनको हमेशा उन्होंने संकल्प में और सिद्धि तक पहुंचाने में सफल रहे। अगर हम कहते हैं कि 25 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहे, तो कहीं ना कहीं वो उनके नेतृत्व और उनकी सोच का परिणाम रहा। 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराना हो, 100 करोड़ लोगों से अधिक को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना हो, 12 करोड़ शौचालय से लोगों को और एक जीवन में बदलाव के रूप में देख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 200 करोड़ कोविड का फ्री वैक्सीन और 4 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए आवास बनाना, कहीं ना कहीं ये सामान्य घटना नहीं है, ये सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो आम लोगों के जीवन में लाने का उनका प्रयास रहा है, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प और मैं कह सकता हूं कि सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया। एक समय जब उन्होंने देश का नेतृत्व संभाला तो पूरे देश में एक निराशा, एक अंधकार का माहौल था, पॉलिसी पैरालिसिस हम कह सकते हैं, हमारे इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत की अलग पहचान बनी, भारत की साख सम्मान में जो लगातार वृद्धि हुई, ये कहीं ना कहीं इसका परिणाम आज देश विश्वभर में भारत की प्रभुत्व को, भारत के सम्मान को जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में बढ़ा है, ये हम सबने देखा है। 37 देशों से अधिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये कहीं ना कहीं ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों को उनके पुरुषार्थ का सम्मान है। आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं तो एक समय यह भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा, आम आदमी को आतंकवाद का डर, भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया, आज हरेक भारतीय अपने आप को सुरक्षित और सम्मान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। हमने नक्सलवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने का काम किया और 200 से अधिक जिलों को जो प्रभावित जिले थे आज नक्सल मुक्त जिले के रूप में पूरी तरह से आम जनजीवन के जीवन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को एक पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया। अगर आज हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो जहां एक ओर देश का युवा निराशा के वातावरण में था, उसको आशा और उम्मीद के वातावरण में लाकर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया। और हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से, जहां भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरे, और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि आज भारत खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है। कल तक बात होती थी वुमेन डेवलपमेंट की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे लाया और आज बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ से जो सफर का शुरुआत हुआ वो आज लखपति दीदी तक पहुंचा और हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उसका अधिकार और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारा चल रहा है।

का प्रयास हमारा चल रहा है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का सतत भाव सेवा का रहा है। गुजरात से जो सफर उन्होंने शुरू किया, नर्मदा बांध के माध्यम से गुजरात के लोगों को घर घर तक पानी पहुंचे, ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से गांव गांव तक बिजली पहुंचे और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात इन्वेस्टमेंट से लेकर निवेश के रूप में अलग सेक्टर से आगे बढ़े, पूरा एक विजन उन्होंने गुजरात के लोगों को दिया। और हम कह सकते हैं कि गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा वो अपने आप में सभी राज्यों के लिए एक कम्पिटिटिव मॉडल बना, और केवल गुजरात के शहरों को नहीं, गुजरात के गांवों को भी विकास करने का संकल्प को उन्होंने पूरा किया। हम जब आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया और उस आपदा की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना के कालखंड में खड़ा था, तो उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी, वोकल फॉर लोकल की कल्पना दी, और कहीं ना कहीं पूरा देश उससे जुड़ा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें, मैन पावर से मैन्युफैक्चरिंग पावर की बात करें, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर की बात करें, कृषि विभाग से कृषि और किसान कल्याण विभाग की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें। मैंने आज इन सेक्टरों की चर्चा इसलिए की क्योंकि जब आप उनके पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो इन सेक्टर्स में किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया, किस प्रकार से देश को अग्रणी भूमिका में लाने का प्रयास किया, वो हम सबके सामने है। लेकिन उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। अगर मैं आज उस दिशा में कहूं तो हम कह सकते हैं जब इस देश को क्षेत्र और वर्ग में बांटने की बात हुई, उन्होंने ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के को समान अधिकार रखकर, उनकी सामने रखकर योजनाओं का निर्माण करने की बात कही। मैं मानता हूं ये ऐसी सोच थी जो हर एक भारतवासियों को जोड़ रहा है। आज जब एक समय था हमारी सीमाओं के गांव को लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में जो पड़ने वाले गांव हैं वो अंतिम गांव हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा को भी परिवर्तित किया, उन्होंने कहा वो हमारे प्रथम गांव हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच बदलाव की बात है, मैं मानता हूं कि ऐसे उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले कड़ी में 17 सितंबर को, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन को हर वर्ष हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम हम सेवा पखवाड़ा के रूप में करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे तो जहां उन्होंने सेवा के भाव से समाज को जोड़ते हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए, इसका उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और इस वर्ष भी इस रूप में ही मनाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा उसमें पार्टी कार्यकर्ता जनमानस को साथ लेकर हम इन कार्यक्रमों को सफल करने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिन 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो हर साल हम लोग करते हैं, और इस साल भी हमारा मानना है कि रक्तदान महादान के रूप में हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और हमारे युवा, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन 17 सितंबर को शाम में 7 बजे आशीर्वाद का दिया। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठावान जनसेवा की है उसके प्रति आभार व्यक्त हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य, प्रत्येक परिवार, विशेष करके हमारे जितने लाभार्थी रहे हैं, उन सब के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप ये दीप
जलाए जाएंगे।

0: और यह दीप इस बात का प्रतीक होगा कि जहां एक ओर जनसेवा के प्रति उनके आभार व्यक्त करेगा, वहीं विकसित भारत 2047 के विकसित संकल्प को भी प्रदर्शित करेगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान हर साल हम लोग करते हैं, इस वर्ष भी पूरे इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान को भी हम उसी रूप से करेंगे। इसके बाद मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा के माध्यम से, जो पिछले सेवा और समर्पण के जो 25 वर्ष रहे हैं, इसमें विकसित भारत के कल्पना जैसे विषयों को लेते हुए हम लोग पूरे इस एक महीने के कार्यक्रम में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में सभी स्कूलों में चित्रकारी, ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें उत्कृष्ट चित्रों को और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और अन्य हमारे केंद्रीय मंत्री के स्तर पर उनका प्रमाण पत्र देने की योजना है। नमो सेवा अन कही कहानियां, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 25 साल के कार्यकाल रहे हैं, इसमें कई एक के जीवन में बदलाव आया है और कई ऐसे योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं का असर समाज के हर वर्ग को मिला है। उन योजनाओं को भावनात्मक रूप से संगीतपूर्ण नाटक और नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना है, जिसको हर गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आंगन मिलन सेवा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों का सम्मान हमेशा किया है और उसी विषय को देखते हुए हम लोगों ने भी आंगन मिलन सेवा का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी के अपने बच्चे, उनकी माताओं से जुड़ी मोदी सरकार की पोषण, स्वास्थ्य और महिला संबंधित योजनाओं की जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी। साथ ही साथ उनके बीच में मनोरंजन की गतिविधि के अन्य कार्यक्रम हर आंगनबाड़ी केंद्र पर करने की योजना हम लोगों ने ली है। साथ ही साथ सेवा की कहानी, विभिन्न योजनाओं से हमारे लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, उन जीवन के जिनके जीवन में बदलाव आया है वो उनकी कहानियों को भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से कितने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उसको ये कार्यक्रम सेवा की कहानी के माध्यम से हम लेके आएंगे। सेवा ज्योति कलश यात्रा, विकसित भारत का संकल्प, 7 अक्टूबर 2026 को जिस दिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जनसेवा समर्पण के 25 साल पूरे होंगे, उस दिन देश भर के सभी जिलों में सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में जहां 25 वर्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी, वहीं इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पदयात्रा, बाइक रैली, साइकिल रैली के माध्यम से हम सभी हरेक जिला के मुख्यालय पर जमा होंगे और वहां इस संकल्प को लेंगे। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त करीब 1000 स्थानों पर विकसित भारत का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ साथ युवा मोर्चा के माध्यम से एक अलग यात्रा का भी प्लानिंग हम लोग के बीच में है। इसमें 2 यात्राएं निकलेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान वडनगर से आज के उनके जो कर्मभूमि है बनारस, तो वडनगर से बनारस के बीच में सेवा यात्रा निकलेगी और उसी प्रकार से बनारस से वडनगर के लिए भी सेवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 10 अलग अलग टोलियों में निकलेगी और ये पूरी यात्रा में का नेतृत्व हमारे युवा करेंगे। प्रत्येक टोली में 50 युवा साथी हमारे होंगे जो पूरे कार्यक्रम के रूट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जहां हटकेश्वर महादेव वडनगर में जो हमारे स्थान है, वहां से काशी विश्वनाथ दोनों ही स्थानों पर जलाभिषेक कर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे चौपाल में रहने वाले गांव में चौपाल में रहने वाले लोगों से संवाद करना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लोगों के साथ संवाद करना, किसानों के साथ संवाद करना, हमारे शहर के जो युवा क्लब्स होते हैं उनके साथ संवाद करना, इस प्रकार के करीब 7-8 कार्यक्रम प्रत्येक दिन ये टोली करेगी और ये करीब 20 यात्राएं अलग अलग रूट से करीब 10 राज्यों से होकर गुजरेगी। इन सभी 10 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम की टोली बनाई गई है और इन सभी कार्यक्रमों को ये टोली अंजाम देगी। 20 दिनों की इस यात्रा में प्रत्येक दिन 5 से 7 कार्यक्रम करने की योजना है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, जनता का फीडबैक लेना, चौपाल के माध्यम से जनसंवाद और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जो उपलब्धियां रही हैं उसकी भी चर्चा करने का कार्यक्रम इस यात्रा के माध्यम से होगा। साथ ही साथ सेवा मेरा योगदान। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना योगदान इस देश के विकास में देना चाहिए और इसी के तहत सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जन भागीदारी के माध्यम से 25 विभिन्न थीम पर, उसके 25 अलग अलग विषय हैं, उन विषयों पे हर व्यक्ति से आग्रह किया जाएगा कि उस सेवा मेरा योगदान में अपना समय श्रम दान के रूप में, मन दान के रूप में दे। इस पूरे कार्यक्रम को, सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम को हम क्या परिवर्तन लाए हैं, पहले क्या था और आज की स्थिति में हम क्या परिवर्तन ला पाए हैं, इस तरह से हर व्यक्ति अपना श्रम दान कम से कम देगा और सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रम दान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से, इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है जिससे में वो अपने जुड़ाव के साथ काम कर सकते हैं। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने का, और हम मानते हैं कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पूरी तरह से पहुंचे, तो जितने भी हमारी योजनाओं के लाभार्थी अगर कुछ बचे हैं तो उनको हम ब्लॉक स्तर पर उसी दिन आवेदन लेकर समय सीमा के अंदर उन योजनाओं को उनको देने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस शिविर में स्वास्थ्य शिविर भी और अन्य योजनाओं की जानकारी का भी कैंप लगाया जाएगा। सेवा के रंग राष्ट्र के संग। देश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मानव समूह रंगोली के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय प्रतीक, विकसित भारत के संदेश, ये सब को प्रदर्शित करते हुए ये ह्यूमन रंगोली बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार, महिला बहनें, हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें, विद्यार्थी और व्यापक स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस मानव समूह रंगोली को मुख्य रूप से जो सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विभिन्न योजनाएं हुई हैं उनको भी इस ह्यूमन रंगोली में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। एक विशेष कार्यक्रम सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज भी हम लोग ले रहे हैं। देश के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और कॉरपोरेट इनोवेटर्स के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है। इस पूरे कार्यक्रम को इनोवेशन चैलेंज के रूप में आयोजित किया जाएगा। राज्यों को यह कहा गया है कि आप अपने राज्य के कुछ इनोवेशन चैलेंज को आप निकालिए, जो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और पूरी तरह से इसमें कई शिक्षण संस्थानों को, स्टार्टअप नेटवर्क्स को और इनक्यूबेशन सेंटर्स को जोड़ा जाएगा और उनको ऑनलाइन आवेदन लेकर इसमें भाग लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। चयनित इनोवेटर्स के राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा और जहां उनकी लाइव प्रदर्शनी, लाइव डेमो और युवा संवाद के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और इसके विजेता को पुरस्कृत भी करने की योजना है। हमारा आखिरी कार्यक्रम सुशासन संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। हम कह सकते हैं जब 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के बाद से जन हमारे जो पंचायती स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे निकाय स्तर के, उनको जो सहभागिता मिली है योजनाएं बनाने में, क्रियान्वयन करने में, तो कहीं ना कहीं आज सरपंच से लेकर हमारे मुखिया और वार्ड के सदस्य तक ये मानते हैं कि एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्होंने इन जनप्रतिनिधियों को जोड़ा है। और हम मानते हैं कि जब 25 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं तो हम उन जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं। और इसके तहत हम लोगों ने सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना बनाए हैं और ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प प्रस्ताव के रूप में होगा। और इसमें हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को पूरे देश में 4 से 5 भागों में अलग अलग स्थानों पर करने की योजना है। तो ये पूरे कार्यक्रम जो मैंने आपसे आज चर्चा किया है, ये कार्यक्रम करोड़ों लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना रही है उसके अनुरूप इस कार्यक्रम को हम लोगों ने डिजाइन किया है। और हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता आम जन मानस इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम समाज में भी भेजने का प्रयास करेंगे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के जो 25 साल हैं वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। और हम कह सकते हैं कि आज देश और दुनिया में हमारे नेतृत्व का जो सम्मान है वो देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से भी ये कार्यक्रम जनमानस तक जाएगा।
1: कुछ पत्रकार साथियों के हम सवाल ले पाएंगे। आमोद राय जी,
2: बाप रे,
0: मैं आपको काम करता है तो हम लोग तो फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, तो इसलिए तो हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं निरंतर भाव से चलती हैं। और उसी क्रम में चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, मैं बंगाल भी इसी महीने जाने वाला हूं, तो ये हमारे कार्यक्रम निरंतर भाव से चलते रहते हैं।
1: पवन गौड़
3: जी, आजकल नाराज युवाओं का भी जिक्र लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री कई सारे रैलियों में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस सेवा संकल्प अभियान के तहत नाराज युवाओं का भी पहुंचने का कोई कार्यक्रम है क्या?
0: मुझे
4: खबरों का सिलसिला जारी, आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर डालते हैं सर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सरकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा मोदी के जन्मदिन पर चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां।
1: सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में 24 इमारतें गिराई जा चुकी हैं और हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी हथौड़ा चलने लगा।
0: गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों को धमकाने वाले दरोगा के वीडियो पर सियासत तेज, अखिलेश यादव का सीधे योगी पर अटैक, धरने पर बैठे छात्रों को गाली देने का वीडियो वायरल।
1: मानसरगढ़ पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी पर सवाल करने पर धमकी और टॉर्चर। वित्त मंत्री के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाकर सुसाइड करने वाले गुलजार, चौतरफा घिरे अब सीएम मान।
0: नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो, देश के विकास में विपक्ष को दिखाया अकबूला, फूफा वाले बयान पर राजनीति गर्म।

0: ब्रेक पर जाने से पहले आप नितिन नवीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से विकास की ओर उनकी सरकार बढ़ रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश आपको दिखाने से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन ने दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से पूरा देश जुड़ा हुआ है।
1: तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा और कैसे कहां कहां पर ये पूरे कार्यक्रम कैसे आयोजित होंगे उसकी पूरी जानकारी दी। एक बार फिर से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं।
2: देखिए, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, जो व्यक्ति का जिन्होंने गूंज देने का प्रयास किया है उनके आवाज में दम कितना है। बच्चों के आवाज को गलत दिशा देने का प्रयास करने वाले लोग कभी भी, उनके अगर अपने आवाज में दम रहता तो जब उनको मौका मिला था तो इन देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का युवा आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके गूंज का असर केवल उनके कार्यकर्ता तक ही पहुंचेगा। देश के युवा और जनमानस मोदी जी के साथ हैं।
3: मेरा मैं कुछ और लोगों के साथ लूंगा, लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस विषय पे पहले करें, उसके बाद बाकी वो भी हम लेंगे, लेकिन पहले शुरू में इसमें प्रज्ञा
2: मैं मानता हूं कि मैं आज हल्द्वानी जा रहा हूं, मेरे जितने भी साथी वहां आएंगे मैं इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर हल्द्वानी के पवित्र भूमि से दूंगा।
3: नीरज पांडे जी,
4: पिछले दिनों जो आपने यूथ का आंदोलन देखा, तमाम माना जा रहा है कि बीजेपी उसके प्रेशर में है, उसकी वजह से है आप लोग काउंटर अटैक करने।
2: मुझे लगता है कि आप पिछले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा देखिए और मुझे लगेगा कि इस साल तो विशेष है ही। हमारे प्रधानमंत्री जी एक हेड ऑफ द स्टेट के रूप में 25 साल पूरा कर रहे हैं, जो अभी तक देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। आप विश्व की तरफ देखिएगा आज तो 5 साल में भी देश के प्रधानमंत्री बदल जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पर इतना जनमानस का विश्वास है कि वो निरंतर भाव से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कोई घबराने की स्थिति में हम नहीं है। लेकिन हमारे कार्यक्रम तो साल के कैलेंडर के हिसाब से बने रहते हैं, हम चुनावी बरसात के हिसाब से कार्यक्रम नहीं तय करते। हमारे कार्यक्रम हर साल निरंतर भाव से, और जो जिस समय के कार्यक्रम की चर्चा हम कर रहे हैं ये भी कार्यक्रम हर साल हमारा होता है और इस बार और उत्साह के साथ हम कर रहे हैं।
3: पूनम पांडे, एक लीजिए।

0: Nee. नहीं, आपने जो विषय उठाया है, मैं पूरी तरह से उन छात्रों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो समस्याएं आई हैं, जो थ्रेट दिखा है समाज के सामने, उसको निश्चित रूप से हमारी सरकार एड्रेस करेगी और हम देश के युवाओं को, खास करके जो भी लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनको भारत की सरकार हमेशा हमारे एक अच्छे माहौल में उनको शिक्षा मिले, सुरक्षित माहौल मिले, इसकी चिंता हम हमेशा करेंगे। और अभी भी जो चुनौती आई है, इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: लीज मैथ्यू जी,
2: नितिन जी, यू नो वन ऑफ द प्रायोरिटीज प्राइम मिनिस्टर हैज पुट फॉरवर्ड वाज द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल। द बिल वाज ऑलरेडी पासिंग एंड देयर नाउ देयर इज अ डिमांड, सिंस इट इज स्टॉल्ड, देयर इज अ डिमांड टू डीलिंग इट फ्रॉम द डिलिमिटेशन प्रोसेस। सो दिस वाज, यू नो, मेनी ऑपोजिशन पार्टीज एंड द गवर्नमेंट हैज इट स्टिल गॉट द नंबर। डज द बीजेपी हैव एनी स्पेशल सजेशन फॉर इट टू पुश द बिल सो दैट
0: देखिए, मैं एक तो विषय थोड़ा हम कार्यक्रम पे आना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपके विषय से इतना जरूर कहूंगा, हमारा कमिटमेंट स्पष्ट है, हम महिलाओं के उसके अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो विषय हमने रखा है, हम अधिक से अधिक इस योजना का, इस कार्यक्रम का लाभ देना चाहते हैं। जो संकुचित वे में लोगों का प्रयास है, हम उस प्रयास के साथ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन लार्जर एस्पेक्ट हम सबको इसके जन भागीदारी में उनको जोड़ पाए।
1: सुचित्र
2: सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम आप इसमें कर रहे हैं, सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज युवाओं के लिए। देश में जहां एक तरफ बात ये चल रही राहुल गांधी या अन्य पार्टी की कि बीजेपी यूथ विरोधी है इस तरीके की, और आप लोग लगातार यूथ से जुड़ने के लिए अलग अलग नए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है।
0: अच्छे, मैं आपसे दो तीन सवाल करता हूं। खेलो इंडिया कब लिया गया? फिट इंडिया कब लिया गया? स्टार्टअप की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? उस समय राहुल गांधी जी कहां थे? देखिए, हमारे कार्यक्रम अपोजिशन के कार्यक्रम के आधार पर तय नहीं होते हैं। हमारे कार्यक्रम हमारे विचार के हिसाब से, हमारे विजन के हिसाब से, हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से। मैंने ज्ञान की बात की, ज्ञान की जब बात की उस समय उनको ज्ञान भी था युवाओं के बारे में, तो इसलिए हमारी चर्चा उनके प्रासंगिक शब्दों से मत कीजिए। उनकी गूंज अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए है, हमारी गूंज पूरी तरह से देश के 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ने के लिए है।
3: और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसे लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने अपने चुनावी प्लान पर अमल में तेजी ला दी है और पार्टी ने 4C प्लान बनाए हैं जिसमें 2027 के लड़ाई जीतने की कोशिश दिखाई दे रही है।
4: वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव राम मंदिर और चढ़ावा चोरी के साथ साथ जेन जी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। उधर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हैं।
3: उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच तैयार है, सियासत खिलाड़ियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है, अभी से दांव आजमाए जा रहे हैं। वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश जोर शोर से हो रही है
4: और बीजेपी ने तो अपने आक्रामक एक्शन प्लान की बदौलत चुनावी बिगुल बजा दिया है। पार्टी लगातार अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर अमल में लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। संगठन से लेकर सरकार तक तमाम कवायद शुरू हो चुकी है।

0: धर्म के प्रति अभिभूत है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
1: भगवान से नहीं करते, चढ़ावा चोरी कर लेते, चंदा चोरी कर लेते हैं।
0: सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रारंभ किया, अच्छी सड़कें बनानी प्रारंभ की, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया।
1: सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन है, ये कौन चला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग मिले हुए।
0: इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
2: अयोध्या की पावन धरती से सियासत की नई लकीर खींची जा रही है। धर्म नगरी होते हुए बीजेपी सत्ता की कुर्सी के सफर पर निकलने की तैयारी में है। ये हिंदुत्व नैरेटिव के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश है। बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। पार्टी की रणनीति है कि आगामी चुनावों के लिए प्रचार का फोकस मथुरा, काशी और अयोध्या के दौरे पर हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम धर्म नगरी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। शुरुआत अयोध्या से हो भी चुकी है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की नगरी पहुंचे। मौका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधन का था। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
0: ये विकास विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं। जैसे इनके विरोध के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन नहीं रुका, नहीं झुका, नहीं टिका और अंततः अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का प्रकटीकरण होता है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है।
2: योगी सरकार यूपी में हिंदुत्व प्लस विकास प्लस विरासत की बात कर रही है, तो बीजेपी संगठन ने भी जनाधार को और बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी नेतृत्व यूपी में जमीनी पड़ताल करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो 12 से 13 सितंबर को मेरठ दौरे पर पहुंचेंगे, तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष अवध और कानपुर का दौरा करेंगे। बीएल संतोष अवध की 82 और कानपुर क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पश्चिमी यूपी में पहला दौरा है। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरण और गुर्जर राजनीति में हलचल बीजेपी के लिए अहम चैलेंज है। इसके साथ साथ बीजेपी 4C प्लान पर भी अमल में जुटी है। 4C यानी कोऑर्डिनेशन, कैडर, कास्ट और कैंडिडेटचर पर फोकस कर पार्टी सत्ता पर फिर से काबिज होने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 चुनाव की तैयारी फुल मोड में कर रही है। विनोद तावड़े नए यूपी प्रभारी लखनऊ पहुंचते हैं और नया मूल मंत्र देते हैं 4C का, यानी कि कैडर, कैंडिडेटचर, कास्ट और कोऑर्डिनेशन। इन सभी पर फोकस किया जाएगा। कास्ट और कैडर के साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये एक अहम रोल कार्यकर्ताओं को दिखाना होगा।
2: सवाल यह है कि बीजेपी का ये 4C फॉर्मूला आगामी चुनाव में कितना गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर हारी हुई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने पर है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: बीजेपी 4C और हिंदुत्व विकास विकासत की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी बार बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को तूल दे रही है।
5: और अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले बहुरूपीय हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।
1: तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रंगों से अक्सर डरा करते हैं, लेकिन भगवान से नहीं करते हैं, चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, चंदा चोरी कर लेते हैं। इन्हें भगवान से डरना चाहिए, रंगों से नहीं डरना चाहिए। और किस रूप में जाकर के उन्होंने चंदा चोरी किया होगा, जो चंदा चोरी कर रहा होगा, चढ़ावा चोरी कर रहा होगा, वो सबसे बड़ा बहरूपिया होगा। इसलिए अपने छात्र नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, सावधान रहना बहरूपियों से, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं।
4: भाई अखिलेश ने यह भी संकेत दे दिया है कि उनका फोकस जेन जी और जेन अल्फा को उनकी पार्टी से ज्यादा जोड़ा जाएगा।
5: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि हमारे कॉलेज स्कूल में नियो कैसे बना जा सकता है, उस आधार पर मैनिफेस्टो हम बनाएंगे।
1: अल्फा जेन जी नई पीढ़ी की बहुत बात हो रही है, उनके बीच में भी नई सोच नई विचारों के साथ और समाजवादी पार्टी के यही छात्र नौजवान जाकर के उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। जब नई पीढ़ी के लोग जुड़ेंगे और जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जहां टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तमाम नौकरियां रोजगार हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सर्विस सेक्टर में डिलीवरी बॉयज भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी पा जाएंगे, उसी दिशा में पढ़ाई और हमारे कैंपस हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या व्यवस्था हो कि जहां हम नियो इंडिया बनाने में सहयोग कर सकें। हमें उम्मीद है कि छात्र सभा के लोग मिलकर के जब कैंपस में जाएंगे तो सुझाव भी मिलेंगे और सुझावों को शामिल कर करके हम लोग आने वाले समय में मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे।
4: और उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करेंगे। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इस वक्त मौजूद हैं। आज वो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक करेंगे। एक दिन पहले नेता विपक्ष रायबरेली पहुंचे
5: और पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी शिवगढ़ और महाराजगंज इलाकों का दौरा कर सकते हैं जो कि जल भराव से इस समय प्रभावित है। वहां पर वो ग्रामीणों से मिलेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और जमीनी हालात का राहुल गांधी जायजा भी लेंगे। तो आज दिशा की बैठक उसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे क्योंकि सांसद के रूप में वही अध्यक्षता भी करेंगे।
4: और बात पश्चिम बंगाल में जारी धर्म वाली सियासत की। बाबा बागेश्वर नवरात्रि के दौरान खान पान को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत हो रही है।
5: कांग्रेस ने अलग अलग थानों में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा है कि उनका बयान बंगाल की संस्कृति का सीधा अपमान है। कांग्रेस ने बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर प्रदर्शन भी किया है।
6: बंगाल में बाबा बागेश्वर के खिलाफ गुस्सा फूटा है, कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं, FIR दर्ज करने की मांग हो रही है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर दी है। ये शिकायत बाबा के उस बयान पर है जिसपे उन्होंने नवरात्रि के दौरान बंगाल के लोगों के खान पान पर सवाल उठाए थे।
7: पश्चिम बंगाल की हमको एक बात बहुत अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती, दिल में बहुत ठेस पहुंचती। यहाँ जब नवरात्रि आती है दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा पंडाल जब लगाए जाते हैं तो दुर्गा पंडाल के पीछे या अथवा तखत के नीचे नॉन वेज का भोजन किया जाता, गंदे गंदे भोजन पीछे बनाए जाते, हमें ये पसंद नहीं है।
6: मैं 4 दिन पहले की बात है जब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बंगाल पहुंचे थे। हावड़ा में उनका धार्मिक समागम था, उन्हें मानने वालों की भारी भीड़ थी। उसी कार्यक्रम के संबोधन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। बंगाल के लोगों को दी गई उनकी नसीहत से अब बंगाल नाराज है।
8: कोई भी आदमी किसी शाकाहारी का पक्ष ले सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कोई गुनाह है, पाप है। अगर किसी ने पाखंडी है अगर ऐसा सब बोला तो हम इसको समर्थन नहीं करते।
9: बंगला और बंगालियों के संपर्क में जो इंसल्टिंग कमेंट किया है, इसके लिए यहाँ का सरकार को, क्योंकि वो सरकारी उनको सब खातिरदारी कर रहे थे, उनको क्षमा मांगना चाहिए।
6: भवानीपुर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 थानों तक बाबा के खिलाफ शिकायत भी पहुंच चुकी है और अब कार्रवाई की मांग तेज है।
10: वो बंगाली को बोला है पखंडी, उसका मतलब हम लोग धर्म का नाम में कुछ भी करते हैं। वो बोला है हम लोग क्या खाएगा नहीं खाएगा, वो बोल रहा है हम लोग क्यों आमिष क्यों खाएगा, क्यों माछ मछली मटन चिकन हम लोग खाएगा, वो तैयार करेगा हम लोग क्या खाएगा।
6: विवाद बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचाव में उतरी। मंत्री अग्निमित्रा पॉल कह रही हैं कि इसमें राजनीति या विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है।
11: बाबा बहुत सी शिकायतों और नाराजगी के बीच अभिनेत्री पुलिस पर टिकी है कि वो क्या एक्शन लेती है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
5: बात पंजाब के संगरूरू की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मृतक गुलजार के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बेनस की धारा 108 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
4: दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने SIT गठित कर दी है। पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी नौनिहाल सिंह की अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। उधर संगरूर में तनावपूर्ण माहौल में पुलिस की निगरानी में मंगलवार को गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
5: राहुल गांधी ने भी इस मामले में पंजाब सरकार को घेरा है। भगवंत मान सरकार पर सवाल पूछे कि ड्रग्स के खिलाफ अपनी बात रखे और उस पर गुलजार सिंह को प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना इस स्तर तक पहुंच गई कि उन्होंने खुदकुशी करने का सोचा और उससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने नाम बकायदा लिए।
4: एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: आगे आगे
15: करेक्ट।
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
22: GK Max।
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट,
23: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
3: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

संभल की जामा मस्जिद की तस्वीर तो आप पहचानते होंगे। यही है वो मस्जिद जिसे लेकर 2 साल पहले मंदिर होने का दावा किया गया और फिर हिंसा हुई थी। और उसी जामा मस्जिद से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह है बहाउद्दीन मस्जिद, जिसे लेकर अब प्रशासन और पुरातत्व विभाग दोनों की साझा जांच शुरू हो गई है। संभल में चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास कब्रिस्तान के पीछे की जमीन को लेकर विवाद ये है कि एसआई की संरक्षित धरोहर जामा मस्जिद के नाम दर्ज जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मुसाफिर खाने बनाए गए हैं। दूसरा आरोप है कि मनोकामना मंदिर की 1.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जमीन को वक्फ का बताकर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है, जिसमें गाटा संख्या 116 की 1980 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया है। गाटा संख्या 171 की 1600 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मुसाफिर खाने बने हैं। गाटा संख्या 171 दो की 45,400 वर्ग मीटर जमीन में से 3800 वर्ग मीटर पर भी मुसाफिर खाना बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2019 में NTCA प्रदर्शन के दौरान इसी अवैध मस्जिद और मुसाफिर खाने से निकले हथियारबंद लोगों ने पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बस में आग लगाई थी और पुलिस वालों पर प्राण घातक हमले किए थे। डीएम को दी गई शिकायत के आधार पर SDM को जांच सौंपी गई थी। उससे पहले तहसीलदार ने पैमाइश के दौरान दावा किया था कि इस इलाके में आर्य समाज मंदिर की जमीन पर भी 1 मजार और 10 मकान अवैध रूप से बना लिए गए हैं, जिन्हें हटाने को कहा जा चुका है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।

पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख। युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले। मोदी के जन्मदिन पर चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराए जा चुके हैं 24 इमारतें। हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चलने लगा हथौड़ा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों को धमकाने वाले दरोगा के वीडियो पर सियासत गरमाई। अखिलेश यादव का सीधे योगी पर अटैक, धरने पर बैठे छात्रों को गाली देने का वीडियो वायरल हुआ था। मान सरकार पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न। नाकामी पर सवाल करने पर धमकी और टॉर्चर। वित्त मंत्री के सामने ड्रग्स का मुद्दा उठाकर सुसाइड करने वाले गुलजार पर चौतरफा घिरे अपमान। नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो। देश के विकास पर विपक्ष को दिखाया आग बबूला, फूफा वाले बयान पर राजनीति कर।

0: नमस्कार 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले रिपोर्ट एमसी रिएक्शन को लेकर है। आज कई जगहों पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, फोड़ फोड़ एक तरीके से चल रही है और ताजा तस्वीर पांडव नगर की सामने आई है जहां पर खतरनाक इमारत को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले सत्यनिकेतन में उस इमारत को भी गिराने का काम शुरू हुआ है जो रविवार को गिरी। 5 मंजिला इमारत के बिल्कुल बगल में थी और वो भी किसी भी क्षण गिर सकती क्योंकि वो भी बहुत कमजोर है। लेकिन इस बीच में पांडव नगर में एक खतरनाक इमारत को गिराने का काम जारी है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर इस तरह की इमारतें हो सकती हो, तो अब इसे ड्राइव की शुरुआत हुई है और पांडव नगर में ये गिराया जा रहा है। पांडव नगर से हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, किस तरह का एक्शन और क्या एक ही इमारत पर या और भी इमारतों पर एक्शन संभव है? शिवानी के पास जाएं, लक्ष्मी नगर भी चलते हैं, वहां पर भी एक्शन चल रहा है। सुशांत मेहरा हमारे साथ, सुशांत तस्वीर दिखाएं, क्या एक्शन है?
1: हाँ देखिए राजीव, लक्ष्मी नगर में मेरी इसकी इस वक्त मौजूदगी, एमसीडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से हैमर और यहाँ पर जो लेंटर है फोर्थ फ्लोर, इसको पूरी तरीके से डेमोलेशन किया जा रहा है। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई थी, नक्शा पास नहीं था और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद एमसीडी की जो टीम है लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, गीता कॉलोनी, इन तमाम पूर्वी दिल्ली के इलाकों में इस वक्त जबरदस्त तरीके से डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था कि 5 मंजिला इमारत अगर ज्यादा ऊपर है, अवैध रूप से बनी है या फिर डेंजर है, उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाए और वो एक्शन अब इस वक्त दिल्ली की हर तमाम इलाकों में जो है वो नजर आ रहा है। मुखर्जी नगर में भी इस तरीके का डेमोलेशन, जनकपुरी में भी इस तरीके का डेमोलेशन जो है वो किया जा रहा है। अभी देखिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से बना दी गई। सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब एमसीडी के अधिकारी कहाँ पर थे? अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। लगातार यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव है क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्लोर है, इसके छज्जे जो, इन सबको डेमोलिशन जो है वो किया जाएगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर लगातार जो है वो दिखाते जाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई इलाकों में इस वक्त एमसीडी की जो टीम है वो डेमोलिशन ड्राइव जो है वो कर रही है। हमारे साथ जो ऑनर है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने इस बिल्डिंग का नक्शा जो है वो नहीं बनाया था और पूरा लक्ष्मी नगर आप दूर दूर तक नजर डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की अवैध की कई सारी बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है। उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। ऑनर है सर, आपका नाम क्या है सर?
2: एक मिनट भाई सर एक मिनट, मैं आप सबको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। जो कंप्लेनेंट है उसके कागज है, उसके कागज झूठे, उसने झूठे कागज सबमिट करके कोर्ट में सबमिट झूठे कागज करे हैं।
1: सर ये आपका पूरा मकान जो है आपने नया बनाया था या क्या? पुराना?
2: नहीं, पुराना मकान है और मैं रह रहा हूँ भाई साहब इस बिल्डिंग में।
1: लेकिन एमसीडी का कहना है कि कल रात को ही आपने इसको ऑक्यूपाइड करा, पूरी बिल्डिंग नहीं बन रही थी, इसमें नक्शा पास नहीं था, अवैध रूप से।
2: मेरा मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, तो कहाँ से मैं आज से रह रहा हूँ।
1: नक्शा पास कराया था आपने?
2: भाई साहब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, पूरे लक्ष्मी नगर में किसका नक्शा पास है? 1000 में से 999 मकान का नक्शा पास नहीं
0: लगा हुआ है। सारी बातें उनकी हैं। मैं सुशांत आपके पास लौटता हूँ, शिवानी का भी रुख कर लेते हैं जो इस समय पांडव नगर में मौजूद है। शिवानी, वहां पर किस तरह का एक्शन है और पीजीज पर एक्शन हो रहा है या रिहायशी इमारतों पर भी?
3: राजीव, आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से पांडव नगर की एक इमारत पर अब डिमोलिशन शुरू हो गया है और ये एक रेजिडेंशियल इमारत है लेकिन यहाँ का 4 मंजिला होना चाहिए और ये 5वीं मंजिल पर एक्शन चल रहा है। एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, हथौड़े चलाकर इस अतिरिक्त मंजिल को डिमोलिश किया जा रहा है और तमाम दूसरी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो दिखाई दे रहा है कि 5 फ्लोर तक बनाई गई हैं, यानी कि नियमों को की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। और अब जब एक्शन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चल रही है। इस तरफ देखिए, आप देखिए डिमोलिशन हो रहा है, अब इस मंजिल को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध नक्शा था, नक्शे से डेविएशन की वजह से अब इसे तोड़ा जा रहा है। और जो जेई है यहाँ पर मेरे साथ अरविंद जी, ये बताएगा कि आप इस तरह का एक्शन है वो तमाम दूसरी जगहों पर भी करने वाले हैं?
4: हाँ जी बिल्कुल मैडम, दूसरी जगह के भी करने वाले हैं। जो भी डेविएशन करके अनऑथराइज प्रॉपर्टी बनाई हुई है हम उनपे सब पे ऐसे डिमोलिशन एक्शन ले।
3: अरविंद जी, ये सवाल उठ रहा है कि ये अचानक से जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ है पहले क्यों नहीं हुआ है?
4: मैडम हमने पहले भी एक्शन करते रहे हैं, अब मीडिया को या पहले इतनी चीजें हाईलाइट नहीं होती, हम कंटिन्यूस बेसिस पर हम डिमोलिशन एक्शन करते रहे। हर महीने में डिमोलिशन के 20 से 25 प्रोग्राम हर महीने डिमोलिशन के लगते हैं, हम प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं।
0: देखो शिवानी, ये सवाल भी तो पूछना है,
3: इतनी बिल्डिंगें बन गई तब
0: आप कहाँ थे? ये बिल्डिंगें तो बननी नहीं चाहिए थी।
3: बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तब उस वक्त किस तरह से इन्हें बनने दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
4: मैडम, एक फाइल प्रोसेस होता है, हम पहले सोको नोटिस देते हैं, उसके बाद उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उस ड्यूरिंग प्रोसेस में हम डिमोलिशन एक्शन नहीं ले सकते। इस ड्यूरेशन में जो भी ऑनर होता है वो अपना कंस्ट्रक्शन वो कर लेता है।
0: बिल्कुल शिवानी, अधिकारियों के पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवालों का जवाब किसी के पास है नहीं। सब जानते हैं कि कैसे ये इमारतें और बड़ी होती जाती हैं, उसके पीछे अधिकारियों के साथ कैसी सांठगांठ होती है। बहरहाल, इससे पहले सत्यनिकेतन के हादसे वाली जगह के पास जो इमारत थी, जो कि जर्जर एक तरीके से थी, उस बिल्डिंग को गिराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। एमसीडी ने इस इमारत को खतरनाक घोषित किया था, जिसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हो चुका है और ये जर्जर एक तरीके से थी, और उसके बाद इसको खाली भी करवा लिया गया था। जो लोग भीतर थे उनको सबको हटा दिया गया था। सपोर्ट के लिए वहां पर लोहे के पिलर्स भी लगाए गए थे ताकि अचानक ये ना गिरे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है तो ऐसे में उसके बाद इस इमारत को कुछ इस तरह से गिराया जा रहा है। आप देखेंगे कि दीवारों को तोड़ा जा रहा है। लगभग 1100 पीजीज के सर्वे का काम भी इस बीच में एमसीडी ने पूरा किया है।
5: रविवार को सत्यनिकेतन में जहां पीजी हादसे में 7 बच्चों की जान गई, उसके ठीक साथ वाले बिल्डिंग में जहां कनकलता पीजी चलता था, अब एमसीडी के हथौड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है। मलबा नीचे फेंका जा रहा है जहां कल तक वो पीजी होता था जिसमें उन बच्चों की जान गई, अब उसी जगह पे सारे मलबे को छत से गिराया जा रहा है। लगातार हथौड़ों से प्रहार करके टॉप फ्लोर को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक टेम्पररी रूम था, उसको तोड़कर गिराया गया। पीछे इलेक्ट्रिकल रूम है, उसको तोड़ा गया। अब ड्रिलर्स और हथौड़ों के सहारे पूरी बिल्डिंग को एक एक फेस कर एक एक फ्लोर कर तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर प्लान तरीके से हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अनसेफ डिक्लेयर हो गया है। देखिए किस तरह से हथौड़ों का इस्तेमाल हो रहा है।
0: खतरनाक इमारतों पर आज तक की खबर का असर हुआ है और आज तक ने मुखर्जी नगर के जिस खतरनाक इमारत की खबर दिखाई थी उस पर एमसीडी का हथौड़ा चला है।
6: ठीक 2 दिन पहले आज तक ने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कैसे मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए हैं। ये वो जगह है जो पिछले 4 साल से खतरे का निशान बनी हुई है मुखर्जी नगर के अंदर, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्यनिकेतन में जब घटना हुई उसके बाद हमने कई इलाकों की रियलिटी चेक की और जब हम मुखर्जी नगर 2 दिन पहले पहुंचे तब हमने दिखाया कि कैसे ये बिल्डिंग भी बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है और आज तक की रिपोर्ट के बाद अब एमसीडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि यह बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है और आज तक की टीम लगातार उन दिल्ली के अलग अलग कोनों तक जाती रहेगी और दिखाती रहेगी कि कैसे कमजोर स्थिति में कई ऐसे मकान हैं जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि कार्रवाई हो सके, लोगों की जानें बच सके, लोग अपने आप को दिल्ली में सेफ महसूस कर सकें।
0: अब आज की दूसरी बड़ी खबरें आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे करने पर बीजेपी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक ऐलान किया है, 7 अक्टूबर से सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी और वाराणसी से लेकर वडनगर तक ये सेवा यात्रा निकाली जाएगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाएंगे, 17 सितंबर को शाम 7 बजे सेवा दिया भी जलाया जाएगा।
7: प्रथम दिन 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा जो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी हमारा मानना है कि रक्तदान महादान के रूप में हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और हमारे युवा, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन 17 सितंबर को शाम में 7 बजे आशीर्वाद का दिया। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठावान जनसेवा की है उसके प्रति आभार व्यक्त हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में करेंगे। 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले कड़ी में 17 सितंबर को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है उस दिन को हर वर्ष हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम हम सेवा पखवाड़ा के रूप में करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे तो जहां उन्होंने सेवा के भाव से समाज को जोड़ते हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए इसका उन्होंने प्रयास किया। अगर आज हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो जहां एक ओर देश का युवा निराशा के वातावरण में था उसको आशा और उम्मीद के वातावरण में लाकर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया और हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से यूनिकॉर्न के माध्यम से जहां भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल जॉब सीकर्स नहीं जॉब गिवर्स बनकर उभरे और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि आज भारत खेलो इंडिया के माध्यम से फिट

0: अध्यक्ष ने बताया, लेकिन उद्देश्य क्या है इन इन कार्यक्रमों के माध्यम से?
1: देखिए मैं आपको बता दूं, उद्देश्य एकदम साफ है। नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान को एक धागे से बांध दे। कहीं ना कहीं कोशिश ये भी की जाएगी कि हाईलाइट किया जा सके कि विपक्ष आपके लिए क्या क्या नहीं कर पाया है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों में एस प्रधानमंत्री और उससे पहले जो उनका जो टेन्योर था एस चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गुजरात के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए ओवरऑल क्या किया है, इन सब बातों को घर घर लेके जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और कोशिश ये भी की जाएगी कि जो आगामी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, तो इन सब राज्यों के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा और कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में आगे क्या करेगी, इन सब चीजों की बात भी ये जो अगला एक महीना है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी घर घर जाके करे।
0: जी ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रिपोर्ट उज्जैन से। उज्जैन में सिंहा से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इस अभियान के रास्ते में एक हनुमान मंदिर भी आ गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर तो टूट गया लेकिन प्रशासन बजरंग बली की मूर्ति को से मस न कर पाए।
2: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा हटाने को लेकर के अब हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को महाआरती करके तमाम हिंदू संगठनों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिर से हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का विरोध जताया। दरअसल उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ का मेला लगना है और इसके लिए कंठाल चौराहे से लेकर छतरी चौक तक की सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसी चौड़ीकरण के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हनुमान का मंदिर भी था। मुख्य ढांचे को प्रशासन ने छेनी और हथौड़ों से तो तोड़ दिया, लेकिन जब बारी प्रतिमा हटाने की आई तो फिर प्रशासन उसमें असफल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर के पास डेरा डाल लिया और अब जिद पर आ गए हैं कि प्रतिमा यहां से नहीं हटाई जाए। प्रशासन भी अब इस पूरे मामले में विशेषज्ञों की मदद लेने की तैयारी में जुट गया है। प्रशासन ने इंजीनियरों की एक टीम बनाई है जो मंदिर की प्रतिमा को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद ही प्रतिमा हटाने या ना हटाने को लेकर के प्रशासन कोई फैसला करेगा।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पुणे से है। पुणे के शिवनेरी किले को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले की तलहटी के पास में कथित तौर पर एक दरगाह बनाए जाने को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शिवनेरी इलाके का दौरा किया, उस जगह का निरीक्षण किया और उन्होंने आरोप लगाया कि संरक्षित किले के पास एक अनाधिकृत धार्मिक ढांचा खड़ा किया गया।
3: किले पर जाने के बाद किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास सैटेलाइट इमेजेस है, जो इमेजेस पहले वाली और अब वाली इनमें फर्क दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन सभी को ये इमेजेस वो सबमिट करने वाले हैं और आने वाले वक्त में अगर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बार बार कंप्लेंट आती रही है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, यही उनका आरोप है, तो अगर इस पूरे मामले में प्रशासन अपनी भूमिका क्या रखता है वो अगर साफ तौर पर नहीं सामने आता है तो किरीट सोमैया हो, उनके साथ अलग अलग हिंदू संगठन हो, वो सभी साथ मिलके शिवनेरी की यहाँ अनशन पर बैठ जाएंगे, यही अब सोमैया ने स्पष्ट कर दिया है।
0: बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव है और चुनावों से पहले यहां पर नीले रंग पर सियासत शुरू हो गई है। पूरी खबर बता रहे हैं समर्थ श्रीवास्तव।
4: उत्तर प्रदेश की सियासत अब केवल नारों और झंडों तक सीमित नहीं है बल्कि अब तो ड्रेस कोड और उस ड्रेस कोड के रंग तक आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां ही अपनी छात्र सभा की ड्रेस कोड बदली और उसका रंग जो है अंबेडकरी नीला कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी ही आरएसएस खड़ी कर दी। आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस कहां से आ गई। आरएसएस दूसरी है, यानी कि राष्ट्रीय सुहेल देव पार्टी की आरएसएस है ये, जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर ने अपने कमांडर के रूप में दिया है और उनका कहना है कि हमारी जो कमांडर सेना है वो तो जाने कब से चल रही है और समाजवादी पार्टी ने उसे कॉपी कर लिया है। समाजवादी पार्टी बता रही है कि राजभर खुद देखें कि आखिर ऐसा उनमें क्या है कि समाजवादी पार्टी उन्हें कॉपी करे, और ये भी कहना है कि दलित और पिछड़ों के रंग से बीजेपी और उसके संगी साथी डर गए हैं, घबरा गए हैं। देखना यह है कि ड्रेस कोड की इस जंग में किसकी फतह होती है।
0: बात झारखंड के, जहां पर एसआईआर प्रक्रिया फिर से सवालों में आ गई है। झारखंड के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 3 अफगानी नागरिकों का नाम मिलने से खलबली मच गई है। हैरान करने वाला ये मामला जमशेदपुर का है। पासपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के दौरान उनके विदेशी होने की पुष्टि हुई है।
5: झारखंड में एफआईआर की प्रक्रिया जारी है और

0: इसी बीच मंत्रिमंडल निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला मामला पकड़ा है। जमशेदपुर पूर्वी के बूथ नंबर 286 में सीरियल नंबर 30, 31 और 33 ऐसे नागरिक पकड़े गए हैं जिनकी जो नागरिकता है वो विदेश की है, यानी अफगानी नागरिक है, और उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। और इसके बाद लगातार जो है एक्शन में है आयोग, और साथ ही साथ वहाँ के डीसी एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि ऐसा हुआ कैसे, इसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन की जाए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने विदेश के नागरिकों को मदद की यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करवाने में, और ये मामला तब पकड़ा गया जब इनमरेशन फॉर्म उन तीनों के द्वारा भरा जाता है, और जब वेरिफिकेशन होता है और कुछ सस्पिशन रहता है तो वेरिफिकेशन के लिए उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, और पासपोर्ट के वेरिफिकेशन से पता चलता है कि अफगानी नागरिक हैं वो तीनों।
1: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में पुलिस ने माउंट रूभाव गैंग के बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया, और ये दो बदमाश इनका हाफ एनकाउंटर हुआ है। हाफ एनकाउंटर में जख्मी दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग को भी मौके से पकड़ा गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नरेला इलाके में 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद कुमार की हत्या के मामले में की है।
2: दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एनकाउंटर के बाद नितिन और दीपक नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश अभी आउटर दिल्ली के नरेला इलाके में प्रमोद कुमार जो बिल्डर हैं उनकी हत्या में शामिल थे। इनका एक सीसीटीवी भी वायरल हुआ था जिसमें एक बाइक पर तीन बदमाश भागते हुए नजर आए थे, जिनमें से दो एक नितिन और एक दीपक था। इन दोनों ने भी प्रमोद पर काफी नजदीक से गोली चलाई थी। पुलिस का कहना है कि इनके तीसरे साथी की तलाश तेज है।
1: अब खबर सूरत से है। सूरत के सरौली इलाके में स्थित श्याम संगिनी कपड़ा बाजार में आग लग गई और देर रात इससे खलबली मच गई। मार्केट की छठी मंजिल पर बताया जा रहा है कि रात लगभग 12 बजे के आसपास आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में लगभग 10 घंटों का समय लग गया। मार्केट में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक कपड़ा और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ सामग्री थी, और इसके चलते आग तेजी से फैलने लगी। सूरत को देश की प्रमुख टेक्सटाइल मंडियों में गिना जाता है।
3: सूरत के श्याम संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में बीती रात 12 बजे के बाद भयावह आग लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि टेक्सटाइल मार्केट होने की वजह से जो है वो टॉप फ्लोर पे आग लगी थी, पर फिर वो फैलती गई। कपड़ों का बड़ा स्टॉक था जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को करीब 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। फायर सेफ्टी के जो हैं वो साधन तो थे, पर कुछ जगहों पर वो साधन टूटे हुए थे। रात का समय था इसलिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ी जानहानि को जो है वो टल गई। पर बड़ा सवाल यही उठता है कि टेक्सटाइल मार्केट जो इतने बड़े बड़े हैं सूरत में, उसमें हर बार ऐसी भयावह आग लगती है। कपड़ों का बड़ा स्टॉक होता है, वो करोड़ों का स्टॉक जो है वो खराब हो जाता है। पर सवाल यही है कि कब ऐसी आगे रुकेंगी, और जब ये आग लगती है तो करीबन 8 से 10 घंटों का समय चला जाता है। इससे पहले भी जब टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी थी तब 8 से 10 घंटों का समय लगा था और करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार भी जो नुकसान है वो बढ़ सकता है।
1: अब बात करेंगे युद्ध की। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकरों को उड़ा दिया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि इन टैंकरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि IRGC नेवी ने फारस की खाड़ी में 10 जहाजों जिनमें कि अमेरिका के 2 जहाज भी शामिल थे उन पर हमला किया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने के पास अमेरिकी सेना की सबसे आधुनिक अंडरवाटर ड्रोन को पकड़ने का भी दावा किया।
4: अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव चरम पर है। बीती रात अमेरिका की तरफ से 5 ईरानी तेल टैंकरों को तबाह किया गया है, जबकि इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन के साथ साथ बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया। अमेरिका ने भी माना है कि 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जॉर्डन की तरफ दागे गए, जिनमें से 18 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 2 एक रेगिस्तान में गिर गए हैं। उस बीच ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिका का भारी नुकसान पहुंचा है। विवाद कल शाम को तब शुरू हुआ जब IRGC ने दावा किया कि उन्होंने एक अनमैन्ड मैरीन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका का अपने कब्जे में लिया है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान का दावा है कि उन्होंने जो वारशिप्स हैं अमेरिका के स्टेट ऑफ हार्मूज पर, उन पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया है और उसमें अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
1: मंगलवार का दिन ब्रिटेन जाने वाले और ब्रिटेन से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों के लिए मुश्किलों भरा रहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या के कारण 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गए। हालांकि ब्रिटेन के नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने बताया कि शाम तक उन्होंने अपने फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की समस्या को दुरुस्त कर लिया था, लेकिन देरी का असर यूके के 15 एयरपोर्ट्स पर महसूस किया गया।
5: पिछले कुछ घंटों के दौरान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हवाई यातायात की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक माने जाने वाले हीथ्रो हवाई अड्डे पर एटीसी में तकनीकी खामी आ गई, जिसके कारण करीब 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स निरस्त हो गई और हजारों यात्री फंस गए। लोगों के यात्रा कार्यक्रम गड़बड़ा गए। इसने एक बार फिर 2023 के उस शटडाउन की याद दिला दी जिसके कारण करीब 7 लाख यात्री हीथ्रो हवाई अड्डे पर प्रभावित हुए थे।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: JK Maxx Paints.
9: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
4: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
3: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद सिर्फ आज तक पर।
5: प्रशासन है, सरकार है, मौतें छुपा रही है। 50 से ज्यादा मौतें हुई है, 33 जगह का खुद परिवारजनों से मिलकर आया। परिवारजनों की वेदना, एक साल की बेटी है, पिता मौत पे चले गए, यतीम हो गई। 30 साल की पत्नी है, दो बच्चे हैं, पति चला गया, तीनों अनाथ हो गए। एक घर है जिसमें तीन पुरुष थे, दो पुरुष मर गए शराब पी के, सब महिलाएं बच्ची, एक भर्ती है।
6: कोई आंकड़े नहीं छुपा रही है, सबके सामने है, जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है, छिपाना क्यों छिपाना
7: है? आज कितनी
6: जो स्थिति हुई है वो सब सामने है। 13 लोगों के बारे में मैंने बताया कि 13 लोगों की डेथ हुई है जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, और 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 30 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। और कोई भी जो भी लापरवाही करी होगी, जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही करी होगी, अभी भी जांच में जो भी सामने आएंगे उनके खिलाफ
7: कड़ी कार्रवाई। 2 दिन पहले

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे कार्यक्रम पर भी सियासी घमासान। सीएम योगी की रैलियों पर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा बीजेपी विकास और आस्था की राह पर जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित। सपा के नेता दीपक रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सरकारी खर्चे पर चल रहे हैं जबकि जनता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है। 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसे कमर, 4C प्लान के तहत काम शुरू। रायबरेली में राहुल गांधी ने जनता की सुनी समस्याएं, पार्टी कार्यालय में उमड़ी भीड़। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, विरासत और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर फोकस बढ़ाया। अयोध्या, काशी और मथुरा के लगातार दौरों के साथ ही विकास योजनाओं और धार्मिक पर्यटन पर भी सीएम की नजर। सहारनपुर मस्जिद फंसेकरण के मामले में मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका, याचिका में बिना कानूनी नोटिस के कार्रवाई का। मुजफ्फरनगर दंगे पर बीजेपी फिर समाजवादी पार्टी पर हमला, अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सवाल। बुलंदशहर हेलीपैड पर जलभराव को लेकर अखिलेश यादव का हमला, बोले कार्यक्रम रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है प्रशासन। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले कि अहीर जहीर को कंट्रोल करें नहीं तो 2027 में 27 सीट भी नहीं जीतेंगे। ओपी राजभर का बयान, जिन अपराधियों को आपने हमारी यूनिफॉर्म की कॉपी करके नीली ड्रेस पहनाई है उन्हें उसी सुहेलदेव सेना की तरफ से अनुशासन भी सिखा। ओपी राजभर के यूनिफॉर्म के रंग को लेकर दिए गए बयान पर सपा ने कहा कि छात्र सभा में पढ़े लिखे बच्चों को अपराधी कहना गलत है। राजभर के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, सुनील सार्जन बोले राजनीतिक स्तर इतना ना गिराएं। राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का शिवपाल यादव को लेकर दावा, बेटी या बहू को विधायक बनवाने के लिए आरएलडी के संपर्क साधने की बात कही। यूपी में सरकारी डॉक्टरों के लिए तोहफा, अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स सेवाएं अपनी दे सकेंगे। मेरठ में पूर्व मंत्री के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगई का आरोप है और पड़ोसी के घर पर पहुंचने का सीसीटीवी वायरल, आरोपी हिरासत। गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक, छात्रों के दौड़ाने पर भागता दिखा स्टाफ। गोरखपुर में धरना दे रहे छात्रों को जो है धमकी देने वाले दरोगा का वीडियो वायरल, दरोगा ने कहा कि बता दे रहा हूं ठंडा कर दूंगा। अखिलेश यादव ने एसआई के धमकाने वाले वीडियो को किया शेयर, बीजेपी का क्या घेराव, लिखा संयम और सौम्यता रखें क्योंकि ये आंदोलनकारी छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है।

0: यूपी की खबरों में आज की जो सबसे पहले बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां कचहरी के अंदर बनी अवैध मस्जिद को गिराने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इसमें वर्शिप एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साथ वक्फ बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया है। मस्जिद कमेटी के मुतवली मोहम्मद तनवीर अहमद की तरफ से यह याचिका दाखिल हुई है। याचिका मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल करके जिला प्रशासन की जो कार्रवाई हुई उसको चुनौती दी है। याचिका में दावा किया है कि प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त करने से पहले न तो कोई वैधानिक नोटिस जारी किया, न ही सक्षम जो है प्राधिकारों को का कोई भी विधिवत ध्वस्तीकरण आदेश उपलब्ध करवाया गया। ऐसे में पूरी कार्रवाई का कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत इसे बताया गया है।
1: हर शख्स यही कह रहा है कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई और गवर्नमेंट ने सरासर इसमें ज्यादती और जुल्म किया है। इंसाफ के दरवाजों को बंद कर दिया और रात में फैसले किए और रात ही में उसे शहीद कर दिया गया। और अगर कायदे के साथ लड़ाई लड़ी जाती, अदालत तक जाने देते, बातचीत होने देते तो इंसाफ होता और सही जगह चीज सही जगह बाकी रह जाती।
0: तो विपक्ष अब सहारनपुर के इस मसले को अल्पसंख्यक अत्याचार के तौर पर एक चुनावी मुद्दा बना रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी रणनीति में सांप्रदायिक मुद्दे भी टॉप पर हैं और उनकी एक वानगी एक बार फिर से देखने को मिली। जब 13 साल पहले हुए मुजफ्फरनगर के दंगों की याद की गई और दंगों की बरसी हफ्ते में यूपी में 20 मंत्री और 100 से ज्यादा विधायकों ने एक साथ समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में बीजेपी के सभी नेताओं ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े हुए पुराने अखबारी खबरों को कतरने वाले पोस्ट लिखे और इसमें मंत्री दयाशंकर सिंह, जयवीर सिंह और असीम अरुण समेत 20 मंत्रियों ने पुरानी खबरें साझा की हैं। तो 100 से ज्यादा बीजेपी के विधायकों ने अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर घेरा है। अखिलेश राज के अंदर 2013 के अगस्त सितंबर में हुए इन दंगों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 90 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे।
2: जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को तब तक 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे याद आ जाते हैं और हमें याद आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान करने वाला वो यूं, हमें याद आ जाता है हुकुम सिंह, हमें याद आ जाते हैं संगीत सोम, हमें याद आ जाते हैं साक्षी महाराज, हमें याद आ जाते हैं सुरेश राणा, जिन लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आग लगा दी। वो दिलों में आग लगाएगा, हम दिलों की आग बुझाएंगे, उसे अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे के रूप में नंगों को बचाने लगते हैं और बिना वजह के आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। 2017 से आपकी सरकार है, आज तक आपने किस आरोपी को पकड़ा जरा बताइए। चुनाव के समय थितरई कही जाती है, जो थितरई भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी तैयारी यूं तो पूरे प्रदेश में चल रही है, लेकिन यूपी के 3 तीर्थों अयोध्या, मथुरा और काशी पर इस बार सीएम योगी का विशेष ध्यान है। और इतना ही नहीं, विपक्षी दलों की गढ़ में भी पीएम ने धुआंधार रैलियां और विकास योजनाएं शुरू की हैं।

0: उत्तर प्रदेश में विकास की चुनावी गाथा में सीएम योगी ने इस बार जितनी तवज्जो तीर्थों को दी है वैसी बाकी के चुनावों में नहीं दिखी। यही वजह है कि पूरे प्रदेश की विकास परियोजनाओं या नौकरी रोजगार वेतन मानदेय से जुड़े फैसलों की घोषणाएं भी तीर्थों से हो रही है। कल अयोध्या में सीएम ने आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन 8 से बढ़ाकर 12,000 किया। अब वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी घोषणाओं के लिए सीएम योगी ने अयोध्या जैसे श्रीराम के तीर्थ को क्यों चुना, वो मंशा भी वो मंच से ही जाहिर कर देते हैं।
1: हमने अयोध्या इसलिए आपको आमंत्रित किया, आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी प्रकार से बदले। आपने आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या देखी होगी, तब न बिजली थी, न सड़क थी, न स्वच्छता थी, न यहां कोई सुविधा थी।
0: अयोध्या से काशी तक यूपी सरकार के नए फैसले और घोषणाओं के केंद्र में महिला वोटर रही हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कर्मी हो या फिर महिलाओं के पोषण से जुड़े कार्यक्रम।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए हम लोग 4 प्रकार की योजनाओं के साथ यहां पर आए हैं। उनके बढ़े हुए मानदेय को लेकर हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को प्रतिवर्ष उनको और उनके परिवार को 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की कवर उपलब्ध करवाने को लेकर, उनको वर्ष में जो 2.5 उपलब्ध होती थी उसकी संख्या को बढ़ाने को लेकर, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो पिछली बार भी कहा था, बार बार मैं कहता था कि हमारे पास रियल टाइम डाटा हो, और ये आज के समय संभव है।
0: यूपी सरकार के फैसले कितना चुनावी असर रखते हैं ये इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,89,280 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन सभी केंद्रों में एक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है। इसके अलावा प्रदेश में करीब 1,39,000 आंगनवाड़ी सहायिकाएं भी कार्यरत हैं। इन 3.75 लाख महिलाओं के घरों में जब बड़े हुए बांधे से लेकर साड़ियों तक की सौगात पहुंचेगी तो उनका असर समझा जा सकता है।
2: स्मार्टफोन के जरिए टेक्नोलॉजी से सहायता मिलती है, स्मार्टफोन से अब
3: सहायता मिली है,
2: सहायता मिल रही है,
3: भी बढ़ रहे हैं। जी जी,
2: केंद्रों को लेकर उन्होंने कहा विकास होना चाहिए, केंद्रों को लेकर आपका क्या कहना है? जो आंगनवाड़ी केंद्र
4: के बहुत विकास हुआ है,
2: पहले से और अभी की तस्वीर में क्या अंतर?
3: सर जो बता रहे हैं सर, पहले से 9 साल विकास बहुत ज्यादा विकास हुआ है हमारे यहाँ, और कार्यकर्त्री भी बढ़ रही हैं, और हमारे यहाँ कितना भी विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है,
5: बहुत खुशी हुई है।
2: हाँ, खुशी आपके चेहरे पर, खुशी आपकी आँखों में।
5: जी जी, बहुत खुश हुए, कुछ तो मिला, जो भी मिला खुश।
2: सहायिकाओं का भी बढ़ाया गया है?
5: जी जी, कुल का 6,000 है, हमारा 12
2: पहले से बेहतर हुआ।
5: जी जी, बहुत बेहतर।
6: ये सरकार जब से ही हम लोग को अच्छा काम करने का मौका मिला है, बस यही है, और पैसा जो मिला वो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आगे हम लोग यही चाहते हैं कि योगी जी आए।
0: यूपी में बीजेपी को मिलने वाली महिलाओं के वोट में हुई कमी को देखते हुए योगी सरकार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2022 में यूपी में कुल 4,23,00,000 महिलाओं ने वोट किया था। उनमें से 2 करोड़ से अधिक यानी करीब 48% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट किया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में करीब 4,38,00,000 महिलाओं ने वोट डाला, जिसमें से 1,80,00,000 के करीब यानी 41% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। माना गया कि चुनाव से पहले राहुल अखिलेश के गठबंधन ने महिलाओं के खाते में 3,000 खटाखट डालने का जो चुनावी वादा किया और फॉर्म भरवाए, उसके प्रभाव में करीब 7% महिला वोट बीजेपी से छटक कर इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया था। इस बार सीएम योगी ऐसे किसी चुनावी चाल के लिए कसर नहीं छोड़ना चाहते। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: यूपी की चुनावी तैयारी के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपने विरोधियों को पछाड़े रखा है, चाहे वो रैलियां, कार्यक्रमों या आयोजनों की बात हो या फिर विकास योजनाओं की। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले 3 महीनों में रैलियां, उद्घाटन और शिलान्यासों की जो झड़ी है वो लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी ने मई से अब तक राज्य में 75 में से 44 से ज्यादा जिलों का दौरा कर लिया है। इन तमाम जिलों में कम 115 विधानसभाओं में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। और ये वो जिले हैं जहां पर 2024 से लोकसभा चुनाव में गठबंधन इंडिया ने बीजेपी को पछाड़ दिया था। मुख्यमंत्री योगी ने इन इलाकों में अब तक 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाई है। अब इन सरकारी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी एक तरफ 9 से 10 साल की बीजेपी सरकार के कामकाज का बखान भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के शासन की यूपी के हालत पर चुनावी हमले भी बोल रहे हैं। सनातन के साथ साथ सतत विकास और महिला कल्याण से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर सीएम योगी यूपी को अव्वल बनाने के मिशन पर चलने के दावे करते हैं, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति अब उन इलाकों को लेकर बनी है जहां 2024 में बीजेपी पिछड़ गई थी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 115 विधानसभाओं में गठबंधन इंडिया 67 सीटों पर आगे चल रही थी, इनमें समाजवादी पार्टी 54 तो कांग्रेस 13 सीटों पर आगे थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी 47 और उसके सहयोगी आरएलडी 1 सीट पर आगे थे। यानी योगी का मौजूदा दौरा मुख्य रूप से उन इलाकों में है जहां बीजेपी को 2027 में अपनी स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि सीएम योगी रायबरेली में 879 करोड़ के प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो वहीं बछवाड़ा, हरचंदपुर, रायबरेली जैसी विधानसभाओं को फायदा होता है। इसी तरह मैनपुरी में 682 करोड़ की योजनाएं देते हैं, इसमें करहल, मैनपुरी जैसी सीटें हैं, तो अयोध्या को 810 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें रुदौली, बीकापुर जैसी विधानसभाओं को सीधा फायदा मिलता है। और ये और बात है कि इन सब के मुकाबले सीएम योगी ने गोरखपुर जिले में पिछले 3 महीनों में यानी कि जून, जुलाई और अगस्त 2026 में ही 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कुल 679 से ज्यादा विकास परियोजनाएं दी हैं। तो बीजेपी 2022 में और 2024 में हारी हुई सीटों को लेकर एक खास रणनीति पर चल रही है। खासकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अवध कानपुर इलाके में बीएल संतोष के दौरे के बाद विनोद तावड़े का दोबारा यूपी के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी ने यूपी में 4C सेंट्रिक स्पेशल प्लान तैयार किया है। अब क्या है वो प्लान आपको दिखाते हैं।
4: अभिभूत है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहां अभी भी वीरानी छाई हुई है।
8: भगवान से नहीं करते, चढ़ावा चोरी कर लेते, चंदा चोरी कर लेते हैं।
4: सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रारंभ किया, अच्छी सड़कें बनानी प्रारंभ की, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया।
8: सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन है, ये कौन चला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग मिले हुए।
4: इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
9: अयोध्या की पावन धरती से सियासत की नई लकीर खींची जा रही है। धर्म नगरी होते हुए बीजेपी सत्ता की कुर्सी के सफर पर निकलने की तैयारी में है। ये हिंदुत्व नैरेटिव के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुँचने की कोशिश है। बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। पार्टी की रणनीति है कि आगामी चुनावों के लिए प्रचार का फोकस मथुरा, काशी और अयोध्या के दौरे पर हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम धर्मनगरी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। शुरुआत अयोध्या से हो भी चुकी है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की नगरी पहुंचे। मौका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधन का था। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
4: ये विकास विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं। जैसे इनके विरोध के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन नहीं रुका, नहीं झुका, नहीं डिगा। और अंततः अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का प्रकटीकरण होता है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है।
9: योगी सरकार यूपी में हिंदुत्व प्लस विकास प्लस विरासत की बात कर रही है, तो बीजेपी संगठन ने भी जनाधार को और बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी नेतृत्व यूपी में जमीनी पड़ताल करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो 12 से 13 सितंबर को मेरठ दौरे पर पहुंचेंगे, तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष अवध और कानपुर का दौरा करेंगे। बीएल संतोष अवध की 82 और कानपुर क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पश्चिमी यूपी में पहला दौरा है। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरण और गुर्जर राजनीति में हलचल बीजेपी के लिए अहम चैलेंज है। इसके साथ साथ बीजेपी 4C प्लान पर भी अमल में जुटी है। 4C यानी कोऑर्डिनेशन, कैडर, कास्ट और कैंडिडेचर पर फोकस कर पार्टी सत्ता पर फिर से काबिज होने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
10: उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 चुनाव की तैयारी फुल मोड में कर रही है। विनोद तावड़े नए यूपी प्रभारी लखनऊ पहुंचते हैं और नया मूल मंत्र देते हैं 4C का, यानी कि कैडर, कैंडिडेचर, कास्ट और कोऑर्डिनेशन, इन सभी पर फोकस किया जाएगा। कास्ट और कैडर के साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये एक अहम रोल कार्यकर्ताओं को दिखाना होगा।
9: सवाल यह है कि बीजेपी का ये 4C फॉर्मूला आगामी चुनाव में कितना गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर हारी हुई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने पर है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: बढ़ते आगे और बात करेंगे कांग्रेस की। यूपी में कांग्रेस के चुनावी मिशन को यूं तो अखिलेश के हां का इंतजार है, लेकिन सीट बंटवारे में अखिलेश की ओर से हो रही देरी के बीच में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों के दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क किनारे राहुल के स्वागत के लिए खड़ा किया गया था। मंगलवार को सराफा व्यापारियों से लेकर बार एसोसिएशन और केमिस्ट एसोसिएशन से लेकर खिलाड़ियों तक से मुलाकात के बाद राहुल गांधी आज दिशा की बैठक में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे में जिस तरह लोगों का उत्साह नजर आया है वो गौर करने लायक है। अब आज सुबह जब राहुल गांधी ने इलाके की आम जनता से मुलाकात का कार्यक्रम रखा तो अंदर तमाम तैयारियों के बावजूद लोगों ने गेट खुले होने का जो है गेट खुलने का इंतजार तक नहीं किया और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। इलाके में कांग्रेस समर्थकों ने जो है छोटे से गलियारे से कूद कूद कर अंदर जाना शुरू कर दिया। इस अव्यवस्था की तस्वीरों को भी कांग्रेस पार्टी राहुल के प्रति जनता के प्यार दुलार के तौर पर ही प्रस्तुत कर रही है। और अब वक्त सोशल आए छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। बीजेपी अध्यक्ष नवीन ने कहा मोदी के जन्मदिन पर चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्य निकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एनसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा।

मान सरकार पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी का सवाल उठाने पर धमकी और टॉर्चर, संगरूर सुसाइड केस में घिरे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी अकाली तीनों आक्रामक। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 40 लाख पहुंची, 14 जिलों में हालात पूरी तरह खराब, बक्सर और भोजपुर से लेकर भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर है लोग।

0: प्रतिमा पर संग्राम, प्रशासन और हिंदू संगठन आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में संकल्प अभियान चलाया जाएगा। नितिन नवीन ने कहा, प्रधानमंत्री को 25 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने सेवा के संकल्प को जारी रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के फोकस में पार्टी का 4C प्लान। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, विरासत और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर बढ़ा दिया है फोकस। मथुरा, काशी और अयोध्या के लगातार दौरों के साथ विकास योजनाओं और धार्मिक पर्यटन पर सीएम योगी का जोर। सहारनपुर मस्जिद वस्तीकरण का मामले, मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, याचिका में बिना कानून नोटिस की कार्रवाई का आरोप। सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर मुस्लिम समाज का गुस्सा, बोले ये जल्दबाजी और राजनीतिक फैसला, इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मस्जिद वहीं दोबारा बनेगी। मुजफ्फरनगर दंगों पर बीजेपी का फिर समाजवादी पार्टी पर हमला, अखिलेश सरकार के कार्यकाल को लेकर उठाए सवाल। बुलंदशहर हेलीपैड पर जलभराव को लेकर अखिलेश का हमला, बोले कार्यक्रम रद्द कराने का बहाना ढूंढ रहा है प्रशासन। राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का शिवपाल यादव को लेकर बड़ा दावा, बेटे या बहू को विधायक बनवाने के लिए आरएलडी से संपर्क साधने की बात। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले अहीर जहीर को कंट्रोल करें नहीं तो 2027 से 27 सीटें भी नहीं आएंगी। ओपी राजभर ने कहा, जिन अपराधियों को आपने हमारी यूनिफॉर्म की कॉपी करके नीली ड्रेस पहनाई है, उन्हें सुहेलदेव सेना की तरह अनुशासन भी सिखाएं। ओपी राजभर के यूनिफॉर्म के रंग को लेकर बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा, छात्र सभा के पढ़े लिखे बच्चों को अपराधी कहना गलत है। ओपी राजभर के आरोप पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, सुनील साजन बोले, राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के तोहफा, आप 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवाएं। नाराज फूफा पर पीएम के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो, देश के विकास में विपक्ष दिखाया आग बबूला। पीएम मोदी ने कल फिर कहा था, अभी जो नाराज फूफा जी हैं वो चिल्लाएंगे, पर हमें तो विकास करना है। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ, मणिपुर में आक्रोश, इम्फाल में इंसाफ के लिए कैंडल मार्च। मणिपुर के सीएम ने स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी, मामले पर भड़के लोग। सत्यनिकेतन हादसे में दिल्ली पुलिस ने पीजी ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार किया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट, अब तक मामले में कुल 5 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक महेश ने अगस्त 2025 से बिल्डिंग को सुधांशु और शिवम त्यागी को लीज पर दिया था। पूछताछ में महेश ने बताया कि दोनों हर महीने उसे 1 लाख से ज्यादा रुपए किराया देते थे। दिल्ली में पीजी वालों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी, अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन, किराए की भी होगी सीमा। प्रस्तावित विधेयक के तहत दिल्ली में संचालित हर पीजी का अनिवार्य पंजीकरण होगा, संचालकों को 90 दिन के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, बगल की कमजोर बिल्डिंग को किराने का काम शुरू। दिल्ली में 24 अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बड़ा एक्शन, 2 दिन में कई अवैध बिल्डिंग्स पर हुई कार्रवाई। सत्य निकेतन हादसे के बाद भगत सिंह कॉलेज के पास मौजूद पीजी को कई छात्रों ने किया खाली। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद सख्त हुआ एनएचआरसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने के निर्देश। अवैध पीजी के खिलाफ एमसीडी ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिया नायके के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों देशों के विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर हमला, संगरूर सुसाइड केस में वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकारी नाकामी पर सवाल उठाने पर गुलजार सिंह को प्रताड़ित किया गया, मामले की स्वतंत्र जांच हो। रायबरेली में राहुल गांधी ने सुनी जनता की समस्याएं, पार्टी कार्यालय में उमड़ी भीड़। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट में एंट्री पर सवाल, बीजेपी सांसद बोले ईसीआई की प्रक्रिया का किया पालन। तमिलनाडु में टीवी के कांग्रेस में बड़ी तकरार के बीच आज गठबंधन सहयोगियों से मिलेंगे सीएम विजय। तमिलनाडु की सरकारी कंपनियों पर 2.25 लाख करोड़ का घाटा, 22 कंपनियों की पूरी नेटवर्क खत्म। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की 73 सरकारी कंपनियों से 36 पर कुल 2.25 लाख करोड़ का संचित घाटा है। कावेरी जल विभाग पर कर्नाटक को झटका, तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का मिला निर्देश। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर 9,200 क्यूसेक, कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस को झटका, विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस के 22 विधायकों के पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। तेलंगाना विधानसभा हंगामे पर कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी का बयान, बोले स्पीकर की मां पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। तेलंगाना में लंबित डीए एरियर का मुद्दा, बीजेपी विधायकों ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस।
कर्नाटक महाराष्ट्र में ईडी का एक्शन, सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। लंदन में शिंदे को तीन बड़े सम्मान, महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मजबूत होगी दावेदारी। बिहार में बाढ़ का कहर, बाढ़ प्रभावितों की संख्या 40 लाख के पार, कुल 14 जिले प्रभावित। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर घटा, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के पार बढ़ रही है नदी, पीड़ितों की राहत का इंतजार। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से करीब 1.5 लाख आबादी प्रभावित, कई गांव टापू में तब्दील। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में घुसा गंगा का पानी, हॉस्टल तक पहुंची नदी, छात्रावास खाली कर घर लौटे स्टूडेंट्स। गंगा के बढ़ते जलस्तर से भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, NH-80 पर पानी चढ़ने और ग्रामीण सड़कों के डूबने से कई इलाकों में आवागमन प्रभावित। कटिहार में बाढ़ का कहर, नास दुल्हन के घर पहुंची बारात, मुश्किल हालात में खुशी से हुई शादी। चित्रकूट बाढ़ को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में, प्रभावितों के इलाकों का लिया गया जायजा। यूपी के बाराबंकी में सरयू का रौद्र रूप, कटान के डर से ग्रामीण खुद तोड़ रहे हैं अपने घर। यूपी के फरीकाबाद में गंगाराम गंगा का कहर, 120 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा, 75 स्कूल बंद। उत्तराखंड में लगातार बारिश से यातायात प्रभावित, शव यात्रा सहित सैकड़ों वाहन सड़क खुलने का कर रहे हैं इंतजार। गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक, छात्रों के दौराने पर भागता दिखा स्टाफ। गोरखपुर में धरना दे रहे छात्रों को घुड़की देते दरोगा का वीडियो वायरल, दरोगा ने कहा बता दे रहा हूं, डंडा कर दूंगा। अखिलेश यादव का सीधे सीएम योगी पर अटैक, लिखा संयम और सौम्यता रखें क्योंकि ये आंदोलनकारी छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में कूनी खेल, रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सर में मारी गोली, हालत नाजुक। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगई का आरोप, पड़ोसी के घर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। दिल्ली रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के दो शूटर्स का हाफ एनकाउंटर, 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड, पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली में हिमांशु भाव गैंग के 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग शामिल। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के साथ समाचार कम, कई प्रभावित, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ। एमपी के शिवपुर में 60 फीट ऊंचा पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, 42 घंटे बाद क्रेन से हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर में घर के सामने अचानक दिखा मगरमच्छ, नाले से रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर मचाड़ कम, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। कौशाम्बी में कार सवारों की दबंग गई, बाइक टच होने पर युवक को पेट्रोल पंप पर पीटा। कानपुर में बाढ़ के पानी में बहती दिखी कार, पानी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बरेली में बाढ़ के पानी से करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी ध्वस्त, टंकी गिरने का वीडियो वायरल। सूरत के शाम संगनी टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, हाइड्रोलिक मशीनों से आग पर काबू पाने की में मुश्किल, ड्रोन में कैद हुआ भयावह नजारा। नागपुर के पब में एंट्री को लेकर विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब को आग लगा दी। ज्वेलरी शॉप से गोरखपुर में महिला सोने की 2 अंगूठियां लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में झमाझम बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनी दरिया, अस्पताल में घुटनों तक पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सूरत में रील बनाने के चक्कर में रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, नीचे खड़ा ऑटो रिक्शा पर गिरने से बची जान। जयपुर में चोर ने पुलिस को दिया चकमा, पुलिस से करवा रही थी चोरी, सीसीटीवी ने खोला पूरा राज। नागपुर में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे युवक, 3 की तलाश तेज। ग्रेटर नोएडा में एसएससी की सीएचटी परीक्षा तकनीकी खराबी कारण रद्द, परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही छात्राओं ने केंद्र के बाहर किया हंगामा। उधम सिंह नगर में सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती की रोशनी में इलाज करते दिखे चिकित्सक, वीडियो सामने आने के बाद एडीएम ने जांच की बात कही। सांसद संजय सिंह ने किया टीजीटी पीजीटी अनशनकारियों का समर्थन। अहमदाबाद में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला, पिता भाई ने 22 साल की बेटी को उतारा मौत की घाट, वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए आरोपी ने रची पूरी साजिश। जूनागढ़ में काबू डंपर ने कार को मारी टक्कर, रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे 2 लोग, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। ब्रिज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार देर रात 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने दी जानकारी। लंदन के हीथ्रो, गैटविक और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के साथ साथ इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स इलाके के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग शेड्यूल में दिक्कत। अमेरिका ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा, अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकर्स को किया तबाह। अमेरिकी सेना का दावा, आईजीसी ने अमेरिकी नौसैनिक पोत को 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई से पहले जहाजों के क्रू को बाहर निकालने का दिया गया आदेश, उसके बाद टैंकर्स पर हमला किया गया। आईजीसी ने अमेरिकी युद्ध पोतों की ओर दागी जा रही मिसाइल का फुटेज जारी किया, कहा हमारे बच्चों को डरे से अहमे पलों के बदले में कुहेस्ताक में हुई शादी के
बदले में दी जा रही है ये सजा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूस का भीषण हमला, सुबह में पैसेंजर ट्रेन को बनाया गया निशाना, दोनों हमलों में दो की मौत। 20 सितंबर के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, शांति वार्ता के साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी पर होगी बातचीत। हंगरी ने रूस के 10 राजनयिकों की अनिष्का से देश छोड़ने का आदेश जारी। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की मुलाकात, सर्जेई लावरोव ने कहा मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है रूस।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को एक नया विजन दिया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों से सीधा संवाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया चलाया जाएगा।
1: 17 सितंबर को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन को हर वर्ष हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा कार्यक्रम हम सेवा पखवाड़ा के रूप में करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे, तो जहां उन्होंने सेवा के भाव से समाज को जोड़ते हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे और उनको हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए, इसका उन्होंने प्रयास किया। इसलिए उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और इस वर्ष भी इस रूप में ही मनाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों का जो आयोजन होगा, उसमें पार्टी कार्यकर्ता जनमानस को साथ लेकर हम इन कार्यक्रमों को सफल करने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिन 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो हर साल हम लोग करते हैं और इस साल भी हमारा मानना है कि रक्तदान महादान के रूप में हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और हमारे युवा, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन 17 सितंबर को शाम में 7 बजे आशीर्वाद का दिया। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि पिछले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठावान जनसेवा की है, उसके प्रति आभार व्यक्त हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में करेंगे।
0: वही सेवा संकल्प अभियान के दौरान वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा निकालने का प्लान है। ये सेवा यात्रा 10 राज्यों से गुजरेगी।
1: युवा मोर्चा के माध्यम से एक अलग यात्रा का भी प्लानिंग हम लोग के बीच में है। इसमें 2 यात्राएं निकलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान वडनगर से आज के उनके जो कर्मभूमि है बनारस, तो वडनगर से बनारस के बीच में सेवा यात्रा निकलेगी और उसी प्रकार से बनारस से वडनगर के लिए भी सेवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 10 अलग अलग टोलियों में निकलेगी और ये पूरी यात्रा में का नेतृत्व हमारे युवा करेंगे। प्रत्येक टोली में 50 युवा साथी हमारे होंगे, जो पूरे कार्यक्रम के रूट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जहां हटकेश्वर महादेव वडनगर में जो हमारे स्थान है, वहां से काशी विश्वनाथ दोनों ही स्थानों पर जलाभिषेक करके ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे चौपाल में रहने वाले गांव में चौपाल में रहने वाले लोगों से संवाद करना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लोगों के साथ संवाद करना, किसानों के साथ संवाद करना, हमारे शहर के जो युवा क्लब्स होते हैं उनके साथ संवाद करना, इस प्रकार के

0: भूमिका निभाई, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाएं चलाई और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या कुछ किया गया है उन्होंने बताया।
1: 37 देशों से अधिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ये कहीं ना कहीं ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों को उनके पुरुषार्थ का सम्मान है। आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं तो एक समय यह भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा। आम आदमी को आतंकवाद का डर, भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। कल तक बात होती थी वुमेन डेवलपमेंट की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात को आगे लाया और आज बेटी बचाओ से लेकर बेटी पढ़ाओ से जो सफर का शुरुआत हुआ वो आज लखपति दीदी तक पहुंचा और हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उसका अधिकार और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारा चल रहा है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त भाव सेवा का रहा है।
0: इन पत्रकारों के सवाल पर नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गूंज में ज्यादा दम नहीं है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर छात्रों की गलत आवाज को गलत दिशा देने का आरोप लगाया।
2: देखिए, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, जो व्यक्ति का जिन्होंने गूंज देने का प्रयास किया है उनके आवाज में दम कितना है। बच्चों के आवाज को गलत दिशा देने का प्रयास करने वाले लोग कभी भी, उनके अगर अपने आवाज में दम रहता तो जब उनको मौका मिला था तो इन देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का युवा आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके गूंज का असर केवल उनके कार्यकर्ता तक ही पहुंचेगा। देश के युवा और जनमानस मोदी जी के साथ हैं।
0: और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर खतरनाक और अवैध इमारतों पर एमसीडी का एक्शन तेज हो चुका है। राजधानी में आज 3 जगहों पर एक्शन देखने को मिला है, सत्य निकेतन, लक्ष्मी नगर और पांडव नगर। सत्य निकेतन में उस इमारत को ढाया जा रहा है जो रविवार को गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग के नजदीक है, जबकि पांडव और नगर और लक्ष्मी नगर में अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू हो चुका है।
3: सत्यनिकेतन में हादसे में जो जाने गई उसके बाद दिल्ली सरकार जागी है और लगातार अब दिल्ली में अलग अलग इलाकों में डिमोलिशन ड्राइव चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त पांडव नगर में मौजूद हूं जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है और ये एक बिल्डिंग है जिस पर अब डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है। इस बिल्डिंग में जो सीमा है उससे ज्यादा फ्लोर्स बना दिए गए थे और उसके बाद नोटिस दिए गए और ये बताया जा रहा है कि एक बार पहले भी यहां पर डिमोलिशन किया गया लेकिन दोबारा से यहां कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी टीमें यहां पर एमसीडी की मौजूद हैं, जेई यहां पर हैं और पुलिस भी यहां पर मौजूद है। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है ये महज पांडव नगर इलाके में नहीं चल रही है, ईस्ट दिल्ली में कई और इलाकों में भी चल रही है। कुछ बिल्डिंग्स को सील किया गया है, कुछ बिल्डिंग्स में डिमोलिशन ड्राइव जारी है। बार बार नोटिस चस्पा किए गए लेकिन फिर भी इस तरह के अवैध निर्माण बनते रहे और अब यहां पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ जो जेई हैं, जो ऑफिशियल्स हैं एमसीडी के, वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अरविंद जी, बताइएगा कि यहां पर ये डिमोलिशन आप लोग कर रहे हैं, किस वजह से इस बिल्डिंग को आप तोड़ा जा रहा है?
4: मैडम, ये इलीगल फ्लोर बने हुए हैं, इस वजह से हम इन पे एक्शन ले रहे हैं। हमने इनके अनुतरा कंस्ट्रक्शन में बुकिंग भी की हुआ है, इस वजह से हम इसको तोड़ रहे हैं।
3: और भी कुछ इलाके हैं, और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं इस पूरे इलाके में जिस पे आप?
4: हाँ बिल्कुल मैडम, और भी, हाँ उन पे भी कार्रवाई करेंगे।
3: अरविंद जी, एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्यों सत्यनिकेतन की घटना के बाद ही इस तरह की डिमोलिशन?
4: नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्यनिकेतन की घटना के बाद हुआ है, हम पहले से भी डिमोलिशन एक्शन करते आए हुए हैं। जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम नोटिस देते हैं, फाइल बनाते हैं, डिमोलिशन एक्शन भी करते हैं।
3: तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है इस बिल्डिंग को, जो अनऑथराइज बिल्डिंग है जिसे जो तय मानक है उसके उससे ज्यादा जो फ्लोर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मशीनों के जरिए अब उन फ्लोर्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, मशीनें लगाई गई हैं और एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है, वहां पर पहले ही डिमोलिशन कर दिया गया है। तो लगातार अब पांडव नगर का जो इलाका है, चाहे वो जनकपुरी का इलाका हो, सत्य निकेतन हो, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब सख्ती की

0: जा रही है और अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग्स को सील भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये कार्रवाई सत्य निकेतन की घटना के बाद क्यों की जा रही है? अगर पहले ही इस तरह की कार्रवाई हो जाती तो कुछ मासूमों को बचाया जा सकता था। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: वहीं पांडव नगर की तरह ही लक्ष्मी नगर में भी एमसीडी का एक्शन जारी है, वहां पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए सुशांत मेहरा की रिपोर्ट।
2: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये फोर्थ फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण ना किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके की बिल्डिंग 4 से 5 मंजिला खड़ी कर दी गई, उस वक्त एमसीडी की टीमें कहाँ थी, क्यों एमसीडी की टीम और दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो आंखें बंद करी बैठी थी और इस तरीके की बिल्डिंगों का निर्माण जो है वो होने दिया गया। लेकिन आज जब सत्य निकेतन जैसा हादसा हुआ जिसमें कई मासूम बच्चों की जान गई, मालवीय नगर के अंदर हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, उसके बाद जाकर के प्रशासन जो है वो जागता है और इस तरीके की अवैध निर्माणों पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। एमसीडी की जो टीमें हैं वो यहाँ पर इस वक्त डेमोलिशन करने पहुंची है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये लक्ष्मी नगर का इलाका है और अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको कैमरा अगर पैन करके दिखाएं तो किस तरीके से यहां पर आपको कई ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी जो कि इस बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची आपको नजर आएंगी। सवाल यह है कि आखिरकार इन बिल्डिंगों पर एक्शन कब होगा? बेशक इस बिल्डिंग पर जिस पर हम मौजूद है इस पर हाईकोर्ट का आदेश है, पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज तरीके से बनाई गई थी, बिल्डिंग में किसी प्रकार का नक्शा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरीके की इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, 5 मंजिला इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया था, उस वक्त एमसीडी की टीमें जो है वो कहां थी, इस तरीके के निर्माण को आखिरकार क्यों होने दिया गया? आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा हिस्सा जो है वो डेमोलिशन कर दिया गया और इसके बाद अब नीचे की फ्लोर पर डेमोलिशन किया जाएगा, छज्जे जो है वो डेमोलिशन किए जाएंगे ताकि इस बिल्डिंग का निर्माण जो है वो नहीं किया सके। हालांकि बिल्डिंग ओनर का ये आरोप है कि एमसीडी की टीम तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई पैसा जो है वो नहीं दिया गया, उसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, एमसीडी का माफिया जो है वो काम करता है। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये एक्शन तब क्यों होता है जब इस तरीके से पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाता है या कोई हादसा होता है, उससे पहले इस तरीके की बिल्डिंगों के निर्माण से पहले क्यों रोक नहीं लगाई जाती।
1: और इस बीच सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। चिराग दिल्ली में भगत सिंह कॉलेज के पास स्थित एक पीजी को खाली कराया गया है। पीजी में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और जांच के बाद पीजी में रह रहे शहीद भगत सिंह कॉलेज के छात्रों को बाहर निकाला गया। सभी फिलहाल उनके लिए एक अलग रहने की जगह का इंतजाम किया गया है।
3: चिराग दिल्ली में एक क्रैक एक बड़ी सी बिल्डिंग में दिखाई दी है। प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहाँ से बच्चों को इवैक्यूएट किया, उनको ये आश्वासन दिया कि उनकी बिलोंगिंग्स और उनके बाकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह दिलाने में प्रशासन मदद करेगा। सभी छात्रों को भगत सिंह कॉलेज में और छात्राओं को वोकेशनल कॉलेज में ठहराया गया। सरकार काम करने के लिए है, हम विवादों में पड़ना नहीं चाहते।
1: फिलहाल वक्त एक ब्रेक का उछला, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जेके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: आगे आगे, अरे उधर उधर गिर, करेक्ट करेक्ट।
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। मैं आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा 17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्य निकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजीसी सिटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। सरकार पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी का सवाल उठाने पर धमकी और टॉर्चर। संगरूर सुसाइड केस में घिरे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी अकाली तीनों आक्रामक। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या पहुंची 40 लाख, 14 जिलों में हालात पूरी तरह खराब। बक्सर और भोजपुर से लेकर भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर है लोग। उज्जैन में आस्था और विकास के बीच अजीबोगरीब खींचतान, सिंहस्थ में सड़क चौड़ीकरण के बीच आई हनुमान जी की प्रतिमा पर संग्राम, प्रशासन और हिंदू संगठन आमने सामने।

0: खास पेशकश बात करेंगे एमपी के उज्जैन की, जहां पर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की कोशिश अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया लेकिन जेसीबी और क्रेन की मदद से हनुमान जी की मूर्ति को हटाने की कोशिश जब की गई तो वो टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है। वहीं मंगलवार शाम श्रद्धालुओं ने मौके पर महाआरती की, ढोल ताशे बजाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सैकड़ों लोगों ने साफ कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो, विकास हो, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ से न हटाया जाए। उज्जैन में सिंहस 2026 से पहले सड़क चौड़ीकरण अभियान चल रहा है, लेकिन सड़क किनारे बना हनुमान मंदिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।
1: महाकाल की नगरी में आस्था और प्रशासन आमने सामने। हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने को लेकर लोगों का विरोध। मंदिर टूट गया पर हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां प्राचीन खड़े हनुमान जी की आस्था को लेकर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए।

0: यहाँ पे मौजूद है। ये पूरा इलाका जो है वो हनुमान भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। मंगलवार का दिन है तो मंगलवार को वैसे भी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन जब से इस मंदिर को हटाने का विरोध शुरू हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं।
1: मामला कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2008 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से स्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
2: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
1: प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हटी नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहे।
3: हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर के लिए बाबा यही रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं।
4: मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए जाए।
5: और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर।
1: अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हनुमान जी की प्रतिमा को बिना किसी नुकसान के स्थापित किया जाए और भक्तों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। उज्जैन से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: उज्जैन के खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने के लिए प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। 170 साल पुरानी इस प्रतिमा को हटाने के लिए नगर निगम की टीम्स ने जेसीबी और क्रेन का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन वो तस से मस नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब आर्कियोलॉजिस्ट उनकी स्कैनिंग करेंगे।
7: उज्जैन में हनुमान जी ने लगाया आसन। मूर्ति को एक इंच भी नहीं हिला पाई जेसीबी और क्रेन। हनुमान जी को हटाने के लिए बुलाए गए एक्सपर्ट। उज्जैन में 170 साल पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने के लिए प्रशासन और इंजीनियरों की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। पिछले दो दिनों से आधुनिक तकनीकों के बावजूद हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह से तस से मस नहीं हुई। हनुमान जी की मूर्ति को हटाने के लिए उज्जैन ही नहीं इंदौर से भी एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया ताकि मूर्ति को सही सलामत तरीके से विस्थापित किया जा सके। मंदिर को हटाने के लिए पहले नगर निगम की टीमों ने मजदूरों के साथ मंदिर का ढांचा तोड़ा, फिर जेसीबी और ट्रैक्टर से स्ट्रक्चर हटाया। इसके बाद प्राचीन प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हिली। अगले दिन क्रेन की मदद से भी प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया, फिर इंदौर से पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। उसके बाद मशीनरी या बल लगाने से प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद मशीनों का इस्तेमाल रोक दिया गया। इस पूरे विवाद के बीच इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसके खंडित होने का डर है।
8: वर्तमान जो खड़े हनुमान की प्रतिमा है वो सिंदूर से लिप्त है, इसलिए उसका पूरा स्वरूप और सही स्वरूप जो है वो एकदम ज्ञात नहीं हो पाता है। पुरातत्व विभाग यदि प्रयास करे तो कुछ ज्ञात हो सकता है। ये स्थान उज्जैन के प्राचीन क्षेत्र में आता है और प्राचीन क्षेत्र में अनेक मूर्तियां और देवस्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक खड़े हनुमान भी है।
7: वही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल बिना किसी जल्दबाजी के काम करने का निर्णय लिया है और एक्सपर्ट की टीम प्रतिमा की जमीन में गहराई और आसपास की संरचना की जानकारी जुटा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी। उज्जैन के लोग बड़े हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान कहते हैं और मान्यता है कि यहाँ बच्चों और बीमार लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए प्रतिमा के नहीं हिलने को भक्त भगवान का संकेत और चमत्कार मान रहे हैं। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात पंजाब के संगरूर की करेंगे। यहाँ पर गुलजार सिंह सुसाइड मामले में पंजाब की मान सरकार घिरती दिख रही है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब सरकार पर अब सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है क्योंकि गुलजार सिंह ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कई चीजें साफ हैं कि आत्महत्या के लिए उन्हें मजबूर किया गया और इसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है 5 लोगों के खिलाफ। वहीं गुलजार सिंह के परिवार के साथ साथ पड़ोसियों ने भी गुलजार को धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
9: सरपंच और 3 लोग वहां के उसके घर गुलजार सिंह के घर गए कि तूने यो क्यों बोला। उसने फिर बोला कि मेरे घर में मेरा जो बकरियां मैं पालता था और जो मेरा सामान था वो बिक गया, नशे के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, तो चाहिए मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो उसने उनको बोला कि अभी अपनी बात जो कल बोली तुमने सभा में इसकी माफी मांगो, नहीं तो आप पे मोहनजीत की तरह जो मोहनजीत पे कार्रवाई हो ऐसी आपकी पुलिस माध्यम से आप पे कार्रवाई हो। और हमें ये भी पता चला है गाँव के लोगों से कि ये पंचायत के 4 लोग तो जो चीमा के लोग हैं वो तो गए गए और साथ में उनके 2 पुलिस मुलाजम गए और उनको डराया गया धमकाया गया।
6: कंवल जी संधु में सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कंवल जी, जिन पर FIR दर्ज हुई उन सबकी गिरफ्तारी हो गई है और क्या इस मामले में अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं?
10: देखिए, जो जानकारी हमें मिल पाई है वो कह रहे हैं कि 5 अक्यूज है जो कि नाम उनका FIR में दर्ज किया गया है। अब उन्हें तो अरेस्ट कर लिया गया लेकिन एक अक्यूज है जो अभी भी फरार है और ऐसा बोला जा रहा है कि वो विदेश भाग गया है और उसको लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन इसके बीच में जो विपक्षी पार्टीज है वो आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमने पहले देखा राहुल गांधी ने किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी बड़ा धरना प्रदर्शन हर जगह पे कर रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें शिवमणि अकाली दल भी सवालिया निशान उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी अपने को घिरा हुआ पा रही है। और इसके साथ में उन्होंने डिफेंस अपना सामने रखा है। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई संतुष्टि करा दी गई है परिवार की और अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है जो उनका बेटा है वो कह रहा है कि भाई गिरफ्तार हो चुके हैं तो भाई संतुष्टि है, तो कई लोग बोले कि मैनेज किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि 2 वीडियोज गुलजार सिंह ने बनाया था, तो एक वीडियो में उसने जो 5 लोगों के नाम दिए थे उन्हें तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो दूसरा वीडियो है उसमें हरपाल चीमा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है जिसके ऊपर अब सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा वीडियो है वो ट्यूटेड किस्म का है, तो वहां पे अब जांच पड़ताल किया जाए और इसी वजह से वो SIT वो अहम हो जाती है क्योंकि वो 4 मेंबर SIT हालांकि वो पुलिस की ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो DIG नानक सिंह है वो उसके अध्यक्ष रहेंगे, उसमें ही ये होगा। लेकिन NHRC ने भी वीडियो का कॉग्निसेंस लिया है, 2 हफ्ते का वक्त दिया है पंजाब सरकार को कि जवाब दी ही की जाए। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब राजनीति इस पे पूरी तूल पकड़ रही है, राहुल गांधी ने जिस तरह से सवालिया निशान किया है, अब हमने देखा कि किस तरह से भगवंत मान ने कहा कि भाई हम कोई भी नशे के पीछे हो, युद्ध नशे विरुद्ध का कैंपेन पहले से ही चल रहा है लेकिन कोई भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे वो कटघरे में लाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि देखिए लाशों पर राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने पलटवार किया है। वहीं पर मनीष सिसोदिया ने भी सवालिया निशान उठाया है। तो इस वक्त राजनीति हो रही है, खासतौर पर 6 महीने रह चुके हैं, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है आम आदमी पार्टी पर। और वहां पे जो सवालिया निशान है कि चलिए आपके यहाँ पे ड्रग्स हैं, आप बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन ड्रग्स पर सवाल उठाने
6: बीच गुलजार सिंह की आत्महत्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर पंजाब की मान सरकार दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पंजाब के अलग अलग इलाकों में पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की। वित्त मंत्री और सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसके लिए ही बीजेपी का प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर जारी है। इस पूरे आत्महत्या ने अब सियासी रंग ले लिया है।
11: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी बहुत बार भी जिम्मेवार है। एक पंचायत पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
12: गुलजार सिंह की आत्महत्या में घिरी मान सरकार। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग। पंजाब की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल। पंजाब के संगरूर से ड्रग्स के खिलाफ उठी आवाज की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 50 साल के गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब की मान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलजार सिंह ने गांव में खुलेआम ड्रग्स बिकने का मुद्दा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद उनके आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार के मौत के पहले का एक वीडियो भी जारी किया है। गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद परिवार ने आरोप लगाया है कि उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद गुलजार सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी थी। गुलजार सिंह की मौत के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोहाली में प्रदर्शन कर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग है।
13: आज भी वही हालात है, नशे के हर गांव में लोग मर रहे हैं। और अगर गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
12: बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी एक दिन पहले मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर तुरंत कार्रवाई की मांग की थी।
14: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर, हरपाल चीमा को इस्तीफा देना चाहिए।
12: वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस FIR में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम शामिल नहीं है, तो साफ है कि गुलजार सिंह आत्महत्या को लेकर अब पंजाब में सियासी घमासान और तेज हो गया है। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
11: एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
15: की सवाल किया उसने?
11: मैं चिट्टे बारे सवाल किया था।
6: और पंजाब की आप सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। दरअसल सरकारी नाकामी पर सवाल अगर किया जाएगा तो जवाब धमकी और टॉर्चर से दिया जाएगा। अपने बेटे को नशे के शिकार बनते देखने वाले दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह जी ने वित्त मंत्री से सिर्फ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह से नाकाम क्यों है। बस इतनी सी बात पर उन्हें इतना प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने जहर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए इलाज के अभाव में आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। पिछले हफ्ते एक युवा मोहनजीत सिंह ने भी यही बात कही, जिन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन करने पर प्रताड़ित किया गया। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुछ चलना नहीं। ये राहुल गांधी का ट्वीट इसी बारे में है जो अभी हमने आपको बताया, जिसमें तमाम आरोप आप सरकार पर लगाए गए हैं, खतरनाक पैटर्न दिख रहा है। उन्होंने कहा है सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे तो जवाब धमकी और प्रताड़ना से दिया जाएगा। दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह को प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने जहर खा लिया। और राहुल गांधी के हमले के बाद भगवंत मान ने भी पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी लाशों के ऊपर राजनीति ना कीजिए, पंजाब इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करता है। ये देखिए, कांग्रेस के नेता जब पीड़ित के गांव जाकर यही गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इस मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पुलिस ने पकड़ लिया है। पंजाब में नशा फैलाने की जिम्मेदार अकाली, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही। मेरी सरकार में किसी तरह का नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूरे मामले का राजनीतिकरण हो चुका है कमलजीत, वार पलटवार की स्थिति आप सरकार और राहुल गांधी में दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर जिस तरह का एक्शन लिया गया है अब तक, क्या उससे पलटवार की स्थिति रुक जाएगी मान सरकार पर?
10: देखिए, एक जो चीज है वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, वहां पे उनका जो बेटा है, अब उनका जो फ्रेश बयान आया है उसमें ये बोला जा रहा है और उन्होंने कहा है वो संतुष्ट हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसे 4 मेंबर SIT है, उसमें ADG नौनिहाल सिंह है, वो उसकी अगुवाई में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसी बीच में आपको ये बता दें कि NHRC ने भी डिमांड की है और उसमें वीडियो एविडेंस की बात की गई है। तो इसमें 2 वीडियोज हैं, एक में जिसमें वो 5 लोगों का नाम आ रहा है और दूसरा वीडियो है जिसमें हरपाल चीमा का नाम भी लिया जा रहा है। तो यहां पे दूध का दूध और पानी का पानी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से कल गवर्नर साहब से मिली और उन्होंने बात रखी कि पंजाब पुलिस तो पंजाब सरकार के अंडर आती है, तो वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है, और इसी वजह से ये जांच CBI द्वारा होनी चाहिए। और उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे किए गए। हमने देखा राहुल गांधी ने सवालिया निशान उठाया है। उससे पहले अगर हम बात करें, मोहनजीत नाम का व्यक्ति है जिसने काला झंडा उठाया था, वो भी ड्रग्स की बात कर रहा था, उसके साथ मारपिटाई होनी। उसके बाद गुलजार सिंह ने सवालिया निशान किया हरपाल चीमा को। हालांकि अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई उसकी पूरी सुनी गई और उनका कोई लेना देना नहीं है, जो कि हैरेसमेंट और उसके बाद जो सुसाइड हुआ है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे उन्होंने एक और चीज, जैसे भगवत मान ने पहले साफ की और कहा कि भाई हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं,
6: ठीक है कमलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर गरबा पर मुसलमानों की एंट्री पर जंग तेज है। सरकार के मंत्री और VHP मुसलमानों की एंट्री के खिलाफ फरमान जारी कर रहे हैं। तो CM की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबे को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गरबा एक सर्वसमावेशी उत्सव है और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति गरबा देखने जाता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अमृता फडणवीस ने यह बयान मंत्री नितेश राणे के बयान के बाद दिया, जिसमें मंत्री ने कहा था कि गरबा उत्सव में मुस्लिमों को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए।
16: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्वसमावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत। मला वाटतं पहा, साऊंड डिस्टर्बन्स जे असतात, जे अप्रूव्ह त्याची इंटेन्सिटी असते ती लक्षात घेऊन आणि जे आपल्या सरकारने, राज्य सरकार किंवा आता सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पण आहेत ते लक्षात घेऊन आपण सणवार साजरा करावे। सणवार नक्कीच आपल्याला साजरा करायचे, पण असं नको व्हायला की ज्या सोसायटीमध्ये आपण राहतो त्या लोकांनाच त्रास होत राहो। तर मला वाटतं श्रद्धा किंवा आपला धर्म हे घरात आपण जेवढं त्याला फॉलो करतो तेवढं चांगलं, बाहेर सणवारांच्या वेळेस जे फॉलो करू ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
6: मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जिस तरह का बयान यहाँ पर अमृता फडणवीस दे रही हैं, क्या लगता है गरबा को लेकर कोई फॉर्मली कोई आदेश दिया जा सकता है सरकार द्वारा ताकि मुस्लिमों के प्रवेश पर वहां पर बैन लग सके, रोक लग सके?
17: देखिए, जो आदेश दिया गया है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिया गया है, जो संवैधानिक मूल्य है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस तरीके का आदेश आए ये बहुत मुश्किल बात लगती है। अमृता फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, उन्होंने जो बयान दिया है वो भले ही एक तरह से सामाजिक एकता का हो, लेकिन इससे कई हिंदू संगठन जो है वो भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि गरबा जो है कोई कल्चरल इवेंट नहीं है बल्कि एक धार्मिक प्रोग्राम है और जो लोग उस विषय में आस्था रखते हैं उन्हीं को गरबा पंडालों में आना चाहिए, किसी और व्यक्ति के आने की कोई वजह नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। VHP की तरफ से आदेश ऑर्गेनाइजर को जारी किए गए हैं कि लोगों के आधार कार्ड चेक करें, अगर लोग आ रहे हैं तो उनको माथे पर टीका लगाकर गरबा पंडालों में जाने दें। तो उस पर अब जब अमृता फडणवीस का बयान आया है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर गरबा देखना चाहता है तो वो उसके उत्सव का
6: जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए। आज
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
21: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अल्फा जेंजी नई पीढ़ी की बहुत बात हो रही है, उनके बीच में भी नई सोच नई विचारों के साथ और समाजवादी पार्टी के यही छात्र नौजवान जाकर के उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। जब नई पीढ़ी के लोग जुड़ेंगे और जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जहां टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तमाम नौकरियां रोजगार हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सर्विस सेक्टर में डिलीवरी बॉयज भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी पा जाएंगे। उसी दिशा में पढ़ाई और हमारे कैंपस हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या व्यवस्था हो कि जहां हम नियो इंडिया बनाने में सहयोग कर सकें। हमें उम्मीद है कि छात्र सभा के लोग मिलकर के जब कैंपस में जाएंगे तो सुझाव भी मिलेंगे और सुझावों को शामिल कर करके हम लोग आने वाले समय में मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संभल की जामा मस्जिद की तस्वीर तो आप पहचानते होंगे। यही है वो मस्जिद जिसे लेकर 2 साल पहले मंदिर होने का दावा किया गया और फिर हिंसा हुई थी। और उसी जामा मस्जिद से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह है बहाउद्दीन मस्जिद, जिसे लेकर अब प्रशासन और पुरातत्व विभाग दोनों की साझा जांच शुरू हो गई है। संभल में चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास कब्रिस्तान के पीछे की जमीन को लेकर विवाद ये है कि एसआई की संरक्षित धरोहर जामा मस्जिद के नाम दर्ज जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मुसाफिर खाने बनाए गए हैं। दूसरा आरोप है कि मनोकामना मंदिर की 1.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जमीन को वक्फ का बताकर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है, जिसमें गाटा संख्या 116 की 1980 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया है। गाटा संख्या 171 की 1600 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मुसाफिर खाने बने हैं। गाटा संख्या 171-2 की 45,400 वर्ग मीटर जमीन में से 3800 वर्ग मीटर पर भी मुसाफिर खाना बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2019 में NTCA प्रदर्शन के दौरान इसी अवैध मस्जिद और मुसाफिर खाने से निकले हथियारबंद लोगों ने पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बस में आग लगाई थी और पुलिस वालों पर प्राण घातक हमले किए थे। डीएम को दी गई शिकायत के आधार पर SDM को जांच सौंपी गई थी। उससे पहले तहसीलदार ने पैमाइश के दौरान दावा किया था कि इस इलाके में आर्य समाज मंदिर की जमीन पर भी 1 मजार और 10 मकान अवैध रूप से बना लिए गए हैं, जिन्हें हटाने को कहा जा चुका है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा 17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्य निकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा रही है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। मान सरकार पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी का सवाल उठाने पर धमकी और टॉर्चर। संगरूर सुसाइड केस में घिरे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी अकाली तीनों आक्रामक। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या पहुंची 40 लाख, 14 जिलों में हालात पूरी तरह खराब। बक्सर और भोजपुर से लेकर भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र में गरबा पर मचा गदर, मंत्री नीतीश राणे ने कहा मुसलमानों की एंट्री हो बैन, तो सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता बोली मुसलमानों के गरबा में जाने से कोई दिक्कत नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में अब किस तरह से मौत की इमारत गिरी थी, उसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया है, कितनी इमारतें तोड़ी जा रही है, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। और उस बड़ी खबर के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी एट 25 क्या तैयारियां की जा रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर क्या खास करने जा रही है सरकार बीजेपी, ये हम आपको पूरी रणनीति बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में कैसे मुजफ्फरनगर दंगों की एक बार फिर से याद आ गई, और कैसे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो घेराव कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कर रहे हैं। और फिर ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे गरबा पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की बात की जा रही है, कैसे मुसलमानों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, गरबा में उनकी एंट्री बैन की बात की जा रही है, ये सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो दिल्ली में और सत्य निकेतन में जिस तरह से बिल्डिंग गिरती है और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई बिल्डिंगों को चिन्हित कर दिया गया है, करीबन 27 इमारतें ऐसी बताई गई हैं जिस पर अब एक्शन जारी है। और एक बार फिर आपको बता दें सरकार ने जर्जर पीजी के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है, 27 इमारतों को गिराने का आदेश है। सत्य निकेतन से लेकर लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार तक जर्जर घरों पर एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है। एमसीडी ने 24 इमारतों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है, करीब 7 प्रॉपर्टी सील की गई है, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखिए 5 मंजिला इमारत गिरी थी सत्य निकेतन में, 7 लोगों की मौत हुई थी, 5 लोग जख्मी हुए थे। और सीधे रुक कर लेते हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में सुशांत मेहरा जुड़ चुके हैं। सुशांत जरा बताइए इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, और कई इमारतों को तोड़ने की बात भी कही जा रही है, जर्जर हो चुकी थी, बताइए उनके बारे में।
2: हाँ देखिए हिमांशु, मेरे पीछे अगर आप बिल्डिंग देखेंगे ये गीता कॉलोनी की बिल्डिंग है, और ये पूरी बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग एक तरफ टिल्ट होती हुई आपको नजर आएगी। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लोग रहते थे, उसको डेंजर घोषित करके इसको इवैक्यूएट कराया गया, लोग यहाँ से हटाए गए, और उसके बाद अब इसका डेमोलिशन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर दिल्ली में अवैध निर्माण हो, चाहे वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो पहले से बनी हुई हो, या फिर डेंजर बिल्डिंग जहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, उन सबको लेकर के डेमोलिशन करने के लिए उन पर एक्शन लेने की आदेश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। और वही तस्वीर जो है वो इस वक्त दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है वो नजर आ रही है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, लक्ष्मी नगर के अंदर हमने देखा कि नई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से निर्माण कार्य किया गया और बिल्डिंग बिना नक्शे के बनाई गई, कोर्ट का आदेश हुआ, और उसके बाद आज एमसीडी की टीम जो है वो डेमोलिशन कर रही है। वहीं अब गीता कॉलोनी जो कि कृष्णा नगर का इलाका पड़ता है, यहां पर बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो दूसरी बिल्डिंग के बीच में एक गैप जो है वो आपको नजर आएगा, एमसीडी की टीम बकायदा उसकी टेपिंग कर रही है, गैप देखा जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरीके से सत्य निकेतन के अंदर हुआ, लोग रह रहे थे। लेकिन वहां पर कमी ये थी कि जिस तरीके से जब ये हादसा हुआ था उस वक्त रिनोवेशन का काम चल रहा था, जो कि पूरी तरीके से गलत था। एक जोन के तमाम अधिकारी, जेई से लेकर के असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डीसी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली भर में जहां जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग डेंजर है, जहां पर अवैध पीजी चल रहे हैं, जहां पर पीजी में दिक्कतें हैं, जहां पर लोगों को परेशानी है, उन सब पर अब एक्शन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो लिया जा रहा है।
0: छात्रों के लिए क्या है, छात्रों को लेकर क्या खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पीजी छोड़ भी रहे हैं, जो अपनी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, उनको भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अब वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो स्पष्ट हो गया है ना।
2: देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सत्य निकेतन में हादसा हुआ, बच्चों के साथ साथ उनके जो परिवार वाले हैं वो भी अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और यही वजह है कि आसपास की उन तमाम बिल्डिंगों से निकाल करके जहां पर उनको लगता है कि बच्चे जिन हालातों में रह रहे हैं, बेशक उनको मजबूरी के अंदर ज्यादा पैसा देना पड़े, दूसरे इलाकों में जाना पड़े, उन दूसरे इलाकों के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। देर रात को भी तस्वीरें आई, कल भी अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने चिराग दिल्ली इलाके के अंदर तकरीबन 12 बजे के आसपास कई बच्चों को जो है वो जर्जर हालत की जो बिल्डिंग थी जिसमें क्रैक्स आए हुए थे, उस बिल्डिंग से,
0: और ये लोगों का डर है, छात्रों का डर है, वो साफ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी सहयोगी शिवानी भी इस वक्त पांडव नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। शिवानी, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है?
3: हिमांशु, देखिए, जो कुछ हुआ सत्य निकेतन में उसके बाद सत्ते में सरकार है, सरकार के ऊपर दबाव है, और कई जगह पे तो जर्जर इमारतों को गिराया जा रहा है, और कई जगह नई इमारतों में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पोर्शंस हैं उनको भी यहां पर डिमोलिश किया जा रहा है। पांडव नगर में मैं जिस बिल्डिंग में मौजूद हूं वो एक नया कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां पर एक फ्लोर एक्स्ट्रा बनाया गया था, लिहाजा उस एक्स्ट्रा फ्लोर को यहां पर तोड़ा जा रहा है। ये डिमोलिशन ड्राइव सुबह से चल रही है, एमसीडी के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहां पर ये डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं। इस पूरे बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस की मौजूदगी में और जो जेई है एमसीडी के उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है। व्यवधान भी आ रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं, क्योंकि जिनका घर है उनका ये कहना है कि तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इससे भी ऊंची हैं, उन्हें क्यों नहीं बख्शा गया, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, तो आखिर क्यों उनकी ही बिल्डिंग पर इस तरह का काम किया जा रहा है। तो तमाम चुनौतियों के बीच यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। पांडव नगर का समसपुर गांव है ये, और ये पांचवें फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं, जिसका घर है बिजली उन्होंने काट दी है, लिहाजा मशीन्स नहीं चल पा रही है, तो हथौड़ों के जरिए ये काम किया जा रहा है, और पूरी टीम यहां पर मौजूद है। कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं एमसीडी से कि आखिर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आप कहां थे, एक दिन में तो ये बिल्डिंग बनी नहीं थी, तो अचानक जब सत्य निकेतन के बाद सरकार सत्ते में आई है, अब एक प्लान बना है, दो दर्जन से
0: प्लान बनाया है, उस प्लान पर आगे बढ़ा जा रहा है, और अब हथौड़ा भी चल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, और उसके बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, साउथ नॉर्थ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: रविवार को सत्य निकेतन में जहां पीजी हादसे में 7 बच्चों की जान गई, उसके ठीक साथ वाले बिल्डिंग में जहां कनकलता पीजी चलता था, अब एमसीडी के हथौड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं, और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है, जहां कल तक वो पीजी होता था जिसमें उन बच्चों की जान गई, अब उसी जगह पे सारे मलबे को छत से गिराया जा रहा है, लगातार हथौड़ों से प्रहार करके टॉप फ्लोर को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक टेम्पररी रूम था उसको तोड़कर गिराया गया, पीछे इलेक्ट्रिकल रूम है उसको तोड़ा गया, अब ड्रिलर्स और हथौड़ों के सहारे पूरी बिल्डिंग को एक एक फेस कर एक एक फ्लोर कर तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर प्लान तरीके से हटाया जाए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अनसेफ डिक्लेयर हो गया है। देखिए किस तरह से हथौड़ों का इस्तेमाल हो रहा है।
5: ठीक 2 दिन पहले आज तक ने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कैसे मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए हैं। ये वो जगह है जो पिछले 4 साल से खतरे का निशान बनी हुई है मुखर्जी नगर के अंदर, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्यनिकेतन में जब घटना हुई उसके बाद हमने कई इलाकों की रियलिटी चेक की, और जब हम मुखर्जी नगर 2 दिन पहले पहुंचे तब हमने दिखाया कि कैसी ये बिल्डिंग भी बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है। और आज तक की रिपोर्ट के बाद अब एमसीडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है। और आज तक की टीम लगातार उन दिल्ली के अलग अलग कोनों तक जाती रहेगी और दिखाती रहेगी कि कैसे कमजोर स्थिति में कई ऐसे मकान हैं जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि कार्रवाई हो सके, लोगों की जानें बच सके, लोग अपने आप को दिल्ली में सेफ महसूस कर सकें।
0: देखिए आम जनता का ये दुर्भाग्य है, जब कोई बड़ा हादसा होता है, दुर्घटना होता है, तभी प्रशासन की नींद टूटती है और उसके बाद अब ये हथौड़ा चलता है प्रशासन का पंजा। उत्तम नगर में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, वहां से हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जरा बताइए वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, प्रशासन का पंजा कैसे काम कर रहा है?
5: जी बिल्कुल हिमांशु, सत्यनिकेतन में जिस तरह से घटना हुई उसके बाद से दिल्ली सरकार, एमसीडी और अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो जाग चुकी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में है और यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो छज्जा निकला हुआ था वहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस छज्जे को गिराया जा रहा है। हमारी जब अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो छज्जा है वो निकाला गया है, नक्शा पास नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। सीधी तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस लगभग 4 मंजिला इमारत को गिराया जा रहा है। अधिकारियों का ये मानना है कि जो परमिशन लेने की जरूरत थी वो नहीं ली गई, और हमने इसी तरह की कार्रवाई दिल्ली के कई इलाकों में देखी है, चाहे वो फिलहाल उत्तम नगर की हो या पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, सत्यनिकेतन और कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसी तरह की इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी जगन्नाथ जूम करके दिखा देंगे कि कैसे पर छज्जे को गिराया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं, समझते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आपका नाम?
6: मेरा नाम अभिषेक पांडे है।
5: तो ये यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है?
6: यहाँ पे यही बिना नक्शे के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी जिसको लगभग 1 महीने पहले बुक किया गया था और आज फिर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है।
5: अच्छा, ये आपको इसके बारे में जानकारी कब मिली सर?
6: जानकारी ये पहले से ही ग्राउंड फ्लोर से ही बुक है और पहले से ही जानकारी है, पहले से ही इस पे कार्रवाई हमारी चल रही है। लगभग
5: जो लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जिनकी इमारतों के नक्शे पास नहीं हो, उनको आप क्या कहना
6: चाहिए? नहीं, यहाँ पे ये तो ऐसा ये रेगुलराइज्ड एरिया है और यूआर एरिया है, तो इसमें नक्शा पास हो सकता है, तो हम इतना खर्च अभी भी हो रहा है तो हम क्यों ना वो नक्शा पास कराने की अपनी फी वगैरह जमा करके और चीजों को नक्शे से बनाया।
5: तो अधिकारियों को ये कह रहे हैं मानसून कि यहाँ पर नक्शा पास नहीं हुआ और जिन मापदंडों को फॉलो करने की जरूरत थी वो नहीं हुआ, इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मेरी मौजूदगी उत्तम नगर के एक रिहायशी इलाके में है और ये रेगुलराइज कॉलोनी है। हालांकि होता ये है कि रेगुलराइज कॉलोनीज में लोग जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, इसीलिए एमसीडी को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है। देखिए ये सरिया जो है वो रखा हुआ था, ये दरअसल कंस्ट्रक्शन पिछले काफी महीनों से चल रहा था, लेकिन जब एमसीडी को इसके बारे में जानकारी मिली कि छज्जा यहाँ पर निकाला गया है, एक्स्ट्रा मतलब जो नक्शे से बाहर छज्जा है वो जब निकाला गया, तब उसके बाद एमसीडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के जनक उत्तम नगर में हम इस वक्त होती हुई देख पा रहे हैं। जी
0: मंच, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है कि अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, उनसे भी जब इस बारे में पूछा गया सत्यनिकेतन में जो हादसा हुआ उसके बाद छात्रों की मौत हो जाती, घायल हो जाते हैं, उसके बाद उनका क्या कहना था वो सुनते हैं।
7: नहीं, आपने जो विषय उठाया है मैं पूरी तरह से उन छात्रों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो समस्याएं आई हैं, जो थ्रेट दिखा है समाज के सामने, उसको निश्चित रूप से हमारी सरकार एड्रेस करेगी और हम देश के युवाओं को, खास करके जो भी लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनको भारत की सरकार हमेशा हमारे एक अच्छे माहौल में उनको शिक्षा मिले, सुरक्षित माहौल मिले, इसकी चिंता हम हमेशा करेंगे। और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है, और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है, और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
0: देखिए, सरकार अब एक्शन मोड में, चिराग दिल्ली में भगत सिंह कॉलेज में जो पीजी था अब उसको भी खाली कराया जा रहा है, और जगह जगह ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं।

0: और पीजी में रह रहे शहीद भगत सिंह कॉलेज के छात्रों को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने फिलहाल इन सभी छात्रों के लिए रहने की जगह का इंतजाम किया है।
1: चिराग दिल्ली में एक क्रैक एक बड़ी सी बिल्डिंग में दिखाई दी है। प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहां से बच्चों को इवैक्यूएट किया, उनको ये आश्वासन दिया कि उनकी बिलोंगिंग्स और उनके बाकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह दिलाने में प्रशासन मदद करेगा। सभी छात्रों को भगत सिंह कॉलेज में और छात्राओं को वोकेशनल कॉलेज में ठहराया गया। सरकार काम करने के लिए है, हम विवादों में पड़ना नहीं चाहते।
0: और देखिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है, और एक बार फिर आपको बता दें कि सत्य निकेतन जो हादसा हुआ उस मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको बता दें, पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उस हादसे को लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग के मालिक महेश ने अगस्त 2025 में इमारत दो बिजनेस पार्टनर शुभम त्यागी सुधांशु को लीज पर दी थी। दोनों पार्टनर्स ने इस बिल्डिंग में हॉस्टल डेज के नाम से पीजी चलाया था और चला रहे थे। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश अभी भी जारी है। और अब बात करेंगे बीजेपी की तैयारियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आने वाला है, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री, तो 25 साल का जो उनका ओवरऑल जो कार्यकाल है उसको लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के जन सेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होंगे, और इसी का नाम दिया गया है सेवा संकल्प अभियान। ये चलाया जाएगा इसी पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन अभी ने पूरी तैयारी की रूपरेखा बताई, कहा कि 7 अगस्त 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुई नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक यात्रा है वो पिछले 25 साल में जन सेवा से राष्ट्र सेवा तक पहुंची।
2: 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है, और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
0: और देखिए ये यात्रा चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यात्रा का रूट भी बताया, वडनगर से लेकर काशी, काशी से वडनगर, इस तरह से यात्रा निकाली जाएगी।
2: युवा मोर्चा के माध्यम से एक अलग यात्रा का भी प्लानिंग हम लोग के बीच में है। इसमें दो यात्राएं निकलेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म स्थान वडनगर से आज के उनके जो कर्मभूमि है बनारस, तो वडनगर से बनारस के बीच में सेवा यात्रा निकलेगी, और उसी प्रकार से बनारस से वडनगर के लिए भी सेवा यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 10 अलग अलग टोलियों में निकलेगी, और ये पूरी यात्रा में का नेतृत्व हमारे युवा करेंगे। प्रत्येक टोली में 50 युवा साथी हमारे होंगे, जो पूरे कार्यक्रम के रूट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जहां हटकेश्वर महादेव वडनगर में जो हमारे स्थान है, वहां से काशी विश्वनाथ दोनों ही स्थानों पर जलाभिषेक कर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे चौपाल में रहने वाले गांव में चौपाल में रहने वाले लोगों से संवाद करना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लोगों के साथ संवाद करना, किसानों के साथ संवाद करना, हमारे शहर के जो युवा क्लब्स होते हैं उनके साथ संवाद करना, इस प्रकार के करीब 7-8 कार्यक्रम प्रत्येक दिन ये टोली करेगी।
0: तो देखिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बता रहे थे कि क्या क्या तैयारियां की जाएगी, किस तरह से बनाया जाएगा इस अभियान को, और सेवा संकल्प यात्रा कैसे चलाई जाएगी, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
2: देखिए मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, जो व्यक्ति का जिन्होंने गूंज देने का प्रयास किया है उनके आवाज में

0: दम कितना है। बच्चों के आवाज को गलत दिशा देने का प्रयास करने वाले लोग, कभी भी उनके अगर अपने आवाज में दम रहता तो जब उनको मौका मिला था तो इन देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का युवा आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके गूंज का असर केवल उनके कार्यकर्ता तक ही पहुंचेगा। देश के युवा और जनमानस मोदी जी के साथ हैं।
1: ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, सेवा संकल्प अभियान, क्या खास तैयारी है और कितना बड़ा इस कार्यक्रम को बनाने की तैयारी है बीजेपी की?
2: देखिए, ये जो कार्यक्रम होगा, मैं आपको बता दूं हिमांशु, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है वो ये है कि एक एक जन तक वो जाएं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 25 सालों में लोगों के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम कर रही है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा और लोगों से ये एक अपील भी की जाएगी कि कम से कम 25 मिनट जो है वो आप अपने जीवन के दें और किसी न किसी तरीके में नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कॉन्ट्रीब्यूट करें। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो एम्फेसिस रहेगा वो जो अपकमिंग इलेक्शन स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, इन सब स्टेट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी, खासतौर से जो युवा वर्ग है उसको बताने की कोशिश की जाएगी कि पिछले कई सालों के अंदर किस तरीके से पॉलिसीज में बदलाव आया है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो किस तरीके का तरह से देखा गया है कि इकोनॉमिक्स को बदला गया है, फ्रजाइल 5 से जो है अब टॉप 5 के अंदर लेके आया गया है और एक पूरे भारत को जो है एक धागे के अंदर, एक सूत्र के अंदर जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ये जो अगला एक महीना है इसके अंदर करेगी और इसकी शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर, एक महीना पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे हिन्दुस्तान के अंदर
1: पूरी तैयारी है। चुनावी मोड़, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फोकस में कौन है? फोकस में है यहाँ पर जेन जी, ये तो पिछले कुछ समय से इस देश की राजनीति देखकर आप समझ गए होंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने जेन जी को लेकर क्या कहा, वो भी आपको बता दें।
3: अगर आज हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो जहां एक ओर देश का युवा निराशा के वातावरण में था, उसको आशा और उम्मीद के वातावरण में लाकर खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया और हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से, जहां भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बना और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न में हमारे युवा आगे आकर केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरे। और हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि आज भारत खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है।
1: अब देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो नारा छुपा को लेकर बयान दिया गया था, उसको अब वीडियो एक जारी किया गया है और वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में हर वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने नाराज फूफा वाले बयान से विपक्ष को घेरा था। वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस चुप बैठने वाली कहां थी, कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि नाराज फूफा उनकी नजर में कौन है

0: ये तो आपने देख लिया, लेकिन 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था नाराज फूफा को लेकर, वो बयान आपको सुनवाते हैं एक बार।
1: अब ये जो नाराज फूफा जी है वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहां जाएंगे, जिन्होंने ट्रक खरीदा है उनका क्या होगा। अब फूफा जी को काम मिल गया, झूठ की गुंज से भरमाने वाले तो हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन भारत का नौजवान सच की हुंकार से चलता है।
0: तो जैसा आपको बताया था कि इस बयान के बाद कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं थी, कांग्रेस भी पलटवार करती, तो पवन खेड़ा की तरफ से भी जवाब आया, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको।
2: आप मैं देखो जो ही आप नाराज फूफे का शब्द इस्तेमाल करते हो मेरे जहन में एक चेहरा आता है नरेंद्र मोदी का, वो नेहरू जी से नाराज, वो इंदिरा जी से नाराज, वो राजीव जी से नाराज, वो मनमोहन सिंह जी से नाराज, वो जैन जी से नाराज, वो किसान से नाराज, वो आपसे नाराज, मीडिया वालों से कुछ मीडिया वालों से नाराज, वो तमाम उन लोगों से नाराज जो उनसे सवाल पूछते हैं। इस देश का अगर कोई नाराज फूफा है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, फूफा इन चीफ, नाराज फूफा इन चीफ श्री नरेंद्र मोदी।
0: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
8: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट?
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा।
8: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
7: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
9: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रशासन है, सरकार है, मौतें छुपा रही है। 50 से ज्यादा मौतें हुई है, 33 जगह का खुद परिवारजनों से मिलकर आया। परिवारजनों की वेदना, एक साल की बेटी है, पिता मौत पे चले गए, यतीम हो गई। 30 साल की पत्नी है, दो बच्चे हैं, पति चला गया, तीनों अनाथ हो गए। एक घर है जिसमें तीन पुरुष थे, दो पुरुष मर गए शराब पी के, सब महिलाएं बच्ची, एक भर्ती है।
3: कोई आंकड़े नहीं छुपा रही है, सबके सामने है, जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है, छिपाना क्यों छिपाना है?
4: सर आज कितनी
3: जो स्थिति हुई है वो सब सामने है। 13 लोगों के बारे में मैंने बताया कि 13 लोगों की डेथ हुई है जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, और 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 30 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। और कोई भी जो भी लापरवाही करी होगी, जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही करी होगी, अभी भी जांच में जो भी सामने आएंगे उनके खिलाफ
4: कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं।

और आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो गरबा को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिलती है। हर साल का ही है, वैसे इस बार भी अमृता फडणवीस और मुख्यमंत्री उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है जिसमें वो कहती हैं कि सर्व समावेशी उत्सव इसे कहा जाता है गरबा, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से बयान दिया जाए तो वो गलत है। नीतीश राणे की तरफ से बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गरबा होता है वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होना चाहिए, और अमृता फडणवीस कह रही हैं कि यहां पर सब आ सकते हैं, सभी का स्वागत है।

0: गरबा को लेकर जो सवाल विश्व हिंदू परिषद ने उठाए, वीएचपी ने जो चिंताएं जताई, अब वही सवाल सियासत की असल वजह बन गए हैं। सवाल नवरात्रि में आयोजित होने वाले गरबे से जुड़ा है। सवाल उसमें मुस्लिमों के शामिल होने पर उठा है और इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नितेश राणे और सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस आमने सामने हैं। अमृता फडणवीस ने गरबा को लेकर अहम बयान दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने गरबा को लेकर जो कहा, पहले वो आप सुनिए।
1: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गरबाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत। मला वाटतं पहा साऊंड डिसेबल्स जे असतात, जे अप्रूव त्याची इंटेन्सिटी असते ती लक्षात घेऊन आणि जे आपल्या सरकारने, राज्य सरकार किंवा आता सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पण आहेत ते लक्षात घेऊन आपण सणवार साजरा करावे। सणवार नक्कीच आपल्याला साजरा करायचे, पण असं नको व्हायला की ज्या सोसायटीमध्ये आपण राहतो त्या लोकांनाच त्रास होत राहू। तर मला वाटतं श्रद्धा किंवा आपला धर्म हे घरात आपण जेवढं त्याला फॉलो करतो तेवढं चांगलं, बाहेर सणवारांच्या वेळेस जे फॉलो करू ते नियमात राहून फॉलो करायला।
0: मुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी ने उन नेताओं को आईना दिखाया जो गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात करते हैं। अमृता फडणवीस कह रही हैं कि किसी मुस्लिम के गरबे में आने को वो गलत नहीं मानती। अमृता फडणवीस चंद्रपुर के सबसे बड़े महाशिवलिंग मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा कि त्योहार और उत्सव जरूर मनाए जाने चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे उत्सवों से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो।
2: भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री नितेश राणे और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की बीवी अमृता फडणवीस ने गरबा पर दिए गए बयानों की वजह से राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में फिलहाल त्योहारों का मौसम है और इसी बीच नेताओं की बयानबाजी की बरसात महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये बयानबाजी कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है।
0: आखिर मुख्यमंत्री की पत्नी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने गरबा को लेकर अपनी बेबाक राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे लव जिहाद को रोकना हम सबका काम है।
3: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और जिनको अगर उस पे गरबा में आना ही है, जैसे ईद में किसी भी काफिर को जाने का परमिशन नहीं है, कोई भी ईद के जुलूस में कोई हिंदू को जाने का परमिशन है क्या? तो उस वही नियम यहां भी अगर मुस्लिम समाज को लगाया जाए तो फिर उसमें गलत क्या है?
0: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने यह भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर लें।
3: और तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन हैं जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें, टीका लगाए, हनुमान चालीसा मने, देवी माँ का आरती बोले, मूर्ति की जाके पूजा करें, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, कुरान में, इस्लाम में मूर्ति पूजा का महत्व ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर गरबा या हमारे हिंदू फेस्टिवल्स में आना ही है, हिंदू बन जाओ, वापिस अपने हिंदू धर्म में आ जाओ और अपने फेस्टिवल्स मनाओ, कोई किसी को हरकत नहीं है।
0: नितेश राणे के ऐसे बयान के बाद ही अमृता फडणवीस ने नाम लिए बगैर उन्हें जवाब दिया है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: हमारे सहयोगी मुस्तफा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, ये बताइए, वीएचपी की तरफ से एक मांग उठी, फिर नितेश राणे की तरफ से बयान आता है और अब अमृता फडणवीस का बयान आ गया है, ये मुद्दा और कितना आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुस्तफा सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये जो मुद्दा था ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उठाया गया था। अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो गरबा में आते हैं नॉन मुस्लिमों को एंट्री नहीं दी जाए, पहले आधार कार्ड देखा जाए, टीका लगाया जाए और उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाए, जिसके बाद नीतीश राणे ने इसका समर्थन किया था और उसी के बाद से ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया।
5: जिस गरबा को भक्ति और आनंद का उत्सव माना जाता है उस पर सियासत की ऐसी स्याही बिखेरी गई है कि टकराव बढ़ा हुआ है। मंत्री नीतीश राणे का दावा है कि जिहादी ऐसे आयोजनों में नाम बदलकर घुसते हैं और वो लव जिहाद जैसी साजिश रचते हैं।
3: गरबा और नवरात्रि के वक्त जो जिहादी उसमें नाम बदल के घुसते हैं, असली नाम होता है अब्दुल, मगर गरबा के अंदर घुसने के वक्त अपना हिंदू नाम रख देते आशीष, और वहां जाके हमारे हिंदू बहनों से गलत झूठ बोल के फंसाने का काम करते, उनको जिंदगी खराब करने का काम करते, ऐसे 100 तो केसेस मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद मिल चुका हूं उनसे।
5: विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों के लिए पिछले हफ्ते ही गाइडलाइंस जारी किए। इसमें गैर हिंदुओं की पहचान करने की बात कही गई है, आधार कार्ड चेक करने और माथे पर तिलक लगाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। गाइडलाइंस जारी करते हुए वीएचपी ने कहा था कि नवरात्रि देवी की पूजा का पर्व है, इसलिए मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
6: भी पूर्व में भी कई बार ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, उपद्रव करना, वहां पे किसी प्रकार के न्यूसेंस फैलाना, ये भी पूर्व में देखा गया है। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, वंदे मातरम नहीं बोलते ये लोग, ये भारत माता के जय नहीं बोलते, तो क्यों यहाँ आना? अगर इनको श्रद्धा है तो तिलक लगाएं, हाथ में कवलावा पहने और इनके अपने श्रद्धा स्थान, इनके अपने पूजा आराध्य स्थानों पर ये नवरात्रि का आयोजन करें।
5: गरबा को लेकर बीएचपी की गाइडलाइन आई तो सियासत तेज हो गई। तब शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने इसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की कोशिश बताया।
7: कौन है हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले, कौन है ये लोग? बात यही है, मुंबई में गरबा हो, नवरात्रि हो, दहीहंडी हो, गणपति हो, सारे लोग पहली आइडेंटिटी इनकी, यहाँ आप देख रहे हैं सब मुंबईकर है, कोई भी भाषा के हो, कोई भी प्रांत के हो, धर्म के हो, जाति के हो, बाप्पा के लिए आते हैं ये, कोई लोग कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं आते, बाप्पा ये सबका है।
5: सवाल उठे तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी शुरू हो गया।
8: मुझे लगता है सबने अपने अपने मजहब में सबने अपने अपने त्योहार मनाने चाहिए, अगर किसी को शौक है तो माथे पे तिलक लगाओ, हम हर जगह स्वागत करने को तैयार हैं।
9: किसी के बाप के मुल्क की जागीर नहीं है, यहाँ सब मिलजुल के सब त्योहार बनाते हैं, सब कल्चरल मल्टी कल्चर यहाँ पे ये चलता है रिवाज। आप कौन होते हो डिक्टम दिखाने वाले, आधार कार्ड दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ये देश में नफरत फैलाना बंद कर दो आप लोग।
5: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराज का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: अब देखिए, पहले नीतीश राणे का बयान आया, फिर अमृता फडणवीस का बयान आया, अब इन सबके बीच में बीजेपी के नेता राम कदम का भी बयान आता। वो कहते हैं कि जिसके मन में आस्था नहीं है उसके लिए गरबा नहीं है, उसके लिए तो ये डिस्को है। उनसे बात की हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी।
2: आप ही के पार्टी के एक नेता हैं, एक मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, लेकिन दोनों के बयानों में काफी विरोधाभास नजर आता है, क्या कहेंगे?
10: देखिए, मूलतः इस बात को समझने की आवश्यकता है, नवरात्र के दरमियान देवी मां के सामने आराधना करते समय, उपासना करते समय ध्यान मग्न होकर के रास करना, यही नवरात्रि का गरबा होता है। अब वह रास वही व्यक्ति विशेष करेगा जिसकी देवी मां पर श्रद्धा है, जो उपासना करना चाहता है, जो आराधना करना चाहता है, जो ध्यान मग्न होकर के देवी मां के सामने रास करना चाहता है। यह कोई डिस्को डांस नहीं है कि जहां पर कोई भी आए और करे। हाँ, श्रद्धा है, हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए दोनों विधानों को व्यापकता से देखने की आवश्यकता है। दोनों भी विधान अपनी अपनी जगह पे एक उसके अलग अर्थ और अलग मायने हैं।
11: सर, लेकिन आप किसके विधान से ज्यादा सहमत करते हैं, नीतीश राणे या अमृता फडणवीस जी?
10: मैं वही कह रहा हूं ना, अगर श्रद्धा अगर किसी के मन में है, आस्था अगर किसी के मन में है, तो कोई भी आ सकता है। और श्रद्धा और आस्था अगर नहीं है और वहां अगर अन्य धर्म के लोग आएंगे तो उनके लिए वो डिस्को डांस है। देवी मां के सामने वो आराधना का ध्यान मग्न होकर के रास हो सकता है, डिस्को डांस नहीं हो सकता।
4: वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता हैं आनंद दुबे। अब आनंद दुबे कह रहे हैं कि धर्म के मामले में जब गरबा होता है ना तो उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए।
12: नवरात्रि हम अपनी माँ के आराधना के लिए 9 दिन व्रत रहते हैं, डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, हमारे सनातन धर्म में पूरे भारत में इसका हर्षो उल्लास होता है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि नवरात्रि में कोई नहीं जाएगा जो गैर हिंदू है। अमृता फडणवीस जी कह रही हैं कोई भी जा सकता है, इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? हमारे सनातन धर्म को लेकर इतना खींचतान क्यों किया जाता है? मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं? क्या कारण है उनके आने का? इस पर राजनीति न हो तो ज्यादा अच्छा है। हमारे धर्म को धर्म ही रहने दो, राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ।
4: और अब बात करते हैं उस फिल्म की जो सुर्खियां बटोर रही है, जो कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है, हनुमान अंश की। मुंबई में एक जगह से हनुमान अंश हटती है और उसके बाद से विवाद खड़ा हो जाता है। मुंबई के बांद्रा के स्थित नामी गेटी गैलेक्सी थिएटर से फिल्म हनुमान अंश का शो हटाने के बाद विवाद हुआ। पुलिस के जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद थिएटर पर ताला लग गया है। थिएटर ने फिल्म हनुमान अंश के शो हटा दिए थे, जिसे लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। तब जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने पता लगाया कि 2021-22 से थिएटर ने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है। पुलिस ने तुरंत थिएटर के संचालकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया और नोटिस जारी किया।
2: मुंबई के बांद्रा में स्थित गेटी गैलेक्सी थिएटर का एक विवाद सामने आया है, जहां पर हनुमान सिंह अंश पिक्चर लगाया गया था लेकिन वो प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके बाद कुछ लोग नाराज हुए और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस को मध्यस्थता करनी पड़ी और इसकी एक जांच शुरू करनी पड़ी। जांच में मुंबई पुलिस ने पाया कि इस थिएटर ने अपना लाइसेंस नहीं रिन्यू कराया था और साथ ही कई टेक्निकल खामियां भी पुलिस को जांच में मिली, जिसके बाद पुलिस ने थिएटर को नोटिस दिया है और फिलहाल ये थिएटर जो है वो बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कई पिक्चर यहां पर लगे थे लेकिन कोई, और इसी में से एक पिक्चर था हनुमान अंश, जिसका एक शो रविवार के दिन शुरू होना था लेकिन वो शो नहीं शुरू हो पाए। जिन लोगों ने टिकट ली थी, जो लोग वो पिक्चर देखने आए थे, उनको वो पिक्चर नहीं देखने को मिली, जिसके बाद से इस थिएटर में हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस को मध्यस्थता करनी पड़ी। फिलहाल हम थिएटर के मालिकों से और इनके जो मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस थिएटर का भविष्य क्या होता है। कैमरामैन सचिन सावन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: हनुमान अंश ये मूवी हर जगह इस वक्त सुर्खियां बटोरती हुई दिखाई दे रही है और हनुमान अंश का जो स्टार कास्ट है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि हनुमान अंश का स्टार कास्ट है, जिन्होंने बाबा नीम करौरी का पात्र निभाया है वो भी हैं और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर, सभी लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।
13: आप तो कैसे किरदार पूरा इसमें निभाया है, कैसे आपको ये चीजें?
14: बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये किरदार निभाया है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सब वही कर रहे थे।
13: एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है इस किरदार को लेकर, कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना ऊंचा पहुंच गया और नीम करौरी बाबा जिसको हम महान,
14: मेरे लिए रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है, बाबा का नाम जगह जगह जा रहा है ये मेरे लिए मायने रखता है।
13: एक मिनट बस रुक जाइए, एक आप बताइए, क्योंकि आप भी गाना लगातार आपने गाया है इसमें, कैसे ये जो गाने लगातार हिट हो रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं उनको, क्या आपने धुन बनाई, किस तरीके से दिमाग में आया?
15: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में बात बनी और
13: जन बस अगर आप सुना दें तो बहुत ज्यादा ठीक रहे।
15: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खो मर रही काय जिद कर रही काय खो मर रही ऐसे वर के लाने कैसे भर के लाने जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर ऐसा जाके शीश पे गंगा और गले पे डारे फिर ऐसा इतने सीधे साधे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
4: तो ये तो हनुमानंद की बात होगी, लेकिन बिहार में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा बेकार है और ये हालात बढ़ते जा रहे लगातार। हालांकि कुछ जगहों पर पानी कम हुआ है लेकिन ज्यादातर जगहों पर हालात अभी तक सामान्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 40 लाख के पार हो गई है जो बाढ़ प्रभावितों की संख्या है। अब कौन कौन सी जगह है वो देख लीजिए। पटना है, भोजपुर है, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, अरवल, ये बाढ़ के गंभीर हालात हैं। इन जगहों पर 40 लाख से ज्यादा लोग अभी तक प्रभावित हुए हैं। बचाव अभियान भी चल रहा है लेकिन बहुत से लोग तक मदद पहुंचाने की उन तक कोशिश की जा रही है लेकिन हालात सही नहीं है। अभी हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने उन लोगों से बात की जो इस वक्त इस बाढ़ की वजह से परेशान हैं।
16: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पर से गुजर रहा है, गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है और लगातार अभी जो हालात हैं वो गंगा राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। भागलपुर में खासकर अगर हम कहें तो किस तरीके से गंगा जो है वो राइजिंग ट्रेंड पर है और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं किस तरीके से कमर भर पानी में यहाँ इनको रस्सी के सहारे जो है यहाँ गुजरना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर करंट इतना तेज़ है कि यहाँ पर आप पैर अगर आपका ज़रा सा भी लड़खड़ाएगा तो आप डूबने का खतरा है। और ये देखिए किस परिस्थितियों में जो स्थानीय लोग हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है वो किस विकट परिस्थिति में जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
17: मेरा राजेश ठाकुर।
16: राजेश जी ये बताइए कहाँ जा रहे हैं बैग लेके आप लोग?
17: अभी कलकत्ता जा रहे हैं।
16: कलकत्ता जा रहे हैं?
17: हाँ।
16: तो आपने ट्रेन पकड़ना है आप लोगों को?
17: हाँ, रात में ट्रेन है।
16: तो अभी आप लोग निकल गए हैं बैग वैग लेके?
17: हाँ, जल्दी निकल गया, पता ही नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। गाड़ी मिलेगी? पानी तो है ऊपर कमर के ऊपर तक
16: पानी है। सारा गाँव डूबा हुआ है क्या?
17: पूरा गाँव डूबा हुआ है।
16: चलिए तो अब देख सकते हैं किन परिस्थितियों में लोगों को अब जैसे कलकत्ता जाना है नहीं ट्रेन पकड़ना है लेकिन अब बाढ़ के हालात हैं तो ऐसे में बहुत जल्द निकल चुके हैं लोग घर से। और वाकई ये करंट आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा होना भी जो है बेहद मुश्किल हो रहा है और गंगा का पानी जो है वो लगातार फैलता जा रहा है और नए नए इलाकों में जो वो जा रहा है और खासकर भवनाथपुर की भी तस्वीरें अपने आप में कितने डराने वाली हैं ये देखा जा सकता है। सहयोगी राजीव सिद्धार्थ के साथ रोहित सिंह, भागलपुर आज तक।
4: और देखिए ओडिशा के बालासोर के जंगलों में 5 ओरंगुटान मिलते हैं और उसके बाद से ये जो खबर है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। आमतौर पर ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, अब ये मिले हैं। उदयपुर वन विभाग की टीम ने इन ओरंगुटान को रेस्क्यू किया है, इन्हें नंदकानन में रखा गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि बालासोर पहुंचे कैसे क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। वन विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे वन्य जीव तस्करों का हाथ तो नहीं है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
21: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं। जय
20: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: बरेली में बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है और बरेली में बाढ़ ने पानी के करोड़ों की लागत से बनने वाली टंकी को अपनी चपेट में ले लिया है। शेरागढ़ के बैरम नगर में जल जीवन मिशन के तहत ये टंकी बनाई जा रही थी। 3,97,00,000 रुपए की लागत से टंकी बनाई जा रही थी, लेकिन बाढ़ की वजह से ये ढह गई है। खास बात यह है कि गाँव में करीब 70% से ज्यादा घरों में पाइपलाइन और नल लगाए जा चुके हैं और इस टंकी से पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन अब लोगों के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है।
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंग ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा। 17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी हथौड़ा चला। मान सरकार पर राहुल गांधी का अड्डा, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी का सवाल उठाने पर टीचर जो है टॉर्चर और धमकियां, संगरूर सुसाइड केस में घिरे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल तीनों आक्रामक। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या पहुंची 40 लाख, 14 जिलों में हालात पूरी तरह खराब, बक्सर और भोजपुर से लेकर भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर है लोग। महाराष्ट्र में गरबा पर मचा गदर, मंत्री नितेश राणे ने कहा कि मुस्लिमों की एंट्री हो बैन, तो सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता बोली मुस्लिमों के गरबा में जाने से कोई आपत्ति नहीं।

नमस्कार, मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। अब समय हो गया सुपरफास्ट अंदाज में आपको आपकी शहर की खबर बताने का, 100 शहर 100 खबर। सत्य निकेतन हादसे में दिल्ली पुलिस ने पीजी ऑपरेटर सुधांशु को किया गिरफ्तार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। अब तक मामले में 5 गिरफ्तार, शुभम त्यागी फिलहाल फरार। पुलिस के मुताबिक महेश ने अगस्त 2025 से बिल्डिंग को सुधांशु और शुभम त्यागी को लीज पर दिया था। पूछताछ में महेश ने बताया कि दोनों हर महीने उसे 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया देते थे। दिल्ली में पीजी वालों की मनमाने पर लगान लगाने की तैयारी, अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन, किराए की भी सीमा होगी। प्रस्तावित विधेयक के तहत दिल्ली में संचालित हर पीजी का अनिवार्य पंजीकरण होगा। संचालकों को 90 दिनों के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी, अब बगल की कमजोर बिल्डिंग को गिराने का काम भी जारी, तो पांडव नगर में भी एक्शन। दिल्ली में 24 अवैध निर्माणों के खिलाफ एमसीडी का बड़ा एक्शन, 2 दिनों में कई अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई, उत्तम नगर में भी बुलडोजर चला। सत्य निकेतन हादसे के बाद से भगत सिंह कॉलेज के पास में मौजूद पीजी कई छात्रों ने किया खाली। सत्य निकेतन वाली बिल्डिंग के हादसे के बाद से सख्त NHRC दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल क्षमता बढ़ाने पर जोर है। अवैध बीजे के खिलाफ एमसीडी ने शुरू किया स्ट्रक्चरल सर्वे, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई। नाराज फूफा पर मुख्य प्रधानमंत्री के लगातार अटैक के बाद बीजेपी ने जारी किया एक म्यूजिकल वीडियो, देश के विकास पर विपक्ष को दिखाया इसमें आग बबूला। पीएम मोदी ने कल फिर से कहा था कि अभी जो नाराज फूफा जी हैं वो चिल्लाएंगे, पर हमें विकास करना ही है। दिल्ली में म्यूजिक टीचर विकास सिंह की हत्या के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश, इम्फाल में सड़कों पर कैंडल मार्च निकला। मणिपुर के सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी, मामले पर लोगों में गुस्सा है। CBSE के 3 भाषा नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र से क्लास 6 को राहत देने पर विचार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में संकल्प अभियान चलाया जाएगा। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री को 25 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने सेवा के संकल्प को जारी रखा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देने का किया शुरू, नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का पार्टी का 4C प्लान पर फोकस। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, विरासत और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर जोर बढ़ाया। मथुरा, काशी और अयोध्या के लगातार दौरों के साथ साथ विकास परियोजनाओं और धार्मिक पर्यटन पर भी सीएम का जोर। सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले में मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका में बिना कानूनी नोटिस के कार्रवाई का आरोप है। सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर मुस्लिम समाज का गुस्सा, बोले कि यह जल्दबाजी और राजनीतिक फैसला, इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, मस्जिद तो दोबारा बनेगी। मुजफ्फरनगर दंगों पर बीजेपी का फिर समाजवादी पार्टी पर हमला, अखिलेश सरकार के कार्यकाल को लेकर उठाए गए सवाल। बुलंदशहर हेलीपैड पर जल भराव को लेकर अखिलेश यादव का हमला, बोले कार्यक्रम रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा था प्रशासन। राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का शिवपाल यादव को लेकर बड़ा दावा, बोले बेटे या बहू को विधायक बनवाने के लिए RLD से संपर्क साधने की बात। ओबीराज भर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले अहीर जहीर को कंट्रोल करें नहीं तो 2027 में 27 सीट भी नहीं जीतेंगे। ओबीराज भर ने कहा कि जिन अपराधियों को आपने हमारी यूनिफॉर्म की कॉपी करके नीली ड्रेस पहनाई है उन्हें उसी सुहेलदेव सेना की तरह का अनुशासन भी सिखाइए। राजभर के यूनिफॉर्म के रंग को लेकर दिए गए बयान के बाद सपा ने कहा कि छात्र सभा में पढ़े लिखे बच्चों को अपराधी कहना गलत। राजभर के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, सुनील सार्जन बोले राजनीति का स्तर इतना ना गिराए। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स के लिए एक तोहफा, अब 70 साल तक सरकारी डॉक्टर्स दे सकेंगे सेवाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारादिसा नायके के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों देशों के विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर हमला, संगरूरी सुसाइड केस में वित्त मंत्री के सीधा इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकारी नाकामी पर सवाल उठाने पर गुलजार सिंह को प्रताड़ित किया गया और मामले की स्वतंत्र जांच हो। रायबरेली में राहुल गांधी ने सुनी जनता की समस्याएं, पार्टी कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट में एंट्री पर सवाल, बीजेपी सांसद बोले कि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है।
तमिलनाडु में टीवी के कांग्रेस में बड़ी तकरार के बीच में आज गठबंधन सहयोगियों से मिलेंगे सीएम विजय। तमिलनाडु के सरकारी कंपनियों पर 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा, 22 कंपनियों की पूरी नेटवर्क खत्म। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के 73 सरकारी कंपनियों में से 36 पर कुल 2,26,000 करोड़ का संचित घाटा है, जबकि 2022-23 में 37 कंपनियां घाटे में रही थी। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को झटका, तमिलनाडु के लिए 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश मिला। तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी का पानी बढ़कर हुआ 9,200 क्यूसेक, कावेरी डेल्टा ने सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस को बड़ा झटका, विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस के 22 विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया सस्पेंड। तेलंगाना विधानसभा हंगामे पर कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी का बयान, बोले कि स्पीकर की मां पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। तेलंगाना में लंबी डीए एयरवेयर का मुद्दा, बीजेपी विधायकों ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ईडी का एक्शन, सतीश जारकीहोली से जुड़े हुए ठिकानों पर छापे मारे। लंदन में शिंदे को 3 बड़े सम्मान, महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण के बीच मजबूत होगी दावेदारी। बिहार में बाढ़ का कहर, बाढ़ प्रभावितों की संख्या 40 लाख के पार, कुल 14 जिले प्रभावित। समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर अब 10 सेंटीमीटर घटा है, लेकिन खतरे के निशान से अब भी ऊपर और लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से लगभग 1.5 लाख की आबादी प्रभावित हुई और कई गांव टापू में तब्दील, हाईवे के किनारे लोग रहने को मजबूर। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में घुसा गंगा का पानी, हॉस्टल तक पहुंची नदी, छात्रावास खाली करके स्टूडेंट्स लौटे, ऑनलाइन ही होंगी क्लासेस। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर, नेशनल हाईवे 80 पर पानी चढ़ने और ग्रामीण सड़कों के डूबने से कई इलाके वहां पर आवागमन हुआ प्रभावित। कटिहार में बाढ़ का घर, नाम से दुल्हन के घर पर पहुंची बारात, मुश्किल हालत में भी खुशी से हुई शादी। चित्रकूट बाढ़ को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में, अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए कहा, उन्होंने जायजा लिया। यूपी के बाराबंकी में सदियों का रौद्र रूप, कटान के डर से ग्रामीण खुद ही अपने घर को तोड़ रहे हैं। यूपी के फरुखाबाद में गंगा रामगंगा का घर, 120 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा, 75 स्कूल बंद। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद यातायात प्रभावित, शव यात्रा समेत सैकड़ों वाहन सड़क खुलने के इंतजार में। गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में नोकझोंक, छात्रों के दौड़ाने पर स्टाफ भागता हुआ दिखाई दिया। गोरखपुर में धरना दे रहे छात्रों को घुड़की देते हुए दरोगा का वीडियो वायरल, दरोगा ने कहा कि मैं बता रहा हूं ठंडा कर दूंगा। अखिलेश यादव का सीधे सीएम पर अटैक, लिखा कि संयम और सौम्यता रखें क्योंकि ये आंदोलनकारी छात्र हैं, अपराधी नहीं। गुरुग्राम में पैसों के विवाद में खूनी खेल, रिटायर्ड फौजी ने दोस्त के सिर में मारी गोली, हालत नाजुक। मेरठ में पूर्व पत्नी हाजी याकूब के बेटे पर तमंचा लेकर दबंगई का आरोप, पड़ोसी के घर पर पहुंचने का सीसीटीवी वायरल, फिरोज उर्फ भूरा पुलिस हिरासत में। दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटर्स का हाफ एनकाउंटर, 5 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। दिल्ली में हिमांशु भाव गैंग के 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों में तो एक नाबालिग भी शामिल है। सीहोर में पानी फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के हिसाब से हड़कंप, कई लोग इससे प्रभावित, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। एमपी केशवपुर में 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा सांड, 42 घंटों के बाद क्रेन से किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। बिजनौर में घर के सामने अचानक दिखा मगरमच्छ, नाले से रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। कौशाम्बी में कार सवारों की दबंगई, बाइक टच होने पर युवक को पेट्रोल पंप पर पीट दिया गया। कानपुर में बाढ़ के पानी में बहती हुई दिखाई दी कार, पांडु नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बरेली में बाढ़ के पानी से करोड़ों की लागत से बन रही पानी की टंकी गिरी, टंकी का गिरने का लाइव वीडियो भी सामने। सूरत के श्याम संगनी टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, हाइड्रोलिक मशीनों से आग पर काबू पाने में मुश्किलें, ड्रोन में कैद हुआ भयावह नजारा। नागपुर के पब में एंट्री को लेकर हुआ विवाद, ईगो हर्ट होने पर आरोपी ने पब को आग लगा दी, घटना सीसीटीवी में कैद, 2 गिरफ्तार। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में महिला 2 सोने की अंगूठी लेकर फरार, ये घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में चमाचम बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनी दरी, अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को परेशान। सूरत में रील बनाने के चक्कर में रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिरा युवक, नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिरने से बची जान।
जयपुर में चोर ने पुलिस को दिया ऐसा चकमा कि पुलिस से ही करवा दी गई चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नागपुर में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचे युवक एक गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में एसएससी की सीएचटी परीक्षा तकनीकी खराबी के चलते रद्द, परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही छात्राओं ने केंद्र के बाहर किया हंगामा। उधम सिंह नगर में सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती की रोशनी में इलाज करते दिखे चिकित्सक, वीडियो आया सामने, एडीएम ने जांच के दिए आदेश। सांसद संजय सिंह ने किया टीजीटी पीजीटी अनशन कार्यों का समर्थन, बोले कि शिक्षक भर्ती नियम बदलाव, तुगलक की फरमान, 6 से 7 लाख युवा प्रभावित। अहमदाबाद में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला, पिता भाई ने 22 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट और वारदात को दुर्घटना का रूप देने के लिए आरोपी ने साजिश भी रची। जूनागढ़ में बेकाबू डंपर ने कार को टक्कर मार दी, रेत के नीचे दबी गाड़ी, बाल बाल बचे 2 लोग, घटना सीसीटीवी में कैद। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, मंगलवार देर रात 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स में कैंसिल और फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 घंटे की जानकारी दी। लंदन के हीथ्रो गेटवेक और सैंडस्टेड एयरपोर्ट के पास में इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स इलाके के एयरपोर्ट्स पर भी उड़ाने, टेक ऑफ और लैंडिंग शेड्यूल में लगातार दिक्कत निकल आई। अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से तनाव बढ़ा, अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकर्स को किया तबाह, आईआरजीसी के हमलों के जवाब में कार्रवाई, अमेरिकी सेना का दबाव, आईआरजीसी ने अमेरिकी नौसैनिक को पोत को 2 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, उसके जवाब में 5 कच्चे तेल के टैंकर्स को नष्ट किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक कार्रवाई से पहले जहाजों के क्रू को बाहर निकालने का आदेश दिया गया और टैंकर्स पर इसके बाद हमला हुआ। आईआरजीसी ने अमेरिकी युद्धपोतों की ओर दागे जा रहे मिसाइलों का फुटेज किया जा रहा, कहा हमारे बच्चों के डरे सहमे पलों का ये बदला लिया है और कुहिस्तान में शादी के बदले में एक्शन। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूस का भीषण हमला, सुमी में पैसेंजर ट्रेन को बनाया गया निशाना, 2 लोगों की मौत। 20 सितंबर के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता के साथ साथ इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी पर होगी बातचीत। हंगरी ने रूस के 10 राजनयिकों को किया निष्कासित, देश छोड़ने का जारी किया गया फरमान, कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन पर हंगरी की कार्रवाई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से की मुलाकात, लावरोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में मध्यस्थता करने के लिए हम तैयार हैं। बॉक्स ऑफिस पर छाई कालीन भैया और मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई अब 100 करोड़ के पार। केआर विश्वासघात के गाने लेकर आ रही फिल्म लव लॉटरी, अक्षय ओबेरॉय के सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना रिलीज, इस गाने में प्रीतम ने इस गानों को कंपोज किया। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने गाना बना दिया मनी फॉलोज माय ब्रदर टाइटल के गाने को का टीजर जारी हुआ। 4 साल के बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे हैं सिंगर विशाल मिश्रा, जल्दी आने वाली है उनका ये गीत और सोशल मीडिया पर जानकारी दी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर सड़क के चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन आमने सामने हैं, लोग थोड़ा सा नाराज हैं, गुस्से में। दरअसल हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की कोशिश अब प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। मंदिर का भवन जो तोड़ दिया गया है, लेकिन जेसीबी और क्रेन की मदद से

0: कि ढोल ताशे बजाए हनुमान चालीसा का पाठ किया। सैकड़ों लोगों ने साफ कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो, विकास हो, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को यहां से नहीं हटाया जाए।
1: महाकाल की नगरी में आस्था और प्रशासन आमने सामने। हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने को लेकर लोगों का विरोध। मंदिर टूट गया पर हनुमान जी तस्मस नहीं हुए। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां प्राचीन खड़े हनुमान जी की आस्था को लेकर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए।

0: हनुमान भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। मंगलवार का दिन है तो मंगलवार को वैसे भी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन जब से इस मंदिर को हटाने का विरोध शुरू हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं।
1: मामला कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है।
2: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीज़ें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट्स प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
1: प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हटी नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहे।
3: हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर के लिए बाबा यही रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं।
4: मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए।
5: और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर।
1: अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हनुमान जी की प्रतिमा को बिना किसी नुकसान के स्थापित किया जाए और भक्तों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। उज्जैन से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपको संबोधन सुनाते हैं जो श्रीलंका के दौरे पर है।
7: इंडिया इज अनडाउटेडली सेंट्रल टू एनी स्ट्रेटजिक डिस्कोर्स ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। इन श्रीलंका इंडिया सीज ए फ्रेंडली नेबर, ए लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड एंड ए रिलायबल पार्टनर। इंडिया श्रीलंका मैरिटाइम कोऑपरेशन is thus not only mutually beneficial but quite essential to our collective safety and security. Friends, there are several complementaries that make our maritime cooperation productive and mutually beneficial. From capacity building to joint exercises, our cooperation helps us to sharpen our skill sets and upgrade our competency to handle emerging challenges. But we need not to be oblivious to the rapidly changing global and regional dynamics where.
6: और मोदी कैबिनेट के बाद इस समय अश्विनी वैष्णव जानकारी देने, कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले हुए?
8: कंजेस्टेड है, लाइन कैपेसिटी ऑलरेडी 100% से ज्यादा इसकी हो चुकी है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस प्रोजेक्ट को

0: जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर्स, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। एज ऑलवेज रेलवे का जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है दैट्स ह्यूज। इस प्रोजेक्ट से भी करीब 43 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचेगी। सो दिस इज हाईली एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। और अगर इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बचानी है तो एनवायरमेंट में वी हैव टू प्लांट 1,73,00,000 ट्रीज, देन ओनली इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सिग्निफिकेंट बचेगी, 967 करोड़, और 125,00,000 ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब मैं आता हूं झारसुगुड़ा तक आए, उसके आगे छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि छत्तीसगढ़ में सीरियस कंजेशन रहता है। आप सब जानते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क 50-60 साल तक डेवलप नहीं हुआ था, बहुत इग्नोर किया गया था। पिछले 12 साल में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के अप्रूव हो रहे हैं, सैंक्शन हो रहे हैं, बिकॉज ट्राइबल एरिया है और बहुत लोगों के एस्पिरेशंस हैं उनको मीट करने के लिए। इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी देश की एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसमें दो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, बेसिकली बिलासपुर से चालू करें हम, बिलासपुर से पेंड्रा, पेंड्रा से आगे कटनी। अगेन यहाँ पर थ्री लाइंस बन चुकी है कुछ जगह और कुछ जगह डबल लाइन है, तो इसको पूरे को फोर लाइनिंग किया जा रहा है फ्रॉम बिलासपुर टू कटनी। बिलासपुर टू कटनी को पूरी तरह से फोर लाइनिंग किया जा रहा है वाया अनूपपुर, और अनूपपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है जिससे कि टुवर्ड्स झारखंड का ट्रैफिक भी जाता है और टुवर्ड्स आगे बिहार और उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक को भी जाता है। एंड कटनी तो आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा प्रयागराज इंपॉर्टेंट है उतना ही कटनी इंपॉर्टेंट है रेलवे के नेटवर्क में। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स हैं इसमें सब, एग्जिस्टिंग लाइन कैपेसिटी सेचुरेटेड है, ये नए प्रोजेक्ट आने से लाइन कैपेसिटीज की फुलफिल होगी, एक्स्ट्रा ये सारे डिटेल्स आप देख ही सकते हैं 5 मिलियन टन।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे भुवनेश्वर से, ब्रेक के लिए आप देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में। अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ना इतना दुखद है कि जान चले गए। पुलिस से बात करते समय पूरा जांच का पता तो लग गया है। अब पुलिस ने मुझे बताया कि 8 दिन के लगभग अंदर में, मैंने विदिन 2 सप्ताह में बहुत स्ट्रांग चार्जशीट भी फाइल कर देंगे कोर्ट में, कड़ी सजा होना चाहिए। 8ों का 8 अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों से है, यह काम करते हैं, बाहर से आए हैं सब लोग, और अभी तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन चार्जशीट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यही बात हुआ है। जब कोई भी मर्डर होता है, मौत होते हैं या कोई विक्टिम होता है, तो उसमें कौन सा स्टेट है क्यों देखते हैं? वो तो पूरा इंडियन है ना, भारतीय है, हमारा नॉर्थ ईस्ट के भी तो भारतीय हैं, उसमें राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। ये जो ढाबे में काम करने वाले और जो डिलीवरी बॉयज है जो खाना वाना पहुंचाते हैं, ये लोग अलग अलग राज्य से आए और रात को कैसे झगड़ा हुआ, तो जो भी हुआ मौत हो गए ना, तो मौत होने का बाद तो ये घटना तो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो तुरंत कार्रवाई हुआ। और दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द ही, ये लोग तो भाग गए थे, और बहुत जल्द इनको अरेस्ट किया है। इसलिए मैंने कहा कि चार्जशीट कब तक होगा, तो दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि लगभग 8-9 दिन के अंदर में चार्जशीट दायर हो जाएगा कोर्ट में, ताकि उनका सजा जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत कठोर सजा मिलना बहुत जरूरी है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा 17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। मान सरकार पर राहुल गांधी का अटैक, कहा पंजाब में खतरनाक पैटर्न, नाकामी का सवाल उठाने पर धमकी और टॉर्चर। संगरूर सुइसाइड केस में घिरे मुख्यमंत्री, कांग्रेस बीजेपी अकाली तीनों आक्रामक। बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 40 लाख, 14 जिलों में हालात पूरी तरह खराब। बक्सर और भोजपुर से लेकर भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर लोग।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के संगरूर के गुलजार सिंह सुइसाइड केस की, जहां ड्रग्स पर मंत्री के सामने सवाल उठाने वाले गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद मान सरकार घिरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सबने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है।
1: चीमा भी जिम्मेवार है, ये गल का मेरी बहुत बार भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
2: गुलजार सिंह की आत्महत्या में घिरी मान सरकार, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग, पंजाब की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, पंजाब के संगरूर से ड्रग्स के खिलाफ उठी आवाज की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 50 साल के गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब की मान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलजार सिंह ने गांव में खुलेआम ड्रग्स बिकने का मुद्दा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद उनके आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार के मौत के पहले का एक वीडियो भी जारी किया है। गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद परिवार ने आरोप लगाया है कि उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद गुलजार सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी थी। गुलजार सिंह की मौत के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोहाली में प्रदर्शन कर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग है।
3: आज भी वही हालात है, नशे के हर गांव में लोग मर रहे हैं, और अगर गुलजार जैसा भाई खड़ा होके बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
2: बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी एक दिन पहले मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर तुरंत कार्रवाई की मांग की थी।
4: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर, हरपाल चीमा को इस्तीफा देना चाहिए।
2: वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस FIR में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम शामिल नहीं है, तो साफ है कि गुलजार सिंह आत्महत्या को लेकर अब पंजाब में सियासी घमासान और तेज हो गया है। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
1: एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
5: की सवाल किया उसने?
1: मैं चिट्टे बारे सवाल किया।
0: गुलजार सिंह की आत्महत्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर पंजाब की मान सरकार नजर आ रही है। बीजेपी ने पंजाब के अलग अलग इलाकों में पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की। गुलजार सिंह की आत्महत्या को लेकर राहुल गांधी ने भी मान सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है, सरकारी नाकामी पर सवाल करोगे तो जवाब धमकी और टॉर्चर से मिलेगा। दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह जी को सवाल पूछने पर प्रताड़ित और अपमानित किया गया, माफी मांगने के लिए इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने जहर खा लिया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते हुए इलाज के अभाव में आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गए। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा ले और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। राहुल गांधी के हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट करके भगवंत मान ने कहा है कि राहुल गांधी जी, लाशों के ऊपर राजनीति न करो, पंजाबी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते। ये देखिए, कांग्रेस के नेता जब पीड़ित के गांव जाकर भी यही गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इस मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। पंजाब में नशा फैलाने की जिम्मेदार अकाली, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। भगवंत मान लिखते हैं कि मेरी सरकार में किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने जर्जर पीजी के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। 27 इमारतों को गिराने का आदेश है। सत्यनिकेतन से लेकर लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार तक जर्जर इमारतों पर MCD का हथौड़ा चल रहा है। MCD ने 24 इमारतों को तोड़ना शुरू किया है। करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई है। 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 6 सितंबर को सत्यनिकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी, 5 लोग जख्मी हुए। इस हादसे के बाद MCD ने प्रॉपर्टी नंबर 13 को लेकर आदेश जारी किया था और इसे आसपास रहने वाले लोगों और पड़ोसी इमारतों के लिए खतरा बताया था।
6: रविवार को सत्यनिकेतन में जहां PG हादसे में 7 बच्चों की जान गई, उसके ठीक साथ वाले बिल्डिंग में जहां कनकलता PG चलता था, अब MCD के हथौड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे MCD के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है। मलबा नीचे फेंका जा रहा है जहां कल तक वो PG होता था जिसमें उन बच्चों की जान गई, अब उसी जगह पे सारे मलबे को छत से गिराया जा रहा है। लगातार हथौड़ों से प्रहार करके टॉप फ्लोर को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे एक टेम्पररी रूम था उसको तोड़कर गिराया गया, पीछे इलेक्ट्रिकल रूम है उसको तोड़ा गया। अब ड्रिलर्स और हथौड़ों के सहारे पूरी बिल्डिंग को एक एक फेस कर एक एक फ्लोर कर तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर प्लान तरीके से हटाया जाए क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अनसेफ डिक्लेयर हो गया है। देखिए किस तरह से हथौड़ों का इस्तेमाल हो रहा है।
0: जर्जर पीजी की लिस्ट में नॉर्थ कैंपस के छात्रों वाला इलाका मुखर्जी नगर भी शामिल है।
7: ठीक 2 दिन पहले आज तक ने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कैसे मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए हैं। ये वो जगह है जो पिछले 4 साल से खतरे का निशान बनी हुई है मुखर्जी नगर के अंदर, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्यनिकेतन में जब घटना हुई उसके बाद हमने कई इलाकों की रियलिटी चेक की और जब हम मुखर्जी नगर 2 दिन पहले पहुंचे तब हमने दिखाया कि कैसे ये बिल्डिंग भी बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है और आज तक की रिपोर्ट के बाद अब MCD के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है और आज तक की टीम लगातार उन दिल्ली के अलग अलग कोनों तक जाती रहेगी और दिखाती रहेगी कि कैसे कमजोर स्थिति में कई ऐसे मकान हैं जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि कार्रवाई हो सके, लोगों की जानें बच सके, लोग अपने आप को दिल्ली में सेफ महसूस कर सकें।
0: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, इसे CA की तैयारी का हब भी बोलते हैं। यहां भी MCD का हथौड़ा चला।
8: सत्यनिकेतन के हादसे के बाद आज पूरी दिल्ली भर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद जो है वो हथौड़े जो है वो अवैध निर्माणों पर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लक्ष्मीनगर की है जहां पर 5 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई। अवैध रूप से पूरी इमारत थी और नक्शा भी पास नहीं था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर डेमोलेशन करने के लिए जो है वो पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि आज एमसीडी की टीम सत्य निकेतन हादसे के बाद बेशक हथौड़ा चलाने के लिए पहुंची हो, लेकिन सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा था तब एमसीडी की टीमें कहाँ थी, और पूरी दिल्ली भर में जब इस तरीके के निर्माण होते हैं तब एमसीडी की टीम क्यों जागती है, हादसे के बाद ही एमसीडी की टीमें जो है वो क्यों जागती है और पहले तब क्यों नहीं जागती जब इस तरीके के निर्माण हो रहे होते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: पूर्वी दिल्ली का पांडव नगर भी एमसीडी की टीम पहुंची, यहां भी जो अभियान है तोड़फोड़ का वो चल रहा है।
9: सत्य निकेतन में हादसे में जो जाने गई उसके बाद दिल्ली सरकार जागी है और लगातार अब दिल्ली में अलग अलग इलाकों में डिमोलिशन ड्राइव चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त पांडव नगर में मौजूद हूं जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है, और ये एक बिल्डिंग है जिस पर अब डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है। इस बिल्डिंग में जो सीमा है उससे ज्यादा फ्लोर्स बना दिए गए थे और उसके बाद नोटिस दिए गए, और ये बताया जा रहा है कि एक बार पहले भी यहां पर डिमोलिशन किया गया लेकिन दोबारा से यहां कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी टीमें यहां पर एमसीडी की मौजूद हैं, जेई यहां पर हैं और पुलिस भी यहां पर मौजूद है। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है ये महज पांडव नगर इलाके में नहीं चल रही है, ईस्ट दिल्ली में कई और इलाकों में भी चल रही है। कुछ बिल्डिंग्स को सील किया गया है, कुछ बिल्डिंग्स में डिमोलिशन ड्राइव जारी है। बार बार नोटिस चस्पा किए गए लेकिन फिर भी इस तरह के अवैध निर्माण बनते रहे और अब यहां पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ जो जेई हैं, जो ऑफिशियल्स हैं एमसीडी के, वो मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अरविंद जी बताएगा कि यहां पर ये डिमोलिशन आप लोग कर रहे हैं, किस वजह से इस बिल्डिंग को अब तोड़ा जा रहा है?
10: मैडम ये इलीगल फ्लोर बने हुए हैं, इस वजह से हम इन पे एक्शन ले रहे हैं। हमने इनके अनुत्तर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग भी की हुआ है, इस वजह से हम इसको तोड़ रहे हैं।
9: और भी कुछ इलाके हैं, और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं इस पूरे इलाके में जिस पर?
10: हाँ बिल्कुल मैडम, और भी हाँ उन पे भी कार्रवाई करेंगे। जी
9: अरविंद जी, एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्यों सत्य निकेतन की घटना के बाद ही इस तरह की डिमोलिशन?
10: नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्य निकेतन की घटना के बाद वो है, हम पहले से भी डिमोलिशन एक्शन करते आए हुए हैं। जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम नोटिस देते हैं, फाइल बनाते हैं, डिमोलिशन एक्शन भी करते हैं ये। लेकिन अब मीडिया वगैरह चीजें सारी अलर्ट हो रही हैं तो उस वजह से लोग बाग इस चीज पे वो दे रहे हैं।
0: पूरे नेहरू विहार का भी हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। जब यहां पीजी का किराया आसमान छूने लगा तो नेहरू विहार छात्रों का नया हब मुखर्जी नगर की जगह बन गया, यहां का हाल भी देख लीजिए।
11: दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में आज तक की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। आप देखिए ये जो बिल्डिंग पिछले करीब 4 साल से झुकी हुई थी और यहाँ पर 2023 में नोटिस भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए थे, एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही थी। और जब सत्य निकेतन वाला हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, तो आज तक ने भी इस बिल्डिंग को प्रमुखता से चलाया। ये जो झुकी हुई बिल्डिंग थी इसमें जो लापरवाही बरती जा रही थी वो सामने उजागर करी और उसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिला। आखिरकार जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और अब इस बिल्डिंग पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ऊपर से सारे जो ग्रिल है वो हटा दिए गए हैं, नीचे मलवा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर कल शाम को भी डेमोलिशन हुई और अभी भी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो जारी है। बिल्डिंग इस कदर झुकी हुई है कि जब यहाँ पर जो तोड़ने के लिए टीम पहुंची, इस पर डेमोलिशन करने के लिए टीम पहुंची, तो पहले नीचे जैक लगाए गए जिससे जब डेमोलिशन किया जाए तो बिल्डिंग अचानक कहीं भरभरा कर ना गिर पड़े। अब फिलहाल जैक लगाया गया है और डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब खबर चलती है, जब चीजों को सामने लाया जाता है, आखिरकार तभी जो अधिकारी हैं वो अपनी नींद से क्यों जागते हैं? कहीं सत्य निकेतन जैसा हादसा दोबारा इन इलाकों में ना हो, इसलिए जरूरत है कि इस तरीके की और भी जो बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन पर समय रहते कार्रवाई की जाए। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली।
0: अब हम आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा को लेकर बयान दिया है कि गरबा एक सर्वसमावेशी उत्सव है और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति गरबा देखने जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। अमृता फडणवीस ने यह बयान मंत्री नीतेश राणे के बयान के बाद दिया है, जिसमें नीतेश राणे कह रहे थे कि गरबा उत्सव में मुस्लिमों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।

0: गरबा को लेकर जो सवाल विश्व हिंदू परिषद ने उठाए, वीएचपी ने जो चिंताएं जताई, अब वही सवाल सियासत की असल वजह बन गए हैं। सवाल नवरात्रि में आयोजित होने वाले गरबे से जुड़ा है। सवाल उसमें मुस्लिमों के शामिल होने पर उठा है और इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नितेश राणे और सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस आमने सामने हैं। अमृता फडणवीस ने गरबा को लेकर अहम बयान दिया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने गरबा को लेकर जो कहा, पहले वो आप सुनिए।
1: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गरबाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत। मला वाटतं पहा साऊंड डिसेबल्स जे असतात, जे अप्रूव्ह त्याची इंटेन्सिटी असते ती लक्षात घेऊन आणि जे आपल्या सरकारने, राज्य सरकार किंवा आता सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पण आहेत ते लक्षात घेऊन आपण सणवार साजरा करावे। सणवार नक्कीच आपल्याला साजरा करायचे, पण असं नको व्हायला की ज्या सोसायटीमध्ये आपण राहतो त्या लोकांनाच त्रास होत राहू। तर मला वाटतं श्रद्धा किंवा आपला धर्म हे घरात आपण जेवढं त्याला फॉलो करतो तेवढं चांगलं, बाहेर सणवारांच्या वेळेस जे फॉलो करू ते नियमात राहून फॉलो करायला।
0: मुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी ने उन नेताओं को आईना दिखाया जो गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात करते हैं। अमृता फडणवीस कह रही हैं कि किसी मुस्लिम के गरबे में आने को वो गलत नहीं मानती। अमृता फडणवीस चंद्रपुर के सबसे बड़े महाशिवलिंग मंदिर में आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा कि त्योहार और उत्सव जरूर मनाए जाने चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे उत्सवों से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो।
2: भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री नितेश राणे और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की बीवी अमृता फडणवीस ने गरबा पर दिए गए बयानों की वजह से राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में फिलहाल त्योहारों का मौसम है और इसी बीच नेताओं की बयानबाजी की बरसात महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये बयानबाजी कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है।
0: आखिर मुख्यमंत्री की पत्नी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? दरअसल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने गरबा को लेकर अपनी बेबाक राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे लव जिहाद को रोकना हम सबका काम है।
3: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और जिनको अगर उस पे गरबा में आना ही है, जैसे ईद में किसी भी काफिर को जाने का परमिशन नहीं है, कोई भी ईद के जुलूस में कोई हिंदू को जाने का परमिशन है क्या? तो उस वही नियम यहां भी अगर मुस्लिम समाज को लगाया जाए तो फिर उसमें गलत क्या है?
0: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने यह भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर लें।
3: और तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन हैं जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें, टीका लगाए, हनुमान चालीसा मने, देवी माँ का आरती बोले, मूर्ति की जाके पूजा करें, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, कुरान में, इस्लाम में मूर्ति पूजा का महत्व ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर गरबा या हमारे हिंदू फेस्टिवल्स में आना ही है, हिंदू बन जाओ, वापिस अपने हिंदू धर्म में आ जाओ और अपने फेस्टिवल्स मनाओ, कोई किसी को हरकत नहीं है।
0: नितेश राणे के ऐसे बयान के बाद ही अमृता फडणवीस ने नाम लिए बगैर उन्हें जवाब दिया है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: गरबा पर सियासत की शुरुआत वीएचपी की डिमांड से शुरू हुई। इस महीने के पहले हफ्ते में विश्व हिंदू परिषद ने गरबा को लेकर कहा था कि पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए आधार कार्ड से पहचान की जानी चाहिए और माथे पर तिलक लगाया जाना चाहिए। वीएचपी के उस बयान का मंत्री नितेश राणे ने समर्थन किया था।
5: जिस गरबा को भक्ति और आनंद का उत्सव माना जाता है, उस पर सियासत की ऐसी स्याही बिखेरी गई है कि टकराव बढ़ा हुआ है। मंत्री नीतेश राणे का दावा है कि जिहादी ऐसे आयोजनों में नाम बदलकर घुसते हैं और वो लव जिहाद जैसी साजिश रचते हैं।
3: गरबा और नवरात्रि के वक्त जो जिहादी उसमें नाम बदल के घुसते हैं, असली नाम होता है अब्दुल, मगर गरबा के अंदर घुसने के वक्त अपना हिंदू नाम रख देते आशीष, और वहां जाके हमारे हिंदू बहनों से गलत झूठ बोल के फंसाने का काम करते, उनको जिंदगी खराब करने का काम करते। ऐसे 100 तो केसेस मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद मिल चुका हूं उनसे।
5: विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों के लिए पिछले हफ्ते ही गाइडलाइंस जारी किए। इसमें गैर हिंदुओं की पहचान करने की बात कही गई है, आधार कार्ड चेक करने और माथे पर तिलक लगाने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। गाइडलाइंस जारी करते हुए वीएचपी ने कहा था कि नवरात्रि देवी की पूजा का पर्व है, इसलिए मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
6: भी पूर्व में भी कई बार ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, उपद्रव करना, वहां पे किसी प्रकार के न्यूसेंस फैलाना, ये भी पूर्व में देखा गया है। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते, वंदे मातरम नहीं बोलते ये लोग, ये भारत माता की जय नहीं बोलते, तो क्यों यहाँ आना? अगर इनको श्रद्धा है तो तिलक लगाएं, हाथ में कवलावा पहने, और इनके अपने श्रद्धा स्थान, इनके अपने पूजा आराध्य स्थानों पर ये नवरात्रि का आयोजन करें।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं, तो एक समय ये भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा। आम आदमी को आतंकवाद का डर, भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था। लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया, आज हर एक भारतीय अपने आप को सुरक्षित और सम्मान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। हमने नक्सलवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने का काम किया और 200 से अधिक जिलों को जो प्रभावित जिले थे, आज नक्सल मुक्त जिले के रूप में पूरी तरह से आम जनजीवन के जीवन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को एक पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: राम रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं।

अभियान से पहले अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाले और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाली पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा।

0: सवाल होता था, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं। सुरक्षा में सेन लगाई तो दो ही जगह, या जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले। 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर। 656 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने की भी मंजूरी। बिहार में बाढ़ से 40 लाख से ज्यादा लोगों पर असर। 14 जिलों में हालत खराब। बक्सर से भागलपुर तक पानी के बीच रहने को मजबूर लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: खाड़ी में फिर भड़की जंग की चिंगारी। ईरान का अमेरिकी युद्ध पोत पर वार। अमेरिका ने ईरान के 5 टैंकर उड़ाए। ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल बरसाए। नहीं बचेंगे कुवैत, बहरीन के पास खड़े टैंकर। ईरान ने पकड़ा अमेरिकी सबमरीन ड्रोन। हुर्मुज में 10 टैंकरों पर हमले का दावा। रूबियो की ईरान को कड़ी चेतावनी। ईरान हर बार गवाएगा तेल टैंकर। सऊदी अरब में हूती हमले से तबाही। सुरक्षा की जिम्मेदारी से भागा पाकिस्तान। मध्यपूर्व में दो मोर्चों पर घमासान।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। दरअसल पश्चिम एशिया से इस वक्त लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग 28 फरवरी से जारी थी, वो अब और खतरनाक और विकराल रूप ले चुकी है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 5 क्रूड ऑयल टैंकरों को तबाह कर दिया है। ये हमले ओमान की खाड़ी से लेकर खारदूई के पास अलग अलग जगह पर किए गए हैं और काफी विस्तृत हमले हैं, बड़े हमले हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और वहीं ईरान ने अमेरिका के बेहद आधुनिक अंडरवाटर ड्रोन पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। ईरान ने जहां अपने हमले को कोहिस्तक में एक शादी के घर में हुए हमले का बदला बताया है, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अब साफ चेतावनी दे दी है कि ईरान जब भी अमेरिका के जहाजों को निशान बनाएगा, उसके अपने तेल के टैंकर डुबा दिए जाएंगे, उसे गंवाने पड़ेंगे और उससे ईरान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा जाएगी। पूरे मध्य पूर्व की बात करें तो जंग का एक और मोर्चा यहां पर बहुत गर्म हो गया है। यमन में जो हूथी विद्रोही हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया के यानी सऊदी अरब के 4 प्रमुख दक्षिणी शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल दोनों से हमला किया है, और इन हमलों में अब तक 73 लोग, इसमें पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग घायल हो गए हैं। यही नहीं, कई तेल के ठिकानों में, सऊदी अरब के कई तेल के ठिकानों में भीषण आग लग गई है। लेकिन सऊदी अरेबिया की रक्षा के नाम पर जो समझौता हुआ था ना, मक्का अग्रीमेंट, पाकिस्तान सिर्फ कड़ी निंदा करता रह गया। तुर्की ने भी केवल कड़ी निंदा की और खानापूर्ति की। इन सब के बीच अमेरिका, ईरान और हूथी विद्रोहियों की इस भीषण जंग ने पूरे मध्य पूर्व में भारी तबाही और खौफ का माहौल बना दिया है। इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस समय जमीनी स्थिति क्या है।
3: पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी वार पलटवार की आग भड़क उठी है। अमेरिका और ईरान अब हुर्मुज को तेल टैंकरों का शमशान बनाने पर तुल गए हैं। हुर्मुज जलडब्रू मध्य से लेकर ओमान की खाड़ी तक समंदर की लहरों के बीच आग की लपटें धधक रही हैं। जंग के नए दौर की शुरुआत तब हुई है जब ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्ध पोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की कोशिश की। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना के दो विध्वंसकों यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक और यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। उसने कहा कि ये दोनों क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों और सेंट्रल कमांड के अनुसार दोनों अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी नौसेना के सुरक्षा सिस्टम ने ईरान के इन बैलिस्टिक हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, जिसके बाद ये युद्धपोत बिना किसी नुकसान के इलाके में गश्त जारी रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका अब ईरान को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने ईरान के 5 टैंकरों को हुर्मुज की गहराई में दफन करने वाला हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि बीते 2 दिनों में ईरान ने उसके युद्धपोत पर 2 बार हमले किए। उसका जवाब उसने ईरान के उन तेल टैंकरों को शोलों में बदल कर दिया है जो पाबंदी से बचने के लिए पहचान बदल कर ऑपरेट कर रहे थे। हमला इतना भीषण था कि एमटी डिस्को नाम का टैंकर ओमान की खाड़ी में ही डूब गया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेताया कि अमेरिकी युद्धपोत और तेल टैंकरों पर हमला हुआ तो ऐसा ही जवाब मिलेगा।
4: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
3: अमेरिका के इस एक्शन से बौखलाए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पूरे इलाके में तबाही की आग फैला दी है। ईरान ने अपनी नई एयर डिफेंस प्रणाली से अमेरिका का एक MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसके तुरंत बाद तेहरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि जॉर्डन ने इनमें से 18 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। बदले की इस आग को ईरान ने कुछ दिनों पहले शादी वाले एक घर पर हमले का बदला बताया। लेकिन ये जंग हुर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान ये हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका के जवाबी हमलों का नतीजा ये है कि कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर $100 के करीब पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक अब नोगो जोन, नोगो जोन यानी वहां जाने की इजाजत नहीं बन चुका है। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि इस समय समंदर के इस संकरे रास्ते पर कितना भीषण संकट यहां गहराया हुआ है। आप पिछले कई महीनों में और क्योंकि 28 फरवरी से लगातार हम आपको ये हुर्मुज जलडमरू मध्य दिखाते रहे हैं तो आपको ये पूरा इलाका समझ आ ही गया है। यहाँ पर ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर फारस की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है बेहद संकरा इलाका है और यहाँ पर ये जितने आप सितारे देख रहे हैं ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक एक जहाज को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है, डुबाया जा रहा है। और 5 सितंबर को कितने हमले हुए, हमले के बाद तेल का रिसाव और हमले का शिकार जहाज कहां कहां हुए, आप इस पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं कितने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अच्छा, 30 जून को जो हमला हुआ था 800,000 बैरल तेल तट पे रिसाव वहां शुरू हो गया था। ओलंपिक लाइव 26 मई को जो टूटा था, तेल का रिसाव उस क्षेत्र में हो रहा है। तो हम इस समय लोग पर्यावरण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जब युद्ध हो रहा है, जान जा रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है तो पर्यावरण को कौन बोलेगा। लेकिन जो सफेद प्रिस्टीन है वो 4 मार्च को डूबा था, तेल का रिसाव वहां चल रहा था। ये पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कितनी ताबड़तोड़ हम बमबारी चल रही है कि 75 तो हमले हुए हैं, 21 नाविकों की मौत हुई है और ये कई अलग अलग देश के नाविक हैं जिनकी यहां पर मृत्यु हो चुकी है। और अब एकाएक आपको याद होगा बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं है, अब ये डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम से इसका नाम देना चाहते हैं। उन्होंने फिर कहा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन इस कब्जे को लेकर पूरी लड़ाई है कि यहां पर ईरान का वर्चस्व है, ओमान का कुछ अधिकार होगा या फिर अमेरिका का यहां वर्चस्व होगा। और यह पूरी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो एकाएक और ज्यादा भीषण इस समय हो गई है। ईरान की सेना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो उसकी सेना का एक अभिन्न अंग है, IRGC ने हुर्मुज में अमेरिका के एक बेहद आधुनिक मानव रहित पनडुब्बी सबमर्सिबल अनमैन्ड व्हीकल को जब्त करने का दावा किया है। ईरान ने बकायदा इसका एक वीडियो जारी किया है और इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया है और अमेरिका की सबमर्सिबल को उसने वॉर ट्रॉफी यानी युद्ध में जीता हुआ हथियार करार दिया है। ईरान की मीडिया ने बकायदा तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि यह अमेरिका का डाइव एलडी ड्रोन यानी लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्रोन है। एलडी ड्रोन लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्रोन जिसे हाल ही में अमेरिका की नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज किया है। पेंटागन के मुताबिक ये एक पुराना मॉडल था जिसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और ये समुद्र में खो गया था। इसमें कोई संवेदनशील या सीक्रेट टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और आइए अब हम आपको बताते हैं ये जो हथियार है जिसको ईरान एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी यानी युद्ध में जीता दुश्मन का हथियार बता रहा है। दरअसल ये लार्ज एलडी लार्ज डिस्प्लेसमेंट ड्रोन दरअसल होता क्या है ईरान के कब्जे में ये H910H ये अत्याधुनिक अमेरिकी अनमैंड अंडरवाटर व्हीकल UUV अंडरवाटर अनमैंड व्हीकल है। यानी इसमें कोई नाविक नहीं होते, कोई सेलर नहीं होते, सबमरीनर्स नहीं होते, लेकिन ये पानी की सतह के नीचे हथियार को ले जाकर दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने में इसकी क्षमता भी रखता है और टोह लेने की भी क्षमता रखता है। ये अमेरिका का अत्याधुनिक अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल UUV है जो पानी के अंदर चलने वाला एक ड्रोन है। इसकी दरअसल जो बॉडी है उस पर डाइव LD लिखा हुआ है। डाइव समुद्र के नीचे गोता लगाकर LD लार्ज डिस्प्लेसमेंट यानी ये बहुत ज्यादा सामान्य ड्रोन से मुकाबले बहुत ज्यादा भारी है, बड़ा है और पानी में तैरते रहने के लिए सतह के नीचे बहुत ज्यादा पानी को हटाकर काटकर फिर आगे चलता है। इसे अमेरिका में डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ने जिसने बनाया है एंड्रल इंडस्ट्रीज उन्होंने इसे बनाया है। लगभग 19 फीट ये लंबा है। अगर इसकी बात करें 910H की तो ये 19 फीट लंबा है, 3 टन इसका वजन है और जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। पानी में लगातार 10 दिन काम करने की इसमें क्षमता है। 3 टन इसका वजन है, 10 दिनों तक सतह के नीचे और 6000 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी ने बारूदी सुरंग बिछाई भी है तो ये उसके भी और नीचे से दुश्मन के इलाके में टोह लेने के लिए या उसके जहाजों को ध्वस्त करने के लिए ये जा सकता है। अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंडरवाटर टोह लेने के लिए, जासूसी करने के लिए, समुद्र की गहराई का नक्शा बनाने के लिए, पानी के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए और समुद्र के नीचे मौजूद जो इंटरनेशनल केबल्स हैं या पाइपलाइंस हैं उनकी निगरानी के लिए करती है। तो ये बहुत जबरदस्त सबमर्सिबल है अमेरिका की नौसेना का और अमेरिका की नौसेना का ये सबमर्सिबल जब ईरान के कब्जे में आ गया तो ईरान ने कहा कि एक बहुत बड़ी सफलता है उसके लिए। अब हम बात करते हैं दुनिया के ऊपर मंडराते दूसरे सबसे बड़े खतरे की इस समय, क्योंकि इससे दुनिया के तेल के बाजार में आग लग गई है। मध्य पूर्व की जंग के दूसरे मोर्चे पर हम आपको लिए चलते हैं। यमन में ईरान समर्थित जो हूथी विद्रोही है उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिण शहरों पर एक के बाद एक भीषण हमले करने शुरू कर दिए हैं और इन हमलों के बाद अब प्रश्न ये उठ रहा है कि बहुत ही जोर शोर के साथ जो इस्लामिक नेटो की बात की जा रही थी यानी एक देश पर हमला यानी 3 मुस्लिम देशों पर हमला और सब मिलकर पलटवार करेंगे, मक्का अलायंस जो हुआ था, तो सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के लिए या सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए ये मक्का अग्रीमेंट कहां गया? पाकिस्तान कहां है? तुर्की कहां है? इस हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की ने क्या किया? बस कड़ी निंदा की। दोनों ने सऊदी अरब से अकेले लड़ने के लिए एक तरह से सऊदी अरब को छोड़ दिया। कार्रवाई के नाम पर की तो सिर्फ कड़ी निंदा। इस तरह मक्का अलायंस जिसे ये स्पिन दिया जा रहा था कि भैया ये मक्का अलायंस बन गया तो कोई इन इस्लामिक देशों पर हमला नहीं कर पाएगा, क्या सऊदी अरब, क्या पाकिस्तान, क्या तुर्की है। बांग्लादेश भी भाग लेना चाहता था इसमें, और देश भी इसके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन जब असल हमला हुआ तो सब बगले झांकने लगे। एक समय ऐसा था मिस्र इसमें शामिल होने की बात कर रहा था, लेकिन अब ये मक्का अग्रीमेंट पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि यही जो हूथी विद्रोही है, इन्होंने पहली बार सऊदी अरब पर हमला नहीं किया। बीती रात की अगर बात की जाए तो पिछले 24 से 48 घंटों में उन्होंने सऊदी अरब पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरब की तेल कंपनियां अब बंद हो रही हैं, एयरबेस बंद हो रहे हैं, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है, 73 लोग घायल हुए हैं, इसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब शामिल है। सऊदी अरब के सरकारी तेल डिपो आराम

0: किया था, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि यह केवल कागजी समझौता है। इसका मकसद सिर्फ सऊदी अरब से पैसा ऐंठना था। पाकिस्तान ने पैसा तो ऐंठ लिया, लेकिन सऊदी अरब की मदद के लिए पाकिस्तान नहीं आया, सिर्फ कड़ी निंदा की।
1: सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला हुआ है। तेल रिफाइनरियां धू धू कर जल रही हैं, चार शहर दहल चुके हैं और 73 लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस मक्का अलायंस यानी तथाकथित मुस्लिम नाटो का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा गया था, उसकी पहली ही परीक्षा में हवा निकल गई है। अभी ठीक एक महीने पहले 7 अगस्त को रियाद में बैठकर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने बड़े बड़े दावे किए थे। नियम बनाया गया था कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, लेकिन जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कलेजे पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए, तब पाकिस्तान की कथित अजीम फौज का अता पता तक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बिल में छुप कर बैठ गए हैं और पाकिस्तान केवल कड़ी निंदा का जुबानी जमा खर्च कर रहा है। हद तो तब हो गई जब कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी कैमरों पर आकर सफाई देने लगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी नहीं है, यानी सऊदी अरब के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है।
2: देखें, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
1: ये मजबूती लड़खड़ाती जुबान और पलटते ईमान से साफ हो जाती है। तुर्की भी पीछे नहीं है। एर्दोगन भी सिर्फ कागजी बयानों से सऊदी अरब के जख्मों पर बरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों में लगी भीषण आग इन दोहरे रवैये वाले बयानों और कड़ी निंदा से बुझ जाएगी? क्या रियाद में बैठा मक्का अलायंस का हेडक्वार्टर सिर्फ बयानों का दफ्तर बनकर रह गया है? सच्चाई यह है कि सऊदी अरब की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान ईरान के डर से थर थर कांप रहा है। हुतियों के पीछे खड़े ईरान से दुश्मनी बोल लेने की हिम्मत न तो पाकिस्तान में है और न ही अपनी जलती अर्थव्यवस्था के बीच वो कोई जंग लड़ने की हैसियत रखता है। साफ है कि दावे मुस्लिम नाटो के किए गए थे, लेकिन पहली ही हुती मिसाइल ने इस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। सऊदी अरब अब समझ चुका है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान की किराए की फौज सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास कर सकती है, जंग के मैदान में उतरने का दम उसमें नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: जमीनी स्थिति अगर देखें तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के भरोसे नहीं बैठा है। खबर आ रही है कि यमन के हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर सऊदी अरब ने अब भीषण जवाबी हमला कर दिया है। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने आज सवेरे यमन के 4 राज्यों में 32 से अधिक हवाई हमले किए हैं। सऊदी गठबंधन के युद्धक विमानों ने मरब, अलजोफ, ताइज और लाल सागर के रणनीतिक बंदरगाह हुदेदा में हूथियों के सैन्य ठिकानों और हथियारों के गोदामों को पूरी तरह से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हूथी मीडिया के मुताबिक अलजोफ पर जो हमला हुआ है उसमें कम से कम 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये जो भीषण सऊदी सैन्य कार्रवाई है, तेल डिपो अरामको, एयरबेस और नागरिक अड्डों पर कल हुए हूथी मिसाइल हमलों का सीधा जवाब है। सऊदी कमांडर मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने एक कड़े सैन्य जवाब का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद रियाद ने अपनी पूरी ताकत यमन पर हमला करने में झोंक दी। हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर भी सऊदी समर्थित यमन की जो सरकारी सेना है उसने एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है और अब अल बायदा प्रांत के अल अतामा इलाके में हूथियों को इस इलाके से खाली करा लिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब पर हूथी विद्रोही हमला करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहेगा या पाकिस्तान की ओर देखेगा। उसने जबरदस्त पलटवार पहले ही कर दिया है।

0: और ये आपके लिए विस्तार से जानना जरूरी है कि सऊदी अरब पर जो भीषण हमले हुए उसके बाद पाकिस्तान के बैकफुट पर रहने और मक्का अलायंस के फूटने या उसके खोखला होने का दरअसल सच है क्या, क्या हो रहा है इस समय। यह मक्का अलायंस बड़े जोर शोर से किया गया था और पाकिस्तान ने कहा था वे इस्लामिक नेटो बन रहे, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और खूब डींगे डींगे जिसको पाकिस्तान में कहते हैं बड़के मार रहे, खूब बड़के मार रहे थे पाकिस्तानी। पाकिस्तान जंग में क्यों नहीं कूद रहा है, नेटो जैसा कड़ा कानून, वो जो आर्टिकल 5 ऑफ नेटो है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, वो आर्टिकल 5 यहां कुछ ऐसा है नहीं। ईरान से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान की असलियत है। अगर आप पाकिस्तान से डरेंगे, जैसे यहां भी सरकारें या पहले कल होता था कि पाकिस्तान आप पर आतंकी हमला करता था, आप कुछ नहीं करते थे, तो पाकिस्तान और आप पर हमले करता था। एक बार जब आपने पाकिस्तान को पलट के ठोकना शुरू किया, चाहे आप उसको पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक में ठोके या बालाकोट एयर स्ट्राइक में या फिर ऑप सिंदूर, तब पाकिस्तान घबराएगा, और यही हो रहा है। ईरान से पाकिस्तान दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 20% वहां भी शिया मुसलमान है, 80% भले ही सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान में, लेकिन शिया मुसलमान उनको पलट के ठोकेंगे वहां पर, कहां, ईरान के रास्ते से। घरेलू और आर्थिक संकट एक अलग बात है पाकिस्तान के लिए, तो वो वहां एक सिविल वॉर नहीं चाहता अपने देश में, एक शिया सुन्नी सिविल वॉर पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर अगर शिया मुसलमानों का ईरान ने समर्थन करना शुरू किया तो पाकिस्तान बैठ जाएगा। वैसे ही बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में समस्या है, ये इस समय सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान दरअसल इस इस्लामिक नेटो के नाम पर सऊदी अरेबिया से पैसे तो ले लेना चाहता था, और उसने पैसे ले भी लिए, लेकिन पैसा लेने के बाद वो फिर भी अपने सैनिकों को वहां भेज तो दिया, लेकिन युद्ध में नहीं झोंक रहा है। ये दोनों में अंतर है। वैसे पाकिस्तान के एक पूर्व आर्मी चीफ सऊदी अरब में ही रहते हैं, वहां पर उसके सैनिक डिविजन भर उसके सैनिक वहां पर तैनात रहते हैं सुरक्षा के लिए। यही इस समय सबसे बड़ा वहां पर संकट है पाकिस्तान में, दाने दाने को मोहताज है, कंगाल है। अब हम रुख करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, हम रुख करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलंबो की 3 दिनों की ऐतिहासिक और आधिकारिक समय यात्रा पर है। यह 38 वर्षों में पहली बार है कि भारत के रक्षा मंत्री श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य दरअसल द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को व्यापक रूप से आगे ले जाना है। कोलंबो में उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मुलाकात की, और अब से थोड़ी देर पहले वो कोलंबो में ही इंडियन पीसकीपिंग फोर्स IPKF के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह ने श्रीलंका को सभ्यतागत जुड़वा करीबी पड़ोसी और समुद्री साझेदार बताया और कहा कि हमारे दोनों देशों के भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं।
1: नेवर बीन एन इंपीडिमेंट बट एन इनेबलर टुवर्ड्स forging closure and a mutually beneficial tie between our people. In a rapidly changing geopolitical landscape, the Indian Ocean has come to occupy a place of immense contemporary relevance. As emerging economies and fellow democracies, we have a shared future. Friends, our forefathers, the adventurers, seafarers and voyagers chartered the vast expanse of this ocean, discovering new lands and reaching out to people across the huge span of this mighty ocean.
0: एक और बड़ी खबर यह भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। देश ने सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस मेगा डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बजट का 98% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा उद्योगों पर खर्च किया जाएगा, जो मेक इन इंडिया को अभूतपूर्व ताकत देगा। इस सौदे में सबसे बड़ा फायदा भारतीय थल सेना को मिलने जा रहा है। सेना को अब परमाणु, जैविक और रासायनिक खतरों से निपटने के लिए आधुनिक CBRN रेकी वाहन, नए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और दुर्गम इलाकों के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही युद्ध के दौरान तुरंत पुल बनाने वाला सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली अत्याधुनिक मशीनें, माइन साफ करने वाले ट्रोल टैंक्स और सेना के बेड़े में ये अत्याधुनिक हथियार, मेड इन इंडिया हथियार शामिल किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा कदम है और पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संकेत, आत्मनिर्भर भारत कितना आवश्यक है। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें, हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल होता था लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाई तो दो ही जगह है, या तो जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, 7 रूट को 4-ट्रैक करने पर मुहर, 656 किलोमीटर नई लाइन बिछाने की हरी झंडी मिली।

0: एक तरफ चल रहा युद्ध भयंकर, अमेरिका और ईरान में जमकर बमबारी, रूस और यूक्रेन भी कर रहे तबाही भारी। मिसाइलों की मार, जनता बेहाल। अब दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के ताकतवर देश, शांति बहाल करने पर होगा मंथन।
1: प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम।
2: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और ज्यादा भयंकर हो गया है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जो बमबारी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। मॉस्को और कीव दोनों में बमबारी हो रही है। ट्रंप के दूतों की मौजूदगी के दौरान 3 दिन का सीजफायर जरूर हुआ, लेकिन दूतों के लौटते ही जो हमले शुरू हुए वो दोनों तरफ से थे और अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन में तो रूसी हमलों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। यूक्रेन ने पलटवार में रूस के कई महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों को भी निशाना बनाना अब शुरू कर दिया है, तो दोनों ही युद्ध की वजह से अब भारत पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां 3 दिन बाद नई दिल्ली में होने जा रहा है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के कई ताकतवर देश, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हो या रूस के राष्ट्रपति, वो सभी इसके सदस्य है और भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण उसका मुद्दा है, जो अहमियत है, वो मौजूदा हालात को देखते हुए और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि न सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक समझौतों को लेकर भी चर्चा बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बातचीत पर भी दुनिया की निगाहें हैं। इस शिखर सम्मेलन से पहले दोनों को आपस में बात करनी है, उस पर उन देशों की नजर जरूर होगी जिनकी नीति और नियत भारत को परेशान करने की रहती है। दिल्ली में दिल मिलेंगे, कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं और दुनिया में शांति कायम करने की कोशिशें भी होंगी, यानी दुनिया में समस्या हो तो समाधान भारत में निकालने का प्रयास होता है। अच्छा, अब यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के नोवोरोसिस्क नेवल बेस पर रात को ड्रोन से हमला किया। कई ड्रोन इस ठिकाने पर एक के बाद एक निशाना साधने के लिए दागे गए थे। ड्रोन फोर्स के कमांडर ने यह दावा भी किया कि हमले के बाद नेवल बेस पर आग लग गई, दूर से काला धुआं उठता देखा गया और कीव पर लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन इस समय गुस्से में है और रूस पर पलटवार की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है। और इस युद्ध के मैदान में, यानी रूस और यूक्रेन के बीच, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध वो और ज्यादा भयंकर हो रहा है। टेक्नोलॉजी 6 हफ्ते पहले टेस्ट बेड पर होती है और 6 से 8 हफ्तों में युद्ध के मैदान पर आ जाती है। रूस लगातार बड़ी मिसाइलों से, ड्रोन से हमला कर रहा है, जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन भी अब पीछे नहीं है। लेकिन अब आकलन यह है कि धीरे धीरे यूक्रेन का हथियार खत्म हो रहा है, वो इस युद्ध में पीछे पड़ रहा है। रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए उसके पास अब एयर डिफेंस सिस्टम न के बराबर रह गया है। ऊपर से कुछ ही महीनों में आने वाली सर्दी है, उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसके लिए अब यूक्रेन में एक नई योजना तैयार की जा रही है। यूरोप के देश हो, नेटो के साथी हो, सबसे लगातार हथियारों की और खासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगाई जा रही है, जो रूस की इनकमिंग मिसाइल्स को, बड़े हमलों को रोक सके। तो क्या है यूक्रेन का यह प्लान, कौन उसकी मदद के लिए आगे आ सकता है, देखिए यह खास रिपोर्ट।

0: नहीं रुकेगी बमबारी, तबाही होगी भारी। यूक्रेन ने शुरू की सर्दियों में जंग लड़ने की तैयारी। जर्मनी देगा साथ, पैट्रियट मिसाइलों से यूक्रेन करेगा रूस से दो दो हाथ। पिछले एक महीने से रूस के इन मिसाइल हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। हर रात रूस की मिसाइलें और ड्रोन गरजते हुए आते हैं और तबाही को अंजाम दे डालते हैं। कीव से लेकर खारकीव तक और जेपोरिजा से लेकर ओडेसा तक बेकसूरों की जान जा रही है। इमारतें जल रही हैं, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के पास इन हमलों को रोकने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसका एंटी मिसाइल सिस्टम पैट्रियट का भंडार खत्म हो चुका है। रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हमले रोकने में नाकाम हो रहा यूक्रेन अरसे से यूरोप से पैट्रियट के लिए गुहार लगा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ साफ कह चुके हैं कि अब बिना इसके गुजारा नहीं है और यूरोप और खाड़ी देशों के उनके साथियों को मदद के लिए आगे आना ही होगा। दो दिन पहले कीव पहुंचे ट्रंप के दूतों के सामने भी ये मुद्दा उठा था। जेलेंस्की को भी अब यह अंदाजा हो चुका है कि रूस के साथ उसका युद्ध और लंबा खींचने वाला है और उनकी सेनाओं को सर्दियों की तैयारी जोर शोर से शुरू कर देनी पड़ेगी।
1: देशभक्तों और पीड़ितों दोनों के बारे में एक अच्छी बातचीत हुई जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज हमने सभी आह्वानों के लिए इस समय की उपयुक्तता तय कर ली है और हमें उम्मीद है कि हमारे अमेरिकी साझेदार, हमारे यूरोपीय साझेदार दूसरी तरफ देखते रहेंगे।
0: जेलेंस्की को पिछली सर्दियों में हुई तबाही अच्छी तरह याद है। रूस लगातार उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा था और कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन के हजारों लोगों को बिना बिजली और गर्म पानी के रात गुजारनी पड़ रही थी। मुसीबत के इस दौर में जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ जर्मनी ने 5,000 ड्रोन बनाने के लिए प्रोडक्शन तेज कर दिया है तो दूसरी तरफ पैट्रियट मिसाइलें फौरन यूक्रेन भेजने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। उधर ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही यूक्रेन को हथियार बनाने के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने पर सहमति जता चुके हैं।
2: यूक्रेन इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, विंटर इज कमिंग।
3: यूक्रेन के पास समय कम है, सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों के लिए यूक्रेन को तैयार करना सबसे जरूरी काम है और इसके लिए हमें तुरंत और मजबूती से कदम उठाने होंगे। हमें मिलकर यूक्रेन की मजबूती बढ़ाने के लिए सही उपाय करने होंगे। इसीलिए नेटो सम्मिट के दौरान मैंने फैसला किया है कि बुंडेसवेहर जर्मन सेना के स्टॉक से यूक्रेन को तुरंत जरूरी पीएसीआई इंटरसेप्टर मिसाइलें भेजी जाएंगी। पीएसीआई इंटरसेप्टर मिसाइलों के अलावा जर्मनी बुंडेसवेहर के स्टॉक से AIM-9 एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई भी बढ़ाएगा ताकि यूक्रेन को ज्यादा मात्रा में ये मिसाइलें मिल सकें।
0: अगस्त की शुरुआत से लेकर आज तक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और बाकी शहरों में करीब 25 बड़े हमले किए हैं जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं यूक्रेन ने पिछले महीने उसकी दो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के कई परिसर ड्रोन हमलों से तबाह कर डाले थे, जबकि ऑयल रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। आज तक ब्यूरो।
4: ये बड़ी बात जर्मनी के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो अपनी सेना के हथियार निकाल निकाल कर यूक्रेन को देंगे ताकि सर्दियों से पहले यूक्रेन अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सके। तो जिस पैक वन, पैक टू, पैक थ्री मिसाइलों की बात चल रही है, पैक वन और टू की, तो दरअसल ये पेट्रियट मिसाइलें हैं क्या? हम आपको बताते हैं कि जर्मनी की सरकार से लेकर ब्रिटेन की सरकार कैसे एक मंच पर आ रहे हैं कि यूक्रेन में उसकी सेना को और मजबूत किया जा सके। कैसे, क्या है ये पेट्रियट मिसाइल? दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम का भाग है। ये अमेरिका में निर्मित बहुत ही उम्दा मिसाइल है। यूक्रेन के 1000 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, यहां 1000 सिस्टम्स लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की एक लंबी सीमा है जहां रूस पूरी तरह से हावी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री येवनी कामरा ने मिशन पेट्रियट को आगे बढ़ाना शुरू किया है। पेट्रियट मिसाइल लगभग 150 किलोमीटर दूर जो अंदर आ रहा खतरा है उसको देखकर उसको ध्वस्त करने में सक्षम है, 150 किलोमीटर दूर, और जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटोस्फीयर में जाकर, यानी 24 किलोमीटर या लगभग 75 से 78 हजार फीट की ऊंचाई पर यह किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। साथ ही देशों की मदद और यूरोपियन यूनियन से लोन लेकर ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। जर्मनी ये अपने युद्ध के भंडार से, अपनी सेना के भंडार से ये मिसाइलें अब यूक्रेन को देगा। यही नहीं, यूक्रेन को अभी ड्रोन सप्लाई के लिए $27 बिलियन की और जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन में समय घर घर में, फैक्ट्री फैक्ट्री में सब काम छोड़ छाड़ के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। और ये ड्रोन इतने घातक कि ये 1,000-1,500 नहीं 2,500-3,000 किलोमीटर रूस के अंदर जाकर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को भी निशाना बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक कर लगभग 100 मिलियन यूरो की मदद का ऐलान कर दिया है। यूरोप के देश चाहते हैं 4 साल बाद भी यूक्रेन घुटने ना टेकते, किसी तरह लड़ता रहे। लेकिन ये सोचिए 2022, 23, 24, 25 चार सर्दियां यूक्रेन के लोग झेल चुके हैं। ये 2026 की सर्दी अब पांचवी उसकी सर्दी होगी। जर्मनी और ब्रिटेन यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल देने पर राजी हो गए हैं। ये अमेरिका में निर्मित है, तो इससे अमेरिका की इंडस्ट्री का फायदा होगा, यूरोप का फायदा होगा, यूक्रेन को लगेगा कि वो कुछ समय और रूस से बच सकता है। आने वाली सर्दियों में हमलों से बचाव के लिए हथियार जल्द से जल्द दिए जाएंगे, और यहां तक कि जर्मनी अपनी सेना से, अपने भंडार से निकालकर मिसाइलें दे रहा है, और फिर बाद में वो अत्याधुनिक मिसाइलें अमेरिका से ले लेगा। 7 और 8 सितंबर को यूरोपीय देशों की बैठक में यूक्रेन को हथियार देने पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो चुकी है कि यूक्रेन घुटने ना टेक दे, यूक्रेन झुक ना जाए, इसीलिए उसको हथियार मिलते रहने चाहिए। यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए रूस ने भी बड़े जवाबी हमले किए हैं। आज सुबह की बात की जाए तो रूस ने कीव पर अपने हमले जारी रखे, एक महत्वपूर्ण इमारत पर हमला किया, इसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि बीती रात ओडेसा इलाके में भी रूस ने हमला किया था, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य लोग घायल हो गए। बचाव दल ने 16 लोगों को इमारतों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्होंने रूस से बेकसूरों पर हमला रोकने की मांग की और साथ ही देशों से मदद की गुहार लगाई।

0: तो अब तक हमने आपको दिखाया कि सैन्य मोर्चों पर, अलग अलग मोर्चों पर क्या हो रहा है, अब हम आपको दिखाते हैं कि कूटनीति के मोर्चे पर क्या होने वाला है, और खासतौर पर 12 और 13 सितंबर राजधानी दिल्ली में। जी हां, अब बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जिसकी मेजबानी एक बार फिर भारत कर रहा है। हम जो 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं ब्रिक्स, दरअसल इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे। पहले 4 और फिर साउथ अफ्रीका मिलकर 5 देश बन गए। अब 11 अर्थव्यवस्थाएं इसका भाग है, 4 देशों से 5, और फिर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका, अब 11 देश है। धीरे धीरे और अर्थव्यवस्थाएं जुड़ गई, कुल मिलाकर 11 देश इसके सदस्य हैं, 10 साझेदार देश भी अब इसका हिस्सा है। इन सब देशों में जिनकी बात की जाए तो इसमें मिस्र महत्वपूर्ण है, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसमें शामिल हैं। इस ग्रुप का मकसद क्या है? इसका मकसद है इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहयोग को और बढ़ावा देना। और भारत पहली बार नहीं, चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2012 में दिल्ली में मेजबानी हुई थी, 2016 में गोवा में हुई थी, कोरोना काल 2021 में भारत ने इसकी मेजबानी वर्चुअल तौर पर की थी। इस शिखर सम्मेलन से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात हो भी चुकी है, एक बार अभी पहले, एक अब होगी, फिर एक तीसरी बार और होगी। दुनिया भर की निगाहें इन दोनों की मुलाकात पर टिकी है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन की ये एक साल में दूसरी भारतीय यात्रा है। इससे पहले वो दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो उनका पहला भारत दौरा था। अभी बिश्केक में उनकी हाल में मुलाकात हुई, इस वर्ष वो पहली मुलाकात, और अब ये दूसरी मुलाकात है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: दिल्ली में 2 दिन तक दुनिया की बड़ी ताकतें करेंगी मंथन, दुनिया फिर देखेगी भारत, चीन और रूस का दम। युद्ध से कारोबार तक होगी बात, उलझे मुद्दों पर आएंगे सब साथ। दिल्ली तैयार है ब्रिक्स समिट की मेजबानी के लिए, सुरक्षा से लेकर समझौतों तक हर मोर्चे पर तैयारियों को बारीकी और मजबूती से अंजाम दिया जा रहा है। ब्रिक्स समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है, और इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दुनिया भर की नजरें न सिर्फ ब्रिक्स समिट में आने वाले नेताओं पर रहेंगी, बल्कि चीन और रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठकों पर भी होंगी। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आना तय हो चुका है। समिट से पहले ही 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी।
2: For the coming visits to our president, and in couple of days he will start his visit to India, to New Delhi.
3: हमारे राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वो ब्रिक्स समिट से जुड़े सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। ये दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। आप जानते हैं कि भारत और रूस के नेताओं के बीच बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध है। उनके रिश्ते बहुत व्यावहारिक हैं और वो वैश्विक एजेंडे के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बहुत खुलकर और रचनात्मक तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं।
0: इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे दलदल का इलाका है, भटकुशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं। और बटार में देखिए, ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
1: पता तो चले कि जिनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है।
0: सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं।
1: सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती
2: है।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Oh, sorry!

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को हाँ। पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साई,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 17 सितंबर से बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान से पहले अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान। पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाई भारत की साख, युगांतकारी फैसले से देश में अभूतपूर्व विकास। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार। लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी 24 इमारतें। हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल होता था लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं। सुरक्षा में सेंध लगाई तो दो ही जगह है, या तो जेल या तो जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले। 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मुहर। रेल मंत्री वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। कोलकाता में बीजेपी की भगवा यात्रा में शामिल सीएम शुभेंदु। यादवपुर यूनिवर्सिटी से होकर रूट, बंगाल में वैचारिक लड़ाई का नया केंद्र बना यह विश्वविद्यालय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के जेंजी को लेकर कानून के दो तराजुओं पर है। एक तरफ देश के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जेंजी के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखा रही है। युवाओं के वाजिब मुद्दों, आंदोलनों, प्रदर्शनों से लेकर उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां और उत्पीड़न रोकने के लिए आदेश देता है। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि नोएडा में निर्दोष छात्रा पर एनएसए लगा दिया जाता है, तो ग्रेटर नोएडा में छात्र को 5 लाख के बॉन्ड का नोटिस थमा दिया जाता है। गोरखपुर से गोंडा तक छात्रों से पुलिस वालों का बर्ताव के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेंजी को लेकर कानून के दो पैमाने कैसे हो सकते हैं। देश की अदालतें जिस संविधान और कानून के पहलुओं पर जेंजी के मुद्दे पूरी संवेदना के साथ सुनना चाहती है और सुन भी रही है, उसी संवेदना पर कैसे सवाल उठता जा रहे हैं। संविधान और उन्हीं कानूनों की परिभाषा पुलिस की डायरी से लेकर एक्शन तक में तब्दील क्यों हो जा रहा है। यहां तक कि यूपी की सरकार भी जब जेंजी और जेन अल्फा के मुद्दों को देश के भविष्य से जुड़ा बताकर उन्हें सुलझाने का हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रही है या तो दावा कर रही है। ऐसे में आखिर यूपी की पुलिस छात्र छात्राओं पर ऐसी कार्रवाइयां किस मजबूरी में कर रही है, यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया कि जब 1 सितंबर को सीजेपी आंदोलन से जुड़े सभी छात्रों के मुकदमे पूरे देश भर में वापस लिए गए, नए मुकदमे नहीं करने का आदेश दिया गया, तब भी 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एसीपी ने बतौर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अक्षत नाम के छात्र को 5 लाख के बॉन्ड वाला नोटिस क्यों थमा दिया। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला तो सुना ही होगा जिसमें नोएडा के मजदूर आंदोलन में शामिल निर्दोष छात्रा पर एनएसए लगाने पर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त आदेश पारित किया था। डीएम एसपी से लेकर एसएचओ तक सबके वेतन से कटौती करके छात्रा को 5 महीने जेल में रखने के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया गया। तो इन तमाम घटनाओं को लेकर आज के दंगल में चर्चा करना जरूरी है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखें।
1: दो विद्यार्थी, एक 25 साल की आकृति चौधरी, दूसरा 20 साल का अक्षत त्रिपाठी। दो आंदोलन, एक अप्रैल का मजदूर आंदोलन, दूसरा जुलाई का सीजेपी आंदोलन। दो अदालत, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसने आकृति को इंसाफ दिलाया, एक सुप्रीम कोर्ट जिसने अक्षत के इंसाफ की आवाज सुनी। देश में जेंजी के मुद्दों को लेकर हो रहे आंदोलनों और हुकूमत के सलूक पर अदालतों की सख्त निगेबानी की दो खबरें पिछले दो दिनों में आई हैं, जिसमें एक मामला गौतम बुद्ध नगर की डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली फटकार का है, दूसरा ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से छात्र पर 5 लाख के बॉन्ड की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान का है। यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये बीएनएसएस 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजीआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
2: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है।
0: तो मामला अब इस बात का है कि क्या किसी भी नागरिक को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि उन्हें वो अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के बावजूद सरकार द्वारा कभी कभी जब इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तब उस पर भी सवाल उठाना जरूरी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, आज वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में पहली बार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में आएंगे। डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की कार्रवाइयां पुलिस के तरफ से या मैजिस्ट्रेट के तरफ से जब की जाती है तब उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके की कार्यवाहियां हो रही है और उस पर अदालत से सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। और उसके साथ साथ राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमिका आखिरकार उनके जरिए इसमें रखी जाएगी। तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या ग्रेटर नोएडा में छात्र को 5 लाख के बॉन्ड का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है कि आखिरकार उस मैजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई जब उनके तरफ से साफ शब्दों में आदेश दिया गया था, तो क्या यह अवमानना है? नोटिस थमा दिया गया है, पूछा गया है कि आप बताइए अवमानना क्यों नहीं है। दूसरा सवाल, क्या आंदोलनकारी नौजवानों पर यूपी पुलिस गैरकानूनी कार्रवाइयां कर रही है? और तीसरा सवाल, जेंजी के मसले पर सरकार के दावे से अलग क्यों काम कर रहा है यूपी का पुलिस प्रशासन? तीसरे सवाल से दरअसल मैं शुरुआत करना चाहूंगा। शहजाद, अभी तक तो एसबीएसपी के प्रवक्ता आए नहीं है, अगर आपको लगता है कि यह सब कार्यवाही सही थी, क्योंकि मेरे ख्याल एसबीएसपी के प्रवक्ता भी यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्विवेदी जी, चलिए सरकार के तरफ से पहले आप बता दीजिएगा, अदालत पूछ रही है कि हिम्मत कैसे हुई आपकी, आपके मैजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई? आपने 5 लाख रुपए का बॉन्ड देने के लिए कहा, इससे पहले जो नोएडा की कलेक्टर है उनको भी कहा गया कि आपने गलत तरीके से अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर किसी छात्रा को एनएसए के तहत डिटेंशन में कैसे डाल दिया आपने, अपने जेब से 5 लाख रुपए भरी है।
3: देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन है उसको इनको पालन करना चाहिए था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको अगर इनके द्वारा ऐसा किया होगा तो सरकार जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्देश लेके अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अधिकारी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, सरकार के ऊपर एक धब्बा छोड़ने के लिए अधिकारी ओवर कॉन्फिडेंस में काम करने लगते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा, उसमें एक था कि इसके पहले इस कार्यक्रम हो रहा है, जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस धरना प्रदर्शन में पहले से कोई अपराधी हो, पहले से किसी पर कोई धारा मुकदमा हो तो उसकी मुकदमा नहीं समाप्त होगी, लेकिन अगर कोई वास्तव में छात्र है, पढ़ रहा है, अगर वो प्रोटेस्ट में आया है तो उसके ऊपर की सारी मुकदमा खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके बावजूद किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया है तो वो सजा का पात्र है, सजा पाएगा, जैसे कि अभी जिलाधिकारी के ऊपर।
0: जरा आपका एक सेंटेंस रिपीट करिएगा राघवेंद्र द्विवेदी जी, नहीं जरा एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका इस पूरे मामले पर साफ तरीके से आए, तो आप तो एक साफ नेटवर्क वाले इलाके में आ जाइएगा ताकि कल ऐसा ना कोई बोले कि भाई नेटवर्क में नहीं थे और अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाए। शहजाद कब तक इस बारे में अपनी भूमिका बता पाएंगे? तो आप जरा सबसे पहले एक अच्छे नेटवर्क में आ जाइएगा। और एक आपका सेंटेंस मैं आपसे कहता हूं कि जरा रिपीट करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ये अधिकारी जो है ना, कई बार ये अधिकारी बहुत उत्साह में आकर ये काम कर देते हैं, ठीक है, सरकार को खुश करने के लिए, आप यही कहना चाह रहे थे, आपकी भूमिका यही थी? जरा आपकी भूमिका जरा वो लाइन एक बार फिर से दोहराइएगा, मुझे समझना है इस बात।
3: देखिए कभी कभी क्या होता है, अति उत्साह में अधिकारी बहुत कुछ कर जाते हैं, वो न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। आज जैसा कि अभी जिलाधिकारी के ऊपर हुआ कि 5 लाख रुपए अभी उनको देना अपने पेंशन से या वेतन से, तो अधिकारियों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन को स्पष्ट पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने के बाद कार्रवाई करना चाहिए। जी
0: अब यह अति उत्साह कहां से आता है अनुराग भदौरिया, यह अति उत्साह कहां से आता है?
4: देखिए अति उत्साह मैं बताऊं कहां से आता है। जब पिताजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों देश के, मन चाहे जो चाहे वो कर रहे हों। बिटिया जब कलेक्टर बन गई हो नोएडा की, तो फिर डर क्यों है? कहते हैं ना, जाके पांव ना फटी बिवाई, वो कैसे जाने पीर पर आई। उन्हें डीएम साहब को तो दर्द है नहीं ना, उन्हें पता नहीं है कैसे जिंदगी जी जाती है। आप बताइए, 25 साल की लड़की आकृति चौधरी जी 5 महीने जेल में रह गई। 5 महीने जेल में रहने का मतलब समझते हो मानसिकता पे कितना असर पड़ता है, वो डीएम साहब को मालूम है। मुझे तो न्यायालय से यही एक मेरा उनसे निवेदन है कि जो अधिकारी ऐसा काम करें उन्हें उतने साल की सजा जेल में काटने का मौका देना चाहिए, जैसे उनको पता चले कि जेल में कैसे रहा जाता है, कैसे तकलीफ होती है, कैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, पूरी जिंदगी भर के लिए उसको एक उसके पूरी जिंदगी में एक कहते हैं धब्बा लग गया, जो अभी अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो अधिकारी हैं ये अति उत्साह में धब्बा छोड़ जाते हैं। ऐसे धब्बों को साफ कीजिए, ऐसे धब्बों को वहां से हटाइए और संट कर दीजिए, कहीं पे बैठा दीजिए अलग साइड पोस्टिंग में। जो लोग अपने अति उत्साह में जो यहां न्यायपालिका को भी कुछ नहीं समझते और तुरंत आदेश पारित कर देते हैं हिरासत में भेजने का, एनएसए लगा देते हैं, एनएसए लगाने के पहले क्या डीएम साहब ने उसकी एनएसए की जो रिपोर्ट पुलिस की आई थी क्या उसकी जांच पड़ताल की, क्या उन्होंने देखा कि इसके पहले कोई आपराधिक मामला उसके ऊपर है कि नहीं है, क्या इसके पहले वो उसी किसी अपराध में संलिप्त थी कि नहीं थी। सामान्य अगर आपकी आप वो है कहते हैं आपराधिक प्रक्रिया है उसके ऊपर आप उसका विकल्प जो होता है एनएसए नहीं हो सकता। आपने फट से एनएसए लगा के और सरकार को खुश करने के लिए कि लीजिए सरकार आप खुश हो जाइए, हमने जेल भेज दिया जो यहां प्रदर्शन कर रहे थे। एक बच्ची को जेल भेज के बड़ा खुश हो रही होंगी मैडम साहिबा, थोड़ा अपने मन में झांक के देखिएगा, वो 25 साल की लड़की है, क्या उसके ऊपर गुजरी होगी, क्या परिवार पे गुजरी होगी, क्या समाज पे गुजरी होगी और क्या उसकी मानसिकता पे गुजर रही होगी। वो तो उन्हीं वो किसके लिए लड़ रही थी, अपने अधिकार के लिए तो लड़ रही थी, ये तो संवैधानिक अधिकार है, उसे संविधान ने दिया है। माननीय न्यायालय भी यही कह रहे हैं कि भाई आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, इकट्ठे होकर अपनी बात कह सकते हैं। वो अपनी बात ही तो कह रही थी और आपने सरकार को खुश करने के लिए साहब खुश हो जाइए, चलिए हमने उस बच्ची को जेल भेज दिया 25 साल की लड़की को, कमाल की बात कर रही है मैडम थोड़ा तो। और ये एक बार की घटना नहीं है, ये इनका उत्साह इतना ज्यादा है कि अभी आपने देखा था एक वहां पे गड्ढे में एक व्यक्ति गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी नोएडा में, उसके बाद ये सीसा चढ़ा के जाती हैं। मैं तो मैडम साहबा आपसे डीएम साहबा यही कह रहा हूं, सरकार से कह रहा हूं, सरकार ऐसे अधिकारियों को वहां से हटाइए, ये अधिकारी के अंदर संवेदनाएं नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, क्रूरता है। जिस अधिकारी के अंदर क्रूरता है,
5: जो नहीं, आप सिर्फ किसी एक अधिकारी की बात कर रहे हैं कि इन अधिकारियों की इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है कि संभल के जो एसपी वहां पर लोगों को कह रहे थे कि आपको सेवैया खानी है तो भुजिया भी खानी पड़ेगी, तो क्या उस तरीके के स्टेटमेंट, क्योंकि तब अखिलेश यादव ने उस पूरे मामले को लेकर काफी सवाल उठाए थे, तो उत्तर प्रदेश के भीतर ही ऐसे अधिकारियों में ये जज्बा कहां से आ रहा है, जरा वो बताइएगा। फिर शहजाद जरा आप भी जवाब दीजिए इसका।
4: जज्बा आ रहा ना सरकार, नहीं सरकार सरकार सरकार की सह पे आ रहा है ना, एक बिना मूछ के मूछ पे ताव दे रहे, मूछ है ही नहीं, ताव दे रहे थे भेज देना अखिलेश यादव को, कमाल है भाई। आप अधिकारी हैं आप गुंडे हैं पहले ये बता लीजिए। दूसरे भी आपने एक देखा संबल की घटना आपने बताई, एक कई जगह पिस्तल ताने आपने देखा होगा, और अभी गोरखपुर में कि हम इतनी फोर्स बुला लेंगे ठंडा कर देंगे, ये भाषा शैली है पुलिस की, ये अधिकारी की भाषा शैली हो सकती है, ठंडा कर देंगे गर्म कर देंगे, ये क्या भाषा शैली है भाई? ये गुंडे बदमाश है क्या हिंदुस्तान के लोग, या जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वो सब गंदे हैं और जो बीजेपी में सब अच्छे हैं? कमाल की बात करें, वहीं से उत्साह है ना, जो आपने पैलेट गन चलते हुए देखा था, जो आपने एक ही फोर्ट सीवन ताने हुए देखा था, जो आंख फोड़ी है जिस तरह के वहां पे मैंने डंडे देखे थे कील काटी के छात्रों के ऊपर में, ये सरकार की सह पे तो आएगा ना, ये कहां से आती है हिम्मत? क्या सरकार एक गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती जो अधिकारी इस तरह काम करेंगे तुरंत सस्पेंड हो जाएंगे? अरे आज वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ऐसी कह रहा है, सरकार ना भूले ये अधिकारी कलाप के बारे में बोलने लगेंगे, ऐसी कम से कम एक संवैधानिक
5: गोरखपुर के भीतर जो वीडियो आया हुआ है,
4: संवैधानिक अधिकार मिला है,
5: जरा वो मुझे दर्शकों को दिखाना है कि कैसे गोरखपुर और गोंडा में जब छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर पुलिस वाले क्या बोल रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था, जरा वीडियो सुनाते हैं हम, और शहजाद फिर आपके पास मैं चलूंगा और तभी मुझे अगला सवाल इस बात पे करना है। जरा जरा वीडियो की आवाज बढ़ाइएगा ताकि सब लोग सुन सके उसको।
6: गोरखपुर पुलिस है मैं बता दे रहा हूँ,
5: गोरखपुर पुलिस है शहजाद, क्या एक ऐसी इकोसिस्टम नहीं तैयार की है कि सरकार के खिलाफ कोई भी सड़क पर दिखाई देगा तो उसे डंडे की भाषा से ही समझाना पड़ेगा, और इसी इकोसिस्टम के वजह से कई बार अधिकारी इस तरीके की हिकमत कर देते हैं, हिमाकत कर देते हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमारे साथ सरकार खड़ी होगी। और अभी मैंने देखा कि एसजी पहले ही कह चुके हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा मैजिस्ट्रेट को लेकर, डीएम को लेकर कहा है उस बारे में।
6: जी साहिल, सबसे पहले तो आज मेरी घर वापसी का दिवस है और आज तक पे मेरी घर वापसी हो रही है एक प्रकार से, क्योंकि मैं मीडिया से ही पार्टी में गया था और पार्टी से वापस मीडिया में आया आशुतोष की तरह। आपके आशुतोष जी भी तो ऐसे ही बैठते हैं, तो जैसे आशुतोष वैसे मैं, तो हम दोनों की घर वापसी हो गई। ना आशुतोष के नेटवर्क में गड़बड़ है, ना मेरा कोई गड़बड़ है, ना कोई क्रॉस कनेक्शन है, उतना ही है जितना आशुतोष का है। पर साहिल जी, आपकी आज तीन पेग्स है स्टोरी की। हम लोग पेग की बातें करते हैं स्टूडियो में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, तब तीन पेग्स आपके हैं। पहले अक्षत का केस, दूसरा आकृति का केस, और तीसरा अभी आपने जो वीडियो बताया गोरखपुर का केस। अक्षत के केस से स्टार्ट करते क्योंकि आपका पैकेज उसी से खुला। मेरे भाई अनुराग बहुत अच्छे, मैं तो मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाँ, ये अलग बात है कि हमजा मजारी की तरह ये बीजेपी का फायदा ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी उन्होंने कहा कि डीएम साहिबा जो ईसी की बेटी है वो ऐसे दे देगी, उन्होंने वो नोटिस इशू ही नहीं किया। साहिल जी आप तो जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, आप मुझसे वरिष्ठ हो। वो नोटिस तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने किया था, डीएम नोएडा ने नहीं किया था, और ये सुप्रीम कोर्ट में टेस्टिफाई हो चुकी है। परंतु एक महिला जो आईएएस पास है, देखिए साहिल जी आप मुझे आशुतोष जैसा मौका दीजिए, चौधरी के बारे में आशुतोष जैसा मौका दीजिए, साहिल आशुतोष जैसा मौका दीजिएगा। साहिल मुझे मौका मिलेगा,
5: मैं उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ,
6: मौका मिलेगा
5: वो उनको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ।
6: मैं अपनी बात पूरी कर लूं,
5: बेसिकली दो अलग अलग मामले, दो अलग अलग मामले, ताकि आप अपनी बात पूरी कर, आप अपनी बात पूरी करिएगा,
6: मैं अपनी बात पूरी कर लूं।
5: आप मेरे पैकेज को कोट कर रहे हैं तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं ना, किसकी बात क्या है। जो मैजिस्ट्रेट की बात की जा रही है वो 5 लाख रुपए के बॉन्ड की बात की जा रही है, जो नोएडा के डीएम की बात की जा रही है वो एनएसए की बात की जा रही है, एनएसए के तहत डिटेंशन की बात की जा रही है। तो आप दोनों चीजों में फर्क समझिएगा शहजाद।
6: साहिल जी, क्या अक्षत को नोटिस डीएम जो है उन्होंने जारी किया था, ज्ञानेश कुमार की बेटी ने किया था, हाँ या ना?

0: मोदी जी की बात कर रहा हूँ क्या?
1: अरे मैंने कहा ना अभी, मैंने आपको फैक्ट चेक करके बोला है।
2: झूठ कौन बोल रहा है?
3: इंटरप्ट नहीं कर रही है मेरी बात, तो नहीं पता।
1: जरा एक मिनट दोनों को रोकिए, यह बहस इस तरीके से बह नहीं जाएगी प्लीज। नहीं जरा बहस बह नहीं जाएगी प्लीज, एक मिनट दोनों को रोकिएगा प्लीज। मैं आपको सबके लिए क्लैरिफाई कर देता हूं, व्यूअर के लिए भी क्लैरिफाई कर देता हूं। शहजाद एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, और उसके बाद जो मैंने सवाल पूछा है उस पर बात करिएगा, ठीक है? सवाल यह है, जिस तरीके से ये कार्यवाहियां की जा रही है उस बारे में ये सवाल है दरअसल। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरीके की इकोसिस्टम तैयार की जा रही है? जब अदालत कह रहा है कि आपको हिम्मत कहां से आती है इस तरीके का 5 लाख रुपए का बॉन्ड वसूलने की, वहां के एसएसपी को एसीपी को हिम्मत कैसे आती है जो मैजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है वहां पर? यह सवाल उठाया जाता है। जब हाईकोर्ट यह कहता है कि भाई इस तरीके से आप एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते, उनका अधिकार है वो करने का, यह इकोसिस्टम कहां से तैयार होता है? यह सवाल है हमारा, इस पर बात करेंगे। शहजाद क्लैरिफाई हो गया होगा तो आगे बात करते
3: हैं। परम आदरणीय साहिल जी, अनुराग जी ने अपनी बात विस्तृत ढंग से 6-7 मिनट के लिए रखी, उनको सिंगल विंडो में भी लिया गया। मुझे बार बार उनके साथ लिया जा रहा है और वो इंटरप्ट कर रहे हैं, पर मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो आज पैनलिस्ट के रूप में, एनालिस्ट के रूप में हूं, पर मेरी बात हो जाने दीजिए एक मिनट के लिए केवल। आशुतोष भी उतनी बात रखते ही। साहिल जी मैं केवल इतना कह रहा हूं कि फैक्ट्स के साथ छेड़खानी ना हो। मैं आपके विषयों पर आ रहा हूं और फैक्ट्स के साथ छेड़खानी हुई, मैंने उसका एक उदाहरण रख दिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जहां तक बात है इस अक्षय त्रिपाठी के केस की, मैं उसको पूरा कर दूं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने भी जो इश्यू किया है नोटिस, उसको विड्रॉ कर दिया है सरकार ने। अब आते हैं दूसरे केस में, आकृति के केस में। आकृति के केस में सरकार का ऑन रिकॉर्ड स्टैंड है कि हमारे पास एविडेंसेस है जिसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करना चाहते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट बनके उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्या अनुराग भदौरिया क्लीन चिट देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात पर आते हैं, गोरखपुर के केस पे, जिसका वीडियो आपने दिखाया। परम आदरणीय साहिल जी, गोरखपुर के केस में प्रॉक्टर को मारापीटी की गई। परम आदरणीय साहिल जोशी जी, वहां पर कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। पुलिस की भाषा पे सवाल खड़े हो सकते हैं, डीजीपी साहब भी, पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ है, पर क्या आप एंडोर्स करते हैं कि स्टूडेंट्स के भेष में कोई किसी को बंधक बनाए? परंतु अभी 10 सेकंड और दे दीजिए साहिल जी, और मैं आखिरी 10 सेकंड, क्योंकि पहली बार डेब्यू कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा 10 सेकंड मौका देंगे। परम आदरणीय साहिल जी, जो लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरा नेशनल कवरेज दे दिया कि भाई केसेस विड्रॉ होंगे। महाराष्ट्र की सरकार, आप जानते हैं फडणवीस जी की सरकार, बिहार की सरकार, असम की सरकार ने केसेस भी विड्रॉ किए, परंतु क्योंकि अगला मौका कांग्रेस का है, कांग्रेस ने तेलंगाना से लेकर केरला से लेकर कर्नाटका में हजारों स्टूडेंट्स को बुक किया। पिनरई विजयन का कहना है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में 5,000 स्टूडेंट बुक हुए, कितने केस विड्रॉ हुए? कर्नाटका में स्टूडेंट बुक हुए, कितने केस विड्रॉ हुए? तेलंगाना में 24 में स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाई गई, 25 में स्टूडेंट पर लाठी चलाई गई और 26 में स्टूडेंट पर लाठी चलाई गई, कितने केसेस विड्रॉ हुए? मैं पूछा जाता हूं हिमाचल में सीएम के खिलाफ नारे लगाने के लिए केसेस फाइल हुए, उसमें से कितने स्टूडेंट्स के खिलाफ केसेस विड्रॉ हुए? और समाजवादी पार्टी बोल रही है, जिसने 2015 और 2014 में कानपुर से लेकर अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स को किस प्रकार से लाठी से पीटा, जिन्होंने 1994 के उत्तराखंड मूवमेंट में स्टूडेंट्स को पीटा, जो लोग नवनिर्माण आंदोलन में 74 में स्टूडेंट्स को जेल में ठूसते थे, जो मीसा लगाते थे। परम आदरणीय साहिल जी, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
4: अब साहिल जी कुछ लंबा नहीं हो रहा है?
1: तो बेसिकली शहजाद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई भी कर दूं, क्योंकि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो आपको एक एनालिस्ट की तरह ही मौका दिया जाएगा और उतना ही समय भी दिया जाएगा। शहजाद ये बात से भी आपको वाकिफ होना पड़ेगा। राघवेंद्र द्विवेदी को आपसे ज्यादा समय शायद मिल सकता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा जी हमारे साथ बैठी हुई है। देखिए हर बार शहजाद एक बात यहां पर लेकर आए कि किसी भी सरकार की ये फितरत होती है, आंदोलन होता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। शहजाद वॉट अबाउटरी कर रहे हैं यहां पर, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी सरकार की फितरत होती है। वो मीसा का उल्लेख उन्होंने किया वहां पर, ये बात सही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की शुरुआत ही मीसा कानून लगाने से हुई थी कि आप किसी के भी खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, और पुलिस को अमर्याद अधिकार दिए गए थे। उसी अधिकार के तहत एनएसए में गिरफ्तारियां की जा रही है, डिटेंशन किया जा रहा है, और उसी पर हाईकोर्ट यहां पर सवाल उठा रहा है कि भाई उनके पास ना कोई आर्म्स थे ना एम्युनिशन थे, किस आधार पर आप उनको डिटेंशन में रख रहे थे? ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सरकार की फितरत होती है, तेलंगाना हो कर्नाटक हो, सरकार के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसे डिटेंशन में डाल दिया जाए, जो शहजाद का आर्ग्यूमेंट है।
5: साहिल जी पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं है, क्योंकि शहजाद तो बिल्कुल अपना भाजपा का कीड़ा इनका खत्म नहीं हुआ है, वापस समाजवादी पार्टी कांग्रेस राज्य में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता

0: यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये कमेंट करता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो ये प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर अधिकारियों पर है, पर प्रत्यक्ष तौर पर तो ये पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकारों से, तो आज तो उनका उनको अपना स्टैंड लेने के लिए होना चाहिए था। दूसरी बात, आप जब सारे स्टेट्स के जो सारा वॉटअबाउटरी कर रहे हैं, जब एक 25 साल की लड़की पर आप एक एनएसए लगाते हैं, 5 महीने का उसको जेल हो जाती है, क्या उस लड़की का, वो सोशल एक्टिविस्ट रही है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है क्या? अक्षय त्रिपाठी जो 19 साल का लड़का है, जिसको रिट पिटीशन लगानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप उसको प्रिवेंटिव लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिव पीस के तहत आप उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा देते हैं। और यह बात मुझे याद दिलाती है जो मैंने बहुत सोशल मीडिया कल्चर में देखा है, जसपाल भट्टी का द फ्लॉप शो आता था, बहुत अच्छा सटायर था, बहुत हंसी आती थी, पर अब समझ नहीं आया था तो इस सरकार की हरकतों पे हंसे कि अपना सर पीटे, क्योंकि ये सटायर में तो हम चलते फिरते जिंदा लाइव चल रहा है हमारे साथ, जिस तरीके से हो रहा है, चाहे देवरिया के एसपी को वो हो, और आपने कहा ना कि ये फितरत कहाँ से आती है, जब एसपी अजय पाल शर्मा को बंगाल में ऑब्जर्वर बनाए के जाना पड़ता है, जिनके ऊपर 140 के तकरीबन पुलिस इनकाउंटर के केसेस चल रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उनको वहां जाना था, सोशल मीडिया ने बड़ा सिंघम, बड़ा इस टाइप का हीरो वर्शिप करता है, तो ये अधिकारियों की फितरत वहां से आती है, अधिकारियों की फितरत आती है कि ये समझने लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द लॉ नहीं, ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट है और ऑर्डर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है। और यह इस तरीके की हरकत, जब सुप्रीम कोर्ट ब्लैंकेट बैन लगा चुका है, आप मुझे बताइए तेलंगाना, कर्नाटका, केरला में कितने बच्चों के ऊपर 5 लाख का प्रिवेंटिव बॉन्ड लगाया गया, कितने लोगों को एनएसए के अंडर अटक किया गया था। मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात करेंगे, प्लीज वाउट अबाउटरी मत करिए। अगर स्टूडेंट पे, अगर कितने लोगों के ऊपर AK-47, चलिए नोएडा प्रशासन का तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि सिर्फ 5 लाख रुपए मांगे और 5 महीने की जेल दी, बिहार सरकार तो और दो कदम आगे, वो तो डायरेक्ट AK-47 ताक देती है, दिल्ली पुलिस तो और आगे है, एक बच्चे की आंख ले लेती है पैलेट गन त्याग कर तान कर। तो यह जो चल रहा है ना, यह सिर्फ और फ्रेंड्स कहने से, दिमाग की फूफा कहने से, नाराज फूफा कहने से आप जेंजी तक नहीं पहुंच सकते, आप एक जगह एक मल्टी इवेंट
1: एक
0: करते हैं
1: सवाल,
0: बटोर।
1: एक सवाल राग, एक सवाल शहजाद, मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आपने कहा कि वो नोटिस तो वापस ले लिया गया था, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है शहजाद, क्योंकि आप तो
2: जी
1: काफी पढ़े लिखे और मीडिया में आपने जो भी काम किया है उसके हिसाब से आपको बाकी सारा रिसर्च और डिटेल का तो अनुभव होगा ही। ये पकड़ के मैं
2: जी
1: आपको
2: सर
1: सवाल पूछ रहा हूं, 1 सितंबर को
2: जी
1: सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ठीक है,
2: जी
1: सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो भी मामले हैं वो सारे मामले वापस लिए जाए पूरे देश भर में उस प्रोटेस्ट को लेकर,
2: जी
1: नंबर एक। यही भी कहा जाता है कि कोई भी कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
2: बिल्कुल
1: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दूसरे दिन सारे अखबारों में, पूरे देश भर के अखबारों में 8 कॉलम हेडलाइन होती है कि भाई इस तरीके से आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद ग्रेटर नोएडा में 4 सितंबर को 5 लाख रुपए का बॉन्ड कैसे मांगा जाता है? भले अभी सरकार कह रही है कि हमने तो वापस ले लिया, भाई हमने तो वो नहीं किया गया है, लेकिन 3 दिन के बाद, इसीलिए तो कोर्ट पूछ रही है ना सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हुई। मुझे आप इस
2: जी
1: बात का जवाब दीजिए, हिम्मत कैसे हो गई?
2: मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जब सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, क्योंकि उसकी भी मंशा जाहिर होती है कि विड्रॉल से, नोटिस विड्रॉल से, जब दोनों की मंशा कुछ और है, तो जैसे हमारे भाई जो ऑफिशियल प्रवक्ता है सरकार के, एक प्रकार से उन्होंने बताया, चाय से ज्यादा केटली गर्म वाला मामला है, उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पर सुप्रीम कोर्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की भी कार्रवाई होनी चाहिए।
1: किटली गरम क्यों होती है पता है ना
2: साहिब जी,
1: आपको?
2: पांच सेकंड
1: आपने बहुत
2: साहिब जी, पांच
1: इंटरेस्टिंग
2: सेकंड
1: टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, वो किटली
2: अभी तो
1: गरम
2: मैं
1: क्यों
2: हर
1: होती है,
2: टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल
1: क्यों गरम
2: करूंगा,
1: होती है,
2: मैं हर
1: गरम होने दिया
2: मैं
1: जाता है?
2: बताता हूं, मैं बताता हूं, 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड केवल। जैसे साहिब जी, ये वॉट अबाउटरी का मामला नहीं है, मैं खुद, मुझे लगता है वन ऑफ द यंगेस्ट ही रहूंगा इस पैनल में भी, मैं झारखंड में, मुझे लगा आज
1: जवाब
2: देवेंद्र
1: जवाब
2: नाथ महतो भी पैनल पे रहेंगे, उनको 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा पे उठा दिया था, आज भी झारखंड में 600 स्टूडेंट्स पे एफआईआर है, मैं मैडम से पूछूंगा कांग्रेस की कि भाई कितने केस विड्रॉल हुए, वो वॉट अबाउट
1: जवाब
2: नहीं है,
1: जवाब
2: स्टूडेंट इज स्टूडेंट इन बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और इन दिल्ली और इन उत्तर प्रदेश, साहिल आप भी अग्री करेंगे,
1: साहिल जी,
2: झारखंड का
1: जवाब दे दो,
2: स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है क्या, पंजाब का स्टूडेंट स्टूडेंट
1: साहिल जी
2: नहीं है
1: जवाब
2: क्या?
1: दे दो।
2: दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं एज ए एनालिस्ट, कि जब सरकार की एक मंशा दिखाई दे रही है,
1: साहिल
2: आप
1: जी हम लोग
2: अपनी
1: जवाब
2: जो
1: दे
2: ओवर
1: दे,
2: लॉयल्टी, अरे भाई अनुराग जी 10 सेकंड रुक जाओ ना यार, क्यों बीच में बड़बड़ कर रहे हो, अपनी ओवर लॉयल्टी दिखाने के लिए, मेरे भाई हो आप, दोस्त हो मेरे, सुन लो ना 10 सेकंड, अपनी ओवर लॉयल्टी
0: ओवर
2: दिखाने
0: लॉयल्टी
2: के
0: हो जाती
2: लिए
0: है,
2: जो
0: नहीं अच्छा
2: सरकार,
0: अगर
2: एक
0: गलत
2: सेकंड
0: होता
2: मैडम,
0: है,
2: मैडम एक सेकंड प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर
0: रहा हूँ,
2: मैं साहिल जी अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, साहिल जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ क्या, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ,
1: शहजाद को बात खत्म करने दीजिए, शहजाद को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मुझे डॉक्टर सिंह के पास जाना है,
2: साहिल जी
1: उनसे भी समझना है, बोलिए शहजाद।
2: मैं तो मैं और मैं माफी चाहता हूँ विक्रम जी से कि उनको इतना इंतजार करना पड़ा, पर 10 सेकंड मैं मानता हूँ कि ना 15 अगस्त को प्लीज ये डिस्टर्बेंस बंद करवाइए, क्या मतलब है इसका, मैं मानता हूं कि 15 अगस्त को
1: प्लीज मत करिए,
2: मैं मानता हूं कि 15 अगस्त को ना हेमंत सोरेन ने आदेश, ना हेमंत सोरेन या राहुल गांधी ने आदेश दिया था कि देवेंद्रनाथ महतो को जाकर अटक कीजिए, और ना ये योगी जी ने आदेश दिया था कि ये नोटिस थमाइए। हमारे ऑफिसर्स कुछ है जिनको लगता है कि इंप्रेस हो जाती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मैं खुद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में रहा हूं, ये इंप्रेस करने के चक्कर में आप सरकार को प्रॉब्लम में मत डालिए, ना झारखंड में डालें ना उत्तर प्रदेश में डालें, ये मेरी सलाह है।
1: वो इंप्रेस डॉक्टर सिंह इसके वजह से तो नहीं होते हैं, क्योंकि इससे पहले जब कोई इस तरीके का काम करता है तब उन्हें तो सपोर्ट किया जाता है, और इसी के वजह से ये हिम्मत बढ़ने लगती है, इसी के वजह से लगने लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तब भी हमारे साथ कोई खड़ा होगा डॉक्टर सिंह, क्योंकि बहुत ही सख्त तरीके का स्टेटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आ रहा है।
3: साहिल जी आपकी बड़ी कृपा की आपने उत्तर प्रदेश और उत्तर पुलिस के ऊपर वृहद प्रकाश डाला है, और मैं चाहूंगा कि इसको सिलसिलेवार आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई आदेश होता है सर्वमान्य है और उसका अनुपालन वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है, इसलिए पहले सोच समझ करके ऑर्डर इशू करना चाहिए था, और ऐसा नहीं। अब मैं एनएसए के बारे में आ जाऊं, एनएसए के जितने केसेस मैंने किए शायद ही किसी ने पूरे देश में किए होंगे, और पेशी होती है हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और एक मैं बताता हूं लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा एसेंशियल सर्विसेज, एक आदमी जाता है गार्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है, हरी झंडी छीन लेता है, एनएसए लगता है एनएसए अपहोल्ड होता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो क्या उसके हाथ में कोई हथियार था, नहीं था, बावजूद इसके एनएसए में कंफर्मेशन हुआ, क्योंकि वो कंफर्मेशन वाजिब, हथियार होना ना होना, और वहां पर मैं कहूंगा उच्च न्यायालय में हमारे पक्ष की प्रस्तुतिकरण में बहुत कमजोरी थी, और इसीलिए ये मामला ढीले तरीके से चल गया। पुलिस कभी अपने को असहाय नहीं समझती साहिल जी, और मेरा परामर्श होगा नोएडा पुलिस को भी, सभी पुलिस अधिकारियों को, कि विद्यार्थियों जनजी की में जो आ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार आपका है शांति में प्रदर्शन करें, लेकिन अपराधियों को अगर जनजी में और विद्यार्थियों की आड़ में आ रहे हैं तो उनको निष्क्रिय करना भी पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन आपकी भाव भंगिमा बिल्कुल सौम्य और शांत मदर टेरेसा के अनुरूप होनी चाहिए, तैयारी बेशक आपकी जैसी होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं कैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर जब हर आदमी के हाथ में एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक मोबाइल फोन है, तो सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करें, तो भाषा शैली और टोन उसको परिमार्जित रखें, लेकिन ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत
1: विक्रम सिंह जी, मैं जरा इस बात को समझना चाहता हूं, क्योंकि दावा यह किया गया है कि अगर कोई सड़क पर उतरता है तो क्या पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, क्या बिल्कुल करनी चाहिए, अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अदालत यह भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट का फायदा कोई असामाजिक तत्व भी ले सकते हैं, तो उसका सेग्रीगेशन भी करना पुलिस का ही काम है, वहां के प्रशासन का ही काम है, यही ये भी हाईकोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, यह कब होता है डॉक्टर सिंह कि जब किसी से बॉन्ड लिया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है किसी के ऊपर पहले से कोई मामले चल रहे हैं, कोई संगीन आरोपी है उससे बॉन्ड लिया जाता है आमतौर पर कि आप किसी भी तरीके से शरारत नहीं करोगे, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी नहीं करोगे अगर आप प्रोटेस्ट में उतरोगे, तो जहां तक मेरी जानकारी है एनएसए उस पर लगाया जाता है जिसके पास आर्म्स एम्यूनेशन मिल सकते हैं, जो स्टेट के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है, ना कि स्टेट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर सकता है। इन दोनों मामलों में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की सोच का असर इन अधिकारियों पर पड़ा, और इसके वजह से उन अधिकारियों को लगा कि इसी तरीके से इनके साथ डेल्ट किया जा सकता है, इसी तरीके से इनके साथ निपटा जा सकता है?
3: साहिल जी
1: क्या यह असर नहीं दिखता आपको?
3: साहिल जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं पुलिस विभाग का इंस्ट्रक्टर भी हूं और कोचिंग क्लासेस लेता हूं आईपीएस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल्स तक। आपका पहला सवाल कि आपराधिक इतिहास होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, मुझे भय है कि अनुराग भदौरिया जी मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं या मैं उनके ऊपर, तो पुलिस मेरे ऊपर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर पुरानी सीआरपीसी की धारा 107 116 वर्तमान बीएनएसएस की धारा में प्रिवेंटिव एक्शन कर सकती है भले ही एक भी मुकदमा मेरे ऊपर ना हो। रही बात एनएसए की, अग्नेय अस्त्र का होना कोई अनिवार्यता नहीं है, ये अंदेशा कि आपके तीन इंग्रेडिएंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा कैंटोनमेंट पे जाकर के आप फोटो ले रहे हैं सामरिक महत्व की, या आप एसेंशियल सर्विसेज काट रहे हैं बिजली, या आपकी ट्रेन को पटरी काट रहे हैं, नंबर तीन लोक व्यवस्था भंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं पब्लिक ऑर्डर अगर भंग कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर अगर भंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर
1: पब्लिक ऑर्डर,
3: जी जी पब्लिक ऑर्डर का भंग कर रहे हैं।
1: हाईकोर्ट ये कह रहा है कि ये व्यक्तिगत राय के आधार पर नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी की व्यक्तिगत राय के आधार पर आप किसी को डिटेंशन में नहीं डाल सकते कि मुझे लग रहा है कि इस तरीके से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से, ये व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, उसके साथ कोई एविडेंस होना चाहिए।
3: ये पब्लिक ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लोगों में भय और आतंक व्याप्त हुआ, समाचार पत्र और टीवी चैनल्स में लोगों का भय और आतंक परिलक्षित हो, तब यह माना जाएगा हमारे कह देने से, हमारे मतलब पुलिस के कह देने मात्र से कि लोक व्यवस्था भंग हो गई बिल्कुल अस्वीकार्य रहता है। तो उसके प्रमाण क्या दिए, जाहिर है कि अधकचरा केस, अधकचरा तरीका, और जो लास्ट वो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तब आप एनएसए को साइन करें, निरुद्ध आदेश ऐसा नहीं कि पुलिस ने भेजा आपने बिना देखे पढ़े आपने साइन कर दिया, वो भी इनवैलिड हो जाएगा।
1: ठीक है अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
4: साहिल जी मैं जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए आदरणीय सम्मानित विक्रम सिंह साहब जी ने कितनी अच्छी बात कही, अगर पुलिस ने आपको कोई रिपोर्ट दी है तो आप उसकी तहकीकात तक जाइए, उसमें जानिए पहचानिए क्या ये रिपोर्ट सही है, क्या उसका आधार जो रिपोर्ट का वो सही है, विवेचना उसकी सही है, तब उस पर एनएसए लगाइए। कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली, ये डीएम साहब को करना चाहिए था। दूसरी बात जहां तक कि अक्षत त्रिपाठी की बात है, अब बताइए माननीय न्यायालय का आदेश है कि हमने 20 से 25 के बीच में 20 से 25 जुलाई के बीच में जितनी भी एफआईआर हुई है छात्रों के ऊपर में वो रद्द कर दी जाएं। उसके बाद 1 सितंबर को उन्होंने ये आदेश दिया था, 4 सितंबर को आपने उसको नोटिस भेज दी, तो सवाल उठता है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेते हुए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दोबारा कभी कोई अधिकारी इस तरह की यह हिमाकत ना कर पाए। अगर आज इसको इसी तरह से छोड़ देंगे कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो मुझे लगता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सोचो आप, माने आप किसी भी बच्चे की जिंदगी किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, आप उसके नोटिस भेज दे रहे हैं, ठीक है आपने बाद में नोटिस वापस ले ली, लेकिन सवाल उठता है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसकी हिम्मतें आई कहां से, वही तो मैं कह रहा हूं हिम्मत कहां से आ रही है। आप सरकार को खुश करने के चक्कर में आप जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है जो संवैधानिक तौर से आपको मिली है, आपने जो शपथ ली है वो क्यों भूल रहे हो आप? आपकी सरकारें तो आएंगी जाएंगी, आज इनकी कल किसी और की होगी, सरकार के अगर सरकार की नजर को देख के आप चलोगे तो आप सरकार तो हमेशा विपक्ष का दमनकारी नीति अपनाती है, सरकार तो हमेशा अपने ही नीति को अपनाना चाहती है, तो आप सरकार की उस चीजों को जो गलत चीज है उसको क्यों आप जस्टिफाई करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हो? आपको तो जिम्मेदारी आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आप पालन कर लेते। अब सोचो अगर न्यायालय का आदेश नहीं होता,
1: जिन्होंने तो इस 5 लाख के बॉन्ड का मामला उठाया था,
4: दूसरी बात,
1: और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने दरअसल इस पूरे मामले में अपील की थी, जरा वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते, क्यों ऐसा उन्हें लगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि बाद में तो सरकार ने कहा कि हमने तो नोटिस वापस ले लिया था, लेकिन क्यों वो सुप्रीम कोर्ट गए वो जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद राघवेंद्र द्विवेदी आपका जवाब चाहिए मुझे, जरा सुनिए फॉर्मर एएसजी क्या कह रहे थे।
5: देखिए ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था, कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है।
1: राघवेंद्र द्विवेदी सुना आपने, राघवेंद्र जी मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क कटा हुआ है, यही तो बात है कि सरकार का नेटवर्क कटा हुआ है और इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके की चीज घटनाएं होती है तब उससे कैसे निपटाना चाहिए। शहजाद मैं आपको और एक तस्वीर दिखाता हूं आज की और उसके बाद आपके पास आता हूं, मुझे और एक तस्वीर आपको दिखानी है, आता हूं आपके पास ही आता हूं। देखिए आज कोलकाता के भीतर क्या हो रहा है वो जरा दिखा देते हैं, कोलकाता में वो जरा तस्वीरें दिखाइएगा, आज कोलकाता में जाधवपुर यूनिवर्सिटी तक तो वीडियो आएगा तब हम आपको दिखा देंगे, वहां अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शहजाद आपके पास, वो कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे तो आपको जरा जवाब देने में भी ठीक लगे।
4: मैं कह रहा हूं साहिल जी देखिए सवाल ये है कि सरकार का नेटवर्क जनता से ही कट गया है। अब जनता के साथ उनका नेटवर्क नहीं है, उनका नेटवर्क सिर्फ अधिकारियों के साथ बचा हुआ है, और अधिकारियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके जनता पे अपनी वो एक कहने ना को दमनकारी नीति अपना रहे हैं। भाई देखो, ये कनेक्ट जनता से होना चाहिए जैसे समाजवादियों का जनता से, उनका कनेक्ट अधिकारियों से हो गया है। अब अधिकारी इतने मनचढ़े हो गए हैं कि वो कोर्ट का भी ऑर्डर को नहीं मान रहे। सोचो आप, कोर्ट ने जबकि बोला उसको भी नहीं मान रहे, वो
2: चूंकि सत्ता क्या चाहती है, सत्ता की नजर कैसे है। सबसे पहले तो
1: अनुराग जी, ठीक है
2: साहिल जी वो बोलते रहेंगे, उनकी पुरानी आदत है और वो चेंज नहीं होगी साहिल जी, ऐसे तो नहीं होगा फिर, वरना मैं मूक दर्शक बनता हूँ।
4: देखो बीजेपी
2: वैसे नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता साहिल जी, कितना लंबा वो बोल गया
4: ये तो बीजेपी क्यों भाग रही है,
2: चलिए आपकी मर्जी।
4: बहुत बड़ा सवाल है ना कि बीजेपी के पास जवाब नहीं है,
1: ठीक है चलिए हो गया अनुराग जी, अब वो वीडियो भी आ गया, जरा वो वीडियो भी दिखा देते हैं।
4: मतलब बीजेपी
1: अनुराग जी ठीक है, जरा वो वीडियो दिखा देते हैं, आज कोलकाता के भीतर क्या हुआ है, जनता ये एक बड़ा मोर्चा निकला हुआ है। मैं आपको जरा अनुराग जी को शांत करिए प्लीज, ये ऐसे इस तरीके से आप हाईजैक मत करिएगा डिबेट। ये देखिए, ये एक जादवपुर यूनिवर्सिटी तक एक मोर्चा निकाला गया और ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है एक तरीके से, और जिसमें खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए हैं उसमें, और गीता पाठ के लिए एक बार फिर आऊंगा शुभेंदु अधिकारी उसमें कह रहे हैं, दूसरी बार आऊंगा हनुमान चालीसा के लिए आऊंगा ये भी वहां पर वो कह रहे हैं। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं, जादवपुर पदयात्रा उसका नाम दिया गया है और शुभेंदु अधिकारी उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी मैं जादवपुर जाऊंगा। अब शहजाद देखिएगा, जब मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरते हैं, बड़ी यात्रा निकालते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। यही यात्रा कोई और निकालने की कोशिश करता तो हो सकता है कि एनएसए थमा दिया जाता, नोटिस थमा दिया जाता, यह कहा जाता था कि बॉन्ड पे लिख के दे दीजिएगा कि कोई असामाजिक तत्व उसमें नहीं घुसेंगे वरना आप पर कार्रवाई हो जाएगी। ये दोहरा मापदंड है ना, उसको लेकर सवाल है कहीं ना कहीं।
2: मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए, आपके इस सवाल से शुरू कर रहा हूं पर मुझे दो तीन और जवाब देने,
1: 35 सेकंड लीजिए।
2: आज मुझे आशीष, नो आई जस्ट आंसर। ऐसा है साहिल जी,
1: चलिए 40 सेकंड लीजिए।
2: अरे वाह पर सिर्फ अनुराग की इंटरप्शन मत होने दीजिए। हाँ एकदम खुश बयाल
1: आप जो है ना, ये आपके सर पे जो आशुतोष का भूत चढ़ा हुआ है ना, आप जरा उससे बाहर निकलिएगा। अभी आप जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आ रहे हैं तो एनालिसिस करिए उस बात का, व्यक्तिगत राय टिप्पणी जरा दूर रखिएगा इस बात को लेकर।
2: चलिए, ऐसा है कि अगर शुभेंदु अधिकारी हनुमान चालीसा और माँ भारती के नारे और जो हमारी भारतीय संस्कृति के नारे छोड़ के सर तन से जुदा के नारे लगाने जा रहे होते तो शायद उनके ऊपर भी कार्रवाई होती। वो तो राष्ट्रवादी और देश के पक्ष के कार्य में जा रहे हैं। पर हाँ, देश के विरोध उमर खालिद के नारे लगाते तो मैं भी वकालत करता, भाई उन पे एनएसए लगाओ। पर अगर कोई उमर खालिद के लिए, शर्जील के लिए छाती पीटे, कपड़े फाड़े तो उस पे एनएसए ही लगेगा। ये बात गांठ बांध के रखिए। दूसरी बात, क्योंकि जादवपुर भारत में ही है, जादवपुर अभी हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया किसी और देश में। दूसरी बात, मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है, देखिए साहिल जी कितनी अद्भुत चीज हो गई आपके शो पे। हमारे भाई ने स्टार्टिंग में बोला था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फलाने की बेटी, बेटी के ऊपर क्या लालचन लगाए, फिर आते आते एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने किया था नोटिस जारी, इस पर एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। और उन्होंने कांग्रेस को भी संदेश दे दिया कि देखिए कांग्रेस के जमाने में, यूनिवर्स इंडिया टुडे की रिपोर्ट, आफरीन की रिपोर्ट है, आफरीन की, हैदराबाद में स्टूडेंट्स को घसीटा जा रहा है। इस पर भी तो समाजवादी पार्टी ने बोला ना, ये समाजवादी पार्टी ने, इस पे भी तो देवेंद्रनाथ महतो ट्राइबल स्टूडेंट है बेचारे, इंडिपेंडेंस डे पे पकड़ लिया था। तो समाजवादी पार्टी का डायरेक्ट बयान ना भी आयो, उनका प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। और आखिरी बात मैं फिर से आपको रिटरेट करना चाहता हूं, अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ओवर, इसको बोलते ना ओवर जेलस होना, हमारे पास ऐसे भी अधिकारी है जो अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं, जिन्होंने कानून की हमेशा रक्षा की, किसी अधिकारी की या किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सामने नहीं झुके, चाहे उनके कोई भी आदेश हो या कोई भी मंशा हो। पर अगर वो ऐसे करेंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं तो भाजपा में रह चुका हूं, भाजपा शोज जीरो टॉलरेंस फॉर सच अधिकारी जो कानून का नहीं परंतु अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में ओवर जेलस बनते। मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूं, तो इसीलिए भाजपा के साथ ये मत जोड़िए। झारखंड में
1: अक्षत और आकृति ने आपने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि जो कोलकाता में जो जादवपुर यूनिवर्सिटी तक रैली निकाली जा रही है, मुझे एक तो बात वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है चलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी तक, खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, खुद ही उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है, खुद मुख्यमंत्री को भी होना चाहिए। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है शहजाद, कि आकृति या अक्षत इनमें से किसने सर तन से जुदा की घोषणा की थी, कि जिसके वजह से उनको कहा जा रहा था कि बॉन्ड लिख के दीजिएगा, उसके वजह से उनको कहा जा रहा था कि कर्मचारियों का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए सड़क पर उतरना, उसके लिए एनएसए के भीतर आपको 5-6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कौन से कानून के तहत है, क्योंकि जो आरोप उन पर लगाया गया था उसमें तो सर तन से जुदा का कोई नारा लिखा नहीं है उसमें।
2: आकृति के केस से शुरू करते हैं। आकृति के केस में हाईकोर्ट का एक आदेश आया, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की का अधिकार सरकार के पास है, अगर उनके पास तथ्य है या हम उनके जजमेंट में बैठ जाए।
1: बिल्कुल है,
2: तो वो कह, सरकार कह रही है कि मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास तथ्य है कि आकृति का रोल जो बताया जा रहा वो नहीं है, इट इज अ रोल
1: तो इसका मतलब ये है,
2: तो ये, है वो जा सकते हैं।
1: आप जो बोल रहे हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि ये पैमाना सब जगह पे लगाया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के आधार पर कोई तोड़क कार्रवाई होती है तब तो यह कहा जाएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है, तोड़क कार्रवाई हम कर देंगे, फिर वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सब बंद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हाईकोर्ट के आदेश की टिप्पणी जो आती है उस बात को लेकर सवाल पूछेंगे तो ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, भूल जाइए हाईकोर्ट ने जो कहा, जो हाईकोर्ट ने कहा है वो आज की स्थिति में मौजूदा स्थिति है, वो उस पर तो सवाल उठाया जाएगा ना शहजाद।
2: मैं तो कह रहा हूं कि कोई मूर्ख ही कहेगा कि लोअर कोर्ट का आदेश फुल एंड फाइनल आदेश है, मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो खुद लॉ का ग्रेजुएट हूं, आईएलएस से हूं, तो मुझे पता है लॉ, मैंने तो कभी नहीं कहा। परंतु मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आकृति के मामले में हम दोनों सुप्रीम कोर्ट ना बने, और कांग्रेस बताए झारखंड में कितने बच्चों के केस विड्रॉ हुए हैं, कर्नाटका में कितने बच्चों के, आंकड़े देना। पूजा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता है, तो वो क्यों आंकड़े नहीं दे रही? केरला में 5,000 केस पिनराई विजयन ने बोला, ये भी नहीं है कि राजीव चंद्रशेखर ने बोला, ये भी नहीं है कि कोई भाजपा ही ने बोला, संघी ने बोला, ये तो संघी को तो गालियां देते हैं। पूजा जी, पिनराई विजयन ने बोला 5,000 केस हुए, कितने विड्रॉ किए चलिए बताइए, साहिल जी को बता दीजिए, साहिल जी चिंतित है केरला के स्टूडेंट्स पे।
0: साहिल जी आप अगली बार ना आप महत्व को भी ले आइएगा, और किसी से केरला से भी किसी स्टूडेंट प्रोटेस्टर को लेके आइएगा, और दिल्ली के भी और बिहार के भी प्रोटेस्टर को लेके आएगा। पहले तो ये बात सेटल कर लेंगे कि शहजाद पूनावाला जैसा क्लेम करते हैं कि वो यंगेस्ट स्पोक्स पर्सन है, वो है कि नहीं है, वो बात क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात उनसे पूछ लीजिएगा क्या उनके ऊपर एनएसए लगा। अभी आप हाईकोर्ट की बड़े बड़े स्वतंत्र हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, पर मैं चाहूंगी बीच में मत बोलिए। हाईकोर्ट की जो 15 पेज का डॉक्यूमेंट है, ऑब्जर्वेशन है आकृति केस में, उसको पढ़ा जाए, उसमें पढ़ा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट के शब्द है कि मनमानी, मनबढ़ और मनगढ़ंत झूठी कहानियों से भरा पड़ा है, और सारे अधिकारियों की रूल बुक में प्रतिकूल टिप्पणी किया जाए, और इस तरीके की कार्यवाही जो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फाइन होता है। अभी आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया आपकी हिम्मत कैसी हुई उसको नोटिस भेजने की। वही मैं कह रही हूँ ना, एक बच्चे को, एक वकील को, एक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, रिट पिटीशन लगाना पड़ता है, नहीं तो जिस तरीके से आप लोगों ने लोकतंत्र को जूते के नोक पे लगा रखा है वो तो दिख ही रहा है हमारे सामने। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, आप कह सकते हैं कि मेधा रूपम नहीं है, उन्होंने ये ऑर्डर नहीं लगाया, पर ये पूरा इकोसिस्टम है।
1: नहीं तो उस पर काउंटर आर्गुमेंट पूजा जी ये आ रहा है ना, पूजा जी इस पर काउंटर आर्गुमेंट तो ये आ रहा है ना कि भाई FIR तो वहां पर झारखंड के छात्रों पर भी किया गया था, महतो जी के खिलाफ भी किया गया था, केरला के भीतर भी कोई एजिटेशन होता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है।
0: महतो जी को अपने हाथ से वो करवाया था, उनके पर उनका सर नहीं फोड़ा गया था, कोई मेल पुलिस ऑफिसर ने फीमेल पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ नहीं मारा था, महतो का खुद से अपने हाथ से फास्ट तोड़वाया गया था। और आज आप मैं बोल रही हूँ ना, आप अगली बार से महतो जी को भी ले आइए, और केरला से भी जरूर प्रोटेस्टर लेकर आइए, क्योंकि शहजाद की घड़ी तो वहीं अटकी हुई है, क्योंकि शहजाद को तो और कुछ आता नहीं, वो डायरेक्ट कांग्रेस पे जाते हैं फिर सपा पे जाते हैं। पहली बात ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव ओवररीच है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के शय के कारण हो रही है, और इसका कोई और रीजन नहीं है।
1: विक्रम सिंह जी,
0: बहुत बड़ा स्टाफ है, आप जब ऑरा फॉर्मिंग करते
1: हैं तरीके से, ये कई जगह पर देखा गया है, क्या हम इसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच मानेंगे, या किसी भी जगह पर सरकार की जो एक इकोसिस्टम तैयार होती है, प्रशासन की इकोसिस्टम तैयार होती है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम तैयार होती है, उसके आधार पर यह ओवररीच होना शुरू हो जाता है, क्या मानेंगे इसको, और इसको ठीक करना है तो क्या होना चाहिए?
3: साहिल जी इसके कई कारण हैं, जब पहली बार हम हाथ में गदा लेके चलते वर्दी पहन के तब हमें टोक देना चाहिए था, दूसरी बार जब हम ये फूल बरसाते कांवड़ियों पे हमें टोक दिया जाना चाहिए था। हॉकी का मतलब यही है कि हम धर्म जात संप्रदाय से ऊपर हैं और हम किसी भी राजनीतिक दल धर्म संप्रदाय के ऊपर प्रतिकूल अवांछनीय टिप्पणी न करें, हमें टोक देना चाहिए था। हम लोग ये भी कहते थे कि वर्दी में हम लोग किसी भी राजनेता को बुके नहीं देंगे कि हमारा सैल्यूट ही 1000 बुके के बराबर है, लेकिन आज तो फैशन हो गया कि लोग जाके बड़े बड़े बुके दे रहे हैं, लेकिन हमारी रूल बुक और हमारे ड्रेस रेगुलेशन बिल्कुल स्पष्ट हैं। पूजा जी यहां बैठी हैं, उनको हमसे ज्यादा मालूम है कि ड्रेस रेगुलेशन हमें किस चीज की अनुमति देता है, किसकी नहीं देता है, ये चीज स्पष्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे मनबड़, और दूसरा जो बची कुची कसर थी वो रील्स ने पूरी कर दी है, दबंगम सिंगम ऐसी फिल्मों ने पूरी कर दी है कि 3 बटन खोल करके इटलाते बल खाते चलो तो जनता में बहुत लोकप्रिय हो जाए, ये बिल्कुल अस्वीकार है। एक अनुशासन में हर पब्लिक सर्वेंट के लिए कहा जाता है यू शुड बी सेल्फ एफेसिंग, अपने बारे में चर्चा मत करो, अपने बारे में न्यूज़ी मत बनो, अपने बारे में रील प्रकाशित मत करो कि जब से दबंगम साहब आए हैं यहां अपराध शून्य हो गया। ये सब चीजें ऐसी हैं जो
1: कुल मिलाकर प्रशासनिक सेवा में है, संविधान की सेवा करिए, कानून की सेवा करिए। विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं वो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एग्जीक्यूटिव आउटरीच आप उसे कहें या जो इकोसिस्टम बनाया गया है उसे आप कहें। कानून व्यवस्था पर ध्यान रखते समय किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अगर हानि हो रही है तो उस पर सवाल तो जरूर उठे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: लोहा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
1: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
0: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही हैं ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी हैं।
1: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
2: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
0: मैं आशुतोष मिश्रा,
2: रोहित सिंह,
1: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
3: दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में आज तक की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। आप देखिए, ये जो बिल्डिंग पिछले करीब 4 साल से झुकी हुई थी और यहाँ पर 2023 में नोटिस भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही थी और जब सत्य निकेतन वाला हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, तो आज तक ने भी इस बिल्डिंग को प्रमुखता से चलाया। ये जो झुकी हुई बिल्डिंग थी इसमें जो लापरवाही बरती जा रही थी वो सामने उजागर करी और उसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिला। आखिरकार जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और अब इस बिल्डिंग पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर से सारे जो ग्रिल हैं वो हटा दिए गए हैं। नीचे मलवा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर कल शाम को भी डेमोलिशन हुई और अभी भी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो जारी है। बिल्डिंग इस कदर झुकी हुई है कि जब यहाँ पर जो तोड़ने के लिए टीम पहुंची, इस पर डेमोलिशन करने के लिए टीम पहुंची, तो पहले नीचे जैक लगाए गए जिससे जब डेमोलिशन किया जाए तो बिल्डिंग अचानक कहीं भरभरा कर ना गिर पड़े। अब फिलहाल जैक लगाया गया है और डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब खबर चलती है, जब चीजों को सामने लाया जाता है, आखिरकार तभी जो अधिकारी हैं वो अपनी नींद से क्यों जागते हैं? कहीं सत्य निकेतन जैसा हादसा दोबारा इन इलाकों में ना हो, इसलिए जरूरत है कि इस तरीके की और भी जो बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन पर समय रहते कार्रवाई की जाए। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली।
4: तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रंगों से अक्सर डरा करते हैं लेकिन भगवान से नहीं करते हैं, चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, चंदा चोरी कर लेते हैं। इन्हें भगवान से डरना चाहिए, रंगों से नहीं डरना चाहिए। और किस रूप में जाकर के उन्होंने चंदा चोरी किया होगा? जो चंदा चोरी कर रहा होगा, चढ़ावा चोरी कर रहा होगा, वो सबसे बड़ा बहरूपिया होगा। इसलिए अपने छात्र नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, सावधान रहना बहरूपियों से, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. ब्रेक के उस पार हल्ला बोल देखते रहिए आज.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार। कहा, इनके मन में हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति, इसलिए पूरा वंदे मातरम गाने में होता है दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार। कहा, पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल होता था लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाई तो दो ही जगह है, या तो जेल या जहन्नुम। सत्य निकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज पर हॉस्टल लेने वाला और कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट। एमसीडी एक्शन में गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। हादसे वाले पीजी से सटी बिल्डिंग पर भी चला हथौड़ा। दिल्ली लाल किला धमाका मामले में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। ब्लास्ट को बताया आत्मघाती हमला। कार में बैठे उमर नबी ने आईईडी को किया सक्रिय। लोन मुजाहिद की थ्योरी पर काम कर रहा था आरोपी। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर बड़े फैसले। 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मुहर। रेल मंत्री वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: पच्चीस साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
3: हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका।
4: बच्चों की आवाज को गलत दिशा देने का प्रयास करने वाले लोग, जिन्होंने गूंज देने का प्रयास किया है, उनके आवाज में दम कितना है।
5: नाराज कुफा इन चीफ, श्री नरेंद्र मोदी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के युवाओं को अपने अपने पाले में लाने पर जंग छिड़ी हुई है सियासत की और बढ़ती ही जा रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की, तो साथ ही राहुल गांधी पर युवाओं को गलत दिशा देने का बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं को गलत दिशा दी है। उधर युवाओं के बीच विपक्ष पर नाराज फूफा का प्रधानमंत्री मोदी का तंज बीजेपी का बड़ा कैंपेन बन चुका है। एक के बाद एक वो वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन जब युवाओं को लेकर ये लड़ाई छिड़ी गई है तब सवाल पेपर लीक से लेकर सत्य निकेतन जैसे हादसों का है। सवाल है कि क्यों दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड और बिहार तक छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर है। नाराज फूफा कहना राजनीतिक शब्दावली है, लेकिन क्या सिस्टम से नाराज युवा सरकार की बड़ी चुनौती नहीं है? जेंजी के नाम पर सरकार को घेर रहे विपक्ष से भी सवाल है कि क्या उन्हें देश में कुछ अच्छा होता दिखता है? राहुल गांधी के छात्रों की गूंज में कितनी सियासत, कितनी हकीकत, इसी पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नाराज फूफा या नाराज युवा, पहले रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है।
1: 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है। मैं मानता हूं कि जन सेवा और समर्पण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। हमने अगले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम का निर्माण किया है और 17 सितंबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक हम पूरे एक महीने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
0: इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच दो यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर है।
2: जिन्होंने गूंज देने का प्रयास किया है उनके आवाज में दम कितना है? बच्चों के आवाज को गलत दिशा देने का प्रयास करने वाले लोग कभी भी, उनके अगर अपने आवाज में दम रहता तो जब उनको मौका मिला था तो इन देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का युवा आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके गूंज का असर केवल उनके कार्यकर्ता तक ही पहुंचेगा। देश के युवा और जनमानस मोदी जी के साथ हैं।
0: इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है।
3: नाराज फूफा हर काम पे सवाल, नाराज फूफा हर प्रोग्रेस पे बवाल, नाराज फूफा।
0: 12 साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है।
3: इसकी जरूरत ही क्या है जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा।
0: नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है।
4: वो नेहरू जी से नाराज, वो इंदिरा जी से नाराज, वो राजीव जी से नाराज, वो मनमोहन सिंह जी से नाराज, वो जैन जी से नाराज, वो किसान से नाराज, वो आपसे नाराज, मीडिया वालों से कुछ मीडिया वालों से नाराज, वो तमाम उन लोगों से नाराज जो उनसे सवाल पूछते हैं। इस देश का अगर कोई नाराज फूफा है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, फूफा इन चीफ, नाराज फूफा इन चीफ श्री नरेंद्र मोदी।
0: बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं।
5: कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं? कौन सी दुनिया से आंकड़े जुटाते हैं और उन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? पता नहीं नितिन नवीन जी को पता है या नहीं, संविधान की धारा 39 है, उसके आधार पर इकोनॉमी का मूल्यांकन कर ले। आय की असमानता, संपत्ति का संकेंद्रण, 2013 में क्या था और आज क्या है।
0: हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को, सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
6: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
7: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है, और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ एलजेपीआर के जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। गौरव जी आपकी चिंता नाराज फूफा जो आप विपक्ष के लिए कह रहे हैं, आपके वीडियोज भी अब बीजेपी ने डाल दिए, वो है या नाराज युवा है?
8: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे लिए तो जो युवा है वो देश का भविष्य है, और आप ही के चैनल का जो सर्वे आया था मूड ऑफ द नेशन, मैंने वो देखा, इंडिया टुडे मैगजीन में भी वो छपा। आप देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता पूरे भारत में और युवाओं के बीच में कौन है, उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ये तो आपका सर्वे बताता है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि युवा आज बहुत बड़ी आबादी है भारत में। 3 बार लगातार 62 साल बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए, तो युवा किसके साथ खड़ा था? नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था। देखिए हम तो सकारात्मक बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि नाराज फूफा, तो नाराज फूफा है कौन, मैं आपको बताता हूं। नाराज फूफा वो हैं जिसके पिताजी कांग्रेस वाले कहते हैं भारत में कंप्यूटर लाए, लेकिन उनके ही पुत्र के दिमाग में वायरस आ गया, और वायरस कोई ऐसा वैसा नहीं, नकारात्मक वायरस जो हर चीज का विरोध करना सिखाता है। जैसे राष्ट्रपति जी का विरोध करो, राष्ट्र पत्नी बुलाया, राहुल गांधी चुप रहे, ये होता है नाराज फूफा। प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, जनता ने हरा दिया, झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, हलफनामा दिया, ये होता है नाराज फूफा। जब लोकसभा का चुनाव हार गए 2024 का, हरियाणा हारे, उसके बाद दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, तमाम चुनाव हारे, तो कहते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, ये होता है नाराज फूफा। मतलब किसी भी संस्था में उनका विश्वास नहीं है। यहां तक मीडिया में आप ही की पत्रकार है मौसमी, उनको कह रहे थे कि बीजेपी का बिल्ला लगा लो, बैज लगा लो, तब सवाल पूछो, ये भी शब्द मैंने सुने, ये होता है नाराज फूफा। और देखिए भारत की अर्थव्यवस्था अभी पिछले सप्ताह हमने देखा 7.8% की ग्रोथ, पूरे विश्व में मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। दर्द किसको हुआ? नाराज फूफा 56 साल के अपरिपक्व बालक को, जिन्होंने क्या कहा, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई जो कैलकुलेशन है वही गड़बड़ है। आर्टिकल 370 हमने संशोधित किया, निष्क्रिय कर दिया संविधान में,
0: ये क्या बना रहे हैं?
8: इसको दर्द हुआ कांग्रेस पार्टी को,
9: अंडा अंडा
8: राहुल गांधी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ,
9: जीडीपी का अंडा दिखा रहा
0: है कि कोई नया लिंगो है, कोई नया लैंग्वेज है।
8: तो दर्द होता है तो नाराज फूफा को होता है।
9: अपनी वाली लैंग्वेज है ये, मिलेनियल।
8: मैं बात पूरी कर लूँ? मैं सुन,
0: बोलिए बोलिए।
8: मैं सुन नहीं पाया, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, बस इतनी मेरी विनती है। तो अंजना जी हमें समझना होगा एक तरफ युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी में अटूट विश्वास जनता का भी है युवाओं का भी है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वो है जो केवल कमियां निकालता है, चाहे बड़े ऐतिहासिक जो भूले कांग्रेस ने करी थी उसका सुधार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जैसे आर्टिकल 370 हमने देखा किस तरह से भव्य राम मंदिर बनाया इनको अखर गया, हमने जीएसटी लागू किया सपना इनका था इनको अखर गया, और जीडीपी ग्रोथ का मैंने उदाहरण दिया जब वो भी आई सामने तो इनको दर्द हुआ। तो आज का जो यूथ है जो युवा है वो भी जानता है अगर भारत आगे बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है इनको दर्द होता है, ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं और इसी फूले हुए मुंह को अब देश का युवा स्वीकार नहीं कर रहा।
0: ठीक है, किसका मुंह फूला हुआ है सूजा हुआ है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अतुल जी देखिए, अतुल जी एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये सच है कि अब ये वाला जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ या पटना में आंदोलन हुआ या रांची में आंदोलन हुआ, छात्र निकले और वो जहां पर भी जो सरकार थी उससे नाराज थे, तो वो हेमंत सरकार से नाराज थे, यहां पर सम्राट चौधरी की सरकार से नाराज थे और यहां पर तो केंद्र की सरकार से नाराज थे क्योंकि पेपर लीक हो रहा था बार बार, ठीक है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण कैसे है कि वो जेनजी आपके साथ है? क्योंकि वो तो फैसला अब यूपी के चुनाव में ही पता लगेगा ना, और हम दिखा रहे हैं कि कैसे सबसे ज्यादा जो 25% जेनजी वोटर है वो वोट डाल के तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी अगली बार।
9: ये वोटर तो इन्होंने तय किए हैं SIR के माध्यम से, अभी इनको कल कलेक्टर हमारे जवाब नहीं दे पा रहा था अंजना जी मीटिंग में थे, अभी भी हम आंदोलन में थे, RSS के हेडक्वार्टर पे हमने आंदोलन किया, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे कलेक्टर की, फिर दो बार नाम कैसे आए, ये जबलपुर वाले नाम कैसे आए, ये इतने आपने नाम काटे हैं, फिर फॉर्म नंबर 6 में आए गए, अनमैप्ड दिखा रहे थे वो, फिर अनमैप्ड नाम कैसे हटाना है, ये सारी चीजें हमने रखी, कलेक्टर वॉज नॉट एबल टू आंसर सिंगल क्वेश्चन ऑफ आवर्स, वो छोड़ दीजिए। ये हमारे सम्राट चौधरी जो है, शायद उन्होंने कुछ खून वून किया था ऐसा कुछ तो भी स्टोरी है मैं सुन रहा था, उन्होंने दो दिन पहले 20,000 बच्चों को युवाओं को ये नियुक्तियां दी, एक लड़की वो नियुक्ति पत्र लेकर दिल्ली गई, तो ये दिल्ली गई तो वहां पता चला कि वो कॉलगर्ल का काम है, शर्म नहीं आती इन लोगों को, लज्जा बेच खाई है इन लोगों ने, पकौड़े तलों से लेकर कॉलगर्ल का नियुक्ति पत्र सरकार देती है और वो मुख्यमंत्री सत्ता में बैठा हुआ है, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर नाराज है, अगर छात्रों का मुद्दा उठाया है, बताओ मुझे कोटा लो, देहरादून लो, प्रयागराज लो या पुणे लो, कहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में सुधार, शिक्षा की तकलीफें, महिलाओं को तकलीफें, ये सारी चीजें जो उठाई है उसमें कहां उन्होंने गलत बात कही? उन्होंने तो सारी बातें सुधार की कही है, लोग नहीं पहचान, लोग नहीं कर पा रहे उसके बारे में उन्होंने बात की, तो नाराज फूफा कह दिए। इनका ग्रोथ रेट बताओ मैं क्या है, डिफ्लेटर 2.6% इनका ग्रोथ रेट है, डिफ्लेटर 2.3 का लगभग 0 अंडा ग्रोथ रेट है, स्मेल सेंस नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सदियों, मैंने अंग्रेजों के जमाने में जितनी आर्थिक असमानता नहीं थी उससे ज्यादा आर्थिक असमानता आज के तारीख में है।
0: पर अतुल जी वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं, गलत दिशा दिखा रहे हैं, ये कहा है नितिन नवीन ने, वो दो लाइन में इसका जवाब दे दें उसके बाद इस पर आप बोलिएगा। हाँ
9: बराबर है, जिनके लिए शिक्षा ये जहर है उनके लिए शिक्षा जहर है ना, इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निकाल दिया, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन जो है वो हटा दिए है, और मोदी जी को स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिस्ट में डाल दिया है, तो इनके लिए शिक्षा तो जहर है, इनके लिए शिक्षा तो लोगों को अनपढ़ बनाने का कार्यक्रम है, पीरियोडिक टेबल हटा दिया अंजना जी, पीरियोडिक टेबल हटा दिया तो आप क्या केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, तो ऐसे जो शिक्षा के शिक्षा जिनको शिक्षा को जो जहर मानते हैं तो शिक्षा की बात जो करेंगे उनके लिए तो गलत ही होगा। अब नितिन नवीन जी ने यह भी कहा था आवाज में क्या दम है, 24 अगस्त को खत लिखा आदिवासी बच्चों को डिमांड को लेकर देवेंद्र फडणवीस को, 25 को ऑर्डर हो गया, पहले ट्रेन किसने चलाई इसका जवाब देने की हिम्मत देश के गृह मंत्री ने नहीं है, 21 दिन तक संसद में नहीं आए, ओबीसी की जातिगत जनगणना मांगने वालों को नक्सल कहने वाले देश के प्रधानमंत्री बाद में ओबीसी जनगणना करेंगे ऐसा कहना पड़ता है उनको, लेकिन फिर धोखा दे गए, 10वें कॉलम में जो है वो कोई जनगणना वगैरह की कोई बात नहीं है, तो देश के साथ धोखा
8: देना चाहता हूं,
9: झूठ देश के साथ धोखा झूठ। अब इन्होंने जीएसटी की बात कही थी तो जीएसटी की बात कहते समय ये भूल गए,
0: खबर आ रही है अतुल जी। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजादी का नारा लगाने वालों को उखाड़ फेंकेंगे, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। जादवपुर यात्रा के दौरान बोले शुभेंदु अधिकारी, और खासतौर पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो बीते दिनों बातें लिखी गई थी, गीता पाठ हनुमान चालीसा पढ़ने फिर आऊंगा, शुभेंदु अधिकारी का ये बड़ा बयान है। भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है। गौरव भाटिया जी, मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए कि क्या उखाड़ क्या फेंकेंगे एक चुने हुए मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड जल्दी से बोलिए, टॉपिक पे रहिएगा, मतलब टॉपिक आज जो है ना वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी
9: ने जो मुद्दा उठाया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर बनाया, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, लेकिन वहां पर इन्होंने राम मंदिर में चोरी की, इनके ही लोग थे सब, और चोरी की इंक्वायरी करने के लिए एक चोर को उसमें बिठाया, विश्वास पंत को, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस है फ्रॉड के। डिमोनेटाइजेशन में इस देश की 5 करोड़ से ज्यादा छोटे और मंझले उद्योग खत्म हो गए। फिर इन्हें सबसे बड़ी बेरोजगारी जो है 40% से ज्यादा, 15 से 25 उम्र के जो बच्चे हैं वो युवा जो है उनके इस बीच में 40% बेरोजगारी है। इतने बड़े सवाल उठाने वाले, इतने बड़े, मैं बीच में बोला नहीं गौरव भाटिया जी, आपने बहुत लंबा चौड़ा बोला, अब मैं गोल खोल रहा हूँ, मैं सब सच्चा सामने रख रहा हूँ, तो फिर नाराज फूफा बन के बैठे हो आप, चीफ ऑफ नाराज फूफा है आपके वो।
0: अच्छा है, इसी नाराज फूफा के बाद पर आप लोग मेरे शो में नाराज होना छोड़ दीजिए, हंसते हुए डिबेट कीजिए, हंसते हुए डिबेट कीजिए। अब अतुल जी आपने बोलिए, आप अपने उनसे एक जवाब लेने दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, 3 बड़ी बातें, एक तो उन्होंने सीधा सीधा सम्राट चौधरी पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, दूसरा ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के क्या कह रहे हैं कि उनको उखाड़ फेंकूंगा, मतलब क्या एक सीएम कैसे किसी को उखाड़ फेंक सकता है, उसका अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है, और तीसरी बड़ी बात जो आपके अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी युवाओं को गलत दिशा दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो शिक्षा और एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आप लोग उन पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तीनों पर आपका पॉइंटेड जवाब।
8: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अभी रायबरेली में राहुल गांधी शायद गए हैं और वहां पे जनता ने, मैंने वीडियो देखा है, नारे लगाए, नाराज फूफा नाराज फूफा नाराज फूफा आया, तो अब ये जो नारे रायबरेली में लगाए गए हैं ये क्या दर्शाते हैं? राहुल गांधी किसी सभा में जा रहे थे, वहां नाराज फूफा के नारे लग रहे हैं, अभी आज ही की ये न्यूज है, आप चेक करा लीजिए, ठीक है? तो ये नाराज फूफा जनता बुलाती है राहुल गांधी को, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए सबसे पहले आते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, नितिन नवीन जी ने, गुमराह करना। आप मुझे बताइए, चौकीदार चोर है का नारा बोलकर सर्वोच्च न्यायालय पे एक टिप्पणी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये हमारे जजमेंट में नहीं है, ये झूठ बोला गया है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी देते हैं राहुल गांधी, ये 2019 के चुनाव के
9: बाद
8: क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी झूठे हैं, गुमराह करते हैं, बीच में नहीं। अब देखिए अंजना जी, थोड़ा सा शिष्टाचार सिखाइए इनको, पता नहीं ये कांग्रेस पार्टी का कॉल

0: सुनिए,
1: बारी बारी से अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए।
0: तो आप उनकी
1: अभिषेक गंभीर बोलिए
0: कर लीजिए।
1: अरे वॉल्यूम नीचे है, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। वैसा तो है नहीं कि मैं किसी का गला दबा दूंगी। गौरव जी प्लीज बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ आपकी आवाज जा रही है।
0: गला, अरे नहीं गला मत दबाइए, नाराज फूफा है और नाराज हो जाएंगे अंजना जी, गला मत दबाइएगा।
1: अरे भाई इसी बात पे सब लोग हंस हंस के डिबेट कीजिए। वैसे ही जीवन का कुछ पता नहीं है, सब लोग इतना नाराज होते हैं, इतना गुस्साते हैं, मुझे लगता है सबका बीपी बढ़ेगा। सब लोग आराम से बात कीजिए। चलिए
0: चलिए, अच्छा लगा।
1: ठीक है, वो जवाब ले ले, वो जवाब ले ले। अतुल जी जवाब ले ले, मैं आपको मौका दूंगी।
0: इन्होंने तब भी किया जब 7 पॉइंट, गुमराह इन्होंने तब भी किया जब 7.8% जीडीपी ग्रोथ आता है और उसके बाद ये लोग बयान देने लगते हैं। कांग्रेस का पूरा नाराज फूफा गैंग कहता है कि ये गलत है, आंकड़ों की हेराफेरी है, तब भी गुमराह किया। तीसरा, नौकरियों पे मैं तो आंकड़े देता हूं और आंकड़ों के साथ मैं आपको बता सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 18.5 करोड़, ये ईपीएफओ का डेटा है, कि नए जो है नौकरियां आई, करीब 12.5 लाख रोजगार मेला में सरकारी नौकरियां नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करी और 59 करोड़ मुद्रा योजना के लोन है, रोजगार के अवसर पैदा हुए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने 9.5 साल में 9.5 लाख सरकारी नौकरी दी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 5 साल में केवल 2 लाख नौकरी सरकारी दे पाए थे। ये हो गया उत्तर, गुमराह करते और हम काम करते युवाओं के लिए। दूसरी बात, आपने कहा सुवेंदु अधिकारी जी का बयान आया, मुख्यमंत्री अगर ये सोचता है कि संविधान के हिसाब से हमें काम करना है, हमने शपथ ली है, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई विचारधारा संविधान के विपरीत है तो एक मुख्यमंत्री एक नागरिक भी है, एक नेता भी है, वो कह सकता है उस विचारधारा को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। और लोकतंत्र में विचारधारा को उखाड़ के फेंकने का मतलब है निष्ट नाबूद कर देना। जनता की आंखों में जो पार्टी जो नेता गिर जाता है, जो जीरो हो जाता है, यही होता है उखाड़ के फेंक देने की बात। तीसरी बात, इन्होंने एक उदाहरण दिया, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सत्यता है। उन्होंने कहा एक महिला को जॉब दिया गया और जॉब दिया गया वो कॉल गर्ल का जॉब निकला। मैं समझता हूं इस तरह के हल्के बयान आज तक पे बैठ के बिना तथ्यों के नहीं देने चाहिए। बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुए और किस तरह से भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिला है हमने देखा। इनका तो सुपड़ा साफ हो गया वहां पे और नौकरी वहां मिल रही है, हम युवाओं का ध्यान रख रहे हैं। अभी मैं सवाल पलट के पूछूं, झारखंड में क्या हुआ बताइए? झारखंड में झूठे मुकदमे लगाए इन्होंने युवाओं पर, किस तरह से वहां पे जो भी परीक्षा हुई पर्चा लीक हो गया, वहां पे राहुल गांधी ने क्या किया बताइए? क्या कहा कि हेमंत सोरेन तुम तुरंत इस्तीफा दो? नहीं कहा। ये जो दोहरे मापदंड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी यही बात उठा रहे हैं, कैसे गुमराह करते हैं, किस तरह से दोहरे मापदंड होते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, स्मैश द पेट्रियार्की की आपने बात करी, स्मैश द पेट्रियार्की, हिंदू धर्म से तुम्हें नफरत है, किसी भी ग्रंथ का तुम्हें ज्ञान नहीं, एक बार अगर राहुल गांधी में हिम्मत हो, चुनौती देता हूं, बोले हलाला ठीक है या गलत है, ये जो हिजाब की प्रथा है क्या ये आधुनिक युग में होनी चाहिए? 3 तलाक को नरेंद्र मोदी जी ने अपराध बनाया, राहुल गांधी ने तो उसका जो विरोध किया था संसद में और चर्चा भी नहीं करी थी। और एक झूठ आपके चैनल पे और बोला गया, ये बात बोल के मैं अंत करूंगा, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था अमित शाह जी वहां पूरा दिन 14 से 16 घंटे रहते थे, कार्य करते थे और चुनौती दी, उनका बयान आज तक ने चलाया कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी स्वयं, हम सब जानते किस तरह से भागते हैं पार्लियामेंट से, किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा में पार्लियामेंट में नहीं रहे क्योंकि चर्चा करने का मादा राहुल गांधी में नहीं है।
1: उस जॉब फेयर को लेकर, ठीक है मैं लौट रही हूँ अतुल जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हमने अपने रिपोर्टर को कहा है बिहार में कि वो स्टोरी को, इस खबर को कंफर्म करें, लेकिन बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस बच्ची की ये शिकायत है कि उसको जो वहां पर नौकरी दी गई, उसकी बाइट है, लेकिन हमारा रिपोर्टर कंफर्म करेगा तो ये स्टोरी भी हम दिखाएंगे। चर्चा को आगे लिए चलते हैं और जल्दी से एक रिपोर्ट की बात का, नहीं आप ही को दे रही हूँ बाबा, आराम से, नो नाराजगी, बोलिए।
2: सुनिए, इन्होंने पहले बात की कि अमित शाह जी संसद में आते थे ना, संसद में अपने ऑफिस में बैठते थे, संसद के अंदर आने की हिम्मत

0: स्मृति हॉल में वहां आकर चर्चा करने की, आए 2 मिनट में वंदे मातरम करके भाग गए। तो ये भगोड़ा बने पूरे देश ने देखा है। अब मैं बताता हूं इनको क्या है अर्थव्यवस्था की अवस्था। 84% हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, यानी हमारे जीडीपी के 84% हमारे ऊपर कर्जा है, जो 60% के ऊपर नहीं होना चाहिए, 40% सेंट्रल का, 20% स्टेट का। 40% हमारे बजट में से हमको सूद के इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमारे यहाँ आप देखिए कि 11.5% तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग नीचे आया है, जो 17% था। मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, क्योंकि मेक इन इंडिया में ये 25% तक लेके जाने वाले थे। सबसे बड़ी 45 साल की बेरोजगारी दर जो है, वो बेरोजगारी दर हमने देखा है 50% से लोग ज्यादा, 52% से ज्यादा लोग जो है वो अपना सोना गहना वो जो है कर्ज रखकर, गिरवी रखकर उनका जीवन यापन जो है वो चलता है। आप देखिए कि इधर कहते हैं 7.8% ग्रो हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाहर मत जाइए, बाहर शादी मत कीजिए, सोना मत खरीदिए। अरे भाई, जब तुम्हारी व्यवस्था इतनी सरपट दौड़ रही है तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो? तो दोनों तरफ खुद ही जो है वो गवाही देते हैं। ये जो आंकड़े है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इसको कहते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीजें जो है वो सीधे स्पष्ट चलती है। 121 रुपये का पेट्रोल हो गया, मेरे नागपुर के गडकरी कहते थे 15 रुपये में दूंगा, 121 रुपये का हो गया। वो गन्ने का रस वाला नहीं, जो सही पेट्रोल जो हम देते थे वो 121 रुपये का हो गया 72 रुपये से, जबकि हमारे वक्त $112 रेट था पर क्रूड ऑयल का, पर बैरल। अभी इनका देखिए, हमारे वक्त 72 रुपये था, इनके वक्त 121 है, तो ये सस्ता है, इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है। डीजल 58 रुपये था, इनके ऊपर 100 रुपीज की तरफ है, इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है। हमारे वक्त सिलेंडर 410 रुपये था, इनके वक्त 1100 रुपये हो गया, इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है। 70 रुपये खाने का तेल था, अभी 200 रुपये करीब 170 से 200 रुपये तक इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है। क्या आंकड़ों का और जो ये कहते हैं उसका मेल कहीं बैठता है? ये मुझे बताइए। सारी मंजोलर छोटे उद्योग बैठ गए हैं, वो कहते हैं कि हमको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होता, वो कहते हैं कि हमें मार्केट नहीं मिलता, वो कहते हैं कि हमें सब्सिडी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो घोषणाएं करना ये बात और है। जनधन खाते में 6 करोड़ खाते जो ऐसे है वो खाली है, उसमें कुछ भी पैसा नहीं है और उसके ऊपर ये चार्ज भी लगाते हैं, ये सबको सब पता है। तो अर्थव्यवस्था के आंकड़े तो मैंने रख दिए, सारी पोल तो खोल दी। अब जीएसटी का बच गया था, जीएसटी के बारे में राहुल जी ने कहा था जो कहा था सच नहीं था। 8 साल लग गए इनको, 8 साल समझने में, और फिर जीएसटी की रेट जो है कम की है, अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशन जो है कंप्लायंस।
1: सुनील जी, व्यापारी परेशान है। सुनील जी, अब तो देखिए यूपी के चुनाव में ही फैसला होगा ना, जनता फैसला करेगी। अगर आज हम ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि भाई कितना परसेंटेज है जेनजी का जो इस बार वोट करेगा 29 के चुनाव में, 38 करोड़ जेनजी पर जो वोट डालने वाले हैं या 25% डालने वाले हैं, चुनाव ही तय करेगा ना। ऐसा संकेत तो साफ दिख रहा है कि कई जगहों पर जो सरकार है उसे नाराजगी है। पेपर लीक के खिलाफ नाराजगी जंतर मंतर पर दिखी, पटना में वहां पर नौकरी के रेट्स को लेकर दिखी और जो एग्जाम था उसकी वजह से जो फिक्स हो रहे थे, रांची में दिखा। तो ऐसे में आज सवाल यह है ना कि वो सरकार से तो नाराज है, लेकिन क्या वो विपक्ष को सत्ता देने के मूड में है?
2: देखिए अंजना जी, एक बात तो साफ हो गई है कि इस देश का नौजवान जेंजी, वो पेपर लीक हो, स्कूल बंद हो, उनको लेकर के नाराज है। किसान अलग नाराज है, नौकरी वाला नौजवान अलग नाराज है। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जब 3 बार इस देश की सम्मानित जनता ने मोदी जी को इतना प्यार सम्मान से मौका दिया सरकार चलाने का, तो आखिर फेल कौन हुआ? क्या फेल विपक्ष हुआ है? अगर आज महंगाई देश में है तो उसके पीछे क्या विपक्ष है? क्या अगर बेरोजगारी आज सबसे निचले स्तर पर है तो क्या फिर विपक्ष जिम्मेदार है? डीजल पेट्रोल गैस के दाम अगर महंगे हैं तो विपक्ष जिम्मेदार है? और अगर नौजवान भाई, नौजवानों को सपना किसने दिखाया? अंजना जी, मोदी जी ने दिखाया कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसानों को अच्छे सपने किसने दिखाए? बीजेपी के लोगों ने दिखाए कि हम लोग आपकी आय दोगुनी कर देंगे। क्या आय दोगुनी हुई? क्या नौजवानों को जो सपने दिखाए गए वो हुआ? या देश की सीमाओं को लेके जो बात की गई वो हुआ? या समाज में जिस तरीके की बात हो रही है, मतलब 12 साल के प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार के प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कहें विपक्ष के लिए कि भाई वो फूफा है, नाराज हो गए, तो आप समझिए कि बीजेपी के पास कुछ भी बताने को नहीं है। हम लोग इस बुआ फूफा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, अभी बीजेपी बुरा मान जाएगी। हम अगर अंजना जी ये कह दें कि चलो हम आपकी बात मानते हैं कि विपक्ष फूफा है, तो क्या बीजेपी बुआ है? क्योंकि हम ये बुआ फूफा के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम देश के असल मुद्दों से बीजेपी भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे।
1: बोल ही दिए तो समझाइए कि बुआ काहे कह रहे हैं इनको।
2: नहीं नहीं हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते।
1: अब तो बोल दिया आप।
2: नहीं नहीं हम
1: अब तो सुनील जी बोल दिया।
2: हम तो ये बोल के कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते, हम ये कह रहे हैं भाई महंगाई।
1: हम तो खाली कह रहे थे कि पेट्रियार्की की वो तो नहीं आ रही है इससे, क्योंकि फिर राहुल जी बोलेंगे स्मैश द पेट्रियार्की।
2: नहीं नहीं नहीं देखिए अंजना जी, इस देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, इस पर बीजेपी क्यों नहीं बात कर रही? क्यों केवल ये चुनाव के एजेंडे पे रहते हैं? क्या देश की तरक्की, देश की खुशहाली, देश सुन लीजिए,
1: रुक जाइए, पूरा कर रहे हैं अभी सुनील जी, बोलिए बोलिए।
2: देखिए अंजना जी, ये अपनी उपलब्धि मानते हैं कि भव्य राम मंदिर बनाया, माननीय न्यायालय के फैसले से बना, आपने अपने आश्रय ले लिया, तो भव्य चोरी किसने करा दी? एक्सप्रेसवे आपके टूटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, दरार होती जा रही है, ये भ्रष्टाचार जो आप कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? अगर मोदी जी श्रेय लेते हैं कि मंदिर हमने बनाया, तो लूट भी तो मोदी जी का श्रेय है कि नहीं है? नहीं लेंगे। और जंजी अभी जंतर मंतर पर अंजना जी, हमने आपने देश दुनिया ने सबने देखा कि जंजी कितना नाराज था, वो क्या आपने इस्तीफा ले लिया तो नाराजगी खत्म? जंजी किसी व्यक्ति से नाराज नहीं था, आपकी व्यवस्था से नाराज था। उस व्यवस्था में आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, उस व्यवस्था में आप बुआ फूफा करके देश के जंजी को गुमराह नहीं कर सकते। और जहां तक अंजना जी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फैसला करेगा, हाँ ये सच है कि उत्तर प्रदेश का फैसला करेगा चुनाव, और उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इनके अहंकार की हार, इनके भ्रष्टाचार की हार, इनकी झूठ की हार और इनकी नफरत की हार उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने 24 में हाफ किया था, 27 में साफ करेंगे इसी भारतीय जनता पार्टी को।
1: चलिए अब धीरेन जी आपके पास आते हैं। धीरेन जी जरा आप इसका जवाब दीजिए कि महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों को अब एकदम ही साइड कर देना है क्या? उधर से पीएम के लिए बोला जाए, पीएम की तरफ से नाराज फूफा बोला जाए, इसी तरह की भाषा में उलझ कर रह जाए पॉलिटिक्स, असल मुद्दे तो जनता के होते हैं, उनकी चर्चा नहीं?
3: बिल्कुल अंजना जी आपने सही कहा। और फूफा होते कौन है जो सगुफा फैलाते हैं? और सगुफा फैलाने वाले फूफा को यह पता होना चाहिए कि कितना भी सगुफा फैला ले, सेहरा अब आपके माथे पे नहीं बंधना है। आपके माथे में बंधा, आपने जो रायता फैलाया, युवाओं को जो सपने दिखाए, और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे सुनील जी, जब युवाओं को नौकरी देने की बात आई तो एक ही समाज के 80% लोगों को नौकरियां दे दी जाती थी। जेन जी इस बात को भी अब समझ गए हैं, वो आंदोलन अपनी मांग को कर रहे थे, ठीक है, अपने भाई अपने गार्जियन से अगर घर का बच्चा डिमांड करता है तो पड़ोसी आकर के उनकी मुरादें नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि आपके भरोसे वो नहीं है, अपनी ही सरकार के मुखिया से।
1: जी पहले ये तय तो कीजिए कि वो पड़ोसी है या रिश्तेदार है, क्योंकि फूफा तो रिश्तेदारी हो जाती है और फूफा का बड़ा सम्मान भी होता है। नाराज कई लोग होते हैं लेकिन बदनाम फूफा ही होते हैं, जरा भी नाराजगी दिखा दे।
3: नहीं फूफा बिल्कुल अच्छे होते हैं, सिर्फ साग में हल्दी की डिमांड करते हैं, चीजें सब कुछ वही रहती है।
1: साग में हल्दी
3: जी, साग में हल्दी पड़ता नहीं है अंजना जी, लेकिन फूफा चाहते हैं कि साग में हल्दी नहीं, इसलिए मुंह फुला के बैठ जाते हैं। चीजें बिल्कुल अच्छी हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर अनुमंडलों में अस्पताल खुल रहे हैं, हर लोगों को नौकरी दी जा रही है। और किस तरह के घृणित आरोप लगाए बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मुझे इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? या अगर टंग स्लिप हुआ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी के लिए कोई इस तरह की अपशब्द की अपशब्द का इस्तेमाल करेगा क्या? कॉलिंग टीम को कॉलगर्ल आप कह सकते हैं क्या? कहीं ये बात तो नहीं है, इसको पता कर लीजिएगा। लेकिन ये होता है नाराज फूफे का बर्ताव कि आप अगर कहीं से कहीं भी श्यांतर करते हैं बातों को, आदरणीय किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द, किसी सरकार के में युवाओं को, छात्राओं को अगर नौकरियां दी जा रही है तो उन नौकरियों पर इस तरह के तंज करना, कहीं उन युवा और युवकों और युवतियों के लिए
0: मैंने ये आरोप लगाया था, वो लड़की कुछ सामने आके
3: मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे कि आप तो सज्जन प्रवक्ता है और हंस के भी बोलते हैं, तो मेरी बात भी सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ कि पाटिल साहब किसने क्या कहा, सड़क वाली बात
0: लड़की ने आरोप लगाया, वही मैं दोहरा हूं यहाँ पर।
3: राहुल गांधी जी सड़कों पर वैसे करते हैं, उनको करने दीजिए, उनकी मर्जी। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल अच्छे से बात करिए। कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? देश के दर्शकों से मैं आपके सवाल को रखना चाहता हूं, इस तरह के आरोप ना लगाइए। और मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से देश प्रगति कर रही है, जिस तरह से सभी मुद्दों पर आप सवाल उठा देते हैं, चाहे सेना का मुद्दा हो, चाहे झारखंड में छात्रों के मुद्दे हो, आप छात्रवृत्ति पंजाब में बंद है दलितों के, उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, केवल ब्लू रंग का टैग लगा लेने से आप दलित के हिमायती तो नहीं हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर में जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक, एक भी जगह कांग्रेस के नेता नहीं जाते हैं उनके आंसू को पोंछने के लिए, न समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं। तो जीएनजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जाति, अपने समाज और दुष्प्रचार करने वाले लोगों को नाम लेकर के छात्रों को और युवाओं को क्यों भड़काते हैं? हमारे छात्र अपने आंदोलन को सही तरीके से करते हैं। बिहार में तो छात्रों ने आंदोलन किया था, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सरकार में रहते हुए उनसे जाके बातें की, लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनकी बातें सम्राट चौधरी जी से कही। ये होता है अपने परिवार, अपने छात्रों और युवाओं के बीच में संवाद स्थापित करना। हमारे नेता ने भी दिया है, हमारे सभी विधायकों को, सांसदों को, जेन जी की तो छोड़िए, जेन अल्फा से भी हमारे 19 के 19 विधायक स्कूलों में जाकर मिड डे मील देख रहे हैं,
1: और ठीक है
3: देश में भी युवाओं के साथ संवाद किया, बिहार में भी करने वाले हैं। और इसीलिए हमको लगातार से वोट वो लोग दे करके एक मजबूत युवा नेतृत्व को स्वीकार किया इस देश ने, और युवा की गति से देश आगे बढ़ रहा है। इस बात को आप स्वीकार जितना जल्दी करेंगे कांग्रेस के हक में उतना ही अच्छा होगा। अतुल भाई, जितने अच्छे आप हो, लोगों को भरमाने का तो कोशिश करते हो, आप अपने नेता को भरमाइए, उनको मत उनको सिखलाइए सही बात।
1: ठीक है ठीक है, जल्दी से अतुल जी एक छोटा सा जवाब, फिर गौरव जी आपके पास फौरन आ रहे।
0: सबसे पहले तो जब लड़की सामने आकर कह रही है और चैनल्स पे कह रही है, तो देव जो मुख्यमंत्री है उनकी फिर इंटेलिजेंस क्या करती है? लाइव सबके पास होती है, कौन सी कंपनी आ रही है, क्या आ रही है, अगर ये देख नहीं सकते हैं तो आप फिर भ्रम और भ्रामक और अपने ही बच्चों को ऐसे काल कोठरी में बंद करने की कोशिश करते हो, उसका आरोप तो लगेगा और जरूर लगेगा। वो लड़की ने कहा इसलिए लगेगा, एफडीआई 0%, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 से 3 लाख करोड़ विदेश से निकल जाती है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, जो वही बताता है कि ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, जो विश्वास अर्थव्यवस्था पे जो है वो बतलाता है नहीं बतलाती। अब राहुल गांधी जी के बारे में आपने बात की, राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार साझा सरकार झारखंड में होते हुए भी वो सारे निर्णय अपने सरकार से करवा लिए, जिसकी मांग जो है वो विद्यार्थियों ने की, 22 की 22 परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी, उसके पहले उनका अध्यक्ष जो है उसको अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र में बच्चे पूरे गोंदिया से लेकर पुणे तक मुंबई तक रास्ते पर है अध्यक्ष का एमपीएससी के इस्तीफा मांगने के लिए, लेकिन चू का ऊन ही निकल रहा है, वो बोलता है कि उसके पहले के अध्यक्ष के जमाने में
1: समय खत्म।
0: इस तरह की जो बातें होती है ना, उससे तुम्हारी ईमानदारी पता चलती है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। तो मैं कमिटमेंट के बारे में बात करूं, आप आंकड़े फेंकते हो, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप बातें करते हो, आप कहते हो कि भाई सरपट हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, आंकड़ों से मैच नहीं होती, जमीनी हकीकत से मैच नहीं होती, लोग नहीं चला पा रहे धीरेन भाई घर। आप पूछो जाकर 10,000 से 10,000 तक इनकम कमाने वाले इस देश में सिर्फ 25% लोग है। इस देश में जो निचले तबके के लोग है 63% वो जीएसटी भरते हैं 63%, लेकिन 3% जो है वो 10% जीएसटी नहीं भरते हैं। कैसे आप आंकड़े दिखाओगे लोगों को?
1: गौरव जी जवाब दीजिए।
0: तो मैं तो कभी भी आंकड़ों पे सब्सटेंशिएट करके बात करता हूँ, मेरे पास जब तक प्रूफ नहीं होगा मैं कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। ये बच्ची का स्टेटमेंट है, ये बच्ची का स्टेटमेंट मैंने सामने रखा, और कितनी गंभीर बात
4: कर दे सकता हूं।
1: गौरव जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए आप दोनों का। और उनका कहना है कि भाई हम नंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, आपको कन्विंस करना है, आप कन्विंस कीजिए, अगर जनता आपकी बात मान लेती है तो आप कन्विंस कर लीजिए।
4: देखिए अतुल लोंडे जी, बच्ची की बात कर रहे हैं तो मुझे भी 3 बच्चियां जो है याद आ गई। एक अंकिता थी, अंकिता ये कांग्रेस की ही कार्यकर्ता थी, इसका शोषण हुआ, उसने गंभीर आरोप लगाए इन्हीं के लीडर के बारे में, बीच में ना बोले। अंजना जी देखिए अच्छा लगता है, आप बताइए ना, बीच में क्यों बोलते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है।
5: सिद्ध हुई चीजें बता रहे हम लोग, कोई पार्टी छोड़ के
1: जाते हैं। अंजना जी, आपके बीच में तो किसी ने नहीं बोला। अतुल जी,
4: मुझे बीच में ना,
1: अतुल जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आपको भी पता है कि नियम का क्या, दूसरी जगह नहीं बैठे आप, आज तक पे बैठे हैं। बारी बारी से बोलिए सर, हाथ उठाइएगा।
5: मेरा कहना इतना ही है।
1: नहीं, आप अगली बार कहिएगा जो आपका कहना है, ठीक है? आपका जवाब हो गया सर, अब एक बार उनको बोलने दीजिए। बोलिए गौरव जी।
4: देखिए, तीन बच्चियों के बारे में भारत की जनता ने भी पूछा, राहुल गांधी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा, प्रियंका गांधी से पूछा। पहली बच्ची हमारी अंकिता कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, इसका शोषण कांग्रेस के ही नेता ने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका चतुर्वेदी इन्हीं की पार्टी में थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने शिकायत करी, इन्होंने कुछ नहीं किया। उस बच्ची के बारे में आपको कुछ नहीं लगा? तीसरा राधिका खेड़ा हमारे साथ है, हमारी बहन है, वो आपकी पार्टी में थी, आप ही के नेताओं ने गलत तरीके से गलत व्यवहार किया, आपने कुछ नहीं बोला। तो हर कोई जानता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये केवल एक नारा था। और आपके लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी का सांसद हो जाना, उसके अलावा आपको किसी की चिंता नहीं। दूसरा, इनका इकोनॉमी पे उत्तर दे दूं, इनके समय में फ्रेजाइल 5 में थी, आज फैंटास्टिक 4 और 5 में रहती है, ये बदलाव नहीं आया। इनके समय में महंगाई 11.3% 2013 में पहुंच गई थी, आज 4.5% है। तीसरा, हमने देखा किस तरह से 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इनके समय में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बदलाव आया कि नहीं आया। चौथा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे इकोनॉमी बढ़ती है, इनके समय में 0 था, 11 लाख करोड़ रुपए ये हमने सुनिश्चित किया है इस बजट में, 10 लाख करोड़ इससे पहले। ये क्या दर्शाता है कि भारत आगे बढ़ रहा है? 7.8% का आंकड़ा आता है, अरे झूठे तो झूठ बोलेंगे, तभी तो नाराज फूफा बुलाए जाते हो, कोई आपके पास तथ्य नहीं है, केवल लड़ना है संस्थाओं से।
1: अब ये कहने के बाद फूफा इतने बदनाम हो रहे हैं,
4: आपने बात करी,
1: पूरा कीजिए।
4: हाँ, अब मैं बात तो पूरी कर लूं अंजना जी, प्लीज सपा की बात का भी उत्तर देना है, धन्यवाद।
1: बोलिए।
4: तो सपा ने बुआ की बात करी, तो आपको याद होगा अंजना जी, बुआ और बबुआ 2019 में एक साथ आए थे। तो बुआ कौन है? मायावती, और बबुआ अखिलेश यादव। ये बुआ ने कहा था कि सपा के जितने कार्यकर्ता हैं गुंडे हैं, गुंडों वाली पार्टी, तो क्योंकि बुआ को बीच में लाए इसलिए मैंने याद दिलाया। दूसरा, इन्होंने किसानों की बात करी, समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल में किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी, 1 रुपए का मुआवजा देते थे आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और 35,000 करोड़ रुपए बकाया था गन्ना किसानों का। आपको मालूम है जब सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 3,26,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है 9.5 साल में, और साथ में 35,000 करोड़ जो बकाया था सपा के टाइम का वो भी हमने दिया। दूसरा, चीनी की मिले 2007 से 2017 तक 9 चीनी की मिले बंद हो गई थी, 122 चीनी की मिल हैं जो अभी ऑपरेट कर रही हैं, पिछले 9.5 साल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, इन्होंने महंगाई की बात करी, 11.5% यूपीए की सरकार जिसको आप समर्थन दे रहे थे महंगाई दर था, आज 4.5% है, 11.5% ज्यादा है या 4.5%। तीसरा, बेरोजगारी, सपा की सरकार में 2016 में 18% बेरोजगारी थी, उत्तर प्रदेश में 2025 का आंकड़ा है 3% बेरोजगारी है। इन्होंने बात करी दरार एक्सप्रेसवे में, एक दरार तो हमने देखा मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव में थी, एक ये एक्सप्रेसवे है सपा के टाइम में बना था आगरा से लखनऊ, ऐसी दरार थी कि देखिए गाड़ी अंदर घुसी हुई है, तो ये है इनकी दरार। और कानून व्यवस्था पे ये बात
1: ठीक है, लेकिन यही सब फोटो दिखाकर आप सत्ता में आ चुके हैं, दूसरी बार आपको सत्ता मिल चुकी है, यूपी की बात कर रही हूँ, और तीसरी बार की लड़ाई 27 में होने वाली है। वक्त इतने की इजाजत देता है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आज रात 9 बजे जरूर रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान पक्का मक्का समझौता तोड़ने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे अब बीजेपी वीएम फैक्टर पर आ चुकी है, और आखिर में दिखाएंगे कि जिन लोगों को दुर्गा शब्द की वजह से वंदे मातरम से एतराज है उन्हें दुर्गा प्रतिमा के बाद भी गरबा में क्यों जाना है। देखिए,

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: In association with
6: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
9: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
10: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
9: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद, सिर्फ आज तक पर।
11: बरेली में मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में एक साल पहले सड़क पर उपद्रव की कोशिश हुई थी। आई लव मोहम्मद मामले में प्रदर्शन का ऐलान करने वाले मौलाना ने धारा 144 को तोड़ते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में रैली बुलाई। इसी रैली के दौरान वो तमाम गैर कानूनी हरकतें हुई थी, जिसके कारण इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान पिछले एक साल से जेल में है। तौकीर रजा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान हाईकोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा जैसे नारे की तुलना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जो बोले सोनेहाल सच या काल, जय श्री राम या हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि पिछले साल सितंबर में हुई घटना के दौरान आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हिंसा कराई गई। BNSS 163 की रोक के बावजूद रैली में सिर तन से जुदा वाले नारे लगे, पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम तक से हमला हुआ, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि तौकीर रजा के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखने की कोशिश की। तमाम आरोपों में तौकीर रजा सीधे तौर पर कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उस दिन लगाए गए नारों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि उपरोक्त धार्मिक नारे ईश्वर अथवा गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं, जबकि सर तन से जुदा जैसा नारा कानून के शासन, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाला है। ऐसा नारा लोगों को हिंसक, विद्रोह और हथियार उठाने के लिए उकसाता है, जो कानून के तहत दंडनीय अपराध है। दरअसल तौकीर रजा के वकील अदालत को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सिर तन से जुदा वाला नारा केवल पैगंबर के प्रति सम्मान और अपनी धार्मिक नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका था, इसलिए इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच दो यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है। नाराज फूफा, हर काम पे सवाल। नाराज फूफा, हर प्रोग्रेस पे बवाल। नाराज फूफा। 12 साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है। इसकी जरूरत ही क्या है? जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा। नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है। बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
1: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पेवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
2: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंग ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नाराज फूफा या नाराज युवा, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक मारिया के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर बीजेपी अध्यक्ष का हमला, कहा हमेशा किया है दलितों का अपमान, तुष्टिकरण है इनकी नीति। पूरा वंदे मातरम को लेकर भी वार। चुनावी यूपी में योगी आदित्यनाथ का फिर समाजवादी पार्टी पर सवाल, कहा उनकी सरकार में महफूज नहीं थी बेटियां, आज छेड़छाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद बोले मुख्यमंत्री शुवेंदु, कहा जानता हूं भगवा का अपमान करने वाले का कैसा होगा सबक सिखाना। लाल किले धमाका केस में एनआईए की चार्जशीट, आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, लोन मुजा

0: जवाहिर की थ्योरी को फॉलो करता था। सत्य निकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन जारी, गिराई जा चुकी हैं 24 इमारतें। शो की शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां सत्य निकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चल रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा,

0: मैं बता दे रहा हूँ।
1: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
2: पुलिस वालों, पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
1: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
3: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
1: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
4: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मची हुई है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश ना दिए जाने पर सवाल उठाया और बात भी कहा, और उससे ये भी कहा कि लव जिहाद इससे रुकेगा। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
5: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
6: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
5: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतेश राणे से जुड़ी हुई है। नीतेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
7: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
5: फडणवीस के मंत्री नीतेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
7: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
5: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
8: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
9: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहने आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं?
5: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच चल रहे तनाव के बीच आज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भगवा सम्मान यात्रा निकाली। इस दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर भारी सुरक्षा थी। शुभेंदु ने कहा कि वो दो बार जादवपुर यूनिवर्सिटी आएंगे, एक बार गीता का पाठ करेंगे तो वहीं दूसरी बार हनुमान चालीसा करेंगे।
0: गेरुआर अपमान आम्रा सह्य करब ना, खूब परिष्कार बार्ता दिए गेलाम एखाने एसे। आर काश्मीर मांगे आजादी, फ्री करो पैलेस्टाइन, किशनजी रेड सैल्यूट की करे साफ करते हैं पश्चिमबंगेर मुख्यमंत्री जाने।
10: जादवपुर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने भगवा सम्मान यात्रा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में। यहां पर शुभेंदु अधिकारी देखिए भगवा सम्मान यात्रा, और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट है जो फिलहाल बंद है, और उसके ठीक सामने पूरा भगवामय वातावरण है। नागा संध्याती से लेकर साधु संन्यासी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता हर कोई भगवा ध्वज लेकर ये यात्रा कर रहा है। एक संदेश है ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ राष्ट्रवाद फैलाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद की कमी है, कुछ सेक्शन स्टूडेंट्स के ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, जो देश विरोधी हैं, और उनको ठीक करने के लिए यहाँ पर वो जो भी हो सकेगा वो कर पाएंगे।
4: अब बात पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आज राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा, तो वहीं आप नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।
5: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गयी। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
11: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
5: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
12: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
13: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
5: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
14: ਬਈ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਬਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚ ਸਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੇ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ।
5: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब बात इंदौर की, जहां बुलडोजर एक्शन के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच

0: झड़प हो गई है।
1: इंदौर के साउथ टोड़ा इलाके में पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। देखिए कैसे डीसीपी को एक शख्स ने धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। काफी देर तक ये लोग पुलिस से भिड़े रहे। ये झड़प इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन की टीम यहाँ पर बनाए गए 45 अवैध इमारतों को ढहाने पहुँची। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ घर, कुछ कारखाने और कुछ दुकानें अवैध तौर पर बनाई गई थी। इस मामले में यहाँ रह रहे लोगों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, मगर उन लोगों ने घर खाली नहीं किए। अंत में प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुँचा और इमारतें ढा दी।
2: तो आयुक्त महोदय के निर्देश पर इनको पूर्व में नोटिस हम लोगों ने जारी किए थे, उनकी सुनवाई की थी, तदुपरांत आदेश पारित कर दिया गया था कि इनको 15 दिवस की शराबी में हटा लें, परंतु लोगों के द्वारा आदेश की अवहेलना की गई और निर्माण स्वयं से नहीं हटाए गए। संयुक्त कार्रवाई करके सभी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई,
1: मगर इस एक्शन के साथ ही लोगों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा। अब डीसीपी से हाथापाई करने वाले शख्स के साथ 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक।
0: कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई, उस वक्त उनकी हत्या की सुपारी देने वाली उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आ गया है।
1: यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई, उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए, इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर, आज तक।
0: अब बात बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का भाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
1: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 813 अंक टूटकर 74,764 और निफ्टी 204 अंक की गिरावट के साथ 23,432 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी और बाजार में बिकवाली देखने को मिली। आईटी शेयरों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। बढ़ती अस्थिरता का असर भी बाजार पर देखने को मिला। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपये में भी कमजोरी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे कमजोर होकर 95.11 के स्तर पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से रुपये पर दबाव रहा। कमजोर घरेलू शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी रुपये की धारणा कमजोर की। वहीं सर्राफा बाजार में तेजी का रुख रहा और सोना 355 रुपये बढ़कर 153,432 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,891 रुपये बढ़कर 235,717 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। IBJA के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन के PM रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।
0: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और भी खतरनाक और विकराल रूप ले चुका है। जहां अमेरिकी हमलों से नाराज ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी है।
3: पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी वार पलटवार की आग भड़क उठी है। अमेरिका और ईरान अब हुर्मुज को तेल टैंकरों का शमशान बनाने पर तुल गए हैं। जंग के नए दौर की शुरुआत तब हुई है जब ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की कोशिश की। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना के 2 विध्वंसकों यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक और यूएसएस जॉन पॉल जोन्स पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। उसने कहा कि ये दोनों क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों और सेंट्रल कमांड के अनुसार दोनों अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी नौसेना के सुरक्षा सिस्टम ने ईरान के इन बैलिस्टिक हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, जिसके बाद ये युद्धपोत बिना किसी नुकसान के इलाके में गश्त जारी रखे हुए हैं।

0: लेकिन अमेरिका ईरान को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने ईरान के 5 टैंकरों को हुर्मुज की गहराई में दफन करने वाला हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि बीते 2 दिनों में ईरान ने उसके युद्धपोत पर 2 बार हमले किए। उसका जवाब उसने ईरान के उन तेल टैंकरों को शोलों में बदल कर दिया है जो पाबंदी से बचने के लिए पहचान बदल कर ऑपरेट कर रहे थे।
1: That Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers and I think you'll see that again today.
0: अमेरिका के इस एक्शन से बौखलाए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पूरे इलाके में तबाही की आग फैला दी है। ईरान ने अपनी नई एयर डिफेंस प्रणाली से अमेरिका का एक MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसके तुरंत बाद तेहरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि जॉर्डन ने इनमें से 18 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात दलीप ट्रॉफी की, जहां ईस्ट की टीम जीत के चंद कदम दूर खड़ी है। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की टीम कल दलीप ट्रॉफी अपने नाम पर उठाएगी।
3: ईशान, वैभव, सूर्यवंशी की टीम बनेगी चैंपियन। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की जीत पक्की। ईस्ट जोन की बढ़त 550 के पार।
4: लीजिए।
3: धड़ाधड़ गिरते साउथ जोन के इन विकेटों ने चौथे दिन ही संकेत दे दिया था कि दलीप ट्रॉफी में इस बार जीत का सेहरा ईस्ट जोन के सिर बंधने वाला है। अब तो बस औपचारिकता बची है। फिर चाहे मैच ड्रॉ ही क्यों ना हो, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की टीम कल दलीप ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। मुकाबले के चौथे दिन साउथ जोन की पहली पारी 336 रन पर सिमट गई, जबकि इस टीम को ईस्ट जोन के 708 रनों का पहाड़ से स्कोर का पीछा करना था। साउथ जोन के लिए देवदत्त पडिक्कल ने हाफ सेंचुरी जमाई, लेकिन हिम्मत भरी पारी खेली कप्तान तिलक वर्मा ने। वो अकेले टिके रहे, रन बनाते रहे, लेकिन आखिरकार 99 रनों पर उन्हें पेवेलियन लौटना पड़ा। इसके साथ ही ईस्ट जोन को 372 रन की बढ़त पहली पारी में ही मिल गई।
4: कोई समस्या नहीं है, कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट।
3: दूसरी पारी में भी ईस्ट जोन का जलवा बरकरार रहा और अब उसकी बढ़त 584 रन की हो गई। मतलब शान से उसका चैंपियन बनना तय हो गया। आज तक
4: लीजिए एक और, इस बार मिड विकेट से।
2: 7 तक में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
2: एक तो एक
3: इश्राम.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर उधर गया।
2: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा हो

0: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
1: छक्का
0: सब कैशलेस हो गया
1: हाँ ला भाई मेरा बैट
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू
3: चार्ज हुआ यार
4: बैट किसका है
5: टाटा AIG है तो भरोसा है
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
8: सोच बदलो और बैंक भी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। त्रावती से मैं आशुतोष मित्रा आज तक।
3: तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये रंगों से अक्सर डरा करते हैं, लेकिन भगवान से नहीं डरते हैं। चढ़ावा चोरी कर लेते हैं, चंदा चोरी कर लेते हैं, इन्हें भगवान से डरना चाहिए, रंगों से नहीं डरना चाहिए। और किस रूप में जाकर के उन्होंने चंदा चोरी किया होगा, जो चंदा चोरी कर रहा होगा, चढ़ावा चोरी कर रहा होगा, वो सबसे बड़ा बहरूपिया होगा। इसलिए अपने छात्र नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, सावधान रहना बहरूपियों से, कि किसी भी रूप में आ सकते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: कांग्रेस पर बीजेपी अध्यक्ष का हमला, कहा हमेशा किया है दलितों का अपमान, तुष्टिकरण है इनकी नीति, पूरा वंदे मातरम को लेकर भी वार। चुनावी यूपी में योगी का फिर समाजवादी पार्टी पर सवाल, कहा उनकी सरकार में महफूज नहीं थी बेटियां, आज छेड़छाड़ करने वालों की जगह जेल या जहन्नुम। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद बोले सीएम शुवेंदु, कहा जानता हूं भगवा का अपमान करने वालों को सबक सिखाना। लाल किले धमाका केस में एनआईए की चार्जशीट, आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, लोन मुजाहिद की थ्योरी को फॉलो करता था। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन जारी, गिराई जा चुकी हैं अब तक 24 इमारतें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। आज विशेष में बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हो गए हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना है। मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया है, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन इस प्रतिमा को हटा नहीं पाया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहाँ सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा कि कुछ लेता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही आ रहे, हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: अब पूरा विवाद हो गया है, हिंदू संगठनों ने इस हनुमान मूर्ति को हटाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां रोजाना महाआरती हो रही है और ये मांग की जा रही है कि इस मूर्ति को यहां से नहीं हटाया जाए। अब सवाल ये है कि प्रशासन क्या करेगा, रिपोर्ट देखिए।
0: प्रशासन का तर्क है कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है, लेकिन हिंदू संगठनों का सवाल है कि जब कई कोशिशों के बाद भी प्रतिमा नहीं है तो आखिर इसे हटाने की जरूरत ही क्यों। हिंदू संगठनों का दावा है कि प्रतिमा हटाने की करीब 4 बार कोशिश हो चुकी है, अब मांग साफ है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहेंगे।

0: पूरा इलाका जो है वो हनुमान भक्तों से भरा पड़ा हुआ है। मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। मंगलवार का दिन है तो मंगलवार को वैसे भी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन जब से इस मंदिर को हटाने का विरोध शुरू हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
1: जैसे ही खबर मिली कि प्रतिमा अपनी जगह से हट नहीं रही तो हिंदू संगठनों ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।

0: प्रशासन की तरफ से आश्वासन के साथ जमीन भी दे दी गई थी, जहां नया हनुमान मंदिर स्थापित होता लोग मान भी गए थे, इसीलिए ये प्रक्रिया शुरू की गई। मंदिर की दीवारें तोड़ी गई, लेकिन जब मूर्ति की बारी आई तो मूर्ति हिली ही नहीं। अब लोगों ने यहीं पर मंदिर की जगह टेंट लगा दिया है। हनुमान जी टेंट में हैं और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग दर्शन कर रहे हैं और अड़े हैं कि मंदिर कहीं नहीं जाएगा।
1: आप लोगों ने आज महाआरती रखी है, इस महाआरती के जरिए क्या संदेश आप लोग देने वाले हैं?
2: हम मध्य प्रदेश शासन को आज आरती के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस शहर और इस देश की जनता यही आपसे चाहती है कि बाबा अन्यत्र स्थापित न हो, क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार ने कल ही छापा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है और डॉक्टर हनुमान है। हमारे यहाँ पर सबकी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर जिन बहन बेटियों माताओं को यहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ से दवा दी जाती है और उनके गोदी भरा जाती है उससे। तो हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं, नेताओं से और मध्य शासन से, कि हमारी बात को सुने।
1: आए हैं, क्या आपकी आस्था है खड़े हनुमान में? आप,
3: मैं यहाँ लगभग 40 वर्षों से आता हूँ और हनुमान जी पे मेरी नहीं लगभग सभी की आस्था है। जब से ये समस्या को कहें या जिस बात को वातावरण बना है, शायद देश के लोग चिंतित हैं और वो सभी चाहते हैं कि जो हनुमान जी का स्थान है, भगवान की जो मर्जी है, हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि जीत को छोड़ते हुए जो जन भावना उसका आदर करे और जो हनुमान जी की प्रतिमा है यहीं रहे, क्योंकि ये चैतन्य स्थान है और जहाँ जो चीज चैतन्य हो जाती है वो परमार्थ के काम आती है, इसलिए हम सब लोग निवास कर रहे हैं।
4: आप महाआरती के हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मन बहुत व्यतीत है, ये सब देख के, ये दृश्य हम देख चुके हैं, ये दृश्य हम उज्जैन में भी देख रहे हैं कि भगवान राम वहाँ टाट में थे, यहाँ हनुमान जी महाराज भी टाट में है और हमारे नेता और अधिकारी बंगले में है। ये देखिए, अब सरकार लोहे का जंगले में हनुमान जी। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे और मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। दुनिया भारत के बड़े प्रमुख आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई है, श्री राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उज्जैन से शुरुआत है 1990 में। आदरणीय अशोक सिंघल जी, जयवान सिंह पवैया जी ने यहाँ से शुरुआत की थी।
0: प्रशासन क्या फैसला लेता है ये तो IIT इंदौर की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल मंदिर कितना प्राचीन है इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। कोई 120 साल बता रहा है, कोई 170 साल पुराना मंदिर बता रहा है। इतिहासकार इसे बेहद प्राचीन बता रहे हैं। लंबे समय से जो सिंदूर हनुमान जी की मूर्ति को चढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से इसकी मूल भाव भंगिमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंदिर काफी पुराना है।
5: वर्तमान जो खड़े हनुमान की प्रतिमा है वो सिंदूर से लिप्त है, इसलिए उसका पूरा स्वरूप और सही स्वरूप जो है वो एकदम ज्ञात नहीं हो पाता है। पुरातत्व विभाग यदि प्रयास करे तो कुछ ज्ञात हो सकता है। ये स्थान उज्जैन के प्राचीन क्षेत्र में आता है और प्राचीन क्षेत्र में अनेक मूर्तियां और देवस्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक खड़े हनुमान भी है।
0: उज्जैन के लोग इस मंदिर के बहाने सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। उज्जैन में 2028 के महाकुंभ के नाम पर बहुत से मंदिर तोड़े गए। यही लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने विकास के नाम पर 60 मंदिर ले लिए हैं, लेकिन अब इस मंदिर को नहीं लेने देंगे।
4: दिशा का तो कोई मैटर ही नहीं है। पहली बात तो बाबा जहाँ है ना वहीं ठीक है। चमत्कारी हनुमान जी हैं बाबा, स्वयंभू अपने आप में 1000 वर्ष पुराने हैं और बाबा की लीला तो अपरंपार है। सभी को मालूम है बाबा क्या चीज है। हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर के लिए बाबा यहीं रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं सर।
1: मशीन आई थी हटाने,
4: यहाँ पे 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, 3-3 बार मशीनें आ चुकी हैं और 4 बार यह खुदाई भी हो चुकी है, जबरदस्ती कर रहे हैं। मगर क्या होता है कि सत्ता जिसकी पुलिस उसकी वाला मैटर जो रहता आएगा, तो हमारी तो सरकार को एक ही गाइडलाइन के तहत बताना चाहते हैं कि अटल जी ने कहा था कि राम से मत उलझिए और हम कह रहे
6: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

आज जब हम उनके इस कार्यकाल की चर्चा कर रहे हैं तो एक समय यह भी था कि इस देश में आतंकवाद के रूप में सामान्य जीवन को हमेशा अभिशाप के रूप में मिलता रहा। आम आदमी को आतंकवाद का डर भय उनके मनों में हमेशा मस्तिष्क में रहता था, लेकिन उनके नेतृत्व में जहां हमने बाहरी और आंतरिक दोनों ही सुरक्षाओं पे देश के लोगों को सुरक्षित भी किया और देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया, आज हरेक भारतीय अपने आप को सुरक्षित और सम्मान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। हमने नक्सलवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने का काम किया और 200 से अधिक जिलों को जो प्रभावित जिले थे आज नक्सल मुक्त जिले के रूप में पूरी तरह से आम जनजीवन के जीवन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को एक पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सऊदी अरब पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला हुआ है। तेल रिफाइनरियां धू धू कर जल रही हैं। चार शहर दहल चुके हैं और 73 लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस मक्का अलायंस यानी तथाकथित मुस्लिम नाटो का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा गया था, उसकी पहली ही परीक्षा में हवा निकल गई है। अभी ठीक एक महीने पहले 7 अगस्त को रियाद में बैठकर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने बड़े बड़े दावे किए थे। नियम बनाया गया था कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, लेकिन जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कलेजे पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए, तब पाकिस्तान की कथित अजीम फौज का अता पता तक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बिल में छुप कर बैठ गए हैं और पाकिस्तान केवल कड़ी निंदा का जुबानी जमा खर्च कर रहा है। हद तो तब हो गई जब कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी कैमरों पर आकर सफाई देने लगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी नहीं है, यानी सऊदी अरब के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है।
1: देखें, ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
0: ये मजबूती लड़खड़ाती जुबान और पलटते ईमान से साफ हो जाती है। तुर्की भी पीछे नहीं है। एर्दोगन भी सिर्फ कागजी बयानों से सऊदी अरब के जख्मों पर बरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों में लगी भीषण आग इन दोहरे रवैये वाले बयानों और कड़ी निंदा से बुझ जाएगी? क्या रियाद में बैठा मक्का अलायंस का हेडक्वार्टर सिर्फ बयानों का दफ्तर बनकर रह गया है? सच्चाई यह है कि सऊदी अरब की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान ईरान के डर से थर थर कांप रहा है। हुतियों के पीछे खड़े ईरान से दुश्मनी बोल लेने की हिम्मत न तो पाकिस्तान में है और न ही अपनी जलती अर्थव्यवस्था के बीच वो कोई जंग लड़ने की हैसियत रखता है। साफ है कि दावे मुस्लिम नाटो के किए गए थे, लेकिन पहली ही हुती मिसाइल ने इस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। सऊदी अरब अब समझ चुका है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान की किराए की फौज सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास कर सकती है, जंग के मैदान में उतरने का दम उसमें नहीं है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: देश में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टिकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली लाल किला धमाका मामले में एनआईए की चार्जशीट, ब्लास्ट को बताया आत्मघाती हमला, कार में बैठे उमर नबी ने ही आईईडी को किया सक्रिय। बांग्लादेश के चिटगांव में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद खौफनाक घटना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। रविवार के दिन से ही देश भर की निगाहें दिल्ली की जर्जर इमारतों पर लगी हुई हैं, जिसे लेकर देश भर के आम आदमी में गुस्सा है। एमसीडी, पुलिस और प्रशासन को लेकर सबके मन में सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार हादसों के बावजूद एमसीडी अफसरों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। एमसीडी अफसरों की इसी बेफिक्री से हम आज देश को खबरदार करेंगे। इसके बाद बिहार में शराबबंदी की हकीकत से आपको खबरदार करेंगे, जहां पर तस्करी के नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों की पुकार की भी बात होगी, जो 14,000 रुपए में गुजारा करने को मजबूर हैं। लेकिन शुरुआत हम दिल्ली की खबर से ही करते हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही एमसीडी सक्रिय दिखी। उसके अफसर बुलडोजर और अपनी टीम के साथ उन इमारतों को तोड़ने सुबह से ही निकल गए। कहीं बुलडोजर से छज्जा गिराया, कहीं पर गैर कानूनी रूप से बनाई गई 5वीं मंजिल पर हथौड़ा चला। लेकिन अवैध इमारतों पर चलते हर हथौड़े के साथ एमसीडी के कथित भ्रष्टाचार की कहानी भी सामने आने लगी।
1: बच्चों की जान जाने के बाद अब सिविक एजेंसियां सत्य निकेतन इलाके में एक्शन में आई हैं। ये देखिए सामने की बिल्डिंग जो है, जो ठीक उस जगह पर मौजूद थी जहां पर बिल्डिंग गिरी, उसके बगल वाली ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। इसको खाली करा लिया गया।
2: सत्य निकेतन की जिस इमारत के मलबे में दबकर बेकसूर छात्र मारे गए, अब उसकी बगल वाली इमारत को ढहाया जा रहा है।
3: रविवार को सत्य निकेतन में जहां पीजी हादसे में 7 बच्चों की जान गई, उसके ठीक साथ वाले बिल्डिंग में जहां कनकलता पीजी चलता था, अब एमसीडी के हथौड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है। मलबा नीचे फेंका जा रहा है, जहां कल तक वो पीजी होता था जिसमें उन बच्चों की जान गई, अब उसी जगह पे सारे मलबे को छत से गिराया जा रहा है।
2: एमसीडी भले ही एक्शन में दिखे, वो ये दिखाए कि कैसे वो कमजोर और जर्जर इमारतों को गिरा रही है।
4: सत्य निकेतन में जिस तरह से घटना हुई, उसके बाद से दिल्ली सरकार, एमसीडी और अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो जाग चुकी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में है और यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो छज्जा निकला हुआ था, वहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस छज्जे को गिराया जा रहा है। हमारी जब अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो छज्जा है वो निकाला गया है, नक्शा पास नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है।
2: दिल्ली के बिंदापुर की तस्वीरें देखिए, जिसमें एक निर्माणाधीन इमारत पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये बुलडोजर तब कहां था जब सत्य निकेतन हॉस्टल डेज का मालिक अवैध निर्माण करवा रहा था, जब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इमारतें ऊंची करवाई जा रही थी, तब एमसीडी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी। इस सवाल का जवाब हमें पांडव नगर में हो रही इस कार्रवाई के दौरान मिला, जहां एमसीडी के अफसरों की मौजूदगी में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा चलते दिखा।
5: सारे नोटिस दिए हुए हैं इनको, ऑर्डर हमने पहले भी सीलिंग ऑर्डर भी पास किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमने बार बार वार्निंग देने के बाद, वर्कस्टॉप देने के बाद इन्होंने काम बंद नहीं किया है। हमारा हम क्या है, फाइल प्रोसेस पूरा होने से पहले हम डिमोलिशन एक्शन नहीं ले सकते।
2: दिल्ली में भ्रष्टाचार की इमारतें न बनती अगर एमसीडी इतनी ज्यादा सक्रिय होती जो सत्य निकेतन के हादसे के बाद दिखती। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसे पांडव नगर की इस इमारत की मकान मालकिन की बात सुनकर समझिए।
6: नक्शे किसके पास होते हैं ये बताओ पहले, जो ये पूरे गांव में पहली बात तो भैया सारे को कैमरेट कर दो, आप सब सारे गांव के दिखाओ मकान हमारा, अगर नक्शा पास नहीं था।
2: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर का भी हाल सत्य निकेतन जैसा है। यहां नियमों को तोड़कर 5-5 मंजिल इमारत बनाने वाले खुलेआम कह रहे हैं कि नक्शा किसके पास होता है, लेकिन आगे ये जो कहते हैं वो ज्यादा अहम है।
6: एमसीडी हमसे ये कहती है कि 10 लाख दे दो हम तुम्हारा मकान नहीं तोड़ने आएंगे। जी हमने एमसीडी को भी खिला लिया 10-20 लाख और पुलिस को भी खिला लिया। किसी अधिकारी

0: अधिकारी का नाम आप बता सकती हैं जिसको?
1: अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन कोर्ट में केस डालो मेरा, मैं कोर्ट में सबके नाम ले दूंगी।
0: आपका कहना है कि आप लोगों से रिश्वत मांगी गई?
2: रिश्वत मांगी है, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, और हमने दी भी है। कब नहीं दी हमने मैम? अपना अपना घर बचाने के लिए हम तो देंगे ना पैसे, एक बात तो बताओ आप। हमने 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, कब तक देंगे हम पैसे?
0: कोई अधिकारी है जिसको आप लोगों ने?
2: मैम अधिकारी का नाम नहीं लूंगा मैम,
1: हम
2: लेंगे, लेकिन हमारा कोर्ट में केस चला गया, हम कोर्ट में घसीटेंगे उन लोगों को।
3: रविवार को सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद एमसीडी जनता के गुस्से से जागती है, कार्रवाई का भरोसा दिलाया जाता है, अवैध इमारतें टूटने लगती हैं, लेकिन इसी दौरान दावा है कि कुछ एमसीडी अफसर पैसे लेकर कार्रवाई ना करने का सौदा करते हैं, ये जानते हुए कि ये इमारतें कभी भी लोगों की जान ले सकती है।
1: फिर से बोल रहे कि 5 लाख दे दो हम चले जाएंगे। मैडम कहाँ से रोज रोज 5 लाख लाऊं, मेरे आदमी नहीं है जी, एक बार नहीं आए, 3-4 बार आ चुके।
2: एमसीडी वाले भी हमसे पैसे मांगते हैं, पुलिस भी हमसे रिश्वत मांगती है,
1: और दे चुके,
2: दे चुके हम।
3: इस तरह दिल्ली में अवैध इमारतों में एमसीडी के चल रहे हथौड़े उसे पहले से ज्यादा कटघरे में खड़ा करते हैं, इस बात पर भरोसा करने को मजबूर करते हैं कि अगर ऐसी ड्रिलिंग मशीनें दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर से पहले चल गई होती तो देश भर से पढ़ने आए छात्र बेमौत नहीं मारे जाते।
0: यहाँ पर ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है इस बिल्डिंग को, जो अनऑथराइज बिल्डिंग है, जिसे जो तय मानक है उसके उससे ज्यादा जो फ्लोर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मशीनों के जरिए अब उन फ्लोर्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, मशीनें लगाई गई हैं, और एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है, वहां पर पहले ही डिमोलिशन कर दिया गया है। तो लगातार अब पांडव नगर का जो इलाका है, चाहे वो जनकपुरी का इलाका हो, सत्य निकेतन हो, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब सख्ती की जा रही है और अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है, कुछ बिल्डिंग्स को सील भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये कार्रवाई सत्य निकेतन की घटना के बाद क्यों की जा रही है? अगर पहले ही इस तरह की कार्रवाई हो जाती तो कुछ मासूमों को बचाया जा सकता था। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक।
4: और बात केवल पहले या बाद में कार्रवाई की नहीं है, बात यह भी है कि अगर कुछ नियम है, नियम सबको पता है, तो जब निर्माण होता है उसी समय क्यों नहीं आकर कोई आपत्ति करता है ताकि इस तरह की इमारतें खड़ी ही ना हो, क्यों उन्हें खड़ा होने दिया जाता है और उसके बाद एक तरीके से पैसा बनाने का एक मौका बना लिया जाता है। दिल्ली में आज नेहरू विहार, पांडव नगर, लक्ष्मी नगर और उत्तम नगर में एमसीडी की कार्रवाई हुई। पिछले 2 दिनों में एमसीडी ने 24 इमारतों में तोड़फोड़ की, जबकि 27 इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया। कुल 7 प्रॉपर्टी को सील किया गया है, 35 प्रॉपर्टी मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
5: ये तस्वीर है लक्ष्मी नगर के इलाके की, जहां पर ये जो पूरी बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई गई थी, अनऑथराइज थी, हाई कोर्ट का आदेश था, बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं था और इस बिल्डिंग को स्टील पार्किंग के साथ 4 मंजिल जो है वो खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद अब एमसीडी की जो टीम है वो हथौड़ों के जरिए पूरी बिल्डिंग को डेमोलिशन करने के लिए जो है वो पहुंची है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एमसीडी की टीम, एमसीडी के जेई, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके जरिए दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त डेमोलिशन का ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि 5 मंजिल से ऊपर की जितनी भी इमारतें हैं जहाँ पर अवैध रूप से बिल्डिंगें बनी हैं, डेंजर बिल्डिंग है, उन सब पर एक्शन जो है वो लिया जाए, और वही एक्शन जो है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है वो देखने को मिल रहा है। एमसीडी का कहना है कि कल रात को ही आपने इसको ऑक्यूपाइड करा, पूरी बिल्डिंग नई बन रही थी, इसमें नक्शा पास नहीं था, अवैध रूप से
6: मेरा मीटर भी लगा हुआ है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, तो कहां से मैं अब आज से रह रहा हूं।
5: नक्शा पास कराया था आपने?
6: भाई साहब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, पूरे लक्ष्मी नगर में किसका नक्शा पास? 1,999 मकान का नक्शा पास नहीं होता, सब इनको पैसे खिलाते हैं, जो पैसे नहीं खिलाता उसके खिलाफ ऐसे कार्यवाही करते हैं।
4: सत्य निकेतन का जो हादसा हुआ है वो अब हुआ है, लेकिन उस हादसे के बाद जिस तरीके से सब सतर्क हुए हैं, सवाल इसमें ये भी है कि ये बात आज की नहीं है, ये इमारतें आज की निर्मित नहीं है, यानी कि एक लंबे समय तक इस तरह की चीजें चलती रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस समय जुड़ रहे हैं। चाहे राजनीति की बात करें हम अनमोल, या फिर हम एमसीडी पर कंट्रोल, किस समय कौन मेयर, कौन अधिकारी, कौन नक्शा पास करने में रहा, कौन आंखें मूंद गया अपनी, एक लंबी फहरिस्त निकलेगी, बहुत पुरानी पुरानी ये सारी इमारत।

0: करते हैं। आज कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन ये एक बहुत पुरानी लाइलाज बीमारी बन चुकी है दिल्ली की।
1: श्वेता, हम ये पहली बार नहीं देख रहे। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी पावर में थी तब भी देखा जाता था कि बड़े हादसे होते थे, और अभी दिल्ली में जब बीजेपी पावर में है तब भी हम देख रहे हैं बड़े हादसे हो रहे हैं। उसी बीच मैं उसी सत्या निकेतन के मंदिर के ऊपर हूं, जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जहां आप देख सकते हैं वो सामने बिल्डिंग थी जो उस दिन ढह गई थी, जिसे ढहने के कारण देखा गया कि 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और सामने जो 7 जो सटी हुई बिल्डिंग है उसको अब एमसीडी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। श्वेता, देखा गया कि एमसीडी ने पिछले 2 दिन से कार्रवाई शुरू कर दिए। 1100 जो पीजी प्रॉपर्टीज है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 जोन्स में है, उनका सर्वे किया गया। चाहे उत्तम नगर से पांडव नगर की बात की जाए, जो एमसीडी का हथौड़ा है वो चलना शुरू हो गया। हालांकि लेट, जब एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद देखा गया कि एमसीडी जो है एक्शन मोड में आया। इसी बीच में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कैसे 5 मंजिला इमारत है जिसको अब तोड़ना शुरू कर दिया, अंदर से हथौड़ों से इसको तोड़ना आज एमसीडी ने शुरू कर दिया। हालांकि जो हमें स्थानीय लोगों ने बताया, आसपास की जो 5th फ्लोर है उसको तो तोड़ दिया, और कल देखा जाएगा कि 4th और 3rd पर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीचे आप देख सकते हैं जो मलवा पड़ा है वही बिल्डिंग की साइट है जहां पर बिल्डिंग ढह जाती है। देखा जाता है कि 4 मंजिला जो बड़ी इमारत थी वो ढह जाती है। और कुछ एक तस्वीर मैं आपको श्वेता ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं जहां इमारत ढही है वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर एमसीडी का दफ्तर भी है जहां पर मलवा लाकर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एमसीडी का दफ्तर है, जहां मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि वही मलवा है, उस दिन का मलवा, उस बिल्डिंग का मलबा। आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े रूफ के जो स्लैब हैं, जो तस्वीरों में साफ बयां कर रहे हैं कि कैसे उस दिन मंजर रहा होगा जब एक मंजिल, दूसरी मंजिल और 3-4 करकर ताश की गड्डी की तरह जो पूरी इमारत है गिर जाती है। मैं आपको गाड़ियां भी 2 दिखाना चाहूंगा, एक ब्लैक कलर की, एक सिल्वर कलर की, आप देख सकते हैं जो उनके नीचे दब गई थी। टोटली ये गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो साफ तौर पर बयां करता है कि कैसे उस समय खतरनाक मंजर यहां पर रहा होगा। हालांकि अभी भी जो एमसीडी की टीम्स हैं यहां पर काम कर रही, हालांकि हमें जो स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तो अंदर काम नहीं चल रहा, जो ऊपर रात के अंधेरे के कारण उन्होंने काम बंद कर दिया। पर कल देखा जाएगा, जो सामने आप बिल्डिंग देख रही हैं वहां 4th फ्लोर पर जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे शुरू की जाएगी। ये भी एक पीजी था, इसको भी खाली करा दिया गया। वहीं मैं अपने कैमरा सहयोगी से बोलूंगा, वो नीचे दिखाए कि कुछ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अभी भी यहां पर लगे हुए हैं, वो अभी भी यहां पर काम कर रहे हैं। आप वही साइट है, ये वही बिल्डिंग साइट है जहां पर देखा जाता है बिल्डिंग गिरती है। तो सारे जो ये जो
0: असल में ऐसा नहीं है कि नियम किसी को पता नहीं है, नियम सबको पता है। नियम की कोई अनदेखी करता है, कोई नियम की अनदेखी को अनदेखा कर देता है। बहुत शुक्रिया अनमोल बाली इस जानकारी के लिए। दरअसल कोई भी चीज होने के बाद कार्रवाई करना बहुत आसान है, लेकिन वो हादसा न हो उससे पहले कोई कार्रवाई करे तब नजीर बने। दिल्ली का सत्य निकेतन इलाके में रविवार को इमारत गिरी, उसके बाद हॉस्टल डेज चर्चा में आया, छात्रों की समस्याओं से देश खबरदार हुआ, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, सरकार की सख्ती के बावजूद, उसी सत्य निकेतन इलाके में छात्राओं को हॉस्टल मालिक परेशान कर रहे हैं।
2: जिस सत्य निकेतन पर इस वक्त देश की नजरें लगी हुई हैं, जहां एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, उस सत्य निकेतन में छात्र और छात्राओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह उस गर्ल्स पीजी में है जो रविवार को मिट्टी में मिली इमारत से चंद कदमों की दूरी पर है। सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद हॉस्टल मालिक सारी हद पार कर रहे हैं।
3: हम लोग पहुंचे हॉस्टल डेज के एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल में, और यहाँ पे छात्राओं ने बताया कि उनकी कहानी वो बताना चाहते हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो इस पीजी हॉस्टल का मालिक है, जो चलाता है, वो भी अरेस्ट हो गया है। और यहाँ पे 2 छात्र हैं जो हमारे साथ हैं, इसी पीजी में रहती हैं। आप देख रहे हैं ये रूम है, प्रोफेसर स्मृति हैं मैत्री कॉलेज की, वो यहाँ पे बैठी हैं और बाकी छात्राएं हैं। लेकिन जो यहाँ पे रह रही हैं और भोग रही हैं क्या चल रहा है, आपको बता दें, अगर आप 2 मिनट चले तो आप उसी जगह आ जाएंगे जहाँ पे इमारत ढही है। और ये छात्र जाहिर तौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते क्योंकि इनको टारगेट किया जाएगा।
2: विडंबना देखिए, जिन पीजी मालिकों को मुंह छिपाना चाहिए वो खुलेआम छात्रों को धमकाते हुए आज तक के कैमरे में कैद हो चुके हैं।

0: दिल्ली के हॉस्टल माफिया के इसी रवैये की वजह से ये छात्राएं भी किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती, इसलिए इन्होंने अपना चेहरा छिपाकर अपनी दिक्कत बताई। आज तक तो बताया कि उन पर क्या बीत रही है।
1: आप बताइए कि कितना मुश्किल है, कितना पैसा आपका फंसा हुआ है और खाने की भी लाले।
2: तो जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से हमें बहुत मुश्किलें देखने को मिल रही है। जब ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन भी जब हमें खाने को मिला था तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। दो तीन दिन से हमें खाने की प्रॉब्लम हो रही है। कल तो हमें रात का खाना भी नहीं दिया गया। और बात करें कि डिपॉजिट्स की, तो जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था तो हमसे एक महीने का रेंट और दो महीने की सिक्योरिटी ली गई थी, जो कि थी एक महीने का रेंट 15,000 और 30,000 सिक्योरिटी। टोटल 45,000, क्योंकि हमने इस महीने का भी रेंट पे कर दिया था, तो हमारे 45,000 उनके पास हैं। और अब हमें ना वो कोई जवाब दे रहे हैं ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हमारे पैसे भी उन्हीं के पास हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम पीजी अगर शिफ्ट भी करना चाहें तो हम नहीं कर सकते।
0: पीजी मालिकों की ऐसी ही दादागिरी से आज तक ने मंगलवार को भी खबरदार किया था, लेकिन यहाँ तो मकान मालिक ना किराया सिक्योरिटी वापस दे रहा है ना ही खाना। आखिर खाना इन छात्राओं को क्यों नहीं मिल रहा?
3: पहले तो भाग गए थे, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था जब 1:06 को हुआ था ये पूरा सीन, तब वो भाग गए थे, फोन नहीं उठा रहे थे। और आज जब हमें कल पता चला कि हमारी वार्डन भी भाग गई है, एक अकाउंटेंट, हाँ जी,
1: मतलब ये हॉस्टल अपने आप चल रहा है, वार्डन भी
3: हम चला रहे हैं। हम दो दिन से खुद ताला लगा रहे, खुद ताला रात को मतलब खोल भी रहे, सुबह ये सब हो रहा है, और वार्डन भी भाग गई है। और अभी ये बोला गया है कि अगर हमें खाना चाहिए तो न्यू कैटरर के साथ हमें फिर से 4,000 देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ ये मतलब रेंट के रेंट के अलावा, और 4,000। तो ये हम अभी पे नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने रेंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पे कर दिया था एक बार के लिए।
1: महीने का कितना दिया था?
3: मेरा रेंट 14,500 है और इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 1,000 का आता है, जो 10 रुपीज पर यूनिट का चार्ज होता है।
0: सोचिए, इस मुश्किल वक्त में भी छात्राओं की मदद करने के बजाय उन्हें लूटा जा रहा है। खाने का पैसा पहले ही लेने के बावजूद नई डिमांड की जा रही है, यानी मदद छोड़िए, इन छात्राओं को नए नए तरीके से परेशान किया जा रहा है। ऐसे ही परेशान छात्राओं को DU के मैत्री कॉलेज के प्रोफेसर ढूंढ रही हैं ताकि उनकी इस मुसीबत में मदद की जा सके, लेकिन हॉस्टल माफिया को ये भी रास नहीं आ रहा और दावा है वो छात्राओं को किसी से बात नहीं करने दे रहे।
4: यहाँ तो मान लो अभी वार्डन वगैरह नहीं है तो हम जैसे तैसे अंदर घुस गए, लेकिन कुछ पीजीस में बच्चों से हमें बात करने तक की परमिशन है। दे क्लोज डोर, मुझे, आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो दिखाई भी देता है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो मुझे भी बच्चों से मिलने नहीं दे रहे हैं।
1: आपके ने बंद करके रख दिया है?
4: हाँ, बात नहीं करने दे रहे बच्चों से। मैं गई, मुंह पर दरवाजा बंद करते हैं कि नहीं आप बात नहीं कर सकते हो। मैंने बोला मेरे एक सिर्फ पीजी ऑनर सामने आई फर्स्ट लेन की, जिन्होंने हमें बच्चों से बात करने दिया, नहीं तो बाकी सबने हमें मना कर दिया।
1: क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
4: नहीं पता ना, कहते हैं हमारा पीजी चलता ही नहीं है, किचन है। मैंने बोला लड़कियों के कपड़े सूखते हैं, कि मेरे जो बच्चों ने बताया मैम लड़कियों के कपड़े सूख रहे हैं, कान में बताया। मैंने बोला लड़कियों के कपड़े सूखते हैं किचन में, ये पीजी है, खोलो आप। बच्चे बता रहे हैं हमारे दोस्त रहते हैं, तब भी नहीं आने दे रहे।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में लालच और भ्रष्टाचार की बीमारी ने बेकसूर छात्रों की जान ली। संकरी गलियों में बनी यहाँ करीब करीब हर इमारत रहने लायक नहीं है, फिर भी उसमें पीजी चलाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि पता नहीं किस दिन ये जर्जर इमारतें गिर जाएं और जिंदगियां दफन हो जाएं। इन इमारतों में रहने वाले देश के भविष्य हर पल खतरे के साए में है, फिर भी हॉस्टल मालिकों का लालच कम होने का नाम नहीं ले रहा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
5: इसी शो में हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से हॉस्टल चला रहे लोग छात्रों को धमका रहे हैं, एडवांस के रूप में दी गई सिक्योरिटी वापस नहीं कर रहे, लेकिन आपके खबरदार करने पर छात्रों के साथ न्याय हो गया।
1: मकान नंबर 214, कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो मकान बिल्कुल 6 मंजिला जो ये मकान है ऊपर आप देखिए तो पूरा एक तरीके से लीन कर रहा है और काफ़ी डेंजरस कॉर्नर का प्लॉट है, काफ़ी डेंजरसली प्लेस ये बिल्डिंग है। और सब बच्चे जो खाली कर रहे थे उनको पैसा नहीं दे रही थी यहाँ की जो पीजी ओनर है रितु दलाल, लेकिन हमारे साथ उत्कर्ष है।

0: जिससे हमारी बातचीत भी कराई थी पीजी ओनर से, और उत्कर्ष को उनका रेंट और सिक्योरिटी मिल गया। बताइए
1: जी, जी कल जब मीडिया वाले आए, मीडिया वालों के सामने उनसे बात हुई, ओनर से इनका भी, दीदी जी का भी बात हुआ, फिर उसके बाद हमें शाम तक सिक्योरिटी और रेंट दोनों मिल गया था।
0: जब हम लोग बात कर रहे थे लाइव में, तब वो कह रही थी कि आपका बिजली का बिल बकाया है और मीडिया को बाहर करो।

0: करो, हम लोग को भी बोल रहे थे इस तरीके से।
1: हाँ, पर उस वो बोल रही थी, फिर उसके बाद जब मीडिया का थोड़ा शांत हुआ, मीडिया का थोड़ा न्यूज़ पे गया, सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल हुआ, तो उसके बाद हमें पैसा हमारा वापस आ गया।
0: कितना पैसा मिला और किन कितने बच्चों को और भी मिला?
1: चार बच्चों को तो सिर्फ बात हुई, उन चारों को तो मिल गया, मतलब मेरे सहित चार बच्चों को, और मतलब जितना रेंट था और जितना सिक्योरिटी था 9,000 पूरा मिल गया, 9,000 सिक्योरिटी और 6,000 रेंट।
0: आप संतुष्ट हैं इस बात को लेके?
1: जी जी, सारे बच्चे आज कॉलेज गए हुए हैं, सब संतुष्ट हैं इस बात से।
2: देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में हादसे होते रहते हैं, कहीं इमारतें गिर जाती हैं, कहीं आग लग जाती, छात्र और आम लोग मारे जाते हैं, कार्रवाई के नाम पर एमसीडी के अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। सवाल यह है कि जिन अफसरों पर अवैध इमारतों को बनने से रोकने की जिम्मेदारी है, ये देखना उनका काम है कि आग से बचाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, वो अफसर इतने चैन में कैसे रहते हैं, आखिर उनकी बेफिक्री का राज क्या है, वो कभी गिरफ्तार क्यों नहीं होते, क्यों उन पर जुर्माना लगते देश नहीं देखता। सवाल यह है कि जिन पांच अफसरों को सस्पेंड किया गया है, क्या उनके खिलाफ FIR भी होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों, अफसरों की इस बेफिक्री की वजह क्या है, कि वो जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होगा ही क्या, सस्पेंड होंगे, निलंबित किया जाएगा, इस दौरान आधी सैलरी और भत्ते मिलेंगे, मतलब एक तरह से निलंबन के दौरान कोई काम नहीं करेंगे फिर भी आधी सैलरी और भत्ता मिलेगा और जांच के बाद बहाल हो जाएंगे, आखिर जिन अफसरों की जिम्मेदारी है उन्हें सजा क्यों नहीं। ये सिलसिला कब खत्म होगा, क्योंकि साल 2010 में 70 मौत के जिम्मेदार एक एमसीडी अफसर को ₹21,000 जुर्माने की सजा दी गई थी।
3: सात मौत, पांच सस्पेंड, एक सवाल। बिल्डर को पकड़ लिया, पीजी चलाने वाले को पकड़ लिया, बेसमेंट में काम कराते कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया, लेकिन सरकार ये बताए कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ये देखना कि दो फ्लोर की इजाजत की जगह पांच फ्लोर कैसे बना, जिनकी जवाबदेही इस बात की कि जर्जर पुरानी अवैध बिल्डिंग में पीजी चले ही नहीं, क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ FIR में नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। जिन पांच लोगों को सस्पेंड किया गया है, पहले इनका नाम सुन लीजिए, जिस पर सरकार कड़ा एक्शन का दावा करती है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों के नाम और पद इस तरह है। राकेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन, रणवीर सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साउथ जोन, ललित कुमार गोयल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग साउथ जोन, सुनील चौहान, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग साउथ जोन, आशीष कुमार, जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग। सात की मौत के बाद इन्हें सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इससे क्या होगा? ये एक तरह से एमसीडी के लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंशन की आड़ में बचाने वाला हिस्सा बन गया है, क्योंकि पहले निलंबन होता है और कुछ महीने या कुछ वर्ष में बहाली हो जाती है, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई जैसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पाती। ये कहने की वजह इतिहास है, पहले इतिहास देखिए। 2010 की बात है, दिल्ली के ललिता पार्क में इमारत गिरने का सबसे बड़ा मामला माना जाता है, इसमें 70 से अधिक लोगों की जान गई थी और 65 घायल हुए थे। इस मामले में भी चार लोगों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वर्षों बाद भी कुछ नहीं हुआ। सस्पेंशन के 8 साल बाद केवल रिटायर हो चुके एक जेई पर ₹21,000 का जुर्माना लगा था, वो भी पेंशन से हर महीने ₹1,750 जुर्माने के तौर पर काटना था, बस और कुछ नहीं हुआ।
4: असल में किसी अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो उसके निलंबन के बाद FIR का जिम्मा विजिलेंस विभाग को देते हैं। ऐसे में कोई अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मामला अगर सामने आता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। इतिहास कहता है कि ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, FIR की नौबत भी नहीं आती है और विजिलेंस विभाग छोटी मोटी कार्रवाई कर देता है।
3: कई मामलों में इंक्रीमेंट और पदोन्नति करने के मामले आते हैं तो कई मामलों में नौकरी से भी हटाया जाता है। हालांकि 3 महीने के भीतर एक रिव्यू कमेटी अतिरिक्त आयुक्त इंजीनियरिंग के नेतृत्व में होती है, ये कमेटी चाहे तो इन कर्मियों को बहाल कर सकती है। हालांकि निलंबन के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन का 50% भाग और भत्ते मिलते हैं।
4: अगर कोई सरकारी अफसर दोषी पाया जाता है तो उसको सैलरी कम करने की सजा मिलती है, ये एक मजाक है। दिल्ली में ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि तय वक्त में जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उनके नाम FIR में डाले जाए और उनकी लापरवाही की सजा जो है वो अदालत तय करे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुशांत मेहरा।

0: दिल्ली आज तक।
1: दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाई करने वाले कई छात्रों ने अपनी पीजी को खाली कर दिया। छात्रों ने बताया कि चिराग दिल्ली में चलने वाले पीजी में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पीजी को खाली कर दिया। इसके बाद छात्रों के सामने रहने का संकट था कि कहां रहें। इसे देखते हुए शहीद भगत सिंह कॉलेज प्रशासन सामने आया।
2: सत्या निकेतन हादसे के बाद इन लोगों के मन में सवाल उठा कि जिस पीजी में रह रहे हैं वो पीजी भी नियमों का उल्लंघन करके चल रहा है और वो खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके बाद वो लोग अपना पीजी खाली किए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए, तो इसके लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज प्रशासन सामने आया है और उसने ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर जगह मुहैया कराया है और यहाँ पर जो एक हॉल है उसको खाली करा करके वैसे बच्चे जो यहाँ आसपास पीजी में रहते थे, जिन्होंने अपनी पीजी खाली कर दी है, उनको यहाँ पर अस्थायी जगह अभी दिया गया है। हम आपको ये देख सकते हैं, एक कन्वेंशन हॉल है और यहीं पर ये व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो आए हैं और उनके लिए बैठने उठने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। आप दिखा देते हैं, साफ सुथरा काफ़ी किया गया है। आप देख सकते हैं टाइल वाले यहाँ के जो इतने भी सब चीज सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। पीजी में कौन से बच्चे रहते थे आप
3: रहते थे?
2: हाँ, कब खाली किया?
3: अभी कुछ देर पहले।
2: हाँ। क्या समस्या आई थी वहाँ पीजी?
3: वो क्रैक आ गया था। एक तो हम लोग बेसमेंट में रहते थे तो बेसमेंट का हालत और ज्यादा खराब था। तो मतलब कि बहुत ज्यादा क्रैक आ गए थे और अभी पुलिस और वो पहुंचे हैं।
2: क्या क्या समस्याएं आप लोगों को देखने को मिली?
4: वो बिल्डिंग ऊपर से थोड़ा क्रैक होता था, वो गिरा भी है थोड़ा बहुत, क्रैक हो गए।
2: तो उसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस को दी है?
4: हाँ, पुलिस आए थे ना,
2: पुलिस आए थे।
4: हाँ।
2: तो कितने दिन पहले पीजी लिए थे?
5: हम लिए थे लगभग एक महीना हो गया।
2: तो उस पीजी में क्या समस्या आई है?
5: उस पीजी में लीकेज वगैरह की समस्या आती है और अभी सीलन की समस्या रूम बेसमेंट वाले जो रूम है उसमें आ रही है।
2: आप बेसमेंट में थे कि फर्स्ट फ्लोर?
5: हम फर्स्ट फ्लोर पे थे।
2: फर्स्ट फ्लोर पे थे। कितना मंजिल है?
5: मंजिल लगभग 3 मंजिल होगा, 3-4 होगा।
6: एक्चुअली अभी पूरा सीन क्रिएट हुआ, जब ये पूरा हादसा हुआ यहाँ पे, क्रैक वगैरह की खबर हमें मिली, तब जा करके वहाँ लड़कों की पूरी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। अब वो पीजी जो चल रही थी, पीजी के ओनर ने कहा कि मैं सुबह तक ऑडिट करा करके बिल्डिंग सेफ है या नहीं है ये सब दिखा दो, सुबह नहीं कल 12-1 बजे के आसपास। अब जो भी क्रैक आया, जो भी दिक्कत है, बच्चों को वहां बहुत ज्यादा डर लगा।
1: अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझेंगे कि अफसरशाही होती क्या है। आपको मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आई ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये खबरदार करेगी। इस एक तस्वीर ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 45 सेकंड का वीडियो है, एक पटवारी नाला पार कर रहा है और इसके लिए करीब 65 साल के एक बुजुर्ग की पीठ पर सवार हो गया है। विंध्य क्षेत्र में तेज बरसात हुई थी, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन की ओर से राजस्व अधिकारियों को फसल नुकसान का आकलन करने के लिए गांव-गांव तक भेजा गया। इसी दौरान सीधी जिले की माटा ग्राम पंचायत के हल्का पटवारी नीलेश नामदेव फसल नुकसान का जायजा लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक नाला था, नाले में पानी था, पटवारी ने खुद नाला पार करने के बजाय 65 वर्षीय बुजुर्ग ललवा केवट की पीठ पर बैठकर नाले को पार करने का सफर तय किया। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो भी बनाया और ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल हमारे सामने रख रहा है, खबरदार होकर इस सवाल का जवाब तलाशिए।
7: तो दोनों बेर की तुम्हारे मतलब ऊपर टांग के लगे रहे कि एक बेर की?
8: दोनों बेर हर बार
7: है ना, बहुत वजन लगा रहे हुई ना?
8: अरे एक कुंटल
7: है ना,
8: एक कुंटल।
7: तो और खेतों का कुछ खर्चा वर्चा दी नहीं के?
8: खर्चा खाली,
7: बस खर्चा वर्चा नहीं दी?
8: खर्चा पर्चा भगवान दे तो दे, सब कुछ।
9: जो संबंधित हल्का पटवारी है उनके द्वारा जो है वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पीठ पर सवार होकर के नाले को पार किया गया है, ऐसा दर्शाया गया है इस वीडियो में और जो न्यूज़पेपर में भी खबर आई हुई है। तो उसमें तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि अभी बारिश का भी समय है, जहाँ पे बारिश में शासन प्रशासन भी बहुत संवेदनशील होकर के और राहत कार्यों में अपना सहभागिता दर्ज करते हैं, वहाँ इस तरह का वीडियो वायरल होना बिल्कुल प्रथम दृष्टया असंवेदनशील प्रतीत होता है। और इसी के रिजल्ट की हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है संबंधित पटवारी को।
1: अब बात बिहार की करते हैं, जहां शराबबंदी है, लेकिन एक बार फिर शराबबंदी गलत वजहों से सुर्खियों में है। इसकी वजह शराब की तस्करी के नए तरीके और उससे जुड़े किरदार। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन पहले नीतीश और अब सम्राट सरकार इसे लागू रहने की बात करते हैं। लेकिन बिहार में तस्करी एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ रही। कहीं दिल्ली से आ रही एक महिला के सूटकेस में शराब मिलती है, छात्रा के हैंडबैग में शराब मिलती है जो यूपी से लाई जा रही थी। बिहार में गाड़ी की सीट के नीचे शराब जब्त की जा रही है, कॉपी के बंडल के अंदर शराब की तस्करी हो रही है, एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल शराब को बंगाल से लाने के लिए किया जा रहा है। मतलब शराब की तस्करी के जितने तरीके हो सकते हैं उन्हें बिहार में आजमाया जा रहा है। ये सब देखकर खबरदार करता सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी लागू है, या फिर शराबबंदी ने तस्करी के एक और अवैध कारोबार को फलने फूलने का मौका दे दिया है।
0: लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान है, लेकिन बिहार के महिलाओं के समर्थन के लिए तो बिहार की आधी आबादी का सम्मान शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा।
10: सम्राट चौधरी ही कबूलते हैं कि बिहार को शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी शराबबंदी जारी रहेगी।
11: अरे
10: लेकिन बिहार में कितनी शराबबंदी है अब आप खुद ही देख लीजिए।
11: अरे रुपया की गर्मी बनूं।
10: वीडियो बिहार के बेगूसराय का है, जिसमें ये बदमाश बेखौफ अंदाज में न सिर्फ हथियार बल्कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब और मटन के साथ पार्टी करता हुआ दिख रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 नौजवान शराब की बोतल के साथ मटन पार्टी कर रहे हैं, साथ में 2 देसी पिस्टल भी रखी हुई है। बीच बीच में बदमाश पिस्टल लहराकर गाने पर वीडियो बना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को मुंह चिढ़ाने वाले मामलों की कमी नहीं है। ताजा मामला पटना का है, जहां अवैध शराब के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया। रिया नाम की इस लड़की के हैंडबैग और शोल्डर बैग से लगभग 14,000 कीमत की शराब बरामद हुई। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो बैग में आधा दर्जन से ज्यादा ब्रांडेड और अवैध शराब की बोतलें देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए।
12: मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये यहाँ से आपका बनारस गए थे, बनारस जाकर के उन्होंने शराब खरीदी है और शराब उन्होंने बताई कि 14,000 रुपए का सामान शराब खरीदी है, वो आकर के यहाँ पर किसी दानापुर क्षेत्र में किसी को उनको देना था। इस तरह की उनकी घटना पहले भी कर चुकी है, पहले भी जाकर के वहाँ से शराब खरीदी और उसी क्षेत्र में जाकर के उनको बेची।
10: यूपी से शराब लेकर ट्रेन से पटना पहुंची थी युवती। पुलिस को इसकी खबर लगी और उन्होंने बाइक से जा रही इस छात्रा और उसके साथियों को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बिहार में शराब की तस्करी में महिलाओं के इस्तेमाल का ये दूसरा ताजा मामला है। सबसे पहले सोमवार को समस्तीपुर में नेहा नाम की लड़की को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। ये लड़की दिल्ली से फर्स्ट एसी कोच में ब्रांडेड शराब की बोतल लेकर बिहार जा रही थी, उसके साथ उसका रिश्तेदार भी था। पुलिस ने बताया कि नेहा नाम की इस लड़की का पूरा परिवार शराब की तस्करी में शामिल है, जो डॉक्टर और अमीरों को शराब की सप्लाई करते हैं। तो हफ्ते भर के अंदर पहले नेहा अब रिया, बिहार में दारू के बहार बा वाले दावे पर मुहर लगाकर खबरदार करती हैं। समस्तीपुर में ही शराब तस्करी का एक मामला मंगलवार को सामने आया। ये भीड़ शराब लूटने की है। NH-28 पर शराब से भरी कार गड्ढे में पलटने के बाद जब कार सवार फरार हो गए तब मदद को पहुंचे गांव वालों को शक हुआ। थोड़ी देर में शराब की बदबू गाड़ी से आने लगी। एक आदमी नीचे गया तो देखा कार में शराब का टेट्रा पैक भरा पड़ा है। ये खबर सुनते ही वहां लोगों का तांता लग गया। लोग शराब के टेट्रा पैक लूटने में लग गए। जिसे देखो वही भर भर कर शराब लेकर भागता हुआ नजर आया और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते कार से लोगों ने पूरी शराब लूट ली। बिहार के गोपालगंज जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में गाड़ियों की जांच के दौरान 2 गाड़ियों से 181 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए कैसे गाड़ी में सीट के नीचे शराब को छिपाकर ले जाया जा रहा था। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला तरीका सामने आया। तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए किताब कॉपी के बीच ही शराब छिपाने का इंतजाम कर लिया। नोटबुक के बंडल को इस तरह काटकर बॉक्स बनाया गया था कि ऊपर से देखने पर सिर्फ किताब कॉपी नजर आए। कॉपी किताब के अंदर छिपाकर 360 बोतल शराब लाई जा रही थी। शराब को छिपाने के लिए बाकायदा बंडल के अंदर बॉक्स बनाया गया था। नोटबुक का ये बंडल शराब तस्कर टेम्पो में रखकर ले जा रहे थे। टेम्पो रोककर जब जांच की गई तो 3 बोरे रखे गए। पहली नजर में इन बोरों में नोटबुक और कॉपी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब टीम ने किताब कॉपी के बंडलों को खोलकर जांच की तो अंदर का मंजर देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। नोटबुक के बीच का हिस्सा काटकर बॉक्स बनाया गया था और उसी में शराब की बोतलें छिपाई गई थी।
13: 18 नोटबुक है, वो नोटबुक को काट करके ताकि लोग समझे कि बुक ले जा रहे हैं, किताब कॉपी ले जा रहे हैं, तो उसको काट करके बीच में शराब को सजाया हुआ था। और 3 बोरा में टेम्पो के बीच वाले में जो खाली जगह रहता है उसमें 2 बोरा, और पीछे जो खाली सीट दोनों सीट के बीच में जो जगह रहती है उसमें 1 बोरा, उसमें नोटबुक में छिपा करके ताकि किसी को संदेह न हो कि इसमें शराब है, उसको ले जाया जा रहा था। चालक मोहम्मद सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो सरमसपुर थाना कांटी का रहने वाला है।
10: बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में शराब तस्कर शराब की तस्करी करने के लिए रोज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी कड़ी में कटिहार में शराब तस्करों ने पश्चिम बंगाल से लाखों रुपए की 396 लीटर विदेशी शराब खाली एम्बुलेंस में भर कर ला रहे थे। तो पटना से लेकर समस्तीपुर तक, गोपालगंज से लेकर मुजफ्फरपुर कटिहार तक में पिछले 10 दिनों के अंदर शराब तस्करों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई, जो बताता है कि बिहार के हर जिले में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का काम चल रहा है। लोगों तक देसी विदेशी शराब पहुंचाई जा रही है, लोग इसे खरीद रहे हैं। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी न तो सरकार तस्करी रोक पा रही है और न ही जनता को जागरूक करने में कामयाब हुई है कि वो शराब से खुद ही दूर हो जाए।
1: खबरदार करता सवाल यह है कि अगर बिहार में शराब बंदी लागू है तो फिर खुलेआम लोग कैसे शराब पी पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, ले जा पा रहे हैं? अगर शराब बंदी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है तो फिर तस्करी के नए नए तरीके कैसे लोग आजमा रहे हैं? लड़कियों तक को हमने शराब तस्करी करते हुए देखा है। शराब न मिलने की वजह से गांव में लोग जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं। बिहार के शिवपुरी का ही मामला लीजिए, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद शराब को लेकर जगह जगह विरोध शुरू हो गया। शिवपुरी के गांव में शराब की दुकान पर महिलाएं पहुंची, शराब दुकान से शराब की बोतलों को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, कई शराब की बोतलों को आग लगा दी। अब अगर शराबबंदी है तो फिर लोगों के अंदर इसे लागू करने के तरीके को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? क्यों जहरीली शराब से जाने जा रही हैं? जबकि बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया कि शराबबंदी के बाद से अब तक 11,37,731 केस दर्ज हुए हैं, 4,83,20,249 लीटर शराब जब्त की गई है। बिहार में अब तक 17 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जहरीली शराब 354 लोगों की जान ले चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी खुद मानते हैं कि जहरीली शराब बड़ी समस्या है, शराबबंदी से आर्थिक नुकसान हो रहा है। शराबबंदी के बाद बिहार में क्या नशा बंद हो गया? जवाब नाम में है, क्योंकि नौजवान बताया जा रहा है कि वैकल्पिक नशे की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। अन्य नशे की सामग्री के कारोबार में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। गांजा, ब्राउन शुगर, नशीली गोलियों का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो रहा है। NDPS के मामलों में 4 गुना इजाफा हुआ है। शराबबंदी को लागू हुए 10 साल हो गए हैं और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस नीति को देखे, इसको सही तरीके से अमल में लाने की कोशिश करे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर सड़क पर हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या 14,000 के स्टाइपेंड में एक डॉक्टर अपना पूरा महीना चला सकता है? ये दर्द समझने के लिए पीजी में रह रहे डॉक्टरों का घरेलू बजट देखिए, जिसमें 14,000 रुपए कब कैसे खत्म हो जाते हैं समझा जा सकता है। इसीलिए स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के इंटर्न डॉक्टर 3 दिन से मुख्यमंत्री आवास के पास धरने पर बैठे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाया गया, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं।
14: भोपाल की सड़कों पर ये भीड़ किसी राजनीतिक संगठन की नहीं, ये राज्य के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से आए इंटर्न डॉक्टर, हाथों में पोस्टर, जुबान पर अपनी मांग और सामने सरकार से सवाल। जब ड्यूटी 12 से 14 घंटे तक तो स्टाइपेंड सिर्फ 14,000 क्यों? 3 दिन से सड़क पर आंदोलन जारी है। पिछले 3 दिन से ये इंटर्न डॉक्टर सीएम हाउस के पास ही सड़क पर सो रहे हैं और यहीं खाना खा रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों से भोपाल पहुंचे इन इंटर्न डॉक्टर्स की कहानी लगभग एक ही है, 14,000 रुपए में बड़े बड़े शहरों में एक महीना कैसे निकाले। इंटर्न डॉक्टर्स की इसी मांग और समस्या को समझने आज तक संवाददाता रविश पाल सिंह उनके पास पहुंचे और समझने की कोशिश की। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर अंकुश पटेल मूल रूप से रीवा के रहने वाले, लेकिन पिछले 4 साल से विदिशा में रह रहे हैं। स्टाइपेंड 14,000 है, लेकिन रूम रेंट से लेकर खाना, पेट्रोल, पढ़ाई और मोबाइल रिचार्ज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ये 14,000 भी कम पड़ते हैं।
15: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटर्न डॉक्टर जो है अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के साथ बीते 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को पुलिस ने इन पर फोर्स का इस्तेमाल किया था, वाटर कैनन चलाई थी, कई इंटर्न डॉक्टर जो है उसमें घायल हुए थे, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से ये सभी इंटर्न डॉक्टर जो है वो सीएम हाउस के पास में आकर के बैठ गए हैं और इनकी मांग साफ है कि स्टाइपेंड जो फिलहाल 13,000 लगभग कुछ मिल रहा है उसे कम से कम 30,000 रुपए किया जाए,
16: स्टाइपेंड है उसको बढ़ाकर 30,000 किया जाए, ये हमारी मांग है। बट इसमें अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया है, बचता तो है ही नहीं, बचने का तो सवाल ही नहीं है, हमें घर से खुद मतलब 3 से 4 हज़ार रुपए खुद घर से मंगवाना पड़ता है, ऐसी हालत है। अब घर से शर्म आती है मंगाने, 4.5 साल हो गए हम डॉक्टर बन गए, घर वाले भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिल रहा है, 24 से 48 घंटे हमारी ड्यूटी लगाते हैं, नाइट ड्यूटी हम करते हैं 24 घंटे 8 से 8, और इसके बाद हमें कभी सुबह बुला लिया, फिर सुबह की ड्यूटी की है, थोड़ी सा 1-2 घंटे का ड्यूटी का वो ब्रेकअप मिला, खाना वाना खाए, इसके बाद शाम को भी बुला लिया जाता है, तो हमें ये सब इतनी ज़्यादा परेशानियां होती है, तो हमें इसलिए लगता है कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हमारा भी काम हो जाए, बट सरकार हमारी सुन नहीं रही है, क्या करें।
14: बालाघाट के रहने वाले मानस इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में बतौर इंटर्न डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंदौर जैसे बड़े महंगे शहर में 14,000 रुपए के स्टाइपेंड में महीना कैसे निकलता है, खुद इनकी जुबानी सुनिए।
17: हमें घर जाना है, 2,000-3,000 की टिकट हो रही है, फिर इसमें बचेगा क्या, हम खुद के लिए बचाएं क्या, हम घर भेजें क्या, तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है हमारे लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि महीने के आखिर में हमें घर पे कॉल करके मांगना पड़ता है कि पापा पैसे नहीं है अब महीना चलाने के लिए, आप प्लीज पैसे भेजें, तो ये हालत है हमारी।
15: पिछली बार भी आप लोगों ने जब प्रदर्शन किया था तब क्या इंटर्न की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग जो थी उस पर अमल नहीं हो पाया था कि एक बार फिर से आप लोगों को प्रदर्शन के लिए आना पड़ा?
18: हमने सारे ऑफिशियल लीगल चैनल्स के थ्रू हमने बात की थी और हमें बोला गया था कि 1 महीने का आप वेट कीजिए, 1 महीना 10 दिन हो चुका है, हम पेशेंटली यही पूछने जा रहे थे कि क्या स्टेटस है अभी हमारी रिक्वेस्ट का, बट हमें रोक दिया गया, हमें हमारे कैंपस के अंदर ही रोक दिया गया।
14: सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर खुशी बता रही हैं कि 14,000 रुपए में खुद का गुजर बसर हो नहीं सकता, लिहाजा हर महीने माँ बाप से रुपए मांगने पड़ते हैं।
19: खाने के लगा लो तो 5-6 हज़ार लगते ही है, तो हमें हमेशा स्टाइपेंड के बाद भी हमें 10 से 15 हज़ार ऊपर से हमें मंगवाना पड़ता है, और हमारी स्टाइपेंड भी ऐसा नहीं है कि हमें मंथली 1 महीने के बाद मिल जाती, उसका भी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी फिर से जाना पड़ता है, हमें फिर से बात करनी पड़ती, तब जाके हमें एक अमाउंट में आता है, तो हम हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम हमारा ही खर्चा नहीं निकाल पा रहे इन सब चीज़ों में।
20: आज की तारीख में तो कोई सफिशियंट नहीं है, आज कुछ खाने भी जाओ बाहर तो 150 रुपए का खर्चा हो ही जाता है, अब 14,000 रुपए में पूरा महीना कैसे चलेगा आप ही बताओ, 14,000 में तो नहीं हो पाएगा।
14: अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में जरा इस 14,000 का हिसाब समझिए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल में सीमित संख्या में कमरे होते हैं, इसकी वजह से कई इंटर्न डॉक्टर को हॉस्टल नहीं मिलता और पीजी में रहना पड़ता है, 5 से 7 हज़ार रुपए तक सिर्फ किराए में निकल जाते हैं, खाने पर करीब 4 से 5 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, बिजली बिल पर करीब 1,000 रुपए तक का खर्च महीने का होता है, लोकल ट्रेवल पर करीब 1,000 रुपए तक खर्च होते हैं, मोबाइल और इंटरनेट करीब 500 रुपए, कई बार अचानक कोई खर्चा भी आ जाता है, इस तरह बेहद सामान्य जीवन में भी 12 से 13 हज़ार कम से कम खर्च तो हो ही जाता है, ऐसे में बचत का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डॉक्टर की जिंदगी इतनी सामान्य नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ खाने किराए का नहीं है, ये मेडिकल इंटर्न ड्यूटी कभी 12 घंटे की तो कभी 24 घंटे तक की, इमरजेंसी में अचानक अस्पताल से बाहर जाना पड़ा तो ऑटो या कैब, लंबी ड्यूटी में खाना बाहर से लाना पड़ा तो अलग खर्च, यानी जिस उम्र में एक युवा डॉक्टर अपने करियर की नींव मजबूत कर रहा है उसी वक्त उसे हर महीने खर्च और स्टाइपेंड के बीच जूझना पड़ रहा है। और इन्हीं परेशानियों को लेकर इंटर्न डॉक्टर सड़क पर। इस मामले में इंटर्न डॉक्टरों के दल ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी मुलाकात की, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही इनकी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा और सरकार इनकी समस्याओं का न्यायोचित हल निकालेगी।
3: सकारात्मक बातचीत हुई है और बातचीत अभी जारी है और मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोग टच में हैं और इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। जब बातचीत अंतिम रूप लेगी तब फिर आपको ब्रीफ करेंगे।
14: एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, दूसरी तरफ वही स्वास्थ्य व्यवस्था जिन डॉक्टरों के भरोसे अस्पतालों में चल रही है वो आज सड़क पर है। सवाल सिर्फ 14,000 बनाम ज्यादा स्टाइपेंड का नहीं, सवाल ये है कि 12 से 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर की मेहनत की कीमत आखिर कितनी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: और बड़ी खबर आ रही है, भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का धरना खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ इंटर्न डॉक्टर्स की बैठक के बाद 50% स्टाइपेंड बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। अब डॉक्टरों को 14,300 की जगह 21,500 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी, इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जीके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
13: जीके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जीके मैक्स पेंट्स। जीके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी तबाके खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: लेके जन्म पहला पहला कदम।
9: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
2: ओए, जहाँ कैसे खड़ी की?
3: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है।
2: और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
3: क्या?
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: बाकी यार कहीं भी लगा ले।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
4: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
3: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ इस्लामिक नेटो बनाने की शेखी बघारने वाला पाकिस्तान अब पक्का मक्का समझौता तोड़ सकता है। मुस्लिम भाईचारे की आड़ में पाकिस्तान का डबल गेम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों को मक्का समझौते की धमकी दी है। लेकिन जरा इस उलझी हुई खिचड़ी को समझिए। सऊदी मुस्लिम देश, पाकिस्तान मुस्लिम देश, हूती मुस्लिम संगठन, हूती का आका ईरान मुस्लिम देश, यानी जिस इस्लामिक नेटो का ढिंढोरा पीटा जाता था वो आज अपनों का ही दुश्मन बना हुआ है। और पाकिस्तान का हाल तो देखिए, दावा है कि वो बलूचिस्तान में अपने 50 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा चुका है, घर संभाला नहीं जा रहा, चला है दूसरों की लड़ाई लड़ने। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या बीजेपी भी एम फैक्टर पर आ चुकी है। यहां एम का मतलब मुस्लिम नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर है। साल 2013 मुजफ्फरनगर में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अब 2027 के चुनाव से पहले ऐसे पोस्टर्स दिखने लगे जिन पर लिखा था मुजफ्फरनगर के इस दंगे को भूल तो नहीं गए। पहले ये पोस्टर बेनामी थे, लेकिन अब इन दंगों को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी पर एक साथ हमला बोलना शुरू कर दिया है। अगली खबर, शारदीय नवरात्र से ठीक पहले गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और नितेश राणे ने लव जिहाद के खतरे का हवाला देते हुए आयोजनों में एंट्री से पहले आधार कार्ड चेकिंग और अब हनुमान चालीसा के पाठ की मांग कर दी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे असंवैधानिक फतवा बताया है। इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा में मुस्लिम समाज के प्रवेश का समर्थन कर बहस को गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज पर सियासी फसाद जारी है। अब बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाने तेज कर दिए हैं। नए नए वीडियोस बनाकर इस स्लैंग के सहारे विपक्ष

0: तंज कसे जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल की नगरी अब सिंहस्थ कुंभ की भव्य तैयारियों में जुटी है, लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर आई, मामला आया। निर्माण कार्यों के चलते रास्ते में आ रहे बहुत जो हनुमान मंदिर है उसको हटाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कई दिन की लगातार मशक्कत और भारी मशीन्स के इस्तेमाल के बाद भी प्रशासन मंदिर का एक हिस्सा तो हटा पाया, लेकिन जो मुख्य मूर्ति है हनुमान जी की उसे नहीं हटा पाया है, और जो लोकल लोग हैं उनकी पूजा तेज हो गई है, वो इसको एक चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खाकी के रौब की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वीडियो में एक दारोगा ने धरने पर बैठे छात्रों को हड़का दिया। गुस्साए दारोगा जी का आपा इस कदर खो गया कि उन्होंने छात्रों को सीधी धमकी दे डाली और कहा, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा।
1: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा।
0: जब हमारे देश में तमाम स्कूल्स के बच्चों ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किए, तब चाइना ने एक स्कूल के बच्चों के लिए पहाड़ों पर एक लिफ्ट लगा दी है। एक स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को 3 घंटे की खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती थी। अब इस मुश्किल को खत्म करने के लिए पहाड़ों पर सीधी 288 मीटर ऊंची लिफ्ट लगा दी गई है, जिससे 3 घंटे का सफर घटकर महज 30 मिनट का रह गया है।

हमने कल कहा था कि हमारे देश में किसी को सिविक सेंस सिखाना जानलेवा है और आज हम ये बात फिर से कह रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि ऐसे दिल्ली में कुछ लोग जो कानून तोड़कर सड़क पर शराब पी रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, उन्हें रोकने पर मणिपुर के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब कानपुर में खुले में यूरिनेट करने का विरोध करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। दबंगों ने मामूली कहा सुनी के बाद इस व्यापारी की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। अगली खबर बिहार से, जहां शराबबंदी के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बिहार में बहार बा और शराब बा। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्स्ट एसी कोच से एक मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह लड़की हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में थी और बहुत शातिराना अंदाज में शराब की तस्करी करती।

कानपुर में अपने ससुर की हत्या की सुपारी देने वाली जो बहू थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने इतना दुख दिखाया कि लोग हैरान रह गए जब पुलिस ने ये खोज निकाला कि इस हत्या के पीछे बहू ही थी। अब इस बहू का डांस देखिए। ये महिला मर्डर प्लान करके पार्टी के लिए निकली, हत्यारों को फोन पर गाइड करती रही, ऐसा पुलिस का दावा है। और पहले जो रोने का ड्रामा कर रही थी, अब आप उनका डांस देखिए।

लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं तब पाकिस्तान और तुर्की मक्का समझौते को लागू क्यों नहीं कर पा रहे, और क्या है ये मक्का समझौता, और ये मुस्लिम नेटो मुस्लिम देशों की आपसी लड़ाई में कैसे फंस गया है। ये वही समझौता है जिसमें पिछले महीने 7 अगस्त को सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये तय हुआ था कि वो कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को मानेंगे। अब आप तीनों को देख रहे हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है, जिसके तहत अगर इन देशों में से किसी एक देश पर हमला हो तो ये तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। नेटो देशों का भी यही मूल सिद्धांत है कि किसी एक नेटो देश पर हमला हुआ तो ये बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा, यानी वो सब देश उसकी तरफ से लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ। अब इसी सिद्धांत के कारण पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे इस्लामिक नेटो का मॉडल बताया। ये तक कहा कि धीरे धीरे और मुस्लिम देश इसका हिस्सा बनेंगे, भविष्य में दुनिया का कोई भी देश मुस्लिम देशों पर हमला नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान ने डींगे तो बड़ी बड़ी हांक ली, और इस मक्का समझौते की आड़ में सऊदी अरब से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। लेकिन अब जब सऊदी अरब पर यमन के हूती लड़ाके हमला कर रहे हैं और सऊदी अरब लगातार इन हमलों को झेल रहा है, तब यही पाकिस्तान और तुर्की उसकी मदद तक करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हुती लड़ाकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हमले नहीं रोके तो मक्का समझौता सक्रिय हो जाएगा। लेकिन जानते हैं हकीकत में पाकिस्तान की यह चेतावनी एक बहुत बड़े ढोंग का हिस्सा है। ढोंग इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि पाकिस्तान अपने बनाए इस्लामिक नेटो में खुद फंस गया है, और इसीलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि क्यों मक्का पैक्ट पक्का पाकिस्तान ही तोड़ने वाला है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको यह समझ आएगा कि ये इस्लामिक नेटो अभी मुस्लिम देशों की आपसी लड़ाई में फंसा हुआ है। जैसे यमन का हुती संगठन है और सऊदी अरब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब हुती को आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाता है, कई जगहों पर इसराइल से लेकर कई जगहों पर वो अटैक कर चुका है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सऊदी अरब के साथ कट्टर दुश्मनी, और सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान हुती से लड़ने में उसकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ऐसी है कि हुती को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, मतलब हुती का आका ईरान, और हुती पर हमला ईरान के खिलाफ माना जाएगा और पाकिस्तान ऐसा रिस्क मोल ले नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने हुती के खिलाफ अपनी सेना उतारी तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं उतारी तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। इसी तरह तुर्की इसराइल से अपनी दुश्मनी के कारण हिजबुल्ला का समर्थन करता है, और क्योंकि हिजबुल्ला भी हुती की तरह ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए तुर्की ने सऊदी अरब में अपनी सेना उतारी तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं उतारी तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। और ये चक्रव्यूह यही खत्म नहीं होता। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान दोनों का दोस्त है, लेकिन यही दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। ईरान यमन में हुती को समर्थन देता है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब की मजबूरी के कारण हुती का विरोध करता है। सऊदी अरब यमन में ही हुती के खिलाफ लड़ रही सरकार का समर्थन करता है और उसे हथियार देता है, लेकिन पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि ईरान इसके खिलाफ है। यानी इन मुस्लिम देशों के आपसी रिश्ते एक गुत्थी की तरह उलझ गए हैं। वही पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब के साथ समझौता तो अच्छा कर लिया, इस्लामिक नेटो बना लिया, लेकिन ये इस्लामिक नेटो ही इस्लामिक नेटो को बनने नहीं देती, और वो इसलिए क्योंकि अगर सऊदी अरब की मदद करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। और मक्का समझौते के बाद भी हुती कैसे सऊदी अरब पर हमले करता है, उसके लिए आप इन तस्वीरों को खुद देख सकते हैं।

अब पाकिस्तान ने मन ही मन भारत की मोर्चेबंदी के खिलाफ नेटो जैसा संगठन बनाने की योजना बनाई। शायद ये सोचा कि कल को अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये मुस्लिम देश उसके साथ आकर खड़े होंगे, लेकिन हकीकत में यही मुस्लिम देश आपसी लड़ाई में उलझे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि ये मक्का समझौता उसकी जान के लिए आफत बन गया है। वैसे इस्लामिक नेटो को लेकर पाकिस्तान के हाथ हर बार यही होता है। विभाजन के सिर्फ 8 साल बाद 1955 में पाकिस्तान ने तुर्की, इराक, ईरान इनके साथ बगदाद समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के पीछे से ब्रिटेन ने, अमेरिका ने समर्थन दिया था और यह समझौता भी यही कहता था कि इनमें से किसी भी देश पर हुआ हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम देशों की लड़ाई में इस संगठन को पश्चिमी देशों का पिट्ठू बताकर खारिज कर दिया गया और पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साल 2015 में पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर एक बार फिर से ऐसा संगठन बनाया जिसे सुन्नी नेटो कहा गया, लेकिन यह भी कागजों पर ही सीमित रहा और इस संगठन में शामिल देशों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस बार भी मक्का समझौते को करने वाले पाकिस्तान के लिए यह कहा जा रहा है कि वो इसे पक्का तोड़ेगा। यहां यह भी देखिए कि पाकिस्तान किस मुंह से सऊदी अरब की मदद करेगा। पाकिस्तान का हाल तो ऐसा है कि बलूचिस्तान में उसके सैनिक खुद पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, वहीं की तस्वीरें हैं देखिए। और बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच हुए हमलों में पाकिस्तान के 52 जवान मारे गए। सोचिए, पाकिस्तान की सेना जब बलोच विद्रोहियों से गुरेला युद्ध नहीं लड़ पा रही तो वो इसी युद्ध में माहिर हूती के लड़ाकों को क्या बिगाड़ लेगी। बहुत माहिर लड़ाके माने जाते हैं हूती के, देखिए।

0: Aman aja na.
1: Boleh jalan kali, jalan kali.
2: खैर, इस्लामिक नेटो का ख्वाब पूरा क्यों नहीं होता, उसे आप ईरान युद्ध से भी समझ सकते हैं। इस हफ्ते ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जिसके बाद जवाबी हमलों में अमेरिका ने भी ईरान के 5 क्रूड ऑयल टैंकर्स को तबाह किया। अब क्योंकि इन हमलों से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, इसीलिए ईरान ने वही नीति अपनाई जो 28 फरवरी के हमले के बाद अपनाई गई थी। उसने अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने तेल टैंकर्स की तबाही का बदला लेने के लिए मुस्लिम देश जॉर्डन पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने 18 मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जबकि 2 मिसाइलें खाली इलाकों में गिरी और अमेरिका के ही मुताबिक उसके किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन बात नुकसान की नहीं है, बात है उन मुस्लिम देशों की जिन पर हमले अब भी रुके नहीं है। और सोचिए, पाकिस्तान इन्हीं मुस्लिम देशों को साथ लाकर सिर्फ भारत की घेराबंदी करने के लिए इस्लामिक नेटो तो बना लेता है, लेकिन वो नेटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एक देश पर हमला हुए जा रहा है, सऊदी अरब पर, लेकिन ना तुर्की अपना हाथ हिला पा रहा है और ना ही पाकिस्तान।

हॉर्मुज में जहाजों पर हुए इन भीषण हमलों के कारण ब्रेंट क्रूड में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से $100 को पार कर गई हैं। और यहां यह मत सोचिएगा कि इससे अमेरिका परेशान हो रहा होगा। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अमेरिका को लेकर आई एक नई रिपोर्ट यह कहती है कि वो तो इस युद्ध में रिकॉर्ड तेल और गैस का व्यापार कर रहा है और इन देशों में भारत भी शामिल है। मार्च से अगस्त महीने के बीच भारत का अमेरिका से गैस निर्यात 281% बढ़ा है और यहां हम एलपीजी यानी रसोई गैस की बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत

0: अपनी कुल रसोई गैस का 53% हिस्सा अकेले अमेरिका से खरीद रहा है, जबकि 2025 में यही आंकड़ा सिर्फ 7.9% था। यहाँ ये भी देखिए कि भारत ने रशिया और अमेरिका के बीच एक संतुलन बनाकर रखा। हम तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से अपनी जरूरत का 45% जो है कच्चा तेल वो खरीद रहे हैं, और इसी दौरान हम अमेरिका से भी अपनी जरूरत का जो 53% एलपीजी है वो गैस खरीद रहे हैं। खैर, भारत ने तो अमेरिका और रशिया के बीच संतुलन बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच अब कौन सी नई लड़ाई शुरू हो गई है वो भी देखिए, और ये समझिए कि अब युद्ध कैसे अंतरिक्ष तक पहुंचने लगा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह चिंता जताई है कि रशिया एक ऐसा परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष में विस्फोट करके हजारों सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने खासतौर पर रशिया के उस सैटेलाइट को लेकर शक जताया है जिसका नाम है कॉस्मोस 2553। यहां यह भी समझिए कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट हथियार काम कैसे करता है और क्यों यह खतरनाक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का मतलब पृथ्वी पर शहरों का नष्ट होना है, लेकिन यहां खतरा अलग है। यहां विस्फोट का मतलब है अंतरिक्ष में ऐसा रेडिएशन पैदा करना जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दे, अंतरिक्ष में खराब हो जाए, और अगर कभी भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इससे दुनिया में भूचाल आ जाएगा। इसे GPS, इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल फोन, ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय लेन देन, एक वैश्विक सिस्टम जिस समझिए ये सब ठप पड़ जाएगा। और अभी अमेरिका यही आरोप लगा रहा है कि रशिया अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए ऐसा हथियार बना सकता है। अमेरिका को इसकी चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में इस वक्त कुल 16,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें अकेले अमेरिका के 8,000 सैटेलाइट्स हैं, और यही वजह है कि पेंटागन ने इसे एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक मुद्दा बना लिया है। हालांकि यहां रशिया इन आरोपों को पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद बता रहा है। रशिया ने साफ कहा है कि वो अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने के पक्ष में नहीं है और वो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी का सम्मान करता है। खैर, अब तक आपने ये देखा कि कैसे मुस्लिम देशों के बीच टकराव है, कैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध विस्तार ले रहा है, और कैसे अमेरिका और रशिया के बीच भी एक तनाव है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब आप एक ऐसी खबर देखिए जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और यह बता रही है कि साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चाइना अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए इतना बेताब है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में डिफेंस डायलॉग नाम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, और इस सम्मेलन में फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी गिल्बर्टो सी टियोडोरो साउथ चाइना सी में चाइना के दावों पर चर्चा करने के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच एक पेपर नोट यानी कागज पर लिखे संदेश ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पूरा सीक्वेंस समझिए, सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के दौरान जब ये पेपर नोट फिलीपींस का के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनकी टेबल पर ये देखिए पीछे से लाकर रख दिया गया, तब उसी वक्त ये फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके बगल में रखा। अच्छा, वो उसको देखते हैं, वो उसको पढ़ने भी लगते हैं। उसी वक्त उन्होंने ये कहा कि ये शायद चाइना की तरफ से आया होगा, उठाते ही उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने पढ़ा और कहा चाइना की तरफ से आया होगा और वो इसे पढ़कर सुनाने की इजाजत चाहते हैं। जब उन्होंने इस नोट को पढ़ा तो उसमें यह लिखा था कि चाइना दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को सही मानता है और वो 2016 में आए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। ये फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पेपर चाइना का है और फिर उसको पढ़कर सुनाते हैं। ये वही फैसला है जिसमें फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ ये शिकायत की थी कि वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद संसाधनों को अपना बताते हुए साउथ चाइना सी पर अधिकार जताता है। तो यहां पर यह लड़ाई है, और उस वक्त इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। चाइना ये मुकदमा हार गया। लेकिन गजब की बात तो यह है कि जब फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी आज दक्षिण कोरिया के एक सम्मेलन में इस पर बात करने वाले थे, उसी दौरान चाइना की तरफ से उन्हें ये नोट लिखकर भेजा गया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। हम सुनाएंगे आपको। उन्होंने भी इसे सबके सामने पढ़कर सुना दिया और यह भी कहा कि साउथ चाइना सी पर अपने दावे को सही साबित करने के लिए चाइना कितना डेस्परेट है, कुछ भी कर सकता है। सुनिए।
1: अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में दुर्भाग्य से ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास यहाँ एक नोट

है। मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से है। आपको इसमें शामिल होना चाहिए। क्या मैं इसे पढ़ूं? साउथ चाइना सी पर चीन का रुख साफ एक जैसा और मजबूत है। उनका कोई रुख नहीं है। आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो जिस पर आपने साइन किया है, क्या आपका मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है? आपका यही मतलब

0: आपका यही मतलब है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही है? ये पेपर मुझे तब भेजा जाए जब मुझसे फ्लोर पर सवाल पूछा जा रहा हो, और आप इस तरह के व्यवहार को कैसे देखेंगे? ये न सिर्फ एक अनादर दिखाता है, अगर ये चीन का रुख है तो ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर करता है और शायद चीन को बुनियादी शिष्टाचार और व्यवहार अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Now, thank you very much. I will keep this paper.
0: मैं इस पेपर को एक यादगार चीज के तौर पर रखूंगा, ये याद रखने के लिए कि चीन कितना बेताब है और लोगों के सामने उसका रुख कितना बेअसर है।
1: Position is in the face of a free audience. Thank you very much for
0: जिस व्यक्ति ने मुझे ये पेपर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके लिए किसी जेल में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी।
2: पहले सबको ये लग रहा था कि चाइना ने जानबूझकर फिलीपींस के रक्षा सचिव के भाषण को बीच में रोककर इस नोट को पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा, लेकिन बाद में जब इसे लाने वाले अधिकारी से बात की गई तो एक दिलचस्प किस्सा बाहर आया। असल में सियोल में चाइना की जो एम्बेसी है वहां से इस पेपर नोट को इस सम्मेलन के एक स्टाफ मेंबर तक पहुंचाया गया। उसे यह कहा गया कि वो उसे फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी को दे दे कि भाई ये चाइना का दावा है। दावा है कि इस अधिकारी ने यह समझ लिया कि यह कागज फिलीपींस के ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनयिकों ने दी है और इसी भूल के कारण वो भाषण के बीच ये नोट लेकर आ गया और फिलीपींस के रक्षा सचिव ने इसे सबके सामने पढ़ दिया। हालांकि ये तो वो कहानी है जो सम्मेलन के आयोजक बता रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पेपर नोट इस भाषण से पहले ही आ चुका था और क्योंकि फिलीपींस के रक्षा सचिव ने तय किया होगा कि वो इसे भाषण के दौरान मंच पर ही पढ़ेंगे, इसीलिए ये पेपर नोट उन्हें भाषण के बीच में लाकर दिया गया और फिर उन्होंने पढ़ा। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से इस हिस्से को देखिए।
1: इन इंटरनेशनल लॉ अनफॉर्चुनेटली
0: अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में दुर्भाग्य से ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास यहाँ एक नोट है। मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से है, आपको इसमें शामिल होना चाहिए। क्या मैं इसे पढ़ूं? साउथ चाइना सी पर चीन का रुख साफ एक जैसा और मजबूत है, उसका कोई रुख नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही है? ये पेपर मुझे तब भेजा जाए जब मुझसे फ्लोर पर सवाल पूछा जा रहा हो, शायद चीन को बुनियादी शिष्टाचार और व्यवहार अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पेपर को एक यादगार चीज के तौर पर रखूंगा, ये याद रखने के लिए कि चीन कितना बेताब है और लोगों के सामने उसका रुख कितना बेअसर है। जिस व्यक्ति ने मुझे ये पेपर दिया उसका
2: खैर, चाइना के पेपर नोट के बाद चाइना के हथियार भी देख लीजिए। बांग्लादेश की सेना इन दिनों चट्टगांव में एक युद्धाभ्यास कर रही है और इसी युद्धाभ्यास में आज एक चाइनीज टैंक यानी चाइनीज तोप में विस्फोट हो गया और इसमें बांग्लादेश के दो सैनिक मारे गए। एक सैनिक की तो इस वक्त हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। चाइनीज माल पर भरोसा करना जिंदगी ले सकता है। देखिए

खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में सिंगापुर के क्लीन वेज मॉडल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में 64% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। मुझे पता है जितने लोग अप्रेजल का अपने अपनी कंपनी में वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, ये खबर उनके सीने पर छुरी से कम नहीं लगेगी। लेकिन खबर बड़ी दिलचस्प है, इसलिए हमने सोचा आज आपको बताई जाए। 64% की वृद्धि हुई है सिंगापुर के पीएम की सैलरी में। अब उनका वेतन, सालाना वेतन जो है वो बढ़कर हो गया है लगभग 27 करोड़ रुपए, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, जो नंबर अब हम दिखा रहे हैं आपको, तो दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रपति, चांसलर या प्रधानमंत्री की सालाना आय जो है वो 10 करोड़ से

ज्यादा हो, सारे देख लीजिए। 27 करोड़ है, जैसे हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की सालाना तनख्वाह 5,40,00,000 रुपए है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की सालाना सैलरी 4,70,00,000 रुपए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सालाना तनख्वाह 3,80,00,000 रुपए, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सालाना वेतन 22,00,000 रुपए। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा तनख्वाह देने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर है। इसके अलावा दुनिया के जो सबसे अमीर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उनमें राष्ट्रपति पुतिन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके पास 19,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास 68,500 करोड़ रुपए की संपत्ति और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास 14,200 करोड़ रुपए की संपत्ति और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। और इस मामले में सारे जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये आंकड़े एक तरफ हैं और सिंगापुर का इस जो सैलरी मॉडल है वो दूसरी तरफ है। वो इसे क्लीन वेज भी कहते हैं, क्लीन वेज यानी साफ सुथरी तनख्वाह। ये नीति कहती है कि अगर देश के नेताओं से राष्ट्र सेवा करानी है तो उन्हें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक वेतन दिया जाए। सिंगापुर ने यह मॉडल अपनाया है कई चीजों में और कई तरीके में, और सिंगापुर में आज पर कैपिटा आय जो है वो सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। इसी के साथ साथ एक विकसित देश के रूप में उसने अपने एक अलग पैठ बनाई है। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की जब वो बात करते हैं तो उसका अलग मायने है। उसी कड़ी में इस क्लीन वेज पॉलिसी को देखा जाता है। उनका कहना है कि इतना पैसा इसलिए दिया जाए ताकि नेताओं के मन में भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का लालच ना रहे, युवाओं में संदेश जाए कि राजनीति भी उनके लिए एक अच्छा करियर हो सकती है। ये पता चलना चाहिए कि भाई जो प्राइवेट नौकरी है उससे ज्यादा पैसा आपको यहां पर मिल सकता है सरकारी नौकरी में, जब आप लोगों की सेवा करें। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सिंगापुर के इस क्लीन वेज मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। और बाकी देशों में भी यही कहा जाता है कि अगर राजनीति में अच्छी सैलरी मिले तो ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग भी इसे अपना करियर बना सकते हैं। सिस्टम सरकार में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ सकती है जो समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और उनके मन में ये लालच ना आए कि जो पैसा जनता के लिए है वो पैसा उनकी जेब में जाए, उनके मन में ये लालच ना आए कि इधर से उधर से चोर रास्ते खोज खोज कर वो अपनी जेब कैसे गर्म करें। देखिए

0: सिंगापुर के पीएम की तो सैलरी बढ़कर हो गई है 27 करोड़ रुपए। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया एम फैक्टर क्या होगा, क्या है ये एम फैक्टर। कल यानी 8 सितंबर को मुजफ्फरनगर दंगों की 13वीं बरसी थी और इस मौके पर पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायकों 20 से ज्यादा मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। सोचिए सारी की सारी मंत्रियों की फौज उतर गई। ये कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ना तो मुजफ्फरनगर दंगों को भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल या उससे पिछले साल जब मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी थी तब योगी सरकार के इन्हीं मंत्रियों और विधायकों ने कोई पोस्ट नहीं लिखा था और सरकार भी इस पर सक्रिय नहीं थी। और यही कारण है कि आज जब योगी सरकार 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नए एम फैक्टर पर चुनाव लड़ेगी और वो नया एम फैक्टर है मुजफ्फरनगर दंगों का फैक्टर। और कारण यही है कि ये दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। क्यों हुए थे उसकी कहानी भी सुन लीजिए। आरोप लगता है कि 27 अगस्त को दो हिंदू लड़कों ने छेड़छाड़ की घटना के विरोध में एक मुस्लिम लड़की की हत्या कर दी थी जिसका नाम शाहनवाज था। ये आरोप हिंदू पक्ष आज भी लगाता है लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस ने यह कहा था कि शाहनवाज की हत्या बाइक को टक्कर मारने पर की गई थी। SIT की रिपोर्ट में भी यही लिखा है। इस हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने इन दोनों हिंदू लड़कों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इन हत्याओं के विरोध में जब 7 सितंबर 2013 को महापंचायत हुई तब इसके अगले दिन यानी 8 सितंबर से दंगे भड़क गए। इन दंगों में 65 लोगों की मौत हो गई थी। कई घरों कई दुकानों को आग लगा दी गई थी। विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि इन्हीं दंगों के कारण एक जो धर्म के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ और बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी ध्रुवीकरण हुआ। इससे बीजेपी को फायदा हुआ और उसने उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों पर इतनी चर्चा क्यों चाहती है, या फिर आज जो कि पिछली बार चुनाव से पहले देखिए अगर आप तो पिछली बार जब पिछले साल भी बरसी आई थी तब तो इन्होंने पोस्ट नहीं किया था, लेकिन आज इतने सारे लोग सारे मंत्री सारे नेता क्यों लिख रहे हैं, तो वो आपको हम दिखा देते हैं। सबसे दिलचस्प है कि आप ये देखिए पश्चिमी यूपी, हम वेस्टर्न यूपी की सीटों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितनी सीटें, ये लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है और इसमें 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखिए 2009 जब कांग्रेस जीती थी यूपीए की सरकार बनी थी तो इसमें कितनी सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी की आई थी 5 सीट, ठीक है, और सपा की आई थी समाजवादी पार्टी की 7 सीट, वो ऊपर थे, ठीक। लेकिन दंगे हुए 2013 में, 2013 में दंगे होने के बाद 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में मुझे पता, आप लोगों को बता दें जरा, उस वक्त जब कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे और वो फिर प्रधानमंत्री देश के बने, तो उसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है वो गृहमंत्री अमित शाह को बनाया गया था और प्रचंड जीत मिली थी उनके नेतृत्व में। और 2014 में अगर आप देखिए तो 24 सीटें 73 सीटें पूरे यूपी में 71+2 तो कुल मिलाकर 73 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी बीजेपी की। और उसी कड़ी में अगर आप देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप सोचिए ना, 27 में से 24 सीट तो बीजेपी ले गई। ये देखिए ग्राफ कैसे 5 सीट से पहुंच गया 24 पर और सपा जो है वो 7 से 3 पर आ, ठीक है। तो ये इसको माना जाता है कि ये जो दंगे की वजह से कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, नाराजगी हुई, उसकी वजह से मुस्लिम वोट एक तरफ चले गए तो काउंटर कंसोलिडेशन में सारे हिंदू वोट्स मिले, 24 सीटें यहां पर बीजेपी जीत गई। फिर आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब उसका असर कम होने लगा, फिर 19 सीट आई और फिर 4 सीट आई, समाजवादी पार्टी को बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, एक ही सीट का हुआ। अब यहां से देखिए 19 से अगले 2024 के चुनाव में जब आप पहुंचते हैं तो 13 सीट और 10 सीट, यानी अब ये बराबरी का मामला हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हाथ होता है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये 13 और 10 का हो जाना एक तरह से इस बात की गवाही दे रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस नीचे आ रही थी। और फिर 2024 में आपने देखा ही 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई, 33 सीटें सिर्फ बीजेपी को आई पूरे उत्तर प्रदेश में। अब इसको हटा के हम आपको विधानसभा की सीटें दिखा देते हैं। विधानसभा की सीटें भी उतनी ही दिलचस्प है। ये देखिए, दंगा 2013 में हुआ, ठीक है, तो इसको हम बॉर्डर लाइन, इसको हम रेफरेंस पॉइंट एक मान लेते हैं। इससे पहले बीजेपी की 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कितनी सीटें थी? 20 सीटें। और समाजवादी पार्टी की कितनी थी? 58 सीटें। किसकी सरकार बनी? अखिलेश यादव की, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब ये 2013 का दंगा हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को 73 सीटें आई, 73, उसके बाद से विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुआ तो किसकी सरकार आई? बीजेपी की। कहां पर पहुंच गई थी बीजेपी? 109 सीट पर। तो 109 सीट पर बीजेपी इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि इसका असर, जो एक्सपर्ट्स है वो यही मानते हैं कि एक पोलराइजेशन हुआ, एक ध्रुवीकरण हुआ, और यहां से 2013 से दंगे के बाद वो 109 पर, और समाजवादी देखिए कैसे सीटें नीचे आती हैं, 21 सीटों पर वो पहुंच गए, विधानसभा में 21 सीटें, कुल मिलाकर 136 सीटें हैं यहां पर पश्चिमी उत्तर, विधानसभा की बात कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन फिर धीरे धीरे जब 2013 का टाइम बीतता गया, 2022 के चुनाव हुए, हालांकि बीजेपी फिर से जीती, योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पर फिर से पुनः चुनाव जीते, यहां पर उनका चेहरा नहीं था लेकिन यहां पर उन्हीं का चेहरा था, वो फिर से सीएम बने, फिर बीजेपी जीती, लेकिन 109 से लगभग 16 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो चुका था और 35 सीटें पर पहुंच गई थी 21 से, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग वही 14 सीटों के करीब का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था। तो ये चैलेंज है जो फिलहाल इनके सामने है, और इसीलिए इस चैलेंज में सबसे दिलचस्प बात यही है कि अगर बीजेपी को फिर से जीतना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करना होगा या उससे बेहतर करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, इस पर सुनिए।
1: हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पूरा प्रदेश झुलसता था, बड़े बड़े दंगे हुए, बरेली में, मथुरा कोसी कला में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, व्यापक पैमाने पे प्लान होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, स्कूल कॉलेजेस बंद होते थे, कर्फ्यू रहेगा तो मार्केट बंद रहेगा ही, मार्केट बंद रहेगा तो व्यापार बंद होगा ही, कोई घर से नहीं निकल पाता था, और जब ऐसी स्थिति होगी तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पूरा प्रदेश झुलसता था, बड़े बड़े दंगे हुए, बरेली में, मथुरा कोसी कला में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, व्यापक पैमाने पे प्लान होता था।
0: हिंदू श्रद्धा से जुड़ी एक और खबर उज्जैन से आई है। आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में खड़े हनुमान मंदिर के बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे। इनमें दावा किया गया है कि प्रशासन इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिशें कर रहा है लेकिन खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को एक इंच भी हिला नहीं पा रहा। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के तहत सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। उज्जैन शहर बड़ा सर्राफा मार्ग पर भी यही काम चल रहा था और इसके तहत वहां सड़क पर बने काफी पुराने खड़े हनुमान मंदिर को भी हटाया जाना था। पिछले कई दिनों से प्रशासन इस मंदिर को हटाने की कोशिश कर रहा था। लोगों का अब यह दावा है कि प्रशासन की हर कोशिश नाकाम हो रही है। स्थानीय प्रशासन मंदिर के एक हिस्से को गिराने में तो कामयाब रहा लेकिन वो हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको हिला तक नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, दरअसल प्रशासन की प्रतिमा को हटाने की सारी कोशिशें दावे के अनुसार नाकाम हो गई। स्थानीय लोग इसे हनुमान जी की शक्ति कह रहे हैं, स्थानीय लोग इसको बड़ा चमत्कार मान रहे हैं लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा जमीन में कितनी गहराई तक है ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से वो प्रतिमा को हिला तक नहीं पा रहे। अधिकारियों का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रतिमा को हटाए जाने के दौरान उसको कोई नुकसान पहुंचे प्रतिमा को, और इसी वजह से हर बार प्रतिमा को हटाने का काम शुरू करने के कुछ देर बाद उसे रोक दिया जाता है क्योंकि प्रतिमा को नुकसान पहुंच सकता है और इससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो सकती है। लेकिन स्थानीय लोग प्रतिमा को ना हटा पाने को हनुमान जी की शक्ति से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हनुमान जी खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई उनको वहां से हिला नहीं सकता। खड़े हनुमान मंदिर में सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। जब लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा के आगे प्रशासन को हारते हुए देखा तो ये आस्था कई गुना बढ़ गई। अब पहले से ज्यादा हनुमान भक्त इस मंदिर के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं और दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अब तो लोग मांग करने लगे हैं कि इस प्रतिमा को यहां से हटाया ही ना जाए।

0: आरती के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस शहर और इस देश की जनता यही आपसे चाहती है कि बाबा अन्यत्र स्थापित न हो, क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार ने कल ही छापा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है।
1: मैं यहाँ लगभग 40 वर्षों से आता हूँ और हनुमान जी पे मेरी नहीं लगभग सभी की आस्था है।
2: उज्जैन में खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की चुनौती के बीच मुंबई से फिल्म हनुमान अंश को लेकर एक अलग तरह की खबर आई। लोगों की मांग के बावजूद हनुमान अंश के शोज नहीं चलाए जाने पर एक थिएटर बंद हो गया। मुंबई में बांद्रा इलाके में एक मशहूर थिएटर है, नाम है गेटी गैलेक्सी। इस थिएटर में बाबा नीब करौली के करौली की कथाओं पर फिल्म बनी है। उस जो हनुमान अंश वो नहीं दिखाई जा रही थी, इसके बदले में वहां फिल्म मिर्जापुर के शो चलाए जा रहे थे और बहुत सारे लोग थिएटर में हनुमान अंश दिखाए जाने की मांग कर रहे थे, खासतौर पर वो लोग जो बाबा नीम करौली बाबा की बहुत पूजा करते हैं। हालात ये हो गए कि बड़ी संख्या में लोगों ने थिएटर के आगे प्रदर्शन किया, हनुमान अंश के भी शो चलाने की अपील की। 1972 में शुरू हुए गेटी गैलेक्सी थिएटर के मालिकों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिल्म मिर्जापुर के शो कम करके फिल्म हनुमान अंश को जगह नहीं दी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने थिएटर में लगे पोस्टर्स फाड़े, जिसकी शिकायत थिएटर मालिकों ने पुलिस से की। मुंबई पुलिस ने जब इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की तो ये जांच थिएटर गेटी गैलेक्सी के मालिकों पर भारी पड़ गई। पुलिस को जांच में पता चला कि थिएटर के अंदर कई तकनीकी खराबियां थी। इसके अलावा थिएटर मालिकों के बाद उसे चलाने का लाइसेंस कई वर्षों से रिन्यू नहीं कराया गया था। बस इस लापरवाही का पता चला, पुलिस ने थिएटर मालिकों के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज किया, थिएटर बंद कर दिया गया। 11 अक्टूबर यानी करीब एक महीने बाद शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी उत्सव के तौर पर गरबा और डांडिया के आयोजन होंगे। लेकिन गरबा और डांडिया में कौन आ सकता है कौन नहीं, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। हमेशा की तरह विवाद यही है कि हिंदू धर्म के इस त्योहार में मुस्लिम धर्म के युवकों को आने की बात आ गई है। विश्व हिंदू परिषद में महाराष्ट्र के नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन करने वालों से अपील कर दी है कि इस बार गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा। पिछले कुछ वर्षों में गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए, जैसे आधार कार्ड की चेकिंग कराई, मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ तक कराया, कहा माथे पर टीका लगाना जरूरी है। आयोजकों का मानना है कि ऐसा करने से गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं की पहचान हो सकेगी, उन्हें रोका जा सकेगा। इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की अपील की गई। आधार कार्ड की चेकिंग के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाए जाने की बात सामने आई। विश्व हिंदू परिषद की इस अपील से महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल मचा है। एक पक्ष वीएचपी की अपील का समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष से रूढ़िवादी बांटने वाली सोच बता रहा है और विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में मंत्री नितेश राणे ने वीएचपी की हां में हां मिलाई है। नितेश राणे ने कहा है कि नवरात्र में होने वाले गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं और जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। नितेश राणे ने भी ये भी सुझाव दिया कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए। बीजेपी सरकार के मंत्री की ओर से आए इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो वीएचपी और नितेश राणे के बयान को असंवैधानिक फतवा बता दिया है। इन लोगों का कहना है कि गरबा जैसे आयोजन धार्मिक सद्भाव बढ़ाते हैं और इस तरह के प्रतिबंध से सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचता है।
3: घर वापसी करे, टीका लगाए, हनुमान चालीसा मने, देवी माँ का आरती बोले, मूर्ति की जाके पूजा करे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, कुरान में, इस्लाम में मूर्ति पूजा का महत्व ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर गरबा या हमारे हिंदू फेस्टिवल्स में आना ही है, हिंदू बन जाओ, वापिस अपने हिंदू धर्म में आ जाओ और अपने फेस्टिवल्स मनाओ, कोई किसी को हरकत नहीं है।
2: पिछले कई वर्षों से हिंदू परिवार संगठन आरोप लगाते हैं कि हर साल मुस्लिम युवक लव जिहाद के एजेंडे के साथ पहुंचते हैं। नकली पहचान बताने को लेकर कई लोग विरोध करते हैं कि बताते नहीं अपनी असली पहचान गरबे और डांडिया के कार्यक्रम में आने से पहले। इसलिए उनका कहना है कि जो गैर हिंदू हैं, खासतौर से मुस्लिम युवकों के प्रवेश को रोकने की बात की जाती है। अब इस बहस में कौन कूद पड़ा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, उन्होंने अलग विचार दिए। उनका कहना है कि गरबा में मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। अमृता फडणवीस चंद्रपुर के एक मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति गरबा देखने या उसका आनंद लेने आता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गरबाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत।
2: अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। एक समय था जब चाइना की सीमा से लगे पूर्वोत्तर के दुर्गम पहाड़ों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तोपों और दूसरे हथियारों को ले जाना एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने इस सबसे बड़ी अड़चन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भारतीय सेना की ब्रह्मास्त्र कोर ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लाइट होविट्ज़र तोपों को सीधे हवा के रास्ते बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात करने का सफल अभ्यास किया है। इसे रैपिड एयर डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है, यानी अब भारत को सीमा तक हथियार पहुंचाने के लिए सड़कों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भारतीय सेना की उस अचूक रणनीति का गतिशील सबूत है जो किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन को पलक झपकते करारा जवाब देने में सक्षम रहती है।

बिल्कुल अंजना, एक वक्त था जब सीमा के दुर्गम और पथरीले रास्तों पर सेना को काफी मुश्किलें होती थीं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और बीहड़ घाटियों में तोपों को पहुंचाना एक तरह से नामुमकिन सी चुनौती थी। लेकिन आज भारत की ताकत का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। आसमान का सीना चीरता चिनुक हेलीकॉप्टर और उसके नीचे हवा में तैरती अल्ट्रालाइट होविट्जर तोप, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, दुश्मनों के होश उड़ाने वाली रैपिड एयर डिप्लॉयमेंट की वो धमक है जिसने युद्ध का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत काम करने वाली ब्रह्मास्त्र कोर ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ सोच में था। चिनुक हेलीकॉप्टर के जरिए अल्ट्रा लाइट होविट्जर रेजिमेंट की अंडरस्लंग ट्रेनिंग की गई, यानी घातक तोप को हेलीकॉप्टर के नीचे बांधकर सीधे युद्ध के मैदान में उतारने की क्षमता। पहले जहां तोपों को सीमा तक पहुंचाने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, अब ये काम चंद मिनटों में होगा। न सड़कों पर निर्भरता, न दुर्गम रास्तों की परवाह चीन और पाकिस्तान से लगती दुर्गम सीमाओं पर, जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां भारतीय वायुसेना और सेना मिलकर सेकंडों में ही भारी फायर पावर तैनात कर देगी। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: एक तो एक
4: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: वडोदरा के शो में पीएम मोदी की कुछ इस अंदाज में धमाकेदार एंट्री हुई। पीएम मोदी जब मंच पर आए तो नेपथ्य में धुरंधर का गाना बज रहा था। दर्शकों में नौजवान और नेपथ्य में धमाकेदार गानों की धुन। मोदी के एंट्री के साथ गानों पर झूम रहे थे वो नौजवान, पीएम मोदी जिनसे संवाद करने यहां आए थे। इस शो की प्लानिंग बड़े ही करीने से की गई थी। पहली बार पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई गई। बुक माई शो से मुफ्त डिजिटल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई। एक घंटे के अंदर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी सीटें बुक हो गई। पीएम मोदी का ऐसा क्रेज कि 42,000 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखना पड़ा। और जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो माहौल कुछ अलग ही किस्म का था।
1: 2014 के बाद आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी, इस धरती ने मुझे जो सिखाया था, आपके पास से जो लेसन लेके मैं दिल्ली पहुंचा था, हमने वहां पहुंचते ही इसको गति देने का काम प्रारंभ कर दिया। 2,800 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम आज पूरा करके दिखाया।
0: पीएम मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रमाल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो 326 किलोमीटर लंबा है और 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी 329 किलोमीटर लंबी और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा था नौजवानों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल गुजरात में चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में अगले साल यानी 2027 में दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन पीएम मोदी अभी से एक्टिव हैं और शायद यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, आज तक।

0: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, ये अहम और वहम दोनों का नशा उतार देता है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टिकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, बोले पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल होगी या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े निर्णय, 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मोहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 रुपए मिलेगी तनख्वाह, आज तक में लगातार दिखाई थी डॉक्टर्स की खबर। बांग्लादेश के चटगांव में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास हादसे के दौरान कैमरे में कैद, खौफनाक घटना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में कैसे दिल्ली के सत्य निकेतन में मौत के पीजी के बाद एमसीडी ने पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ मचा दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि सत्य निकेतन हादसे के बाद जिस तरह से एमसीडी के 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया, जिनमें से 3 ये हैं, क्या ये निलंबन का खेल है या फिर इन तीनों पर और इनके 2 साथियों पर कोई सख्त एक्शन या कार्रवाई होगी। लेकिन पहले आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे जो एमसीडी के अधिकारी 6 सितंबर तक ये अधिकारी अपनी जेबें गर्म करके एसी दफ्तरों में सरकारी कुर्सियां तोड़ रहे थे, अचानक से उन्हें अपनी ड्यूटी याद आई तो वो जर्जर इमारतों में चल रहे पीजी और अवैध इमारतों पर टूट

0: पड़े, यानी कि इनके साथी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस एक्शन के दौरान एमसीडी अफसरों पर मुठ्ठियां गर्म करने के भी खूब आरोप लग रहे हैं। आइए दिखाएं आपको।
1: अगर ऐसा हथौड़ा दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर से पहले चल गया होता तो हॉस्टल डेज की इबारत के बल्बे तले दबकर 5 छात्रों समेत 7 लोगों की जान नहीं गई होती। अगर ऐसी ड्रिलिंग मशीन दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर से पहले चल गई होती तो मध्य प्रदेश में देवास का 19 साल का अर्पित आज जिंदा होता। जिस तरह से सत्य निकेतन में एमसीडी और दिल्ली पुलिस का जमावड़ा आज दिख रहा है, अगर जर्जर होते पीजी पर ऐसा एक्शन पहले लिया गया होता तो छत्तीसगढ़ का 20 साल का युवराज सोनी, यूपी के वाराणसी का 20 साल का अभिषेक कुमार, यूपी के औरैया का 17 साल का पवन और 18 साल का अक्षत सिंह यादव मलबे की मौत ना मारे गए होते। लेकिन जब भ्रष्टाचार ने 7 लोगों की बलि ले ली तब दिल्ली सरकार की भी आंखें खुल रही हैं और एमसीडी के जूनियर इंजीनियर से लेकर कमिश्नर तक अपनी ड्यूटी की नुमाइश करने सत्य निकेतन से लेकर पूरी दिल्ली में हथौड़े, ड्रिलिंग मशीन और बुलडोजर लेकर निकल पड़े हैं। भले ही अब भ्रष्टाचार के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही हो लेकिन एमसीडी में छोटे से लेकर बड़े अफसर कैसे अवैध निर्माण के लिए घूस लेते हैं इसका कच्चा चिट्ठा भी खुल रहा है।
2: एमसीडी हमसे ये कहती है कि 10 लाख दे दो हम तुम्हारा मकान नहीं तोड़ने आएंगे। जी हमने एमसीडी को भी खिला लिया 10-20 लाख और पुलिस को भी खिला लिया।
3: लक्ष्मी नगर में एक पूरा गैंग चलता है और इसमें सारे एमसीडी के अफसर सब कुछ मिले हुए होते हैं।
4: यहाँ पे जो दरार आई उसकी वजह से आपके घर में डैमेज हुआ तब कोई नहीं आया।
5: आप घर बनाने लग गए तब लोग
4: आ गए, एमसीडी वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, कॉर्पोरेशन वाले भी आ गए। मैंने एक लेंटर पे 10,000, दूसरे लेंटर पे 20,000, तीसरे लेंटर पे 30,000।
1: सत्य निकेतन में हॉस्टल डेज का तो अब मलबा भी नहीं बचा है लेकिन अब उसके बगल में खड़ी कनक लता पीजी की ये इमारत खाली करा ली गई है और मौत की इस पीजी पर एमसीडी का हथौड़ा बरसना शुरू हो गया है।
6: रविवार को सत्य निकेतन में जहां पीजी हादसे में 7 बच्चों की जान गई, उसके ठीक साथ वाले बिल्डिंग में जहां कनकलता पीजी चलता था अब एमसीडी के हथौड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और वो दो खिड़कियां जो आप यहां से देख पा रहे हैं इन्हीं खिड़कियों से दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कनेक्शन था और जब बिल्डिंग गिरी 7 वाली तो स्वतः इस बिल्डिंग की भी दीवारें एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बुरे हालात में आ गई जिसकी वजह से अब ये अनसेफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया है।
1: पहले तो कनकलता पीजी की इमारत को गार्डर पर रोका गया और अब चरणों में इस इमारत को जमींदोज किया जाएगा।
7: पहले तो इस बिल्डिंग को सपोर्ट दिया गया ताकि थोड़ी मजबूती आ जाए। आप देखिए आगे पीछे अगर आप देखेंगे तो लोहे के आपको गार्टर और पिलर लगाए गए हैं ताकि इस बिल्डिंग को थोड़ा सपोर्ट दिया जा सके। अगर आप बीच में देखेंगे तो बिल्डिंग के बीच में भी जहां पर दीवार टूटी हुई है वहां पर अंदर आपको लोहे के गार्टर नजर आएंगे ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल सके और ये बिल्डिंग कुछ दिन कम से कम खड़ी रह सके ताकि इसे फेज वाइज तोड़ा जा सके, इसे धीरे धीरे तोड़ा जा सके। दरअसल जो अब जांच हुई तो पता चला कि महज 2 फ्लोर या 3 फ्लोर का तो बेस था जो इससे ज्यादा का वजन नहीं उठा सकता था लेकिन लालच इतना और भ्रष्टाचार इतनी कि यह इमारत 5 मंजिला बन गई। ऊपर आप देखिए इसके ऊपर भी नहीं मन भरा तो 3 शेड लगा दिया और वहां भी बच्चों को रख करके वहां से भी मनमाना किराया यहां पे वसूला जाने लगा।
1: जिस इमारत का बेस 2 या 3 फ्लोर का है उसमें 5 तले कैसे तान दिए जाते हैं? सवाल ये है कि हॉस्टल डेज के गिरने से पहले मौत के इन पीजी पर एमसीडी के अधिकारियों और बीट अफसरों की निगाहें क्यों नहीं पड़ी या फिर अपनी अपनी जेबें गर्म करके जिम्मेदार उल्टे पांव लौट जाते थे? जब 7 लोगों की जान चली गई तो एक्शन के नाम पर जिम्मेदारी निभाई जा रही है। सवाल ये भी है कि ये खाना पूर्ति कितने दिन की है, सिर्फ तब तक जब तक की बात आई गई नहीं हो जाती। अब पिछले 2 दिनों में निगम की एनफोर्समेंट टीमों ने सभी 12 जोन में निरीक्षण और कार्रवाई की है। एमसीडी के अनुसार पिछले 2 दिनों में लगभग 1100 पीजी प्रॉपर्टीज का सर्वे किया गया है जिनमें दिल्ली भर में लगभग 20,250 छात्र रहते हैं। निगम ने उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी तोड़फोड़, सीलिंग और अन्य एनफोर्समेंट कार्रवाई शुरू कर दी है जो नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। पिछले दो दिनों में एमसीडी ने

0: 24 प्रॉपर्टीज पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जबकि 27 प्रॉपर्टीज को तोड़ने का आदेश दिया गया है। कुल 7 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है, जबकि 35 प्रॉपर्टी मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा सीलिंग कार्रवाई से संबंधित 6 कारण बताओ नोटिस भी निगम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। एमसीडी कमिश्नर ने 5वीं मंजिल के निर्माण के संबंध में भी खास निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में 5वीं मंजिल बनी पाई जाती है जो अभी बन रही है, तो निर्देशों के अनुसार उस गैर कानूनी 5वीं मंजिल को तुरंत तोड़ दिया जाएगा।
1: सवाल यह है कि क्या वाकई इस बार एमसीडी की नींद टूटी है, या फिर जिस तेजी से दिल्ली में इमारतों पर हथौड़े पटकने शुरू किए हैं उसके बाद करप्शन भ्रष्टाचार का रेट भी बढ़ जाएगा। सवाल यह भी है कि एमसीडी के इन 5 अफसरों को जिन्हें सस्पेंड किया गया, क्या इस तोड़फोड़ से इन 5ों के, 3 ये हैं 2 और इनके साथी हैं, उनके दाग धुल जाएंगे।
0: एमसीडी की फुर्ती और मुस्तैदी देखिए। सरकारी अफसर ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिए बदनाम नहीं होते। ये है मुखर्जी नगर इलाके में एक जर्जर इमारत। 2023 में एमसीडी ने नोटिस चिपकाया और 3 साल बाद याद आया है कि ये बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है, क्यों ना इसे तोड़ा जाए। वो भी तब जब आज तक की टीम ने 2 दिन पहले दिखाया कि कैसे ये इमारत एक तरफ झुक रही है और कभी भी गिर सकती है।
2: ठीक 2 दिन पहले आज तक ने इसी जगह से रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कैसे मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए हैं। ये वो जगह है जो पिछले 4 साल से खतरे का निशान बनी हुई है मुखर्जी नगर के अंदर, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्यनिकेतन में जब घटना हुई उसके बाद हमने कई इलाकों की रियलिटी चेक की, और जब हम मुखर्जी नगर 2 दिन पहले पहुंचे तब हमने दिखाया कि कैसे ये बिल्डिंग भी बिल्कुल टिल्ट हो चुकी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त ये बिल्डिंग नीचे आ सकती है, और आज तक की रिपोर्ट के बाद अब एमसीडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं।
0: एमसीडी के अफसरों और दिल्ली पुलिस के बीच अफसरों की असलियत इस कॉलोनी में रहने वाले लोग खोलते हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि जब बिल्डिंग में दरार आई तो कोई झांकने तक नहीं आया, और जब एक शख्स ने हादसे से बचने के लिए दरार आए मकान को फिर से बनाना शुरू किया तो हर लेंटर के हिसाब से एमसीडी और पुलिस वाले उगाही करने के लिए आने लगे।
2: घर भी मैंने सुना था कि यहाँ पे भी
3: ये 2000 डैमेज हो गया था, गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने अपने पैसे से ये गिराया बनाया सब कुछ है, और एमसीडी वाला तुरंत आगे 1 मिनट से पहले जब बनाने लगा तब उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई भी डैमेज हुआ, किसी ने भी कोई शेयर नहीं किया।
2: आप ये कह रहे हैं कि जब आपके घर में इस यहाँ पे जो दरार आई उसकी वजह से आपके घर में डैमेज हुआ तब कोई नहीं आया?
3: कोई नहीं आया।
2: जब आप घर बनाने लग गए तब लोग
3: तब सब लोग आ गए, एमसीडी वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, कॉर्पोरेशन वाले भी आ गए। मैंने एक लेंटर पे 10,000, दूसरे लेंटर पे 20,000, तीसरे लेंटर पे 30,000, तब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
0: बड़ी बात तो ये है कि अगर सत्यनिकेतन हादसा ना होता तो शायद इस बिल्डिंग के गिरने का इंतजार एमसीडी करती ही रहती। अब दिल्ली के पांडव नगर में भी एमसीडी ने इमारतों के 5वें फ्लोर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन मकान की मालिक आरोप लगा रही हैं कि अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ से उगाही वाला पूरा गैंग चलता है और एमसीडी वाले तोड़फोड़ रोकने के एवज में मोटा पैसा वसूलते हैं।
4: बताया जा रहा है कि आपका नक्शा पास नहीं था, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे आए हैं, आपका क्या कहना है?
5: जी नक्शे किसके पास होते हैं ये बताओ पहले, जो ये पूरे गांव में पहली बात तो भैया सारे को कैमरा कर दो, आप सब सारे गांव के दिखाओ मकान। और जी पहले उन्होंने ये कहा कि तुड़वा दो, तो एमसीडी से हमारे पास नोटिस आया, एमसीडी खुद तोड़ गई, फिर हमने खुद भी तुड़वा दिया, और अब वो बार बार पैसे खिलाता है और वो एमसीडी हमसे ये कहती है कि 10 लाख दे दो हम तुम्हारा मकान नहीं तोड़ने आएंगे। जी हमने एमसीडी को भी खिला लिया 10-20 लाख और पुलिस को भी खिला लिया।
0: लक्ष्मी नगर में भी एक इमारत पर एमसीडी का हथौड़ा चलना शुरू हुआ तो इमारत का मालिक एमसीडी पर आरोप पढ़ने लगता है।
6: लक्ष्मी नगर में एक पूरा गैंग चलता है, या तो नेक्सस है इनका पूरा, जो कोई अपना बिल्डिंग अपना पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी भाई का सोचिए कि ये मेरा घर है और मैंने 80 लाख रुपए लोन लेके बनवा रहा हूँ, जो रेनोवेशन करवा रहा हूँ मैं, 80 लाख रुपए का लोन ले रहेगा, 1 लाख रुपए मेरी महीने की किस्त जाती है। अब ये इस तरीके से ब्लैकमेलर को हम पैसे खिलाते रहेंगे, और इसमें सारे एमसीडी के अवसर सब कुछ मिले हुए होते हैं, सब कुछ मिले हुए हैं इसके अंदर, ये सारे यहाँ पे या तो एमसीडी के अफसरों को पैसा खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो इस तरीके से कंप्लेन करके आपका घर तोड़ने आ जाते हैं। आज मेरे पास अभी कोई आज का नोटिस नहीं आया कि आज घर तोड़ने आ रहे हैं।
7: सत्यनिकेतन के हादसे के बाद आज पूरी दिल्ली भर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद जो है वो हथौड़े जो है वो अवैध निर्माणों पर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लक्ष्मीनगर की है जहां पर 5 मंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई। अवैध रूप से ये पूरी इमारत थी और नक्शा भी पास नहीं था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर डेमोलेशन करने के लिए जो है वो पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि आज एमसीडी की टीम सत्य निकेतन हादसे के बाद बेशक हथौड़ा चलाने के लिए पहुंची हो, लेकिन सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा था तब एमसीडी की टीमें कहाँ थी?
0: सत्य निकेतन के बाद एमसीडी जैसे फुल फॉर्म में आ गई है। जिस एमसीडी को जर्जर होता हॉस्टल डेज नहीं दिखा, अब उसे आगे निकला हुआ छज्जा भी दिख रहा है। और ये देखिए कैसे बुलडोजर गरज रहा है।
2: मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में है और यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो छज्जा निकला हुआ था वहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस छज्जे को गिराया जा रहा है।
0: तो दिल्ली के नेहरू विहार में 5वें फ्लोर पर चलने वाली लाइब्रेरी भी सील कर दी गई है।
8: सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अधिकारियों को आदेश दिया गया कि जहां पर भी कोई गलत तरीके से चलाई जा रही लाइब्रेरी या फिर जर्जर बिल्डिंग है तो उसको सील किया जाए, डेमोलिश किया जाए। उसी के तहत नेहरू विहार इलाके में एक वर्धमान मॉल है जहां पर ये लाइब्रेरी टॉप फ्लोर पर चल रही थी, इसको यहां पर सील किया गया। सीलिंग की कार्रवाई को नगर निगम द्वारा अंजाम दिया गया है और आप देखिए जो बच्चों की किताबें थी उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया।
0: दिल्ली में इतना एक्शन हो रहा है, हैरान करने वाली बात यह है कि ये एमसीडी के उन्हीं अफसरों की निगरानी में हो रहा है जिन्हें सत्य निकेतन में मौत के पीजी नहीं दिखाई दिए। एमसीडी के अधिकारी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो हर इलाके की निगरानी नहीं रख सकते। जब 2 दिन में इतना कुछ हो सकता है तो मालवीय नगर के होटल तरिश में आग लगने के बाद भी एमसीडी के ये अफसर क्यों नहीं जागे? जबकि 3 जून को मालवीय नगर अग्निकांड हुआ था, यानी 3 महीने के बाद फिर एक हादसा हो गया, तो क्या जिस तरह से एमसीडी के 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया है वो काफी है? आज तक ब्यूरो।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही की कीमत आम जनता को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी है। सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम में सब चलता है वाली सोच आखिर कब तक चलती रहेगी? अफसरों की सीधी जवाबदेही कब तय होगी और ये जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सरकार तय नहीं करेगी? क्या सिर्फ जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड कर देना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए काफी है? क्योंकि हर बार ऐसे मामलों में कुछ समय के लिए इनके जैसे जिम्मेदार अफसरों को सजा की बजाय बहाली फिर से मिल जाती है और यही कारण है कि सरकारी महकमा जवाबदेह होने के बावजूद बेफिक्र नजर आता है, जैसे ये तीनों बेफिक्र हैं। तो क्या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक नया उदाहरण पेश करते हुए लापरवाह सिस्टम के खिलाफ लक्ष्मण रेखा खींचेगी? क्या इन जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा? क्या इन 3 के साथ इनके 2 और अफसरों को भी, यानी कि 5ों को गिरफ्तार किया जाएगा? और क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसा करवाएंगी?
0: जून 2026 मालवीय नगर के तरिश होटल में सरकारी अंधेर गर्दी की आग में 21 जिंदगियां खाक हो गईं। 6 सितंबर 2026 दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में सरकारी महकमे की कृपा से चल रहा हॉस्टल ढह गया। एक तो नहीं बल्कि 5 छात्रों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यानी 3 जून और 6 सितंबर का हादसा सरकारी महकमों की घोर लापरवाही का नतीजा है। न तो 3 जून के अग्निकांड से सरकार ने सबक लिया और न ही आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा सरकारी सिस्टम बदला। दिल्ली में त्रासदी की 2 अलग अलग तस्वीरें यही सवाल उठा रही हैं कि जिम्मेदारों की जवाबदेही कब और कौन तय करेगा? दिल्ली में खड़ी मौत की इमारतों पर सरकारी महकमों की आंखें कब तक बंद रहेंगी? हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोषियों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। दावा यही है कि अब सब चलता है वाली सोच पर सीधी चोट का वक्त है।
9: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही
0: हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वादा भी दिल्ली के भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के पुख्ता इलाज का भरोसा नहीं जगा सका, क्योंकि दिल्ली की जमीनी हकीकत जस की तस है। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति का सरकारी खेल चल रहा है? बयानों के पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों के आक्रोश को ठंडा करना है, ताकि पूरा मामला ठंडे बस्ते में पहले की तरह डाल दिया जाए। इसे यूं समझिए, नंबर एक, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। नंबर दो, अफसरों का निलंबन शुरू हो गया। नंबर तीन, अवैध इमारतों की जांच शुरू हो गई। नंबर चार, अवैध इमारतों पर हथौड़ा चलने लगा। यह सवाल नीति और नियत का है। दरअसल किसी हादसे के बाद की पहली कार्रवाई से ही जवाबदेही शुरू और खत्म नहीं हो सकती। फ्लरिश होटल अग्निकांड में ऐसे ही बालिक की गिरफ्तारी हुई। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जिम्मेदारों की जवाबदेही तय नहीं हुई। तभी तो दिल्ली में अवैध इमारतों का जाल आम लोगों की जान लेने पर उतारू है। सत्य निकेतन इलाके में अवैध हॉस्टल जमींदोज होने के बाद भी मालिक की गिरफ्तारी हुई। एमसीडी के पांच अफसरों पर गाज गिरी, लेकिन सवाल यही है कि अफसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एफआईआर में जिम्मेदार अफसरों के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो छात्रों की जान बचाई जा सकती थी। बड़ी बात यह है कि जिन पांच अफसरों पर बड़े और कड़े एक्शन का ढोल सरकार पीट रही है, उसमें से तीन अफसर वही हैं जिनके इलाके में 3 जून को भीषण अग्निकांड हुआ था। मतलब तब बड़ा एक्शन हुआ होता तो आज इन आंखों में आंसू नहीं होते। कुल 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एमसीडी के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग सुनील चौहान, जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग आशीष कुमार। 3 जून को अवैध रूप से चल रहे फ्लरिश होटल में हुए अग्निकांड के वक्त सस्पेंड किए गए 5 अफसरों में से 3 की तैनाती इसी इलाके में थी, यानी राकेश कुमार, रणवीर सिंह और आशीष कुमार। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस वक्त इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और हादसे के बाद इन्हें निलंबित किया गया है। सवाल से रही गई, लेकिन निलंबन के 8 साल बाद एक आरोपी जेई पर सिर्फ 21,000 की पेनल्टी लगी। इस सहूलियत के साथ कि जेई इसे 1700 महीने की किश्त में चुका सकता है, मतलब 71 मौतों के दोषी पर सिर्फ 21,000 का आर्थिक दंड। ना तो नौकरी गई और ना ही गिरफ्तारी हुई। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? दिल्ली नीति निर्माताओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे एक नजीर पेश करते हुए अपनी जिम्मेदारी से समझौता करने वाले अफसरों की गिरफ्तारी, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 घर। दिल्ली नीति निर्माताओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे एक नजीर पेश करते हुए अपनी जिम्मेदारी से समझौता करने वाले अफसरों की गिरफ्तारी, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 घर उजड़ गए। वहीं आरोपी अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर सेवा से बर्खास्तगी जैसी बड़ी कार्रवाई का विकल्प भी मौजूद है। अब देखना यही है कि मामला सिर्फ निलंबन और बाद में बहाली में बदल जाएगा, या फिर सत्य निकेतन जैसे हादसों के बाद अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी, ताकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे एमसीडी के बेफिक्र अफसरों का हिसाब हो सके। क्योंकि वक्त मौत पर राजनीति का नहीं बल्कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई का है।
10: आशीष सूद इस पूरे मामले के संबंधित मंत्री भी हैं, फिर तो इनके ऊपर आरोप और गहरे हो जाते हैं। 1 बजे हादसा हुआ, इनको उसकी जानकारी मिल गई। 3 बजे इन्होंने ट्वीट किया कि हाय हाय बहुत बुरा हो गया, जो इनकी नौटंकी होती है वो कर दिया। 4 बजे गोवा की फ्लाइट पकड़ गए, गोवा चले गए, 5-स्टार होटल में रुके हुए वहां पे। ये संवेदनहीनता है तो? और फिर हमने इतना शोर मचाया, ये किया वो किया, तो अगले दिन आए शाम को वापस। तो अभी तो आशीष सूद को दिल्ली वालों को और उन स्टूडेंट्स को ये बताना है कि वो गोवा भागे क्यों थे।
11: जो सौरभ भारद्वाज बेरोजगार नेता अकाउंटेबिलिटी मांग रहे घूम रहे थे इधर उधर, 10 साल से वही यहां विधायक थे, आज भी उन्हीं की पार्टी का पार्षद है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे? क्या वो बताएंगे यहां कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा था? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे यहां पर हो रहे भ्रष्टाचार और क्रैक हुई हुई बिल्डिंग में बार बार किराए पे चढ़ने में? क्या इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ओटेंगे? 10 साल वो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, उन्हें चाहिए कि अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ और उपाय खोजें और हमें अपना काम करने दें, हमें काम करना ना सिखाएं।
1: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को जमकर डांटा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो उनका खूब वायरल हुआ, जिसमें गोरखपुर DDU पे धरने पर बैठे छात्रों को दारोगा

0: हुआ जिसमें गोरखपुर डीडीयू पे धरने पर बैठे छात्रों को दारोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की धमकी दी।
1: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजीआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
2: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो।
0: दस्तक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अमेरिका और ईरान में फिर से भड़का युद्ध, कैसे पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए दस्तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: Shalom.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: चार्ज
5: हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: In association with
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

चारों ओर पानी ही पानी। गांव डूबे, घर डूबे, स्कूल डूबे, रास्ते डूबे, और अब लोगों के सामने घर छोड़ने की मजबूरी बन गई। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो बिहार पर बाढ़ का सितम लेकर आया है। ये बिहार के नवगछिया की तस्वीरें हैं, जहां मदरौनी इलाके में बाढ़ ने कहर मचाया है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं, स्कूल जलमग्न हैं और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। करीब 20 दिनों से लोग बाढ़ के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। गंगा के फान के चलते कोसी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में हैं। आवाजाही का एकमात्र सहारा अब नाव ही है। मुंगेर में भी हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी इलाकों के साथ अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। लोगों के सामने इलाज से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक का संकट खड़ा है। बेगूसराय में भी बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 5 नगर निगम वार्डों में पानी भरने के बाद बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। उधर सुपौल में कोसी नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं मनेर में नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेताओं का दौरा भी जारी है। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित के घर पहुंचे, वहीं सम्राट चौधरी ने सोनपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। अब चुनौती सिर्फ पानी से बचाने की नहीं बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नवगछिया से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। एक बार फिर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया तो ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का संदेश साफ है, अमेरिका के एक हमले के बदले 10 हमले हम करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का नया राउंड पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब युद्ध में कूदने को मजबूर है। ऐसा क्यों? हमारी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में आप देखिए।
4: ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिका का हमला। अमेरिका से ईरान का विनाशकारी बदला। ईरान ने पकड़ी अमेरिकी सेना की पनडुब्बी। अमेरिका के युद्ध पोत पर ईरान की मिसाइल। ट्रंप के चक्कर में बुरा फंस गया सऊदी अरब। सऊदी अरब पर हूती के ताबड़तोड़ हमले। क्या सऊदी के लिए युद्ध में कूदेगा पाकिस्तान? ईरान अमेरिका में बमबारी, पाकिस्तान पर भारी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध के शोले मिडिल ईस्ट को डरा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही ईरान के तेल टैंकरों को निशाना बनाया वैसे ही ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब पर ईरान समर्थक हूतियों के बारूदी हमले शुरू हो गए। सऊदी अरब पर हूती के हमले अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान के आगे कुआं है और पीछे खाई है, लिहाजा मक्का पैक का हवाला देते हुए युद्ध विराम का चैंपियन बनने निकला पाकिस्तान खुद युद्ध में कूदने की धमकी दे रहा है।
5: ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
4: दरअसल मक्का पैक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय सुरक्षा और रक्षा समझौता है जिस पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे। मक्का पैक का मुख्य सिद्धांत नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर है, जिसके मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब पर हूती के हमलों के बाद अब मक्का पैक सवालों के घेरे में है, क्योंकि समझौते का डर न तो ईरान को है और न ही ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठनों को। भले ही सऊदी अरब के सैन्य अड्डों पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तैनात हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से धमकी और चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ईरान की मिसाइलें उनके मुल्क की तरफ भी घूम सकती हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध का खलनायक बता रहा है, लेकिन ईरान पर हमला करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मौन है।
5: हमारे ताल्लुकात जो हैं तमाम मुल्कों के साथ अभी भी बरादराना हैं, और हम चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि इस खत्ते में स्टेक्स तो इस खत्ते की है ना, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी इसराइल तो चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी रहे और ये ड्रेन हो, क्योंकि उनका तो खर्चा भी कोई नहीं हो रहा है इस जंग का, पैसे भी जो है वो ओवरसीज से ही खर्च हो रहे हैं उनकी जंग पे। बल्कि मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे वो उनकी तो कमाई होगी, पैसे तो उनके एक टका नहीं लगा, और साथ बेशुमार लोग जो है, लाखों लोग जो है वो उनकी एक मैडनेस के भेंट चढ़ गए हैं फलस्तीनी, गजा के मुसलमान, लबनान के बासी, वेस्ट बैंक के फलस्तीनी, इस सारे के सारे एक शख्स की जो हवस इक्तदार की और एक मैडनेस जो ज़ायनिज्म का बिल्कुल बुनियादी एक जुज है उसकी भेंट चढ़ रहे हैं।
4: ईरान अमेरिका युद्ध ने मक्का पैक के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं लेकिन तुर्की ने युद्ध से दूरी बना रखी है, जबकि पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की ट्रंप सुन रहे हैं और न ही पाकिस्तान की बात ईरान के गले उतर रही है। उल्टा अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का दावा करते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है।
1: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe. But, well, I'll tell you what, a lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big thing. We did Venezuela and we did this. In Venezuela, we lost nobody. And this, we lost 18 people. In Vietnam, you lost 100,000 people. And in other conflicts, you lost tens of thousands of people. I would say that it's intermittent. You know, we do intermittent strikes. So I heard what he said, and it was interesting because I think that there's a lot of truth that we're not fighting right now. There's no fighting. We're taking out a lot of oil. We control the Hormuz Strait. We control it very strongly.
4: मंगलवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के 5 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, हमले का वीडियो जारी किया। इसके कुछ घंटों के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यही नहीं, अमेरिकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। सेंट कॉम के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी नौसेना के एक युद्ध पोत को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया। वहीं ईरान का दावा है कि हुर्मुज में 2 अमेरिकी जहाज और 8 तेल टैंकर को तबाह किया है। और तो और, ईरान ने अमेरिका के एक सबमरीन ड्रोन को पकड़ने का वीडियो जारी किया है। IRGC की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, फारस की खाड़ी में 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला करने वाली आतंकवादी अमेरिकी सेना की आक्रामकता और शरारती कृत्यों के जवाब में वीर IRGC नौसेना ने इलाके में 2 अमेरिकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों को निशाना बनाया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आक्रामक आतंकवादी अमेरिकी सेना द्वारा उकसाए और समर्थित 10 उल्लंघनकारी जहाजों को भी निशाना बनाया गया जो हुर्मुज के असुरक्षित क्षेत्र से गुजरने का इरादा रखते थे। ईरान का दावा है कि हुर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है। हालांकि ट्रंप बार बार यही दोहराते हुए नजर आए कि हुर्मुज पर अब ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कब्जा है।
1: We have controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control. We see everything that they're doing. They can't move. They can't go to the bathroom without us seeing it.
4: मतलब हुर्मुज आज ईरान और अमेरिका के लिए साख की लड़ाई बन चुका है। दोनों ही मुल्क अपनी सैन्य ताकत के दम पर हुर्मुज पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन ईरान ने यमन की मदद से लाल सागर में भी युद्ध का एक मोर्चा खोल रखा है, वही मोर्चा जिसने सऊदी अरब की नींव उड़ा रखी है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की धमकी के बावजूद यमन के उप विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के खिलाफ यमन की सेना के हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक यमन पर लगी नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। हमारी सशस्त्र सेनाएं नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी के समीकरण के तहत लाल सागर में स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। इस तरह के अभियानों का उद्देश्य सिर्फ रियाद को भौतिक नुकसान पहुंचाना ही नहीं है बल्कि इन सटीक हमलों का मकसद सऊदी दुश्मन को ये समझाना है कि यमन के साथ निरंतर टकराव का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और अंततः उसे यमनी लोगों के वैध अधिकारों और मांगों का जवाब देना होगा। मतलब साफ है कि ईरान का प्लान अमेरिका और उसके सहयोगियों को युद्ध में उलझाए रखना है। आज पूरा मिडल ईस्ट जंग की आग की चपेट में है, धंधा चौपट है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ये तब है जब हर नए दिन अमेरिका की तरफ से ईरान के नाम एक नई धमकी जारी की जा रही है।
6: Back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
4: अमेरिका की नई धमकी और नए हमले का जवाब ईरान दे रहा है। नए हमलों के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की संभावना बहुत कम है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब खबर ब्रिक्स सम्मेलन की। जी हां, 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहे भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है। सुरक्षा से लेकर हर मोर्चे पर हमारी तैयारी पूरी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन कवच चलाया। भारत चौथी बार ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गठजोड़ पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में ट्रंप की टेंशन साफ नजर आ रही है, क्योंकि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया G3 गुट बनाने की तैयारी में है। ट्रंप सीधे पुतिन और शी जिनपिंग से हाथ मिलाकर ग्लोबल पावर गेम बदलना चाहते हैं। तो आइए देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से भारत क्या दे रहा है संदेश और क्या हासिल करेगा।
4: नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इसमें शामिल होने की उम्मीद है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में शामिल होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान समेत कई और बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस सम्मेलन को खास बना रही है। ऐसे ब्रिक्स की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। समिट के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और VVIP मेहमानों की सुरक्षा के लिए 5-स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। इन्हीं सुरक्षा तैयारियों के तहत दिल्ली की कई लोकेशन पर NSG ने बड़ी सुरक्षा मॉक ड्रिल्स की हैं।
7: दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन है और उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से NSG के कमांडो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं। दरअसल NSG के तमाम जो कमांडो हैं वो उनकी तैनाती जो है इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिए इनको किया जा रहा है। यहां पर एक खास तरीके की ड्रिल NSG के कमांडो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्लीदरिंग के जरिए यानी कि रस्सियों के जरिए नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद जिस लोकेशन पर इनको ऑपरेशन करना होता है उसके लिए ये लोग आगे यहां से बढ़ेंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से NSG के ब्लैक कैट कमांडो जो हैं वो पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो काफी महत्वपूर्ण है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। आप यहां जो NSG के कमांडो सामने की तरफ देख रहे हैं, साफ तरीके से NSG के तमाम जो कमांडो हैं उनको यहां पर उतारा गया है।
4: ब्रिक्स में इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ऐसे में दुनिया की नजरें न सिर्फ ब्रिक्स समिट में आने वाले नेताओं पर रहेंगी बल्कि चीन और रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय बैठकों पर भी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आना तय हो चुका है। समिट से पहले ही 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी।
8: For the coming visits to our president. And in a couple of days he will start his visit to India, to New Delhi.
9: हमारे राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वो ब्रिक्स समिट से जुड़े सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। ये दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। आप जानते हैं कि भारत और रूस के नेताओं के बीच बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध है। उनके रिश्ते बहुत व्यवहारिक हैं और वो वैश्विक एजेंडे के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बहुत खुलकर और रचनात्मक तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं।
4: ब्रिक्स का ये समिट ऐसे वक्त पर हो रहा है जब एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण हो गई है, जबकि ईरान और अमेरिका की सेनाएं एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। ऐसे में भारत का किरदार बेहद अहम हो जाता है। इससे पहले SCO समिट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भारत से युद्ध रुकवाने की उम्मीद जताई थी। तो एससीओ समिट के दौरान किर्गिस्तान में पुतिन के साथ विपक्षीय मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने युद्ध रोकने की अपील की थी।
10: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
4: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 1 सितंबर को पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग यानी दुनिया की तीन महाशक्तियों का संगम हुआ था और अब नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में एक बार फिर से पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के व्लादिमीर पुतिन और ईरान के मसूद पेजेशकियान जैसे वर्ल्ड लीडर्स एक छत के नीचे जमा हो रहे हैं।
11: इस समय आ रही है गुजरात से। गांधीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है, निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा वहां पर गिर गया है और इस 10 से अधिक मजदूरों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 5 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए वहां पर मौके पर कई टीमें, पुलिस प्रशासन और दूसरी टीमें पहुंच चुकी हैं। 5 को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। ये एक इमारत बन रही थी और इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था, काफ़ी सारे मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। गांधीनगर में ये बिल्डिंग बन रही थी और फिर अचानक से ये बिल्डिंग ढह गई। ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ। ब्रजेश, क्या खबर है इस समय, कितने और लोगों के फंसे होने की आशंका है?
12: सही, देखिए ये गांधीनगर का कूड़ासन इलाका है जहाँ पे अभी हम लोग पहुंचे हैं। मेरे पीछे वो जो जगह है, जो साइट है, वहाँ पे ये काम हो रहा था। खुद ये घटना कितनी भयावह है कि डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग थी जिसका ये बीच वाला जो स्लैब है वो गिरा, उसके नीचे मजदूर काम कर रहे थे। करीब जो है 10 से 15 मजदूर होने की बात प्राथमिक तौर पे आई थी। 9:30 बजे की ये घटना है। 9:35 को फायर डिपार्टमेंट को, दमकल विभाग को कॉल मिला था, उसके बाद यहाँ पे जो है राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ये बीच का जो हिस्सा है,
11: कुछ लोग, ब्रजेश ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं या मजदूरों को बचा लिया गया, सारे मजदूर आ गए हैं, क्या जानकारी क्या है?
12: अभी जो प्राइमरी जानकारी मिली है, 5 से 7 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिंदा है, कोई मरा नहीं है, ऐसी प्राइमरी जानकारी पुलिस ने दी है। ये जो प्राइमरी जानकारी है, अभी अस्पताल लिया गया, वहाँ पे किस तरह से उनको जो है वो इलाज होगा उसके बाद सही स्थिति पता चल पाएगी, वो कितने घायल है, क्या हुआ है, और अभी कुछ लोग दबे होने की आशंका है और इसलिए अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। खुद डिप्टी सीएम भी जो है वो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
11: ब्रजेश, हम रोक रहे हैं आपको, और जानकारी ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता से लेंगे। हम पल पल पर आज तक पर इस खबर के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। 10 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है, सारे के सारे मजदूर हैं। दस्तक में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
14: Papa! यार।
15: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया है।
15: हाँ ला भाई मेरा बैट।
16: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
15: डिस्चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
17: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
1: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
6: In association with
7: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
8: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
9: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
10: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो वह भी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं। जय
9: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: दुनिया राम के प्रति अभिभूत है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
1: भगवान से नहीं करते, चढ़ावा चोरी कर लेते, चंदा चोरी कर लेते हैं।
0: सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रारंभ किया, अच्छी सड़कें बनानी प्रारंभ की, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया।
1: सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन है, ये कौन चला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग मिले हुए।
0: इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
2: अयोध्या की पावन धरती से सियासत की नई लकीर खींची जा रही है। धर्म नगरी होते हुए बीजेपी सत्ता की कुर्सी के सफर पर निकलने की तैयारी में है। ये हिंदुत्व नैरेटिव के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुँचने की कोशिश है। बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। पार्टी की रणनीति है कि आगामी चुनावों के लिए प्रचार का फोकस मथुरा, काशी और अयोध्या के दौरे पर हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम धर्मनगरी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। शुरुआत अयोध्या से हो भी चुकी है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की नगरी पहुंचे। मौका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधन का था। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। योगी सरकार यूपी में हिंदुत्व प्लस विकास प्लस विरासत की बात कर रही है, तो बीजेपी संगठन ने भी जनाधार को और बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी नेतृत्व यूपी में जमीनी पड़ताल करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो 12 से 13 सितंबर को मेरठ दौरे पर पहुंचेंगे, तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष अवध और कानपुर का दौरा करेंगे। बीएल संतोष अवध की 82 और कानपुर क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पश्चिमी यूपी में पहला दौरा है। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरण और गुर्जर राजनीति में हलचल बीजेपी के लिए अहम चैलेंज है। इसके साथ साथ बीजेपी 4C प्लान पर भी अमल में जुटी है। 4C यानी कोऑर्डिनेशन, कैडर, कास्ट और कैंडिडेचर पर फोकस कर पार्टी सत्ता पर फिर से काबिज होने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 चुनाव की तैयारी फुल मोड में कर रही है। विनोद तावड़े नए यूपी प्रभारी लखनऊ पहुंचते हैं और नया मूल मंत्र देते हैं 4C का, यानी कि कैडर, कैंडिडेचर, कास्ट और कोऑर्डिनेशन। इन सभी पर फोकस किया जाएगा। कास्ट और कैडर के साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये एक अहम रोल कार्यकर्ताओं को दिखाना होगा।
2: सवाल यह है कि बीजेपी का ये 4C फॉर्मूला आगामी चुनाव में कितना गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर हारी हुई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने पर है। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल या जहन्नुम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में करीब 10 मजदूरों के दबने की आशंका, अस्पताल पहुंचाए गए 5 घायल।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा का शनिवार को जब उनके घर में कत्ल हो रहा था, तब उस वक्त उनकी बहू शालू घर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक क्लब में डांस फ्लोर पर थी अपने पति के साथ। यानी शालू जिस वक्त अपने पति के साथ क्लब में नाच रही थी, तब उसे पता था कि उसके भेजे किराए के दोनों कातिल घर पर उसके ससुर का कत्ल कर रहे हैं। ये भी साजिश का ही एक हिस्सा था। मंगलवार को हमने इसी वारदात में कानपुर की एक अदाकारा बहू की अलग अलग अदाकारी की आपको झलकियां दिखाई थी। तब सीन की डिमांड कुछ और थी, सीन सैड था, इसलिए हाव भाव और चेहरे से सब कुछ मातमी दिखाना था। सिचुएशन ही ऐसी थी, घर में ससुर का कत्ल हुआ था तो बहू को गमजदा तो दिखाना ही था। पर इस सीन से ठीक 24 घंटे पहले सीन और सिचुएशन दोनों अलग अलग थे। ये सीन खुशी का था, नाचने गाने का था, थिरकने का था, तो बहू लगी नाचने। पर अकेले नहीं, पति के साथ। इन दोनों के अलावा 20-25 लोग और भी नाच रहे थे, लेकिन इस सीन के बाहर जो सीन चल रहा था उसकी सच्चाई जानने के बाद या तो आप कहेंगे कि ये कैसी बहू है, या फिर ये कहेंगे कि ये क्या बहू है। फिलहाल थोड़े में आपको बताता चलूं कि जिस वक्त ये बहू नाच रही है, ठीक उसी वक्त इस डांस फ्लोर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर इसके घर के अंदर इसके ससुर का कत्ल होना है। और उस होने वाले कत्ल की जानकारी इसे पहले से है, पर फिलहाल ये नाच रही है। ये कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा के फ्लैट का दरवाजा है। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी में इस वक्त रात के 9:46 हुए हैं। दो लड़के कैमरे में दाखिल होते हैं। आगे वाले का चेहरा मास्क से ढका है, पीछे वाले ने सिर पे कपड़ा रखा हुआ है। आगे वाले के हाथ में दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी है, वो लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ मशक्कत के बाद दरवाजा खुल जाता है और दोनों अब घर के अंदर। फिलहाल इस घर में कोई नहीं है, विनीत मिनोचा बस किसी भी पल आने वाले हैं, जबकि विनीत के बेटे और बहू बस कुछ देर पहले ही घर से निकले हैं इसी डांस फ्लोर तक जाने के लिए। फिलहाल घर के अंदर गए दोनों लड़कों को विनीत मिनोचा के आने का इंतजार करना है, कत्ल उसके बाद होना है। तो जब तक कत्ल हो, चलिए वापस आपको उस जगह फिर से लिए चलते हैं जहां विनीत मिनोचा के बहू और बेटे नाचने वाले हैं। ये कानपुर के पौश इलाके में मौजूद रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट है, यानी विनीत मिनोचा का घर। इस घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह कॉस्मोस इन लॉन्च है। इसी लाउंज में 5 सितंबर यानी शनिवार की रात एक पार्टी थी। ये पार्टी कपल्स के लिए थी। अमूमन सैटरडे नाइट यहाँ इसी तरह की पार्टियां हुआ करती है। विनीत मिनोचा की बहू शालू ने अपने ससुर के कत्ल के लिए खास शनिवार का दिन इसलिए चुना था ताकि वो और उसका पति पार्टी में हो, पार्टी में मौजूदगी के उनके सबूत हो और पीछे से ससुर का काम हो जाए। शालू ने दोनों सुपारी किलर विशाल और राजकिशोर को पहले से ही घर की डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी। अमूमन सैटरडे नाइट पार्टी रात 11:30 शुरू होती है। लेकिन उस रात शालू अपने पति को लेकर 10:30 बजे कॉस्मोजिन लॉन्च पहुंच चुकी थी। इधर शालू और उसका पति सुब्रत लॉन्च पहुंचते हैं, उधर विशाल और राजकिशोर उनके घर। अब पार्टी शुरू हो चुकी है, जोड़े गानों पर थिरक रहे हैं। पर्पल गाउन पहने ये शालू है और उसके साथ ये उसका पति सुब्रत। अब आप ही बताइए, शालू के इस अंदाज में थिरकते नाचते गाते देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि जिस वक्त ये नाच रही है, लगभग उसी वक्त यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसके घर पर दो कातिल उसके ससुर को बस किसी भी पल मारने वाले या शायद मार चुके। अगर थोड़ा गौर से देखें तो इस वीडियो में नाच गाने के बीच सुब्रत शालू के कान में कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर अगले ही पल दोनों नाचना शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं यह महज इत्तफाक था या किसी की फरमाइश, जो ऐन इस वक्त डीजे भी सीन से बिल्कुल मिलता जुलता गाना बजा रहा था। तुम तो धोखेबाज हो,

अब शालू और उसके पति को यहाँ नाचता हुआ छोड़ एक बार फिर से वापस इन दोनों के घर चलते हैं ताकि वहाँ के ताजा तरीन हालात की जानकारी ले सके। सीसीटीवी कैमरे में इस वक्त रात के 11:30 बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर का दरवाजा अब भी अंदर से बंद है, फिर तभी अंदर से दरवाजा खुलता है। वही दो लड़के एक एक कर अब घर से बाहर निकलते हैं। पहला लड़का बाहर निकल कर दाहिनी तरफ सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है, दूसरा बाईं तरफ की सीढ़ियों से बाहर चला जाता है। अब न दोनों के चेहरे पर कोई मास्क है न सिर पर कपड़ा। इन दोनों के घर से बाहर निकलने का मतलब जानते हैं, मतलब शालू के ससुर यानी विनीत मनोचा का अब कत्ल हो चुका है। इधर घर के अंदर विनीत मनोचा की खून से लथपथ लाश पड़ी है, उधर लाउंज में बहू के पैर अब भी थिरक रहे हैं। इस वक्त भी उसे पता है कि उसके घर में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, लेकिन सवाल किया जो जरा सा भी थिरकते हुए पांव लड़खड़ा जाए या चेहरे पर घबराहट दिख जाए। ये लगातार शनिवार की रात जुम्मा से लेकर धोखेबाज तक की धुन पर बस नाचे जा रही है।

0: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के तिलक नगर इलाके में स्थित कॉस्मोजन लाउंज में। ये वही जगह है जहां 5 सितंबर की रात को आरोपी शालू अपने पति सुब्रत और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, वो भी उसी समय जब ठीक उस वक्त अपने घर में शालू के कहने पे हत्यारे उसके ससुर विनीत मिनोचा की हत्या कर रहे थे। ये वही जगह है जहां पर उस वीडियो में आपको शालू और उसके दोस्त पार्टी करते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ना तो उसके चेहरे पे किसी तरीके की कोई शिकन और ना ही कोई तनाव नजर आ रहा है। ये वही जगह है, आप देखेंगे तिलक नगर एक पॉश इलाका है, यहाँ पे वहां पर एक ये बड़ा लाउंज है जहां पर कपल पार्टीज होती है। ठीक उसी तरीके की पार्टी उस दिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, यहीं पे डीजे गाने प्ले कर रहे थे और इसी डांस फ्लोर पे ही शालू अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी।
1: देर रात करीब 2:30-3 बजे पार्टी खत्म हो जाती है और करीब 3 बजे के आसपास शालू अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। घर का दरवाजा खुलता है, अंदर खून से लथपथ ससुर की लाश है और अब अचानक आधे घंटे पहले तक थिरकती बहू को सीन के हिसाब से फौरन दूसरे गेटअप में आना था। खुशी की थिरकन के बाद अब सैड सीन चालू हो चुका था।
0: बताइए सौरभ की अब तो आपने पूरा मामला देख ही लिया होगा जो सामने आ गया है। 5 सितंबर की रात को आरोपी शालू, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, या उनके हस्बैंड पार्टी कर रहे थे। कितने बजे आए थे पार्टी?
2: सर वो पार्टी में उन्होंने एंट्री ली थी 10:30 पे,
0: 10:30 बजे। कितने लोगों की पार्टी थी?
2: सर 30-35 लोगों की पार्टी थी।
0: 30-35 लोगों की पार्टी थी। तो यहाँ पर आने के बाद किस तरीके से आपने उनका स्वभाव, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इंटरेक्ट भी करते होंगे अपने गेस्ट से, तो किस तरीके का स्वभाव था?
2: नॉर्मल थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके चेहरे पे कोई सिकन हो। उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय की, मतलब जब वो जा भी रहे थे बहुत खुश थे। जी
0: कहीं आपको देखने में लगा कि किसी के चेहरे पे तनाव है या इस तरीके की कोई?
2: एंजॉय किया, अगर पार्टी 2:30 बजे ओवर करते हैं तो 3 बजे तक उन्होंने बढ़िया मस्त पार्टी की है। उसके बाद यहाँ से गए कुछ भी नहीं था।
0: आप 2:30 बजे कर लेते हैं उस दिन, लेकिन कितने बजे पार्टी ओवर?
2: 3 बजे।
0: 3 बजे तो क्या रिक्वेस्ट थी कि गाने चलते रहे और
2: थोड़ा सा गाने और बजा दी, जैसे लास्ट सॉन्ग करके 3 बजे गया था।
0: हमने पार्टी कितने बजे खत्म हुई है, कितने बजे यहाँ से?
2: ये लोग 3 बजे गए, 3:10, 3:15 समथिंग
0: 3 बजे के। और सबसे पहले पार्टी में कौन आया?
2: सबसे पहले पार्टी में सुब्रत जी आए थे,
0: शालू और सुब्रत, जो इस पूरे मामले में वही सबसे पहले
2: दोनों कपल 10:30 बजे एंट्री की थी उन्होंने।
0: 10:30 बजे एंट्री करे थे,
2: उसके बाद उनके जो भी गेस्ट थे उसके बाद 11 बजे समथिंग आना स्टार्ट हुआ,
0: 11:30-11 बजे बाकी लोग आना शुरू हुए थे। तो ये बताइए कि आपने उस दिन उनके हाव भाव देखे, उनसे बातचीत करी, जब अगले दिन या 2 दिन बाद आपने इस तरीके की खबरें सामने देखी और पूरा ये मामला निकलकर सामने आया, तो आपके मन में क्या?
2: सर मैं तो बहुत शॉक्ड था, मतलब इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जाने के बाद ये हो रहा है। तो दूसरे दिन तो हम बड़ा शॉक्ड थे सर कि ऐसा हो गया, मतलब सोचा ही नहीं था सर हमने ऐसा।
0: आपको बिहेवियर देख के लग रहा था कि या क्या?
2: नहीं लग रहा सर, मतलब जो एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, अच्छे से डांस कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, बिल्कुल कहीं से कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये होने वाला या हो गया होगा।
0: जिस वक्त की बात है उसी वक्त ये पूरी घटना उनके। ये बताइए कि उस दिन आप लोग जो गाने प्ले कर रहे थे, मैंने देखा कि सब डांस कर रहे थे, किस तरीके का आपको माहौल लगा, क्या आपका इंटरेक्शन था इस?
3: ऐसा कुछ लगा ही नहीं रहा था, सब नॉर्मल थे, बिल्कुल पार्टी एंजॉय कर रहे थे सब, बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं था, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, गाने पे बीट पे सब एंजॉय कर रहे थे, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा था कुछ प्रॉब्लम।
0: क्या कि कपल पार्टी थी या किस तरीके की पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज
3: पार्टी थी? सर
0: इसी तरीके की पार्टी जहाँ पे ऑर्गेनाइज
3: होती है। हाँ जी, हाँ जी, कपल ही होती है।
0: तो क्या जब 2:30 बजे पार्टी वाइंड अप करने की बात है तो क्या रिक्वेस्ट भी है उनकी तरफ से कि गाने?
3: और तो गाने की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने वो प्ले करके खत्म कर दिया था सर, फिर खाना ना खाया उन्होंने, अपना निकल गया सर।
1: खैर शालू की पूरी अदाकारी तो आपको मंगलवार को इसी शो में दिखा चुका हूँ। अब आज शालू के साथ साथ उसके पति सुब्रत के बारे में जानते हैं। क्या सुब्रत ये जानता था कि शालू उसके पिता को मारने की प्लानिंग कर रही है? क्या सुब्रत को यह मालूम था कि उसके पिता के कत्ल के लिए उसकी पत्नी शालू ने उसी विशाल को 6 लाख रुपए की सुपारी दी है जिसने 12 साल तक उसके घर में काम किया था, जो शालू से कहीं ज्यादा खुद सुब्रत के करीब था। 12 साल की नौकरी के बाद भी पिछले 3 सालों से जो विशाल सुब्रत के कहने पर ही घर के छोटे मोटे काम किया करता था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी साजिश में शालू अकेली थी या फिर सुब्रत भी उसका एक हिस्सा है? पहले रिकॉर्ड पर पुलिस की बात लेते हैं। फिलहाल कानपुर पुलिस का जो स्टैंड है वो ये कि तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सुब्रत को क्लीन चिट दे दी गई है।
0: क्या जो हस्बैंड है इस पूरे मामले में, जो विनीत मिनोचा के बेटे हैं, उनको क्या जांच के दायरे में रखा गया है? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा हत्याकांड शालू रच सकती है, तो आप लोग की जांच में फिलहाल क्या सामने आ रहा है?
4: देखिए, अभी अभी हमारी तरफ से जो जाँच चल रही है वो विवेचना अभी प्रचलित है, जो भी एविडेंसेस हैं उनके आधार पर हमारी जाँच आगे की जा रही है, जो परिस्थिति साक्ष्य हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उसको अकाउंट फॉर किया गया है, प्लस आसपास के जो लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, और जो डिजिटल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उसका अवलोकन किया जा रहा है। उसके आधार पर ही अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट अभी हमारी जाँच अभी प्रचलित है, और जो भी व्यक्ति यदि इसके अतिरिक्त भी कोई और व्यक्ति यदि इसमें पूरी साजिश में यदि शामिल होता प्रतीत होगा या ऐसा साक्ष्य मिलेंगे तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: असल में कानपुर पुलिस सुब्रत को लेकर थोड़ी कंफ्यूज भी है। वजह यह है कि विनीत मिनोचा के कत्ल के बाद जब से शालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सुब्रत का रवैया खुद पुलिस के लिए हैरान या यूं कहें शक पैदा करने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक सुब्रत ने न तो शालू के बचाव में कुछ कहा है न ही उसके विरोध में, बल्कि कई मामलों में तो उसके बयान भी बदल रहे हैं। अमूमन ऐसे केस में अगर किसी पत्नी पर पुलिस शिकंजा कसती है तो या तो पति पुलिस पर गुस्सा होता है या पत्नी पर, या फिर वो खुलकर पत्नी का विरोध या फिर समर्थन करता है। लेकिन सुब्रत शालू को लेकर बिल्कुल खामोश है। इतना ही नहीं, शुरुआती तफ्तीश के दौरान जब सीसीटीवी कैमरे में विशाल कैद हुआ और उसका चेहरा सुब्रत को दिखाया गया तो उसने विशाल को पहचानने से ही इनकार कर दिया था, जबकि वही विशाल लगभग 15 सालों से सुब्रत के लिए काम कर रहा है। हालांकि तफ्तीश के दौरान पता चला कि सुब्रत और शालू दोनों ही विशाल से न सिर्फ फोन पर बातें करते थे बल्कि मैसेज भी किया करते थे। बाद में सुब्रत ने पुलिस को कहा कि वो पिता की मौत के बाद सदमे में था, इसलिए तब विशाल को नहीं पहचान पाया।
4: पति पत्नी दोनों से जो आरोपी है विशाल, उसकी बात हुई है और लगातार ये लोग संपर्क में रहे, व्हाट्सएप कॉल्स भी हुई हैं, व्हाट्सएप चैटिंग भी हुई हैं, और नॉर्मल कॉल्स से भी लगातार ये लोग संपर्क में रहे हैं, और बाकी जो फोन्स की डिटेल एनालिसिस के लिए इसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया, एफएसएल लैब भेजा गया है, वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हो सकता है कि उसमें कुछ फाइल्स हों जो डिलीटेड हों, उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
1: इस बीच विशाल और राजकिशोर ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने ये खुलासा किया है कि शालू ने उनसे कहा था कि अगर गलती से पकड़े जाओ तो यही कहना कि कत्ल करने के लिए सुब्रत ने कहा था। क्योंकि सुब्रत तुम्हें पहले से जानता है इसलिए पुलिस भी शक नहीं करेगी।
0: सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है जो अभियुक्तों ने कस्टडी में आप लोग को दिया है वो ये है कि जब इस पूरे मामले का डिस्कशन हो रहा था तो शालू ने उनको कहा कि अगर तुम कहीं ना कहीं पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना बल्कि भैया का नाम लेना। क्या ऐसा उनके द्वारा कहा गया, और अगर हाँ तो फिर क्यों कहा गया?
4: देखिए, इनिशियली जब पूछताछ हुई, जब इनकाउंटर के बाद जब आरोपियों से पूछताछ होती है तो आरोपी द्वारा ये बताया जाता है कि ऐसा शालू द्वारा कहा गया था कि यदि पकड़े जाने पर पति का नाम लेना है, और जब उससे डिटेल में पूछताछ होती है कि ऐसा क्यों कहा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पति से वो ज़्यादा संपर्क में रहा है, पति के साथ लंबे समय उसका साथ रहा है, तो ये मोस्ट ऑब्वियस है और ज़्यादा प्लॉजिबल लगेगा सुनने में भी, और यकीन करने में भी ज़्यादा आसान रहेगा कि पति ने इस पूरे उसको घटनाक्रम। लेकिन फिर और जो एविडेंसेस मिले वो शालू के विरुद्ध मिलते हैं, फिर बाद में ये पूरी घटनाक्रम को जो जब बताया जाता है तो इसमें शालू का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें निकल करके आता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है।
1: पूछताछ के दौरान विशाल ने इस बात का भी खुलासा किया है कि विनीत मिनोचा को पहले एक्सीडेंट में मारना था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन कानपुर में भीड़भाड़ और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से रोड एक्सीडेंट में मौत दिखाना रिस्की था, इसी के बाद गला घोंट कर कत्ल करने का प्लान बना।
4: इसमें एक नया तथ्य जो प्रकाश में आया जब बातचीत के क्रम में ये बताया गया कि पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि इस पूरे इस घटनाक्रम को इस तरह से करना है कि एक्सीडेंट का रूप देना है इसको। फिर बाद में ये हुआ कि क्योंकि कानपुर जैसे शहर में भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको एक्सीडेंट ना दे करके बल्कि इसको स्मदरिंग के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जब से ये प्लानिंग चल रही थी तो अलग अलग तरीके से हत्या की साजिश चल रही थी, और फाइनली फिर इसके ऊपर बात तय हुई कि ये स्मदरिंग के माध्यम से इस पूरी हत्या को अंजाम देना है।
0: मतलब कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी, लगभग कितने दिन से पूरा ये मर्डर प्लान कर रही थी और क्या क्या क्या इन्होंने चीजें सोची? जैसे आपने बताया एक्सीडेंट का था, तो क्या किसी ट्रक से करने वाले थे या क्या डिटेल्स इन्होंने बताई?
4: ये आरोपियों से जब पूछताछ हुई तब इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 20 से 25 दिन पहले ये गुमटी नंबर 5 में के आसपास इनकी मुलाकात होती है, फिर वहीं से ये इनको ऑफर देती हैं और फिर इनिशियली थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं जो आरोपी हैं। पहले वो इनकार करता है लेकिन फिर वो, क्योंकि पैसे की आवश्यकता थी इन लोगों को भी, और जब ये पैसे का ऑफर देती हैं तो वो फिर वो मान जाते हैं और वो फिर अपने एक अन्य साथी को इसमें रोप इन करता और पूरी घटनाक्रम को अंजाम देता।
1: हालांकि विनीत मिनोचा के कत्ल के पीछे की वजह क्या थी यह अभी पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक विनीत मिनोचा एक बेहद सख्त किस्म के बिजनेसमैन थे। सुब्रत बेशक उनका इकलौता बेटा और भविष्य का वारिस था, लेकिन उनके बिजनेस में सुब्रत का रोल भी उतना ही और वैसा ही था जैसा बाकी एम्प्लॉय का। सुब्रत को उसके पिता ने कभी एहसास होने ही नहीं दिया कि वो उस कंपनी के

0: के बिजनेस में बेटा होने के बावजूद महज एक मुलाजिम के तौर पर काम करता था, जिसके बदले में उसे हर महीने करीब 50,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती थी। घर के खर्च के लिए शालू को भी एक बंधी बधाई रकम मिलती थी। जबकि शालू और सुब्रत दोनों ही बेहद सोशल थे, महंगी जगह और पार्टियों में जाना दोनों का शौक, लेकिन उस हिसाब से दोनों के पास पैसे नहीं थे। पुलिस सूत्रों की माने तो विनीत मिनोचा का बिजनेस पर पूरी तरह फाइनेंशियल कंट्रोल होने के चलते शालू ने अपने ससुर का कत्ल करवाया। पर सवाल फिर वही है, क्या सचमुच शालू ने यह अकेले किया या फिर पति के साथ मिलकर? कानपुर पुलिस बस इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। अगर सुपारी किलर अनाड़ी ना होते तो शायद शालू अपने मकसद में कामयाब हो जाती। अगर विनीत मिनोचा का तकिए से मुंह दबाकर कत्ल किया जाता तो फिर अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, रिश्तेदारों को ये बताकर कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, फिर पोस्टमार्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये कानपुर शहर है, इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और ये इसी शहर के पॉश इलाके में मौजूद एक आलीशान अपार्टमेंट रतन ऑर्बिट। इसी अपार्टमेंट में ये फ्लैट C104। इस फ्लैट में शहर के बड़े दवा कारोबारी में से एक विनीत मिनोचा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। शनिवार की रात इसी फ्लैट से एक एक कर दो लड़के बाहर निकल रहे। एक दाहिनी तरफ सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दूसरा बाईं तरफ से निकल जाता है। बेटा और बहू तब एक पार्टी में गए हुए थे। लौट कर आते हैं तो कमरे में विनीत मिनोचा की खून से लथपथ लाश मिलती है। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है, लाश अस्पताल भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जिस्म पर चाकू के 26 घाव थे। पूरे घर के साथ साथ बहू शालू भी रोते बिलखते सदमे में चली जाती है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। इंसानों की आंखों देखी या मुंह बोली बातों को सुनने के बाद अब पुलिस की निगाहें फ्लैट के बाहर और सोसाइटी की मेन गेट पर लगे CCTV कैमरों पर जा टिकती है। वो कैमरे जो न झूठ दिखाते हैं न झूठ बोलते हैं। कैमरा फौरन सच बोल देता है। उसके सच बोलते ही दोनों कातिल भी पकड़ लिए जाते हैं। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों में से एक विशाल गौतम कभी विनीत मिनोचा के यहाँ काम किया करता था। गिरफ्तारी के बाद विशाल ने जब कत्ल की कहानी सुनाई तो अचानक कातिलों की तादाद 2 से बढ़कर 3 हो गई, क्योंकि कत्ल बेशक विशाल और उसके साथी ने किया, लेकिन कत्ल करवाने वाली खुद घर की बहू शालू थी। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: अल्फा जेंजी नई पीढ़ी की बहुत बात हो रही है, उनके बीच में भी नई सोच नई विचारों के साथ और समाजवादी पार्टी के यही छात्र नौजवान जाकर के उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। जब नई पीढ़ी के लोग जुड़ेंगे और जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जहां टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तमाम नौकरियां रोजगार हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सर्विस सेक्टर में डिलीवरी बॉयज भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी पा जाएंगे, उसी दिशा में पढ़ाई और हमारे कैंपस हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज

0: में क्या व्यवस्था हो कि जहां हम नियो इंडिया बनाने में सहयोग कर सकें। हमें उम्मीद है कि छात्र सभा के लोग मिलकर के जब कैंपस में जाएंगे तो सुझाव भी मिलेंगे और सुझावों को शामिल कर करके हम लोग आने वाले समय में मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: प्रशासन है, सरकार है, मौतें छुपा रही है। 50 से ज्यादा मौतें हुई है, 33 जगह का खुद परिवारजनों से मिलकर आया। परिवारजनों की वेदना, एक साल की बेटी है, पिता मौत पे चले गए, यतीम हो गई। 30 साल की पत्नी है, दो बच्चे हैं, पति चला गया, तीनों अनाथ हो गए। एक घर है जिसमें 3 पुरुष थे, 2 पुरुष मर गए शराब पी के, सब महिलाएं बच्चे, एक भर्ती है।
3: कोई आंकड़े नहीं छिपा रही है, सबके सामने है, जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है, छिपाना क्यों छिपाना
4: है? आज कितनी
3: जो स्थिति हुई है वो सब सामने है। 13 लोगों के बारे में मैंने बताया कि 13 लोगों की डेथ हुई है जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, और 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 30 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। और कोई भी जो भी लापरवाही करी होगी, जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही करी होगी, अभी भी जांच में जो भी सामने आएंगे उनके खिलाफ
4: कड़ी कार्रवाई। 2 दिन पहले

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
2: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
3: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
2: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
3: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साई,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में करीब 10 मजदूरों के दबने की आशंका। मौके पर डिप्टी सीएम हर्ष सिंह भी मौजूद। हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द। दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार। कहा, पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले। 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मोहर। रेल मंत्री वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। और एमपी में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म हुआ। अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड। आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, गुजरात के गांधीनगर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। कुछ मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा है जिसके गिरने की खबर है। हालांकि इसके गिरने की वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया है। सबसे पहले कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। गांधीनगर की घटना है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा कंक्रीट का स्लैब नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे वो सभी यहां फंस गए थे। 5 से ज्यादा मजदूरों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जानकारी है कि 12 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है और 10 और मजदूरों के यहां फंसे होने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश दोषी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या जानकारी है, ताजा अपडेट क्या है अभी?
1: देखिए अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो प्राथमिकता है वो चेक की जा रही है, क्योंकि किसी को भी सही आंकड़ा पता नहीं कितने लोग बचे हैं। जो प्राइमरी कॉल मिला था उसमें कहा गया था दमकल विभाग को कि 10 से 15 लोग बचे होने की संभावना है। इसके बाद 10 से ज्यादा लोगों को जो आखिरी आधे घंटे पहले बात हुई थी पुलिस से, तो पुलिस ने बताया था कि 12 लोगों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया और अभी भी कुछ दबे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, आशंका है। तो संदेह के चलते जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से जो है अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है पूरी तरह से। ये वो क्रैश साइट है जहाँ पे ये मलबा गिरा था, यहाँ से जो है स्लैब गिरा और नीचे हुआ, जिसके बाद अभी यहाँ पे जो है वो ये जो स्लैब टूटा है उसका हिस्सा काटा जा रहा है और उसके बाद जो है वहां से ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी बड़ी मिलाकर जो है पूरी तरह से ये मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही पता चलता है कि सही में नीचे कोई दबा है या नहीं, और दबा है तो उसको जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। किसी को भी पता नहीं है कुल कितने लोग थे। सिर्फ जो प्राइमरी जानकारी मिली उसमें कहा गया था कि 10 से 15 लोग है, पर 10 से 15 लोगों का जो है वो अभी भी बाहर निकाला जा चुका है। तो अभी भी कुछ लोग दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद डिप्टी सीएम जो हर्षद भी है वो मौके पे पहुंच गए ताकि पता चल रहा है कि गंभीरता कितनी है, पर सिर्फ प्रशासन के राहत की बात यह है कि जितनों को भी
0: बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। 12 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में FDA ने नियमों के उल्लंघन के मामले में स्कॉन जुहू की 3 फूड यूनिट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। FDA ने कहा यह कि यहां फूड सेफ्टी और हाइजीन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्कॉन के किचन और रेस्टोरेंट में कीड़े मिलने का दावा भी किया गया है। FDA ने निर्देश जारी किया है कि बड़े कम्युनिटी फूड इवेंट्स जिसमें लंगर है, प्रसाद है, भंडारा है, इफ्तार है, शादी समारोह के लिए भी 7 दिन पहले आधिकारिक रूप से मंजूरी लेना जरूरी होगा।
2: महाराष्ट्र में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में मिलावटखोरों और खाने पीने में गंदगी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने त्योहारों के मौसम से पहले 3 सितंबर को SOP जारी किया था, जिसके तहत किसी भी आयोजन में महाप्रसाद, लंगर, इफ्तार और शादी समारोह से 7 दिन पहले FDA को बताना होगा। इसी के तहत FDA ने स्कॉन जुहू की 3 फूड यूनिट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। FDA के मुताबिक फूड सेफ्टी और हाइजीन के गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं, जिनमें कीड़ों का प्रकोप, खाने का स्टोरेज ठीक से नहीं होना, पानी की निकासी में कमी और पानी और खाने की टेस्टिंग, कर्मचारियों की मेडिकल जांच और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग में कमी शामिल है।
3: आने वाले त्योहारों से पहले महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक SOP गाइडलाइन जारी की है, जिसमें किसी भी तरह के फूड कंटेमिनेशन ना हो। त्योहारों में जो खाना बन रहा है उससे पहले लंगर या आप कह सकते हैं गुरुद्वारे जो हैं उसके अलावा प्रसाद बांटा जा रहा है, ये सभी चीज़ों के लिए 7 दिन पहले इंटीमेशन का प्रोसीजर लाया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ सेफ फूड और सेफ महाराष्ट्र जो मुहिम चल रही है तुकाराम मुंडे जो FDA कमिश्नर उनके अंतर्गत, उसमें इस्कॉन टेम्पल में 3 जो संस्थाएं फूड का आप कह सकते हैं कि काम करती हैं या रेस्टोरेंट्स चलते हैं, उन तीनों को एक तरह से लाइसेंस सस्पेंड किया गया। वो लाइसेंस सस्पेंड इसीलिए किया गया है कि जो तीन तारीख के दिन 3 सितंबर को यहाँ पर चेक किया गया था एफडीए की तरफ से जन्माष्टमी के एक दिन पहले, उसमें जो भी खामियां पाई गई है उसके हिसाब से लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया गया है। इस वक्त ऑपरेशन रुका हुआ है। कई सालों, आप कह सकते हैं कि कई सालों बाद जब से यहाँ पर टेम्पल खुला है, पहली बार ऐसा है कि जो प्रसाद बंटता है वो बंद है, और उसके साथ साथ जो कैंसर पेशेंट्स और बाकी रोगियों को खाना जाता है वो भी बंद है, क्योंकि सारे किचन जो है वो बंद कर दिए गए हैं।
2: एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर त्योहारों और कम्युनिटी में खाना बांटने के दौरान साफ सफाई और क्वालिटी पर कड़ी नजर रखेंगे।
4: प्रत्येक फेस्टिवलच्या वेळेस काय करायला पाहिजे अशा गाईडलाईन्स पण आहेत की जे जास्त हाय रिस्क फूड आयटम्स आहेत त्या हाय रिस्क फूड आयटमच्या बाबतीत विशेष काळजी घेतली जावी, विशेष मोहिमा आखल्या जाव्यात असे निर्देश फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे आहेत। महाराष्ट्रामध्ये ही ज्या ज्या वेळेस असे सण येतात, उत्सव येतात, त्यावेळेस अशा इंडिपेंडंट त्या सणापुरत्या किंवा उत्सवापुरत्या काही प्रमाणात ऑर्डर काढलेल्या आहेत।
2: एफडीए ने इस्कॉन के जिन 3 यूनिट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं उनमें हरे कृष्ण लैंड, इस्कॉन जुहू फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट और गोविंदा रेस्टोरेंट शामिल हैं। एफडीए की टीम ने यहां 3 सितंबर को जांच की थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई से पहली बार हुआ है जब इस्कॉन मंदिर में प्रसाद बांटना बंद हुआ है। कैंसर के मरीजों और स्कूली बच्चों को भी इस्कॉन की तरफ से बांटा जाने वाला खाना पूरी तरह बंद हो गया है। भले ही फूड चेन से जुड़े कारोबारियों में एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की कार्यशैली को लेकर नाराजगी हो, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एफडीए की कार्रवाई का खुले तौर पर समर्थन कर चुके हैं।
5: बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी।
2: हाल ही में एफडीए ने मुंबई में 6 कोंकण डिवीजन में 3 और पुणे डिवीजन में 11 फूड यूनिट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। तुकाराम मुंडे कह रहे हैं कि वो जनता के हित में अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे।
3: इस वक्त हम जुहू में हमारे कृष्ण टेम्पल के बाहर खड़े हुए हैं। जो 3 एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस किया गया है रद्द, उसमें हरे कृष्णा लैंड है, इस्कॉन जुहू फूड सर्विसेज है, गोविंदाज रेस्टोरेंट है। जो हरे कृष्णा लैंड है उसमें एक तरह से जो चीजें हैं वो खाने पकाने की बराबर से रखी नहीं गई थी, और पानी का जो टेस्ट करना होता है उसके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे। वहीं पर दूसरी जगह पेस्ट कंट्रोल की कमी होने की वजह से और जो कच्चा खाना और पका हुआ खाना होता है उसे अलग अलग नहीं रखने की वजह से गोविंदा रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एफडीए की तरफ से जो मुहिम है वो चल रही है, और इस बार इस मुहिम में जो इस्कॉन टेम्पल है जुहू में उसके 3 किचन के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ चुका है, क्योंकि मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 12 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि अगर तय तारीख तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन का अगला पड़ाव होगा मुंबई। दूसरी तरफ सरकार ने भी आंकड़ों के साथ सामने आकर अपना पक्ष रखा। आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है और सरकार का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए।
2: मराठा आरक्षण फडणवीस सरकार के गले की फांस बन सकती है। जालना के अंतरवाली सराटी में एक बार फिर मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। मनोज जरांगे पाटिल का आमरण अनशन जारी है। अब तो उन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
6: ठीक है, मग तुमच्याकडे भी निवार ये उदाहरण आहे हे यांनी बैठकीत ठरवलेलं की 400-500 पेक्षा जास्त लोक नसतात, ही मोठी टोळी असते, 400-500 म्हणजे लय झाले। चेंगरून टाकू पाय घाली चेंगरून, आता 12 येतोत बघा झालं। चला 12 आज प्रश्न सोडवले तर मुंबईला नाही जाणार ना मी, पहिल्यापासून होतो 12 नाही सोडले, तारीख डिक्लेअर झालीच।
2: जरांके का आरोप है कि महायुति सरकार मराठा समाज की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी है कि 12 सितंबर तक अगर रद्द किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं किया गया और मांगे नहीं मानी गईं, तो वो पहले की तरह मुंबई का रुख करेंगे। इतना ही नहीं, जरांगे ने सत्ताधारी गठबंधन में फूट का दावा करते हुए कहा कि शिंदे गुट के कई नेता जल्द ही बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
6: एकनाथ शिंदे सोडून तुम्ही उद्या भाजप जाणार आहे, त्या टायमाला तुम्ही म्हणणार आमच्या प्रोड्युसला बोलू नका, एकनाथ शिंदेला बोला। आज तुम्हीच म्हणताय ना हे एकनाथ शिंदेला शॉकिंग आहे, हे एक दिवस बघा तुम्ही थोड्या दिवसात हे आर द्याच्या पुढं यांनी सगळ्यांनी ठरवून घेतलेले हे प्रोड्युस कर दिसणार तुम्हाला थोड्या दिवसात।
2: मनोज जरांगे के इस अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत सरकार ने छत्रपति संभाजीनगर में मराठा आरक्षण और जाति प्रमाण पत्रों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आंकड़े जारी करते हुए जरांगे के दावों को खारिज किया। सामंत ने बताया कि जाति पड़ताल के कुल 21,000 से ज्यादा आवेदनों में से 16,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि खारिज होने वाले आवेदनों की संख्या मात्र 0.3% है। सरकार ने जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील भी की।
7: आज हमने जो हमारे सब SDM है, जिलाधिकारी है, हमारी जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है, उनके साथ बातचीत की और आज हमको पहली बार ऐसा पता चला है कि जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो जात पड़ताल का दाखिला देने के लिए ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ओनली रिजेक्शन इज 0.3% और उसका जो आंकड़ा है 21,051 लोगों का जात पड़ताल का अर्जी आया था, उसमें से 16,200 या 300 हम दे सके हैं और रिजेक्शन है 64 यानी 0.3%। तो ये भी बातचीत हमारी हो गई और इसलिए हमने वापिस मनोज दादा जरांगे से विनती की है, ये हम सब कागज उनके पास भेज देंगे, जो संविधानात्मक है, जो न्यायिक है, वो करने के लिए पूरी तरह से हम पॉजिटिव है, हमारे मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है, दोनों मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव है और हमारी विनती है कि जो उनका अनशन चल रहा है वो उन्होंने खत्म करना चाहिए।
2: राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुल्ले ने मनोज जरांगे की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि फडणवीस और शिंदे ने मराठा समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किया है।
8: मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और माननीय तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मराठा समाज के लिए बहुत काम किया है। देश राज्य की कभी कोई सरकार ने मराठा समाज को जो न्याय नहीं दिया वो न्याय माननीय फडणवीस एकनाथ शिंदे जी ने दिया है। सारी सवलतें, सारी जितने भी जो मराठा समाज की डिमांड थी वो पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है, कुछ छूटा है वो भी करेगी। जो जो डिमांड थी मराठा समाज की वो सारी डिमांड पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसके बावजूद भी अगर देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी।
2: वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने मराठा, ओबीसी और आदिवासी समाज को गुमराह किया है। कांग्रेस कह रही है कि समस्या का पक्का समाधान सिर्फ जातिगत जनगणना से ही संभव है।
9: त्यामध्ये मराठा समाजही आहे, धनगर समाजही आहे, भटके समाजही आहे, आदिवासी समाजही आहे, ओबीसी समाज देखील आहे आणि त्या तशा फसवणुकीच्या श्रृंखलेमध्ये जरांगे यांच्या उपोषणाच्या संदर्भात सरकारने काय काय आश्वासन दिले, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला काय आश्वासन दिले हे जनतेच्या समोर आलं पाहिजे, फसवणूक असताना काय काय आश्वासन दिले ते लोकांच्या समोर आले पाहिजे आणि जाहीर स्वरूपामध्ये जी कमिटमेंट्स आहेत आणि जे दिलेले शब्द होते हे लोकांपुढे हे आलं पाहिजे आणि ते लोकांपुढे येत नसल्यामुळे नेमकेपणानं सरकारचा जो पोटगेपणा आहे तो कुठेतरी झाकला जात आहे। एवढंच या निमित्तानं आम्ही सांगू इच्छितो, मला मराठा समाजाला काँग्रेसच्या काळामध्ये जे 10% आरक्षण मिळालं होतं त्याची आठवण पुन्हा एकदा नव्याने करून द्यायची आहे।
2: जरांगे की सरकार को दी गई 12 सितंबर की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल और तेज होती दिख रही है। सवाल है कि क्या सरकार 12 सितंबर से पहले जरांगे को मनाने में कामयाब होती है या फिर मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर मराठा आंदोलन का बड़ा तूफान देखने को मिलेगा।
10: अब गेंद पूरी तरह से फडणवीस शिंदे सरकार के पाले में है। 12 सितंबर की तारीख करीब है, मराठा आंदोलन मुंबई का रुख करने के लिए तैयार है और विपक्ष जातिगत जनगणना के दाव पर सरकार की घेरेबंदी कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बातचीत से बीच का रास्ता निकलेगा या फिर मुंबई की सड़कों पर फिर एक बार सियासी घमासान देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: तो आरक्षण पर तो घमासान है ही, साथ ही साथ गरबा पर भी घमासान मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे का बयान आपको याद होगा, क्योंकि गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें लव जिहाद इससे रुक जाएगा। अब सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है। इस बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है।
11: देख ने जो मांग की है उसका मैं जरूर स्वागत करता हूं, क्योंकि उनकी मांग ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, समाज में तेढ़ निर्माण करने वाली मांग नहीं है, मगर फैक्ट पे आधार है। क्योंकि जो लव जिहाद के जो केसेस जो पीड़ितों को हम मिलते हैं, उसमें से बहुत सारे जो लव जिहाद के केसेस है वो इस गरबा और नवरात्रि के वक्त जो जिहादी उसमें नाम बदल के घुसते हैं, असली नाम होता है अब्दुल, मगर गरबा के अंदर घुसने के वक्त अपना हिंदू नाम रख देते आशीष, और वहां जाके हमारे हिंदू बहनों से गलत झूठ बोल के फंसाने का काम करते, उनको जिंदगी खराब करने का काम करते। ऐसे 100 तो केसेस मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद मिल चुका हूं उनसे। तो इसलिए कल अगर या ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
12: अभी उन्होंने बहुत कुछ उसके पीछे सोच के कहा है, जिस डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहती, बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, गरबा हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से उसे मनाया भी जाता है। तो अगर किसी भी जात धर्म का आके ये उत्सव देखना चाहे शांतिपूर्ण बिना कोई केओस क्रिएट करे, तो मुझे लगता है वो ठीक है। पर उसके पीछे और क्या और कारण है वो मैंने उतने स्टडी नहीं किया।
13: वह खेलते हमारे सनातन धर्म में पूरे भारत में इसका हर्ष उल्लास होता है। नितेश राणे कह रहे हैं कि नवरात्रि में कोई नहीं जाएगा जो गैर हिंदू है। अमृता फडणवीस जी कह रही हैं कोई भी जा सकता है, इस पर राजनीति क्यों की जा रही है? हमारे सनातन धर्म को लेकर इतना खींचतान क्यों किया जाता है? मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो।
0: तो विपक्ष ने बीएमसी में बिना चर्चा के पास किए गए 20,000 करोड़ के प्रस्तावों पर सत्ताधारी सरकार पर लूट के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना यह है कि बीएमसी हाउस में जनरल बॉडी ने बिना चर्चा के ही 20,000 करोड़ के ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे डाली। पूरे विपक्ष ने जनरल बॉडी मीटिंग में वॉकआउट भी किया।
14: भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री नितेश राणे और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की बीवी अमृता फडणवीस ने गरबा पर दिए गए बयानों की वजह से राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र में फिलहाल त्योहारों का मौसम है और इसी बीच नेताओं की बयानबाजी की बरसात महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये बयानबाजी कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है। कैमरामैन सचिन।
15: छह महीने जो गुजरे हैं पिछले, ये तमाम जो गुजरे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कमेटी में जिस तरह से प्रस्ताव पास हुए हैं, चाहे वो सेंचुरी मिल हो, चाहे वो सेवन हॉस्पिटल हो, चाहे वो रिजर्वेशन को इधर उधर करके पेट्रोल पंप ओपन स्पेस पे पेट्रोल पंप हो, चाहे फायर स्टेशन के रिजर्वेशन को खत्म करके रेसिडेंस जोन हो, ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर रिजर्वेशन चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कि जो डीसीपीआर बना था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो रिपोर्ट बनी थी, तो उसके तहत 2014-34 के तहत जो चीजें कमेटी ने फिक्स की थी कि यहां पे ये बनेगा, उसको यहां पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी और शिवसेना के लोग जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई शहर के प्राइम प्लॉट्स जो हैं वो अपने मनचाहे लोगों को देने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये
16: रोज उठकर एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश अब हो रही है। देखिए, मुंबई महापालिका में जब सभा होती है तो उस दिन में कौन से विषयों की चर्चा होगी ये पहले से तय होता है। कोई विषय को अचानक लाकर या तुरंत टेबल पर रखकर उस पर चर्चा नहीं होती, वो निवेदन होता है या कई विषयों पर हरकती के मुद्दे होते, कोई इंसिडेंट होने के बाद होता है, वो एक संवैधानिक अधिकार विरोधी पक्ष नेता और सभागृह नेता को होता है। उसके बगैर कोई भी विषय या अनपेक्षित रूप से चर्चा में नहीं होता।
0: इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मुंबई के बांद्रा में मशहूर गेटी गैलेक्सी थिएटर से फिल्म हनुमान अंश का शो हटाने से शुरू हुआ विवाद अब बढ़ चुका है। पुलिस की जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद अब थिएटर पर ताला लग गया है। मुंबई पुलिस को पता लगा कि साल 2021-22 से थिएटर ने लाइसेंस ही रिन्यू नहीं करवाया है। साल 1972 में शुरू हुआ गेटी गैलेक्सी थिएटर मुंबई के सबसे पुराने थिएटर्स में से एक है। इस थिएटर के बाहर कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।
3: मुंबई के बांद्रा में स्थित गेटी गैलेक्सी थिएटर का एक विवाद सामने आया है, जहां पर हनुमान सिंह अंश पिक्चर लगाया गया था, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके बाद कुछ लोग नाराज हुए और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस को मध्यस्थता करनी पड़ी और इसकी एक जांच शुरू करनी पड़ी। जांच में मुंबई पुलिस ने पाया कि इस थिएटर ने अपना लाइसेंस नहीं रिन्यू कराया था और साथ ही कई टेक्निकल खामियां भी पुलिस को जांच में मिली, जिसके बाद पुलिस ने थिएटर को नोटिस दिया है और फिलहाल ये थिएटर जो है वो बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कई पिक्चर यहां पर लगे थे, लेकिन कोई और इसी में से एक पिक्चर था हनुमान अंश, जिसका एक।
2: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
2: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
1: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बाद से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई दी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में दो सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना।

हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द है, दलितों का हमेशा अपमान किया। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, युवाओं को निराशा अंधकार में रखा, मोदी जी के राज में जॉब सीकर से जॉब गिवर बन रहा है युवा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन अब उन्हें कोई चिंता नहीं। सीएम योगी का माफियाओं को दो टूक, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जेल या जहन्नुम में से एक जगह चुननी होगी। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी का, जानता हूं भगवा का अपमान करने वालों को सबक सिखाना। शुभेंदु अधिकारी की जादवपुर में हुंकार, कश्मीर मांगे आजादी और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाने वालों को सबक सिखाने की चेतावनी दी। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर बड़े कई फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक पर करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। लाल किले धमाके केस में एनआईए की चार्जशीट, आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, लोन मुजाहिद और थ्योरी को करता था फॉलो। दिल्ली हाईकोर्ट का एनआईए से सवाल, क्या बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों पर मिल सकती है जमानत, 3 नवंबर को अगली सुनवाई। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार, लीज कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन जारी, गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। सत्यनिकेतन मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का पलटवार, बोले मेरी बिल्डिंग सिर्फ G+3, सभी संपत्तियां पैतृक हैं, सौरभ भारद्वाज को भेजूंगा कानूनी नोटिस। पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में दो बिल्डिंग्स एक तरफ झुक गई हैं, लोगों का लगा जमावड़ा। दिल्ली का बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, निजी संस्था से गहन ऑडिट की परिकल्पना नहीं। एमपी में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म हुआ, 14,300 की जगह अब 21,500 स्टाइपेंड मिलेगा, आज तक ने लगातार दिखाई दिया खबर। पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस के पास धरने पर बैठे हुए थे इंटर्न डॉक्टर्स। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज हुआ, मनोज जरांगे पाटिल का 12 सितंबर तक अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो मुंबई कूच की चेतावनी। जरांगे के अल्टीमेटम पर मायावती सरकार का पलटवार, 21,051 आवेदनों में से 16,200 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी, सिर्फ 64 आवेदन खारिज, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। बीएमसी में 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव बिना चर्चा पास कराने पर हंगामा, विपक्ष का कांग्रेस, यूबीटी, एमएनएस, एआईएमआईएम ने लगाया मुंबई करों की संपत्ति की लूट के आरोप। मुंबई इस्कॉन जू मंदिर में प्रसाद वितरण पर रोक, एफडीए ने 3 फूड यूनिट के लाइसेंस को सस्पेंड किया है, कीड़े, खराब स्टोरेज और हाइजीन में मिली गंभीर खामियां। पुणे में लैंडस्कैम के पार्ट पवार के आरोपी बनाने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा सवाल, महाराष्ट्र डीजीपी से मांगा है जवाब, 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ओडिशा में बालासोर में जंगल में 5 नन्हे ऑरंगुटांस का रेस्क्यू, नंदन कानन जू में क्वारंटीन, भारत में नहीं पाए जाते ऑरंगुटान, इंसानी तस्करी की आशंका से जांच तेज। बालासोर की कैसुआरिना प्लांटेशन में लावारिस मिले 3 नर और 2 मादा ऑरंगुटान, 6 माह से 1 साल तक की उम्र का अनुमान है, नंदन कानन में 24 घंटे निगरानी में रखा गया। बालासोर में 5 ऑरंगुटान मिलने के बाद मामला गहराया, ब्लैक थार पर एसटीएफ की नजर है, सीसीटीवी खंगाल कर तस्करी के अंतर्राज्यीय विदेशी कनेक्शन की जांच जारी। बच्चों के ऑन सोशल से जुड़े कंटेंट के मामले में एनसीपीसीआर के सामने पेश हुए मेटा के वरिष्ठ अधिकारी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर लगे गंभीर आरोपों की जांच जारी। कानपुर बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड दवा देने पर सीएमओ की सफाई, बोले हमारे द्वारा नहीं बांटी गई थी दवाएं। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव की सख्ती, दोषियों पर हत्या से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की कार्रवाई के प्रावधान, अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई। सागर घटना के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम मोहन यादव, बोले प्रशासन को सख्त कार्रवाई की खुली छूट, ऐसी सजा मिले कि दोबारा अपराध की हिम्मत न हो पाए। प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी छात्रों का प्रदर्शन, आमरण अनशन लगातार जारी, आईएसआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बकरा भी मिली का भी समर्थन। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे में पुलिस का पहरा, ग्रीन नेट से ढका गया है पूरा मलबा, अंबाला रोड स्थित कब्रिस्तान के बाहर ईंटें उठाकर ले जाने के वीडियोस भी वायरल हुए। बांग्लादेश में फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान हादसा हुआ, टैंक से शेलिंग के बीच 2 सैनिकों की मौत, एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, प्रभावित आबादी 40 लाख के पार, 14 जिलों में 84 प्रखंड और 514 पंचायतें प्रभावित। बाराबंकी सीतापुर बॉर्डर के पास बने गांव में बना टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत में घुस गया था बाढ़ का पानी, कुछ ही देर के बाद शिव मंदिर में भी पानी ही पानी। कटिहार में बाढ़ के बीच अनोखी तस्वीर, नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंची बारात। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां, दीपक आनंद ने राहत के कामों का लिया जायजा। वाराणसी में थोड़ी देर में बारिश के जलभराव की समस्या पैदा हुई, निचले इलाकों में पानी लबालब।
इंदौर में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ, एडिशनल डीसीपी को दिया गया धक्का, उल्टे गिरे डीसीपी। जमशेदपुर में बीच सड़क पर लीक हुआ एलपीजी का टैंकर, तस्वीरें सामने आई, लोगों में दहशत। गिरिडीह साइबर थाने में इंस्पेक्टर 30,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। मुजफ्फरपुर में रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़ लिया तो करा दी शादी, वीडियो वायरल हुआ। चंदौली में पुलिस ने पकड़ा 4 करोड़ का सोना, कार के गियरबॉक्स के पास सीक्रेट चैम्बर बनाकर छुपाए गए थे सोने के 22 बिस्किट्स, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिजनौर में ज्वेलरी की दुकान में बुर्का पहनकर महिलाओं ने चुराया 1 लाख रुपए का कैश और चांदी से जेवरों से भरा हुआ बैग, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बिस्ट्रक में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की छापेमारी, 3 लाख के पटाखों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोनीपत में विनोद हत्याकांड का खुलासा, 2 से निकला हत्या आरोपी, पहले दोनों में हुई थी कहासुनी, फिर रंजिश में की गई थी हत्या। बिजनौर में पत्नी बोली छत से बंदर भगा दो, डंडा लेकर बंदरों को भगाने पहुंचे पति पर ही टूट पड़े बंदर, डर कर भागे तो सीढ़ियों से गिरकर चली गई जान। विभानी में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रखे जनरेटर में भीषण आग लगी, गेट के आगे फैला धुआं, शाखा में अफरा तफरी। इंदौर में महिला के गले पर ब्लेड से हमला, जाबाज ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तत्परता से बच गई जान, आरोपी ने खुद पर भी किया वार। मोतिहारी के एक आवासीय होटल में पुलिस की छापेमारी, होटल संचालक सहित 4 लड़के हिरासत में लिए गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी मिली। महिसागर में पिता ने शक और पारिवारिक विवाद में अपने ही बेटे को कुएं में फेंक कर जान ले ली, आरोपी पिता मौके से फरार। वलसाड़ में हाईवे पर टेम्पो में भीषण आग लगी, टेम्पो में भरा माल पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। धनबाद में युवती ने राजस्थान के युवक को बनाया था शिकार, लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, शादी का झांसा देकर लूटे 10 शातिर लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। रांची में पुरानी पानी की टंकी अचानक से गिरी, कुछ मजदूरों के दबे होने की संभावना, 2 को निकाला गया बाहर। झांसी में पिता के सामने नाव पलटने से 2 सगे भाई बेतवा नदी में डूबे, देखता रह गया पिता। अलवर में नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड 43 में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ, 2 युवक घायल हुए, 1 युवक के आए हैं सिर में 15 टांके। कोरबा में रील देखते वक्त इंटरनेट बंद हुआ तो आक्रोशित महिला ने कीटनाशक सेवन करके जान दी, मामले में हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है। एमपी के सीधी में नाले में पानी था तो बुजुर्ग की पीठ पर चढ़ गया पटवारी, वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने निलंबित किया। भव्य झांकियों और मंदिरों की सजावट के साथ ही गणपति के रंगे रंग में रंगा हुआ है पूरा देश, कहीं हो रही है विशाल पंडालों की तैयारियां तो कहीं भव्य बाबा की प्रतिमा। पाली में गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं कलाकार, इको फ्रेंडली रंगों से किया जा रहा है रंग। गुजरात के आणंद में बप्पा का जोरदार स्वागत, राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सजी 2.5 लाख मोदकों की भव्य झांकी, 502 किलो के विशाल मोदक बने आकर्षण। पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती और पहले जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र की नींव, 8 एकड़ में बनेगा केंद्र, किसानों को मिलेगी आधुनिक खेती और ग्लोबल एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग। मुंबई में चिंच पोपली और चिंतामणि मंडल में बप्पा का हो चुका है आगमन, ढोल ताशों के साथ जमकर गूंजा बाबा का नारा। इस बार चिंतामणि गणपति की सजावट तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर से प्रेरित है, मूर्ति में गरुण शंख और चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक नजर आए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत नंबर 1 के पायदान पर बरकरार, 33 मैचों में 116 रेटिंग के साथ टॉप पर भारतीय टीम। महिला एशिया कप सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत हुई, दुबई में आज शाम 8 बजे खेला जाएगा महामुकाबला। नीली जर्सी में ही एशियन गेम्स खेलेगी भारतीय हॉकी टीम, हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का दिया गया था विकल्प, जिसमें ब्लू जर्सी का हुआ है चुनाव। बॉक्स ऑफिस पर छाए कालीन भैया, मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 200 करोड़ के पार। प्यार विश्वासघात की कहानी लेकर आ रही है फिल्म लव लॉटरी, अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का 3रा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज हुआ, इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने बनाया है गाना मनी फॉलोज माई ब्रदर, टाइटल के गाने का टीजर जारी किया गया। 4 साल के बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे हैं सिंगर विशाल मिश्रा, जल्दी आने वाला है उनका ये गीत। iPhone 18 Pro, 18 Pro Max लॉन्च, 4 नए कलर्स में, सुपर फास्ट A20 Pro प्रोसेसर पर चलेंगे, नई सीरी में ऑन डिवाइस डिटेक्शन को बेहतर किया गया है। BCG स्नैप की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की जनजी आबादी की कुल खपत में 43% का हिस्सा है, 2035 तक इस खर्च के दोगुना होने से कुल खर्च में जनजी की आधी से ज्यादा हिस्सेदारी होगी।
मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत का करीब आधा हिस्सा है। दुनिया के 11 देशों में इस्तेमाल हो रहा है यूपीआई। Naukri.com के मुताबिक अगस्त में ऑफिस जॉब्स में सालाना आधार पर 14% की बढ़ोतरी। ऑटो और हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा भर्तियां होने का दावा। गोल्ड प्राइस बढ़ने से पुराने सोने के एक्सचेंज से होने वाली खरीदारी में 35% तक बढ़ोतरी का दावा है। महंगे सोने ने कंपनियों को एडवांस परचेज स्कीम का आकर्षण घटा दिया है। महंगाई और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जानने के लिए आरबीआई ने शुरू किया है बड़े सर्वे को। सेंट्रल बैंक की अगली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले 19 शहरों में 31 राज्यों में होगा सर्वे। अगस्त में देशभर में करीब 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री से बनाया नया रिकॉर्ड। टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेज ग्रोथ से पिछले साल के मुकाबले 53% ज्यादा ईवी की बिक्री हुई है। लोकल सर्वे में दावा यह किया गया कि 80% ग्राहक पैकेट पर साफ चेतावनी चाहते हैं। शुगर, नमक या फैट ज्यादा होने की जानकारी लेबल से मिलनी जरूरी। क्रिसिल के मुताबिक अगले साल शाकाहारी थाली का 1% और नॉन वेज थाली में 5% की महंगी हो गई है थाली। चीनी की कीमतों में भी बीते 3 महीने में 19% तक की बढ़ोतरी हुई है। खाड़ी देशों की जगह अब अमेरिका बना है भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच भारत का अमेरिका से एलपीजी इम्पोर्ट 6 महीनों में 281% तक बढ़ गया है। शांति की कोशिशों के बीच यूक्रेनी शहरों पर रूस का भीषण हमला। राजधानी कीव समेत कई शहरों में बरसाए गए थे बम। कीव में ऊंची इमारत और फूड फैक्ट्री को बनाया गया निशाना। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सेना का पलटवार। नोवोरोसिस्क शहर में ड्रोन से किया गया हमला। यूक्रेनी हमले में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई, 29 लोग घायल हुए। ट्रंप पुतिन बातचीत के बाद क्रेमलिन का बड़ा बयान। कहा अमेरिका की मध्यस्थता से यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जल्द शुरू होने की उम्मीद। राज्य चुनाव में हार के बाद जर्मन चांसलर मर्ज का AFD पर हमला। कहा जारी रहेगा यूक्रेन को समर्थन क्योंकि वो जर्मनी की आजादी की रक्षा कर रहा है। वेस्ट बैंक की इजरायली बस्तियों पर प्रतिबंध को ब्रिटिश पीएम बर्मन ने बताया ऐतिहासिक कदम। अमेरिकी सेना ने यूएस युद्धपोतों पर हमले की खबर को खारिज कर दिया है। कहा हमले की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। ईरान का दावा पूरी तरह से गलत है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुचिच ने संसद भवन का चुनाव का ऐलान कर दिया। अगले महीने 25 अक्टूबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। ब्रिटेन में हवाई यातायात सेवा ठप होने से मचा है हड़कंप। एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों से विदेश मंत्री एड मिलीबैंड ने मांगी है माफी। थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी के बीच हड़कंप मचा। बंदूकधारी ने महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या की। 44 बच्चों और 3 शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर। डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अलकराज हुए हैं बाहर। अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेंटन के रोमांचक मुकाबले में उन्होंने हराया।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ इस्लामिक नेटो बनाने की शेखी बघारने वाला पाकिस्तान अब पक्का मक्का समझौता तोड़ सकता है। मुस्लिम भाईचारे की आड़ में पाकिस्तान का डबल गेम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों को मक्का समझौते की धमकी दी है। लेकिन जरा इस उलझी हुई खिचड़ी को समझिए। सऊदी मुस्लिम देश, पाकिस्तान मुस्लिम देश, हूती मुस्लिम संगठन, हूती का आका ईरान मुस्लिम देश, यानी जिस इस्लामिक नेटो का ढिंढोरा पीटा जाता था वो आज अपनों का ही दुश्मन बना हुआ है। और पाकिस्तान का हाल तो देखिए, दावा है कि वो बलूचिस्तान में अपने 50 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवा चुका है, घर संभाला नहीं जा रहा, चला है दूसरों की लड़ाई लड़ने। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या बीजेपी भी एम फैक्टर पर आ चुकी है। यहां एम का मतलब मुस्लिम नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर है। साल 2013 मुजफ्फरनगर में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अब 2027 के चुनाव से पहले ऐसे पोस्टर्स दिखने लगे जिन पर लिखा था मुजफ्फरनगर के इस दंगे को भूल तो नहीं गए। पहले ये पोस्टर बेनामी थे, लेकिन अब इन दंगों को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी पर एक साथ हमला बोलना शुरू कर दिया है। अगली खबर, शारदीय नवरात्र से ठीक पहले गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और नितेश राणे ने लव जिहाद के खतरे का हवाला देते हुए आयोजनों में एंट्री से पहले आधार कार्ड चेकिंग और अब हनुमान चालीसा के पाठ की मांग कर दी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे असंवैधानिक फतवा बताया है। इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने गरबा में मुस्लिम समाज के प्रवेश का समर्थन कर बहस को गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज पर सियासी फसाद जारी है। अब बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाने तेज कर दिए हैं। नए नए वीडियोज बनाकर इस स्लैंग के सहारे विपक्ष पर तंज कसे जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल की नगरी अब सिंहस्त कुंभ की भव्य तैयारियों में जुटी है। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर आई, मामला आया। निर्माण कार्यों के चलते रास्ते में आ रहे बहुत जो हनुमान मंदिर है उसको हटाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कई दिन की लगातार मशक्कत और भारी मशीन्स के इस्तेमाल के बाद भी प्रशासन मंदिर का एक हिस्सा तो हटा पाया, लेकिन जो मुख्य मूर्ति है हनुमान जी की उसे नहीं हटा पाया है। और जो लोकल लोग हैं उनकी पूजा तेज हो गई है, वो इसको एक चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खाकी के रौब की तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वीडियो में एक दारोगा ने धरने पर बैठे छात्रों को हड़का दिया। गुस्साए दारोगा जी का आपा इस कदर खो गया कि उन्होंने छात्रों को सीधी धमकी दे डाली और कहा, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा।
1: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कर दूंगा।
0: जब हमारे देश में तमाम स्कूल्स के बच्चों ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किए, तब चाइना ने एक स्कूल के बच्चों के लिए पहाड़ों पर एक लिफ्ट लगा दी है। एक स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को 3 घंटे की खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती थी। अब इस मुश्किल को खत्म करने के लिए पहाड़ों पर सीधी 288 मीटर ऊंची लिफ्ट लगा दी गई है, जिससे 3 घंटे का सफर घटकर महज 30 मिनट का रह गया है।

हमने कल कहा था कि हमारे देश में किसी को सिविक सेंस सिखाना जानलेवा है और आज हम ये बात फिर से कह रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली में कुछ लोग जो कानून तोड़कर सड़क पर शराब पी रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, उन्हें रोकने पर मणिपुर के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब कानपुर में खुले में यूरिनेट करने का विरोध करना एक व्यापारी को भारी पड़ गया। दबंगों ने मामूली कहा सुनी के बाद इस व्यापारी की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। अगली खबर बिहार से, जहां शराबबंदी के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बिहार में बहार बा और शराब बा। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्स्ट एसी कोच से एक मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह लड़की हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में थी और बहुत शातिराना अंदाज में शराब की तस्करी करती।

ससुर की हत्या की सुपारी देने वाली जो बहू थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने इतना दुख दिखाया कि लोग हैरान रह गए जब पुलिस ने ये खोज निकाला कि इस हत्या के पीछे बहू ही थी। अब इस बहू का डांस देखिए। ये महिला मर्डर प्लान करके पार्टी के लिए निकली, हत्यारों को फोन पर गाइड करती रही, ऐसा पुलिस का दावा है। और पहले जो रोने का ड्रामा कर रही थी, अब आप उनका डांस देखिए।

लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं तब पाकिस्तान और तुर्की मक्का समझौते को लागू क्यों नहीं कर पा रहे, और क्या है ये मक्का समझौता, और ये मुस्लिम नेटो मुस्लिम देशों की आपसी लड़ाई में कैसे फंस गया है। ये वही समझौता है जिसमें पिछले महीने 7 अगस्त को सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये तय हुआ था कि वो कलेक्टिव डिफेंस यानी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को मानेंगे। अब आप तीनों को देख रहे हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है, जिसके तहत अगर इन देशों में से किसी एक देश पर हमला हो तो ये तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। नेटो देशों का भी यही मूल सिद्धांत है कि किसी एक नेटो देश पर हमला हुआ तो ये बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा, यानी वो सब देश उसकी तरफ से लड़ेंगे दुश्मन के खिलाफ। अब इसी सिद्धांत के कारण पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे इस्लामिक नेटो का मॉडल बताया। ये तक कहा कि धीरे धीरे और मुस्लिम देश इसका हिस्सा बनेंगे, भविष्य में दुनिया का कोई भी देश इन मुस्लिम देशों पर हमला नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान ने डींगे तो बड़ी बड़ी हांक ली, और इस मक्का समझौते की आड़ में सऊदी अरब से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। लेकिन अब जब सऊदी अरब पर यमन के हूती लड़ाके हमला कर रहे हैं और सऊदी अरब लगातार इन हमलों को झेल रहा है, तब यही पाकिस्तान और तुर्की उसकी मदद तक करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हूती लड़ाकों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हमले नहीं रोके तो मक्का समझौता सक्रिय हो जाएगा। लेकिन जानते हैं हकीकत में पाकिस्तान की यह चेतावनी एक बहुत बड़े ढोंग का हिस्सा है। ढोंग इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि पाकिस्तान अपने बनाए इस्लामिक नेटो में खुद फंस गया है, और इसीलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि क्यों मक्का पैक्ट पक्का पाकिस्तान ही तोड़ने वाला है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ आएगा कि ये इस्लामिक नेटो अभी मुस्लिम देशों की आपसी लड़ाई में फंसा हुआ है। जैसे यमन का हूती संगठन है और सऊदी अरब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब हूती को आतंकी संगठन के तौर पर देखा जाता है, कई जगहों पर इसराइल से लेकर कई जगहों पर वो अटैक कर चुका है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सऊदी अरब के साथ कट्टर दुश्मनी, और सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान हूती से लड़ने में उसकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ऐसी है कि हूती को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। मतलब हूती का आका ईरान, और हूती पर हमला ईरान के खिलाफ माना जाएगा, और पाकिस्तान ऐसा रिस्क मोल ले नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने हूती के खिलाफ अपनी सेना उतारी तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं उतारी तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। इसी तरह तुर्की इसराइल से अपनी दुश्मनी के कारण हिजबुल्ला का समर्थन करता है, और क्योंकि हिजबुल्ला भी हूती की तरह ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए तुर्की ने सऊदी अरब में अपनी सेना उतारी तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर नहीं उतारी तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। और यह चक्रव्यूह यही खत्म नहीं होता। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान दोनों का दोस्त है, लेकिन यही दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। ईरान यमन में हूती को समर्थन देता है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब की मजबूरी के कारण हूती का विरोध करता है। सऊदी अरब यमन में ही हूती के खिलाफ लड़ रही सरकार का समर्थन करता है और उसे हथियार देता है, लेकिन पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि ईरान इसके खिलाफ है। यानी इन मुस्लिम देशों के आपसी रिश्ते एक गुत्थी की तरह उलझ गए हैं। वही पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब के साथ समझौता तो अच्छा कर लिया, इस्लामिक नेटो बना लिया, लेकिन ये इस्लामिक नेटो ही इस्लामिक नेटो को बनने नहीं देती, और वो इसलिए क्योंकि अगर सऊदी अरब की मदद करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, और अगर ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ जाएंगे तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। और मक्का समझौते के बाद भी हूती कैसे सऊदी अरब पर हमले करता है।

अब पाकिस्तान ने मन ही मन भारत की मोर्चेबंदी के खिलाफ नेटो जैसा संगठन बनाने की योजना बनाई। शायद ये सोचा कि कल को अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये मुस्लिम देश उसके साथ आकर खड़े होंगे, लेकिन हकीकत में यही मुस्लिम देश आपसी लड़ाई में उलझे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि ये मक्का समझौता उसकी जान के लिए आफत बन गया है। वैसे इस्लामिक नेटो को लेकर पाकिस्तान के हाथ हर बार यही होता है। विभाजन के सिर्फ 8 साल बाद 1955 में पाकिस्तान ने तुर्की, इराक, ईरान इनके साथ बगदाद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के पीछे से ब्रिटेन ने, अमेरिका ने समर्थन दिया था और यह समझौता भी यही कहता था कि इनमें से किसी भी देश पर हुआ हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम देशों की लड़ाई में इस संगठन को पश्चिमी देशों का पिट्ठू बताकर खारिज कर दिया गया और पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साल 2015 में पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर एक बार फिर से ऐसा संगठन बनाया जिसे सुन्नी नेटो कहा गया, लेकिन यह भी कागजों पर ही सीमित रहा और इस संगठन में शामिल देशों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस बार भी मक्का समझौते को करने वाले पाकिस्तान के लिए यह कहा जा रहा है कि वो इसे पक्का तोड़ेगा। यहां यह भी देखिए कि पाकिस्तान किस मुंह से सऊदी अरब की मदद करेगा। पाकिस्तान का हाल तो ऐसा है कि बलोचिस्तान में उसके सैनिक खुद पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, वहीं की तस्वीरें हैं देखिए। और बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच हुए हमलों में पाकिस्तान के 52 जवान मारे गए। सोचिए, पाकिस्तान की सेना जब बलोच विद्रोहियों से गुरेला युद्ध नहीं लड़ पा रही तो वो इसी युद्ध में माहिर हूती के लड़ाकों को क्या बिगाड़ लेगी। बहुत माहिर लड़ाके माने जाते हैं हूती के, देखिए।

0: अमन आ जाए ना।
1: गोली चला कर ले, चला कर ले।
2: खैर, इस्लामिक नेटो का ख्वाब पूरा क्यों नहीं होता, उसे आप ईरान युद्ध से भी समझ सकते हैं। इस हफ्ते ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जिसके बाद जवाबी हमलों में अमेरिका ने भी ईरान के 5 क्रूड ऑयल टैंकर्स को तबाह किया। अब क्योंकि इन हमलों से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, इसीलिए ईरान ने वही नीति अपनाई जो 28 फरवरी के हमले के बाद अपनाई गई थी। उसने अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने तेल टैंकर्स की तबाही का बदला लेने के लिए मुस्लिम देश जॉर्डन पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने 18 मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जबकि 2 मिसाइलें खाली इलाकों में गिरी और अमेरिका के ही मुताबिक उसके किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन बात नुकसान की नहीं है, बात है उन मुस्लिम देशों की जिन पर हमले अब भी रुके नहीं है। और सोचिए, पाकिस्तान इन्हीं मुस्लिम देशों को साथ लाकर सिर्फ भारत की घेराबंदी करने के लिए इस्लामिक नेटो तो बना लेता है, लेकिन वो नेटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एक देश पर हमला हुए जा रहा है, सऊदी अरब पर, लेकिन ना तुर्की अपना हाथ हिला पा रहा है और ना ही पाकिस्तान।

0: हॉर्मुज में जहाजों पर हुए इन भीषण हमलों के कारण ब्रेंट क्रूड में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से $100 को पार कर गई हैं। और यहां यह मत सोचिएगा कि इससे अमेरिका परेशान हो रहा होगा। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अमेरिका को लेकर आई एक नई रिपोर्ट यह कहती है कि वो तो इस युद्ध में रिकॉर्ड तेल और गैस का व्यापार कर रहा है और इन देशों में भारत भी शामिल है। मार्च से अगस्त महीने के बीच भारत का अमेरिका से गैस निर्यात 281% बढ़ा है और यहां हम LPG यानी रसोई गैस की बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत अपनी कुल रसोई गैस का 53% हिस्सा अकेले अमेरिका से खरीद रहा है, जबकि 2025 में यही आंकड़ा सिर्फ 7.9% था। यहां यह भी देखिए कि भारत ने रशिया और अमेरिका के बीच एक संतुलन बनाकर रखा। हम तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से अपनी जरूरत का 45% जो है कच्चा तेल वो खरीद रहे हैं और इसी दौरान हम अमेरिका से भी अपनी जरूरत का जो 53% LPG है वो गैस खरीद रहे हैं। खैर, भारत ने तो अमेरिका और रशिया के बीच संतुलन बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच अब कौन सी नई लड़ाई शुरू हो गई है वो भी देखिए और ये समझिए कि अब युद्ध कैसे अंतरिक्ष तक पहुंचने लगा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने यह चिंता जताई है कि रशिया एक ऐसा परमाणु एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष में विस्फोट करके हजारों सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने खासतौर पर रशिया के उस सैटेलाइट को लेकर शक जताया है जिसका नाम है कॉस्मोस 2553। यहां यह भी समझिए कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट हथियार काम कैसे करता है और क्यों यह खतरनाक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का मतलब पृथ्वी पर शहरों का नष्ट होना है, लेकिन यहां खतरा अलग है। यहां विस्फोट का मतलब है अंतरिक्ष में ऐसा रेडिएशन पैदा करना जिससे पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दे, अंतरिक्ष में खराब हो जाए और अगर कभी भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इससे दुनिया में भूचाल आ जाएगा। इसे GPS, इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल फोन, ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय लेन देन, एक वैश्विक सिस्टम जिस समझिए ये सब ठप पड़ जाएगा। और अभी अमेरिका यही आरोप लगा रहा है कि रशिया अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए ऐसा हथियार बना सकता है। अमेरिका को इसकी चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पृथ्वी की निचली कक्षा में इस वक्त कुल 16,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें अकेले अमेरिका के 8,000 सैटेलाइट्स हैं। और यही वजह है कि पेंटागन ने इसे एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक मुद्दा बना लिया है। हालांकि यहां रशिया इन आरोपों को पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद बता रहा है। रशिया ने साफ कहा है कि वो अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने के पक्ष में नहीं है और वो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी का सम्मान करता है। खैर, अब तक आपने ये देखा कि कैसे मुस्लिम देशों के बीच टकराव है, कैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध विस्तार ले रहा है और कैसे अमेरिका और रशिया के बीच भी एक तनाव है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब आप एक ऐसी खबर देखिए जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और यह बता रही है कि साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चाइना अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए इतना बेताब है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में डिफेंस डायलॉग नाम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था और इस सम्मेलन में फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी गिल्बर्टो सी टियोडोरो साउथ चाइना सी में चाइना के दावों पर चर्चा करने के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच एक पेपर नोट यानी कागज पर लिखे संदेश ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पूरा सीक्वेंस समझिए। सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के दौरान जब ये पेपर नोट फिलीपींस का के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनकी टेबल पर ये देखिए पीछे से लाकर रख दिया गया, तब उसी वक्त ये फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके बगल में रखा। अच्छा, वो उसको देखते हैं, वो उसको पढ़ने भी लगते हैं। उसी वक्त उन्होंने ये कहा कि ये शायद चाइना की तरफ से आया होगा, उठाते ही उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने पढ़ा और कहा चाइना की तरफ से आया होगा और वो इसे पढ़कर सुनाने की इजाजत चाहते हैं। जब उन्होंने इस नोट को पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि चाइना दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को सही मानता है और वो 2016 में आए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। ये फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पेपर चाइना का है और फिर उसको पढ़कर सुनाते हैं। ये वही फैसला है जिसमें फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ ये शिकायत की थी कि वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद संसाधनों को अपना बताते हुए साउथ चाइना सी पर अधिकार जताता है। तो यहां पर ये लड़ाई है और उस वक्त इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। चाइना ये मुकदमा हार गया। लेकिन गजब की बात तो यह है कि जब फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी आज दक्षिण कोरिया के एक सम्मेलन में इस पर बात करने वाले थे, उसी दौरान चाइना की तरफ से उन्हें ये नोट लिखकर भेजा गया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। हम सुनाएंगे आपको। उन्होंने भी इसे सबके सामने पढ़कर सुना दिया और ये भी कहा कि साउथ चाइना सी पर अपने दावे को सही साबित करने के लिए चाइना कितना डेस्परेट है, कुछ भी कर सकता है। सुनिए।
1: इन इंटरनेशनल लॉ अनफॉर्चुनेटली,
2: अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में दुर्भाग्य से ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास यहाँ एक नोट है, मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से है। आपको इसमें शामिल होना चाहिए। क्या मैं इसे पढ़ूं? साउथ चाइना सी पर चीन का रुख साफ एक जैसा और मजबूत है, उनका कोई रुख नहीं है। आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो जिस पर आपने साइन किया है, क्या आपका मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है? आपका यही मतलब है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही है ये पेपर मुझे तब भेजा जाए जब मुझसे फ्लोर पर सवाल पूछा जा रहा हो, और आप इस तरह के व्यवहार को कैसे देखेंगे? ये न सिर्फ एक अनादर दिखाता है, अगर ये चीन का रुख है तो ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर करता है और शायद चीन को बुनियादी शिष्टाचार और व्यवहार अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Now, thank you very much. I will keep this paper.
2: मैं इस पेपर को एक यादगार चीज के तौर पर रखूंगा, ये याद रखने के लिए कि चीन कितना बेताब है और लोगों के सामने उसका रुख कितना बेअसर है।
1: Position is in the face of a free audience. Thank you very much for
2: जिस व्यक्ति ने मुझे ये पेपर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके लिए किसी जेल में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी।
0: पहले सबको ये लग रहा था कि चाइना ने जानबूझकर फिलीपींस के रक्षा सचिव के भाषण को बीच में रोककर इस नोट को पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा। लेकिन बाद में जब इसे लाने वाले अधिकारी से बात की गई तो एक दिलचस्प किस्सा बाहर आया। असल में सियोल में चाइना की जो एम्बेसी है वहां से इस पेपर नोट को इस सम्मेलन के एक स्टाफ मेंबर तक पहुंचाया गया। उसे यह कहा गया कि वो उसे फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी को दे दे कि भाई ये चाइना का दावा है। दावा है कि इस अधिकारी ने यह समझ लिया कि यह कागज फिलीपींस के ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनयिकों ने दी है और इसी भूल के कारण वो भाषण के बीच ये नोट लेकर आ गया और फिलीपींस के रक्षा सचिव ने इसे सबके सामने पढ़ दिया। हालांकि ये तो वो कहानी है जो सम्मेलन के आयोजक बता रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पेपर नोट इस भाषण से पहले ही आ चुका था और क्योंकि फिलीपींस के रक्षा सचिव ने तय किया होगा कि वो इसे भाषण के दौरान मंच पर ही पढ़ेंगे, इसीलिए ये पेपर नोट उन्हें भाषण के बीच में लाकर दिया गया और फिर उन्होंने पढ़ा। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से इस हिस्से को देखिए।
1: इन इंटरनेशनल लॉ अनफॉर्चुनेटली,
2: अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में दुर्भाग्य से ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास यहाँ एक नोट है। मुझे लगता है कि ये चीन की तरफ से है। आपको इसमें शामिल होना चाहिए। क्या मैं इसे पढ़ूं? साउथ चाइना सी पर चीन का रुख साफ एक जैसा और मजबूत है, उसका कोई रुख नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही है? ये पेपर मुझे तब भेजा जाए जब मुझसे फ्लोर पर सवाल पूछा जा रहा हो, शायद चीन को बुनियादी शिष्टाचार और व्यवहार अपनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पेपर को एक यादगार चीज के तौर पर रखूंगा, ये याद रखने के लिए कि चीन कितना बेताब है और लोगों के सामने उसका रुख कितना बेअसर है। जिस व्यक्ति ने मुझे ये पेपर दिया उसका
0: खैर, चाइना के पेपर नोट के बाद चाइना के हथियार भी देख लीजिए। बांग्लादेश की सेना इन दिनों चट्टगांव में एक युद्धाभ्यास कर रही है और इसी युद्धाभ्यास में आज एक चाइनीज टैंक यानी चाइनीज तोप में विस्फोट हो गया और इसमें बांग्लादेश के 2 सैनिक मारे गए। एक सैनिक की तो इस वक्त हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। चाइनीज माल पर भरोसा करना जिंदगी ले सकता है। देखिए,

खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में सिंगापुर के क्लीन वेज मॉडल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में 64% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। मुझे पता है जितने लोग अप्रेजल का अपने अपनी कंपनी में वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, ये खबर उनके सीने पर छुरी से कम नहीं लगेगी। लेकिन खबर बड़ी दिलचस्प है, इसलिए हमने सोचा आज आपको बताई जाए। 64% की वृद्धि हुई है सिंगापुर के पीएम की सैलरी में। अब उनका वेतन, सालाना वेतन जो है वो बढ़कर हो गया है लगभग 27 करोड़ रुपए, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, जो नंबर अब हम दिखा रहे हैं आपको, तो दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रपति, चांसलर या प्रधानमंत्री की सालाना आय जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो। सारे देख लीजिए, 27 करोड़ है। जैसे हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव की सालाना तनख्वाह 5 करोड़ 40 लाख रुपए है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की सालाना सैलरी 4 करोड़ 70 लाख रुपए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सालाना तनख्वाह 3 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सालाना वेतन 22 लाख रुपए। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा तनख्वाह देने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 130वें नंबर पर है। इसके अलावा दुनिया के जो सबसे अमीर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उनमें राष्ट्रपति पुतिन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके पास 19 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास 68,500 करोड़ रुपए की संपत्ति, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास 14,200 करोड़ रुपए की संपत्ति, और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। और इस मामले में सारे जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये आंकड़े एक तरफ है और सिंगापुर का इस जो सैलरी मॉडल है वो दूसरी तरफ है। वो इसे क्लीन वेज भी कहते हैं। क्लीन वेज यानी साफ सुथरी तनख्वाह। ये नीति कहती है कि अगर देश के नेताओं से राष्ट्र सेवा करानी है तो उन्हें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक वेतन दिया जाए। सिंगापुर ने यह मॉडल अपनाया है कई चीजों में और कई तरीके में, और सिंगापुर में आज पर कैपिटा आय जो है वो सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। इसी के साथ साथ एक विकसित देश के रूप में उसने अपने एक अलग पैठ बनाई है। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की जब वो बात करते हैं तो उसका अलग मायने है। उसी कड़ी में इस क्लीन वेज पॉलिसी को देखा जाता है। उनका कहना है कि इतना पैसा इसलिए दिया जाए ताकि नेताओं के मन में भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का लालच ना रहे, युवाओं में संदेश जाए कि राजनीति भी उनके लिए एक अच्छा करियर हो सकती है। ये पता चलना चाहिए कि भाई जो प्राइवेट नौकरी है उससे ज्यादा पैसा आपको यहां पर मिल सकता है सरकारी नौकरी में, जब आप लोगों की सेवा करें। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सिंगापुर के इस क्लीन वेज मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। और बाकी देशों में भी यही कहा जाता है कि अगर राजनीति में अच्छी सैलरी मिले तो ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग भी इसे अपना करियर बना सकते हैं। सिस्टम सरकार में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ सकती है जो समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, और उनके मन में ये लालच ना आए कि जो पैसा जनता के लिए है वो पैसा उनकी जेब में जाए। उनके मन में ये लालच ना आए कि इधर से उधर से चोर रास्ते खोज खोज कर वो अपनी जेब कैसे गर्म करें। देखिए,

0: सिंगापुर के पीएम की तो सैलरी बढ़कर हो गई है 27 करोड़ रुपए। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया एम फैक्टर क्या होगा, क्या है ये एम फैक्टर। कल यानी 8 सितंबर को मुजफ्फरनगर दंगों की 13वीं बरसी थी और इस मौके पर पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायकों 20 से ज्यादा मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। सोचिए, सारी की सारी मंत्रियों की फौज उतर गई। ये कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ना तो मुजफ्फरनगर दंगों को भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल या उससे पिछले साल जब मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी थी तब योगी सरकार के इन्हीं मंत्रियों और विधायकों ने कोई पोस्ट नहीं लिखा था और सरकार भी इस पर सक्रिय नहीं थी। और यही कारण है कि आज जब योगी सरकार 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नए एम फैक्टर पर चुनाव लड़ेगी और वो नया एम फैक्टर है मुजफ्फरनगर दंगों का फैक्टर। और कारण यही है कि ये दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। क्यों हुए थे उसकी कहानी भी सुन लीजिए। आरोप लगता है कि 27 अगस्त को दो हिंदू लड़कों ने छेड़छाड़ की घटना के विरोध में एक मुस्लिम लड़की की हत्या कर दी थी जिसका नाम शाहनवाज था। ये आरोप हिंदू पक्ष आज भी लगाता है लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस ने यह कहा था कि शाहनवाज की हत्या बाइक को टक्कर मारने पर की गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट में भी यही लिखा है। इस हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने इन दोनों हिंदू लड़कों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इन हत्याओं के विरोध में जब 7 सितंबर 2013 को महापंचायत हुई तब इसके अगले दिन यानी 8 सितंबर से दंगे भड़क गए। इन दंगों में 65 लोगों की मौत हो गई थी। कई घरों कई दुकानों को आग लगा दी गई थी। विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि इन्हीं दंगों के कारण एक जो धर्म के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ और बाकी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी ध्रुवीकरण हुआ, इससे बीजेपी को फायदा हुआ और उसने उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों पर इतनी चर्चा क्यों चाहती है। या फिर आज जो कि पिछली बार चुनाव से पहले देखिए, अगर आप तो पिछली बार जब पिछले साल भी बरसी आई थी तब तो इन्होंने पोस्ट नहीं किया था, लेकिन आज इतने सारे लोग सारे मंत्री सारे नेता क्यों लिख रहे हैं, तो वो आपको हम दिखा देते हैं। सबसे दिलचस्प है कि आप ये देखिए, पश्चिमी यूपी, हम वेस्टर्न यूपी की सीटों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितनी सीटें, ये लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव है और इसमें 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखिए 2009 जब कांग्रेस जीती थी, यूपीए की सरकार बनी थी, तो इसमें कितनी सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी की आई थी 5 सीट, ठीक है, और सपा की आई थी समाजवादी पार्टी की 7 सीट, वो ऊपर थे, ठीक। लेकिन दंगे हुए 2013 में दंगे होने के बाद 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में मुझे पता, आप लोगों को बता दें जरा, उस वक्त जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया, जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे और वो फिर प्रधानमंत्री देश के बने, तो उसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है वो गृहमंत्री अमित शाह को बनाया गया था और प्रचंड जीत मिली थी उनके नेतृत्व में। और 2014 में अगर आप देखिए तो 24 सीटें, 73 सीटें पूरे यूपी में, 71+2 तो कुल मिलाकर 73 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी बीजेपी की। और उसी कड़ी में अगर आप देखिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप सोचिए ना, 27 में से 24 सीट तो बीजेपी ले गई। ये देखिए ग्राफ कैसे 5 सीट से पहुंच गया 24 पर और सपा जो है वो 7 से 3 पर आ, ठीक है। तो ये इसको माना जाता है कि ये जो दंगे की वजह से कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, नाराजगी हुई, उसकी वजह से मुस्लिम वोट एक तरफ चले गए तो काउंटर कंसोलिडेशन में सारे हिंदू वोट्स मिले, 24 सीटें यहां पर बीजेपी जीत गई। फिर आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब उसका असर कम होने लगा, फिर 19 सीट आई और फिर 4 सीट आई, समाजवादी पार्टी को बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, 1 ही सीट का हुआ। अब यहां से देखिए 19 से अगले 2024 के चुनाव में जब आप पहुंचते हैं तो 13 सीट और 10 सीट, यानी अब ये बराबरी का मामला हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हाथ होता है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये 13 और 10 का हो जाना एक तरह से इस बात की गवाही दे रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस नीचे आ रही थी। और फिर 2024 में आपने देखा ही 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई, 33 सीटें सिर्फ बीजेपी को आई पूरे उत्तर प्रदेश में। अब इसको हटा के हम आपको विधानसभा की सीटें दिखा देते हैं। विधानसभा की सीटें भी उतनी ही दिलचस्प है। ये देखिए, दंगा 2013 में हुआ, ठीक है, तो इसको हम बॉर्डर लाइन, इसको हम रेफरेंस पॉइंट एक मान लेते हैं। इससे पहले बीजेपी की 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कितनी सीटें थी, 20 सीटें, और समाजवादी पार्टी की कितनी थी, 58 सीटें। किसकी सरकार बनी, अखिलेश यादव की, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब ये 2013 का दंगा हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को 73 सीटें आई, 73, उसके बाद से विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुआ तो किसकी सरकार आई, बीजेपी की। कहां पर पहुंच गई थी बीजेपी, 109 सीट पर। तो 109 सीट पर बीजेपी इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि इसका असर, जो एक्सपर्ट्स है वो यही मानते हैं कि एक पोलराइजेशन हुआ, एक ध्रुवीकरण हुआ, और यहां से 2013 से दंगे के बाद वो 109 पर, और समाजवादी देखिए कैसे सीटें नीचे आती हैं, 21 सीटों पर वो पहुंच गए, विधानसभा में 21 सीटें, कुल मिलाकर 136 सीटें हैं यहां पर पश्चिमी उत्तर, विधानसभा की बात कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन फिर धीरे धीरे जब 2013 का टाइम बीतता गया, 2022 के चुनाव हुए, हालांकि बीजेपी फिर से जीती, योगी आदित्यनाथ अपने चेहरे पर फिर से पुनः चुनाव जीते, यहां पर उनका चेहरा नहीं था लेकिन यहां पर उन्हीं का चेहरा था, वो फिर से सीएम बने, फिर बीजेपी जीती, लेकिन 109 से लगभग 16 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो चुका था और 35 सीटें पर पहुंच गई थी 21 से, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग वही 14 सीटों के करीब का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था। तो ये चैलेंज है जो फिलहाल इनके सामने है, और इसीलिए इस चैलेंज में सबसे दिलचस्प बात यही है कि अगर बीजेपी को फिर से जीतना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करना होगा या उससे बेहतर करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इस पर सुनिए।
1: हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पूरा प्रदेश झुलसता था, बड़े बड़े दंगे हुए, बरेली में, मथुरा कोसीकला में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, व्यापक पैमाने पे प्लान होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, स्कूल कॉलेजेस बंद होते थे, कर्फ्यू रहेगा तो मार्केट बंद रहेगा ही, मार्केट बंद रहेगा तो व्यापार बंद होगा ही, कोई घर से नहीं निकल पाता था, और जब ऐसी स्थिति होगी तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पूरा प्रदेश झुलसता था, बड़े बड़े दंगे हुए, बरेली में, मथुरा कोसीकला में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, व्यापक पैमाने पे प्लान होता था।
0: हिंदू श्रद्धा से जुड़ी एक और खबर उज्जैन से आई है। आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में खड़े हनुमान मंदिर के बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे। इनमें दावा किया गया है कि प्रशासन इस मंदिर को तोड़ने की बहुत कोशिशें कर रहा है लेकिन खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को एक इंच भी हिला नहीं पा रहा। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के तहत सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। उज्जैन शहर बड़ा सर्राफा मार्ग पर भी यही काम चल रहा था और इसके तहत वहां सड़क पर बने काफी पुराने खड़े हनुमान मंदिर को भी हटाया जाना था। पिछले कई दिनों से प्रशासन इस मंदिर को हटाने की कोशिश कर रहा था। लोगों का अब यह दावा है कि प्रशासन की हर कोशिश नाकाम हो रही है। स्थानीय प्रशासन मंदिर के एक हिस्से को गिराने में तो कामयाब रहा लेकिन वो हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको हिला तक नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, दरअसल प्रशासन की प्रतिमा को हटाने की सारी कोशिशें दावे के अनुसार नाकाम हो गई। स्थानीय लोग इसे हनुमान जी की शक्ति कह रहे हैं, स्थानीय लोग इसको बड़ा चमत्कार मान रहे हैं लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा जमीन में कितनी गहराई तक है ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से वो प्रतिमा को हिला तक नहीं पा रहे। अधिकारियों का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रतिमा को हटाए जाने के दौरान उसको कोई नुकसान पहुंचे प्रतिमा को, और इसी वजह से हर बार प्रतिमा को हटाने का काम शुरू करने के कुछ देर बाद उसे रोक दिया जाता है क्योंकि प्रतिमा को नुकसान पहुंच सकता है और इससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो सकती है। लेकिन स्थानीय लोग प्रतिमा को ना हटा पाने को हनुमान जी की शक्ति से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हनुमान जी खुद नहीं चाहेंगे तब तक कोई उनको वहां से हिला नहीं सकता। खड़े हनुमान मंदिर में सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। जब लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा के आगे प्रशासन को हारते हुए देखा तो ये आस्था कई गुना बढ़ गई। अब पहले से ज्यादा हनुमान भक्त इस मंदिर के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं और दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अब तो लोग मांग करने लगे हैं कि इस प्रतिमा को यहां से हटाया ही ना जाए।

0: वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस शहर और इस देश की जनता यही आपसे चाहती है कि बाबा अन्यत्र स्थापित न हो, क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार कल ही छापा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है।
1: मैं यहाँ लगभग 40 वर्षों से आता हूँ और हनुमान जी पे मेरी नहीं लगभग सभी की आस्था है।
2: उज्जैन में खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की चुनौती के बीच मुंबई से फिल्म हनुमान अंश को लेकर एक अलग तरह की खबर आई। लोगों की मांग के बावजूद हनुमान अंश के शोज नहीं चलाए जाने पर एक थिएटर बंद हो गया। मुंबई में बांद्रा इलाके में एक मशहूर थिएटर है, नाम है गेटी गैलेक्सी। इस थिएटर में बाबा नीब करौली के करौली की कथाओं पर फिल्म बनी है। उस जो हनुमान अंश वो नहीं दिखाई जा रही थी, इसके बदले में वहां फिल्म मिर्जापुर के शो चलाए जा रहे थे और बहुत सारे लोग थिएटर में हनुमान अंश दिखाए जाने की मांग कर रहे थे, खासतौर पर वो लोग जो बाबा नीम करौली बाबा की बहुत पूजा करते हैं। हालात ये हो गए कि बड़ी संख्या में लोगों ने थिएटर के आगे प्रदर्शन किया, हनुमान अंश के भी शो चलाने की अपील की। 1972 में शुरू हुए गेटी गैलेक्सी थिएटर के मालिकों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिल्म मिर्जापुर के शो कम करके फिल्म हनुमान अंश को जगह नहीं दी। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने थिएटर में लगे पोस्टर्स फाड़े, जिसकी शिकायत थिएटर मालिकों ने पुलिस से की। मुंबई पुलिस ने जब इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की तो ये जांच थिएटर गेटी गैलेक्सी के मालिकों पर भारी पड़ गई। पुलिस को जांच में पता चला कि थिएटर के अंदर कई तकनीकी खराबियां थी। इसके अलावा थिएटर मालिकों के बाद उसे चलाने का लाइसेंस कई वर्षों से रिन्यू नहीं कराया गया था। बस इस लापरवाही का पता चला, पुलिस ने थिएटर मालिकों के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना का मामला दर्ज किया, थिएटर बंद कर दिया गया। 11 अक्टूबर यानी करीब एक महीने बाद शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी उत्सव के तौर पर गरबा और डांडिया के आयोजन होंगे। लेकिन गरबा और डांडिया में कौन आ सकता है कौन नहीं, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। हमेशा की तरह विवाद यही है कि हिंदू धर्म के इस त्योहार में मुस्लिम धर्म के युवकों को आने की बात आ गई है। विश्व हिंदू परिषद में महाराष्ट्र के नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन करने वालों से अपील कर दी है कि इस बार गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा। पिछले कुछ वर्षों में गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए, जैसे आधार कार्ड की चेकिंग कराई, मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ तक कराया, कहा माथे पर टीका लगाना जरूरी है। आयोजकों का मानना है कि ऐसा करने से गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं की पहचान हो सकेगी, उन्हें रोका जा सकेगा। इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की अपील की गई। आधार कार्ड की चेकिंग के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाए जाने की बात सामने आई। विश्व हिंदू परिषद की इस अपील से महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल मचा है। एक पक्ष वीएचपी की अपील का समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष से रूढ़िवादी बांटने वाली सोच बता रहा है और विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में मंत्री नितेश राणे ने वीएचपी की हां में हां मिलाई। नितेश राणे ने कहा है कि नवरात्र में होने वाले गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं और जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते उन्हें धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। नितेश राणे ने भी ये भी सुझाव दिया कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए। बीजेपी सरकार के मंत्री की ओर से आए इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो वीएचपी और नितेश राणे के बयान को असंवैधानिक फतवा बता दिया है। इन लोगों का कहना है कि गरबा जैसे आयोजन धार्मिक सद्भाव बढ़ाते हैं और इस तरह के प्रतिबंध से सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचता है।
3: घर वापसी करे, टीका लगाए, हनुमान चालीसा मने, देवी माँ का आरती बोले, मूर्ति की जाके पूजा करे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, कुरान में, इस्लाम में मूर्ति पूजा का महत्व ही नहीं है। तो इसलिए आपको अगर गरबा या हमारे हिंदू फेस्टिवल्स में आना ही है, हिंदू बन जाओ, वापिस अपने हिंदू धर्म में आ जाओ और अपने फेस्टिवल्स मनाओ, कोई किसी को हरकत नहीं है।
2: पिछले कई वर्षों से हिंदू परिवार संगठन आरोप लगाते हैं कि हर साल मुस्लिम युवक लव जिहाद के एजेंडे के साथ पहुंचते हैं। नकली पहचान बताने को लेकर कई लोग विरोध करते हैं कि बताते नहीं अपनी असली पहचान गरबे और डांडिया के कार्यक्रम में आने से पहले। इसलिए उनका कहना है कि जो गैर हिंदू हैं, खासतौर से मुस्लिम युवकों के प्रवेश को रोकने की बात की जाती है। अब इस बहस में कौन कूद पड़ा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, उन्होंने अलग विचार दिए। उनका कहना है कि गरबा में मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। अमृता फडणवीस चंद्रपुर के एक मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति गरबा देखने या उसका आनंद लेने आता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गरबाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत।
2: अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। एक समय था जब चाइना की सीमा से लगे पूर्वोत्तर के दुर्गम पहाड़ों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तोपों और दूसरे हथियारों को ले जाना एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने इस सबसे बड़ी अड़चन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। भारतीय सेना की ब्रह्मास्त्र कोर ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लाइट होविट्ज़र तोपों को सीधे हवा के रास्ते बेहद दुर्गम इलाकों में तैनात करने का सफल अभ्यास किया है। इसे रैपिड एयर डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है, यानी अब भारत को सीमा तक हथियार पहुंचाने के लिए सड़कों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भारतीय सेना की उस अचूक रणनीति का गतिशील सबूत है जो किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन को पलक झपकते ही करारा जवाब देने में सक्षम रहती है।

0: बिल्कुल अंजना, एक वक्त था जब सीमा के दुर्गम और पथरीले रास्तों पर सेना को काफी मुश्किलें होती थी। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और बीहड़ घाटियों में तोपों को पहुंचाना एक तरह से नामुमकिन सी चुनौती थी। लेकिन आज भारत की ताकत का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। आसमान का सीना चीरता चिनूक हेलीकॉप्टर और उसके नीचे हवा में तैरती अल्ट्रालाइट होविट्जर तोप, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, दुश्मनों के होश उड़ाने वाली रैपिड एयर डिप्लॉयमेंट की वो धमक है जिसने युद्ध का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत काम करने वाली ब्रह्मास्त्र कोर ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ सोच में था। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए अल्ट्रा लाइट होविट्जर रेजिमेंट की अंडरस्लंग ट्रेनिंग की गई, यानी घातक तोप को हेलीकॉप्टर के नीचे बांधकर सीधे युद्ध के मैदान में उतारने की क्षमता। पहले जहां तोपों को सीमा तक पहुंचाने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, अब ये काम चंद मिनटों में होगा। ना सड़कों पर निर्भरता, ना दुर्गम रास्तों की परवाह चीन और पाकिस्तान से लगती दुर्गम सीमाओं पर, जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां भारतीय वायुसेना और सेना मिलकर सेकंडों में ही भारी फायर पावर तैनात कर देगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। ये अहम और वहम दोनों का नशा उतार देता है। नमस्कार। सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहां इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
6: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
7: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया, तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
8: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं है, कोई ये चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
7: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
9: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा, गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
7: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
10: ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
7: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
11: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
7: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
12: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने CJI की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉयमाली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। CJI ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
13: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
12: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा एसीपी 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी जीडीयू का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
9: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
12: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल डीडीयू में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
6: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
14: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नितेश राणे से जुड़ी हुई है। नितेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
15: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
15: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन हैं जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
16: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
17: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही है। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं?
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
6: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को नीव सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, नीव सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से नीव सहित

0: इसको लेकर।
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यूज़ है तो उठा के स्थापित हो सकती है।
2: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
4: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना और कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है और धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
4: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: हाँ सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
2: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
5: मुझे ये लगता है कि मुझे पिछले 1 महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता है मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
6: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं यहाँ पर। कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
7: अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
6: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
2: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
8: रहना चाहिए और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही झाड़नी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा भी कुछ रहता तो हम यही आते थे।
7: आप हर मंगलवार आते हो?
8: हर मंगलवार आते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
9: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन झाड़नी लगाने आते हैं और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम झाड़नी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
2: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
10: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।

0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
1: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
2: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है। हम मोहाली के जगह पे और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
3: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
4: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखे भी साढ़े ही पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहेगा। जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, ब्याह करके तेने चीमे नूं क्यों आख्या, सानू धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में ने दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर्ट ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे न सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहां इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने CJI की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉयमाली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। CJI ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नितेश राणे से जुड़ी हुई है। नितेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी चीज भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 33 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही झाड़नी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यहीं आ रहे, हर मंगलवार दिन झाड़नी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम झाड़नी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
10: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
11: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
12: गुलजार जैसा भाई खड़ा होके बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
13: भाई साडे टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने उन्हें आखे भी साडे पिंड च सरेआम चिट्टा बिक रहेगा, जब ये गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गए जी, बया करके तेने चीमे नूं क्यों आख्या, सानूं धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर
14: बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
9: कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई उस समय उनकी हत्या की सुपारी देने वाली उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आया है।
15: यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
9: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
15: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही है। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
16: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
15: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं, अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्त चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। हा? तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीय ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजीआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा एसीपी 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी जीडीयू का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल डीडीयू में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहाँ से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नितेश राणे से जुड़ी हुई है। नितेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है, पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी, मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसे जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमार कालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की

0: कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
1: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
2: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए, मेरे को भी आते होते बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
3: आप हर मंगलवार आते हो?
2: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
4: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
1: संदीप फुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
5: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
6: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
7: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
6: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
8: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप ये और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
9: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
6: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था, जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
10: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखे भी साढ़े पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहेगा, जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गए जी, बी ऐ करके तेने चीमे नूं क्यों आख्या, सानू धमकियां दे रहे ने जी सरपंच मैंबर।
6: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
11: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा

0: गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
1: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहते हुई सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
0: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में ने दर्द दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं सुरक्षा में सिर लगाने वालों को अब जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका कैमरे में कैद खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है जहां इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा, गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: पुलिस वालों, पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजेआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने, और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नितेश राणे से जुड़ी हुई है। नितेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहने आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी, मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति की चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाना, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
10: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
11: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
12: गुलजार जैसा भाई खड़ा होके बोलता है दिड़बा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
13: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखे भी साढ़े ही पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहेगा, जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, बयान करके तेने चीमे नूं क्यों आख्या, सानूं धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
9: कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई उस समय उनकी हत्या की सुपारी देने वाली उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आया है।
0: यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
9: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
0: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
14: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है, गंगा इस तरफ से बहते हुई सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
0: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में ने दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मोहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे न सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहां इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई ये चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने CJI की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। CJI ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गरबाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला हवं।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नितेश राणे से जुड़ी हुई है। नितेश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नितेश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही है। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोदकर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति की चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 157 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 33 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या हम

0: पड़ता हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर। क्या
1: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
2: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
3: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
4: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
3: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
5: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप ये और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
6: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
3: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
7: भाई साडे टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने उन्हें आखे भी साडे पिंड च सरेआम चिट्टा बिक रहेगा। जब ये गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, बयान करके तेने चीमे नूं क्यों आख्या, सानूं धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
3: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
8: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है, लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
9: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है

0: यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है, और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है, और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है, गंगा इस फैलता जा रहा है।
1: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: भोपाल से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में ने दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं, अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे न सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई ये चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: ये मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्ली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजेआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा एसीपी 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी जीडीयू का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल डीडीयू ने कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहाँ से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नीतीश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोदकर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसे जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: तो ये लगता है कि मुझे पिछले 1 महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1957 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही आ रहे, हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गए। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
10: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
11: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप ये और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
12: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दिड़बा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
13: भाई साडे टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने उन्हें आखे भी साडे पिंड च सरेआम चिट्टा बिक रहेगा, जब ये गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गए जी, बयान करके तैने चीमे नूं क्यों आख्या, सानूं धमकियां दे रहे ने जी सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
9: कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई उस समय उनकी हत्या की सुपारी देने वाली उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आया है।
0: यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
9: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
0: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही है। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
14: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
0: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं, अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्रों को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीय ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्ली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजेआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नीतीश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं पे है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्वी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है, पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति की चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी चीज भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे। पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 33 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते। बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या। हम यही, हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें। कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए। बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त

0: मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
1: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
2: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है। हम मोहाली के जगह पे और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
3: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
4: ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਬਣਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਭੜਕ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੇ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
6: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है, लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहाँ नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
7: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है, गंगा इस तरफ से बहती हुई सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
6: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में ने दर्द दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं सुरक्षा में सिर लगाने वालों को अब जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में दो सैनिकों की मौत फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका कैमरे में कैद खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे न सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण ना किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: पुलिस वालों, पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीय ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने CJI की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉयमाली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। CJI ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है। जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नीतीश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहने आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसे चीज भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1957 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमार कालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें। कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
10: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
11: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
12: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दिड़बा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: 2 दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था, जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
13: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखे भी साढ़े ही पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहेगा। जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, बयान करके तेने चीमे नूं क्यों आखिया, सानूं धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
9: कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई उस समय उनकी हत्या की सुपारी देने वाली उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आया है।
0: यकीन करना मुश्किल है मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में है। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
9: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए
0: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
14: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
0: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच दो यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम

0: नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में दो सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद, खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके हॉलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के सत्य निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी, आज नहीं, ये कोई ये चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा, गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
10: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
11: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीय ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये बीएनएसएस 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजेआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
12: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन न हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
11: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
11: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल DDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नीतीश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
13: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला हवं।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
14: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
14: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
15: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है, पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
16: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था तक है। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोदकर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों की तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: मुझे ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1957 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब

0: हमारा जन्म हुआ जब से हम यहीं आ रहे हैं, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यहीं आ रहे, हमारा जन्म यहीं हुआ और यहीं आते हैं हम जाननी लगाना और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यहीं रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
1: संदीप फुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
2: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
3: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
4: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
3: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
5: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
6: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
3: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
7: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखिया भी साढ़े पिंड च सरेआम चिट्टा बिक रहेगा। जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, बयान करके तेन चीमे नूं क्यों आखिया, सानू धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
3: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
8: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है, लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही है। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं,

0: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर। और भवनाथपुर चौक जो है, यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहती हुई सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
1: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बाद से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी के चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सिर लगाने वालों को आप जेल या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, सात रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार दिखाई थी खबर। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के टैंक हादसे में 2 सैनिकों की मौत, फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ धमाका, कैमरे में कैद खौफनाक घटना। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है, सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एनसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की ये रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे न सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है, जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।